0: कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध, बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हुती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता। बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
1: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
2: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
1: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
3: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
1: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
4: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
1: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है। और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम भी निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके? क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार कहता हूँ, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंगनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आया?
0: क्या 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया।
7: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, जहां एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, उसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका RDA की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर RDA रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
9: जो रजिस्ट्री की नहीं है, पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीगंज में पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक उसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया, लेकिन असली शंका तो सियासत पर है। जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
10: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
11: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
12: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
11: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
13: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण गांटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाए।
11: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद सही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
10: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
14: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
11: मिलिए मौलाना जर्जेस अंसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए।
15: यकीन ना आए, योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
11: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए।
16: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
11: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
16: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है,
11: ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
17: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
18: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
11: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं।
11: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई है।
19: देख लो, आड़क जन एमपी চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোন একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার্ট যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
11: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
20: जब सत्यनाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
21: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं। और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? अब तो तृणमूल में रह के भी तो

0: एहसास किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
1: কাজী মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না, যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
0: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
2: वहाँ जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
0: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
3: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
4: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा। कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है तो गलती आपकी नहीं।
5: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय ज़मीन के और उन ज़मीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
6: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
5: कॉलेज नहीं है? कभी था?
6: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
5: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
6: हाँ।
4: इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है। यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
5: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगलामुखी कॉलेज है, यह हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है। यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगलामुखी कॉलेज चालू है?
6: ये नहीं है, बंद है।
5: बंद है?
6: हाँ, कोरोना से।
5: कोरोना से बंद है?
6: हाँ।
5: मतलब 2020 में आया था कोरोना। हाँ। और 2021 में दूसरी लहर। हाँ। मतलब 5-6 साल हो गए
6: और का, जब से बंद है।
5: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
6: नहीं आता।
5: कोई बस आती हो?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं आती।
5: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
6: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है।
4: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रमेश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे। यहां सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है, जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला। ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
5: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है, और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का प्रीमाइसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमाइसिस नहीं है। और साथ ही में इसी प्रीमाइसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था। क्या आप लोगों

0: को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे ही है?
1: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है इसी की मीटिंग उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
2: असल में एक खेल है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज है, 2 सरकारी 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
3: जो शासन के मापदंड है बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन, 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोल कर बैठे हुए।
4: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
2: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
6: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार 5वें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
5: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

लगातार छठे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप में धमाके। ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइलें और ड्रोन्स। हमले के बीच ईरान को लेकर अमेरिका का दावा। व्हाइट हाउस ने कहा समझौता करना चाहता है ईरान। अमेरिकी सेना ने ईरान को पहुंचाया भारी नुकसान। मॉनसून सत्र से पहले सियासी घमासान। राजनाथ सिंह के आवास पर आज एनडीए की बैठक। खड़गे ने पीएम को लिखा खत। संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीटिंग की मांग। पंजाब और हरियाणा को आज पीएम मोदी देंगे सौगात। कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं पंजाब के लोग। वहीं हरियाणा में भी सभा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी 2026 रिजल्ट का परीक्षा का रिजल्ट। 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई। आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर। 21 जून को हुआ था री एग्जाम।

स्वागत है आप सभी का। सुबह के 6 बजे है और 6 बजे की 6 ताजा खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लगातार ईरान पर हमले करने से रुक नहीं रहा है अमेरिका। छठे दिन ईरान में कहां-कहां पर हमले हुए हैं, इस खबर पर करेंगे बात। वहीं दूसरी खबर ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है। वहीं आपको ये बताएंगे कि बदले की आग में जल रहे ईरान ने मिडिल ईस्ट में कहां-कहां पर कोहराम मचाया हुआ है। चौथी खबर होगी मॉनसून से जुड़ी, क्योंकि मॉनसून सत्र से पहले देश में सियासत तेज हो गई है। तो वहीं पांचवी खबर, आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और विकास वाली सौगात वो क्या देने वालेंगे बताएंगे आपको। छठी खबर, नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, किसने मारी है बाजी वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में मची जंग की। दरअसल ईरान पर अमेरिका ने लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इसी के साथ अमेरिका की सेनाओं ने ईरान के कई इलाकों और द्वीप को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बंदर खमीर और साथ ही केशम द्वीप, एवाज और ईरान शहर एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। केशम द्वीप पर अमेरिकी प्रोजेक्ट गिरा और साथ ही वहीं पर फोर्स मीडिया के मुताबिक बंदर खमीर में एक ब्रिज पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा ईरान शहर एयरपोर्ट और एवाज में भी अमेरिकी मिसाइल से तबाही मची है। तो लगातार छठे दिन फिर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका जहां पर ईरान की कुछ जगहों को निशाना बना रहा है, तो वहीं ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। ईरान इसका जवाब दे रहा है और ईरान ने भी कई हमले किए हैं, चाहे कुवैत हो या फिर कोई और जगह, ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। तो ये लड़ाई आर पार की नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के किन किन ठिकानों पर हमले किए हैं। एवाज, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, साथ ही ईरान शहर एयरपोर्ट और बंदर खबीर पर हमले किए गए हैं। यहां पर बम बरसाए गए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बम बरसाए। ये वो जगह है जहां को टारगेट किया गया है अमेरिका द्वारा और यहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, बम बरसाए गए हैं। ऐसे में ईरान की तरफ से कई दावे भी किए जा रहे हैं कि वहां पर कई लोग घायल भी हुए हैं। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने एक बयान भी दिया है। दरअसल उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कम करने के लिए लगातार छठी रात ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। तो ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने के लिए हमले किए जा रहे, एक नया बयान सामने आया है। लगातार छठी रात ईरान पर हमलों का एक नया दौर शुरू हो गया है। छठा दिन है इसका और ऐसे में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान पर बम बरसाए जा रहे हैं, चाहे केशम द्वीप हो, एवाज हो, बंदर खमीर या फिर कोई और इलाका। बंदर अब्बास को टारगेट किया जा रहा है और कई वहां पर मिसाइलें भी दागी गई हैं, जिसकी वजह से लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, जिस बात की पुष्टि ईरानी मीडिया ने किया है। वही लगातार छठी रात ईरान पर हमलों का एक नया दौर शुरू हो गया है। तो ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। दरअसल कुवैत पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी है। कुवैत रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि अब तक कुवैत की 25 क्रूज मिसाइलें, साथ ही 387 बैलिस्टिक मिसाइल और 1002 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर तबाह किया है। साथ ही ये भी कहा गया कि ईरानी मिसाइलों का मलबा रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा था और वही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई है। 387 बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह की हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। कुवैत पर जो ईरान मिसाइलें बरसा रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि 1002 ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर उनको भी तबाह किया है। तो ईरान अमेरिका जंग को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस बात की भी पुष्टि की गई है कि अभी तक कोई भी वहां पर हताहत नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट के कई देशों पर ईरान के हमले अभी भी जारी है और कुवैत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 25 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है।
तो ईरान को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, और ऐसे में कहां कहां पर हमले किए गए। 25 ईरानी क्रूज मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं, 387 बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह हुई हैं, वही 1002 ड्रोन्स को भी नष्ट किया गया है। तो फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ गई है। आज छठा दिन है और कुवैत पर भी एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। वही कुवैत का बयान सामने आया है, उन्होंने ये दावा किया है कि 1002 ड्रोन्स को नष्ट किया गया है, वही 387 बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तबाह किया गया, 25 ईरानी क्रूज मिसाइलें भी इंटरसेप्ट की गई है। हालांकि अभी तक उन्होंने यह भी कहा है कि किसी के हताहत होने की खबर कोई भी सामने नहीं आई है। ईरान जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि वो हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी अमेरिकी सेना से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों की वजह यह है कि ईरान ने उस एमओयू का उल्लंघन किया।

ईरान और अमेरिका की जंग से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। लगातार छठा दिन है आज, ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक अभी भी जारी है। ऐसे में ईरान के सैन्य ठिकानों को उनको ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। बंदर अब्बास, केशम द्वीप, अहवाज में भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और बंदर खमीर के भी पुल को निशाना बनाया गया है। मतलब तबाही का मंजर हर ओर नजर आ रहा है। वही कुवैत का दावा है कि अब तक 25 क्रूज मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई है और साथ ही ड्रोन्स को भी गिराया गया है। कुवैत ये दावा कर रहा है। कुवैत ने कहा है कि 387 बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको भी उन्होंने रोका है। और वही इसी के साथ 1002 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर तबाह करने की बात भी कुवैत कर रहा है। तो बड़े दावे कुवैत ने किए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि समझौता ईरान अभी भी करना चाहता है, लगातार ईरान कोशिश कर रहा है समझौता करने की। वही ईरान और अमेरिका के बीच जिस चीज को लेकर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से होर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। और इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान की माली हालत को लेकर चिंता में हैं, तो कुछ इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी लड़ाई मान रहे हैं।

0: तेहरान का ऐतिहासिक आजादी स्क्वायर और यहां की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन इस सामान्य हलचल के पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन छिपी है। सड़कों पर लगे तीखे बैनर और अमेरिका विरोधी पोस्टर तेहरान के गुस्से को बयान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सीनेटरों को निशाना बनाते हुए पोस्टर साफ गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस नाकेबंदी के आगे झुकने को तैयार नहीं। स्थानीय अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही हैं कि होर्मुज पर केवल ईरान का हक है, लेकिन प्रतिबंधों की मार झेल रहे आम लोगों के लिए ये नई नाकेबंदी एक बड़ी आर्थिक आफत बनकर आई है।
1: طبیعتاً خب جای نگرانی داره و واقعاً روی اقتصاد کشور تاثیر خیلی منفی داره این قضیه، قضیه محاصره که ما نتونیم حالا نفت بفروشیم، نتونیم چیزی وارد کنیم. بحث
0: ایک انتریم سمجھوتے کے ذریعے اس سمندری مارگ کو کھولا جانا تھا، लेकिन अमेरिकी सेना की निगरानी वाले रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। तेहरान की सड़कों पर सर्वोच्च नेता खामेनेई के पोस्टर लोगों से डटे रहने की अपील कर रहे हैं।
2: ما هم بتونیم که این تنگه رو مدیریت کنیم یک لحظه از جهت میهن پرستانه به نفع ماست و میتونیم یکم این زورگویی آمریکا رو واقعا کم.
0: امریکا نے اس سمندری راستے کو بل پوروک کھولنے کی دھمکی دی ہے، لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس کے لیے واشنگٹن کو بھاری سینیہ طاقت جھونکنی ہو۔ دشکوں کے پرتیبندھوں اور سنگھرشوں سے جوجھ رہی ایران کی بیمار ارتھ ویوستھا کے لیے آنے والے دن بے حد مشکل ہونے والے ہیں۔ آج تک بیو
3: एक बड़ी खबर सियासत से जुड़ी। दरअसल संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर सरकार ने अपनी रणनीति तैयारियां तेज कर ली है और इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वहीं मीटिंग में मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक, पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीय नाविकों की मौत और साथ ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र और उसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बात मॉनसून सत्र को लेकर मचे घमासान की कर लेते हैं, जहां पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी तैयारियां दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो साथ ही डीलिमिटेशन बिल को भी लेकर इस बार पास कराने का मन सरकार बना चुकी है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को पत्र लिखकर ऑल पार्टी मीट बुलाने की भी मांग की है।
4: 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं। बीजेपी की बैठकों के बीच कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप ने भी मंथन किया। यूं तो 19 दिन के सत्र में 16 दिन की बैठकों के एजेंडे पर 19 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में चर्चा होने वाली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि इस सत्र में तीन महत्वपूर्ण विधेयक आ सकते हैं, परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, एक देश एक चुनाव विधेयक। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस कहती है कि वो फिर से सरकार को हराएगी।
5: हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे।
4: कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी गठबंधन के सभी दलों में एकजुटता है और आगामी सत्र में एक साथ सरकार की कोशिशों का विरोध किया जाएगा, लेकिन 17 अप्रैल के बाद देश में बड़ी हलचल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, 20 सांसद अलग हो गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, 6 सांसद शिवसेना में चले गए। तमिलनाडु में बेवफाई से नाराज डीएमके कांग्रेस के साथ बैठना तक नहीं चाहती। शरद पवार की पार्टी का रुख पहले के मुकाबले नरम नजर आ रहा है। बहरहाल इस मॉनसून सत्र में एक बार फिर जोरदार हंगामे के आसार हैं, जिसकी तैयारी दोनों ओर से की जा रही है। पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: बात पीएम मोदी के पंजाब और हरियाणा के दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद पीएम जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही सभा को संबोधित भी आज पीएम मोदी करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ जाएंगे, जहां पर दोपहर करीब 2 बजे वो 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन भी करने वाले हैं। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जालंधर जाएंगे, जहां पर वो 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं।
4: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई है।
6: देख लो, आरएकजन एमपी চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার্ট যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
4: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
7: सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
8: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं, और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
4: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
6: काजी मिथ्या कथा बोले चातुरी करार क्यों चेष्टा करबेन ना, जादेर जेते हय जान, जा पड़े থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004 এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997 যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026 নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
4: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
9: वहाँ जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
4: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराय और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
3: बात कर लेते हैं अब नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, और इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें 11 लाख 21 हजार स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई भी हुए हैं। साथ ही पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया। परीक्षा में 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा, जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक भी हासिल किए। तो पेपर लीक के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो गई थी। इसके बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई और अब उसका री एग्जाम के बाद रिजल्ट आ गया।

0: देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट जारी। 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया क्वालिफाई। पंजाब और हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका मेडिकल के छात्रों को काफी इंतजार था। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11 लाख 21 हजार छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया। बात करें परीक्षा के टॉप स्कोरर्स में 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार परीक्षा दी थी। वहीं क्वालिफाई करने वाले कुल स्टूडेंट्स में 58% से ज्यादा छात्राएं और 55.1% छात्र हैं। पेपर लीक होने के बाद नीट परीक्षा को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया। वहीं अगले साल यानी 2027 से नीट यूजी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
1: बात कर लेते हैं जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद की। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिन में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे, और अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत हो रही है।
2: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
3: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
2: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा, अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
4: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खान का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खान हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
2: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
5: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, एक मजदूर की हैसियत से काम किया है, और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
2: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम ये निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके? क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार कहता हूँ, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंघनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आए आप?
0: अच्छा, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
12: क्या आप पुरुष हैं और विवाह में अड़चनें आ रही हैं? विवाह की उम्र बीत रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, या अब आप विवाह की उम्मीद छोड़ चुके हैं? क्या है पुरुषों के विवाह में विलंब के कारण और पुरुषों के विवाह के विलंब को दूर करने के कौन से हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
13: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
14: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
13: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

छठे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। बदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप में धमाके। ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइलें और ड्रोन। हमले के बीच ईरान को लेकर अमेरिका का दावा। व्हाइट हाउस ने कहा समझौता करना चाहता है ईरान। अमेरिकी सेना ने ईरान को पहुंचाया भारी नुकसान। मॉनसून सत्र से पहले सियासी घमासान। राजनाथ सिंह के आवास पर आज एनडीए की बैठक। खड़गे ने पीएम को लिखा खत। संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब और हरियाणा को आज पीएम मोदी देंगे सौगात। कहा बीजेपी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं पंजाब के लोग। वहीं हरियाणा में भी सभा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी 2026 परीक्षा का रिजल्ट। 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई। आर्यन गुप्ता और पांशु बंसल बने टॉपर। 21 जून को हुआ था री एग्जाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आज लगातार छठी रात भी जारी है अमेरिकी कार्रवाई। ईरान पर नए हवाई हमलों की शुरुआत हुई। सेंटकॉम ने किया दावा। ईरान के कई शहरों में अमेरिका पर हमले जारी है और वहीं अहवाज शहर में धमाके से हड़कंप मचा। रॉयटर्स के हवाले से खबर। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी। अमेरिकी हमले में बंदर खमीर का भी पुल निशाने पर बना रहा। रॉयटर्स के हवाले से खबर। साथ ही ईरान अमेरिका कैदी अदला बदली के दावों को प्रेस टीवी ने किया खारिज। जासूसियों की रिहाई से भी किया इनकार। व्हाइट हाउस का नया बयान। ईरान अब भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है, समझौता करना चाहता है। व्हाइट हाउस का दावा है ईरान डील की इच्छा रखता है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज समझौते का उल्लंघन किया। कुवैत की सेना का दावा 32 दुश्मन ड्रोन मारे गए। वहीं ईरानी हमले में कई अहम ठिकाने भी बने निशाना। कुवैत के हवाई क्षेत्र में 32 ड्रोन इंटरसेप्ट होने से मलबा रिहायशी इलाकों पर गिरा, कोई जनहानि नहीं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच हॉर्मुज में शिपिंग गतिविधियां बेहद कम रही। सामान्य स्तर के मुकाबले सिर्फ 10% जहाजों की आवाजाही। स्पेन के जरागोजा में उसके पास भड़की भीषण वाइल्ड फायर। जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी से हालात गंभीर। व्हाइट हाउस का ऐलान। रविवार को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में शिरकत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अर्जेंटीना और स्पेन के मुकाबले में होंगे शामिल। ट्रंप टावर में फीफा रिसेप्शन में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप। आज को न्यूयॉर्क में आयोजन होने वाला है। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। जीत के हीरो जो रूट रहे वो 99 रन बनाकर नाबाद लौटे। जो रूट बने प्लेयर ऑफ द मैच। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 11,21,000 स्टूडेंट्स हुए परीक्षा पास। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशु बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया। 2027 से नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन मोड में की जाएगी। आयोजित पहले से मॉक टेस्ट और साथ ही डेमो की रहेगी सुविधा ताकि वो नए सिस्टम के अनुसार हो तैयार। आज हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 25,000 करोड़ रुपए की परियोजना के देंगे सौगात। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार। आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। मॉनसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति। आज राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बड़ी बैठक। अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज रहेंगे मौजूद। संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस। परिसीमन बिल पर विपक्षी एकजुटता का दावा। जयराम रमेश बोले सरकार को लोकसभा में नहीं मिलेगा 2/3 बहुमत। आरजेडी नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बोले तेजस्वी यादव ने मेरी शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया। किसी भी पार्टी में अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं करता। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। गया में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का पीयूष कुमार। बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो
25 खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में मची जंग की। दरअसल ईरान पर अमेरिका ने लगातार छठे दिन भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस बीच अमेरिका की सेनाओं ने ईरान के कई इलाके और द्वीप को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बंदर खमीर, केशम द्वीप, अहवाज और साथ ही ईरान शहर एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान की मेयर एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास में कई धमाके हुए। केशम द्वीप पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरा और वहीं फार्स मीडिया के मुताबिक बंदर खमीर में भी एक ब्रिज पर हमला किया गया है। इसके अलावा ईरान शहर एयरपोर्ट और अहवाज में अमेरिकी मिसाइल से तबाही मची है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के एयर स्ट्राइक को लेकर जवाब दिया है। लगातार छठे दिन ईरान पर ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी है। बंदर अब्बास और केशम द्वीप उन सभी जगहों को अभी भी टारगेट किया जा रहा है और ईरान के जो कई शहर हैं, कई रिहायशी इलाके हैं जिन पर हमले लगातार जारी हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के वो कौन कौन से ठिकाने हैं जिन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिंगाम द्वीप, सिरिक, बंदर अब्बास और चाबहार, इन जगहों को टारगेट किया जा रहा है। लगातार अमेरिका की तरफ से इनको निशाना बनाया जा रहा है। कई मिसाइलें दागी जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं और ईरानी मीडिया की तरफ से इन सभी मिसाइलों को मार गिराने के दावे भी किए जा रहे हैं। लगातार अमेरिका भी इसको लेकर दावे कर रहा है। या तो ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान भी लगातार अमेरिका पर हमले कर रहा है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका सेना ने बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है सेंटकॉम ने कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कम करने के लिए लगातार छठी रात ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए छठा दौर अब शुरू हो गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लगातार छठी रात है आज हमले की, ऐसे में ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू हुआ है। ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर। दरअसल क्वेत पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में क्वेत रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि अब तक क्वेत की 25 क्रूज मिसाइलें, साथ ही 387 बैलिस्टिक मिसाइल और 1002 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर तबाह किया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों की वजह से मलबा इकट्ठा हुआ और इसकी वजह से रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। अब तक 25 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा कुवैत की तरफ से किया जा रहा है। तो ईरान लगातार कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइलें बरसा रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है। ऐसे में कुवैत ने दावा किया है कि 300 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया गया है, साथ ही 1002 ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया गया है। तो देखिए, 25 ईरानी क्रूज मिसाइलें इंटरसेप्ट करने का दावा कुवैत कर रहा है। कुवैत की तरफ से नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 387 बैलिस्टिक मिसाइलें भी तबाह की गई है, साथ ही 1002 ड्रोन्स उनको भी नष्ट किया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तो कुवैत ने यह दावा किया है और कुवैत इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 25 ईरानी क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। दरअसल कहा गया है व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कि ईरान लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि वो हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हमारी अमेरिकी सेना से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों की वजह से ये ईरान ने उस एमओयू का उल्लंघन किया जो हमने उनके साथ किया था। तो ईरान को अमेरिकी सेना से भारी नुकसान पहुंच रहा है, ये दावा किया जा रहा है। तो आज छठा दिन है और लगातार भीषण हमले किए जा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। लगातार छठे दिन ईरान पर अमेरिकी हमले जारी है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। बंदर अब्बास, केशम द्वीप, अहवाज, वहां पर टारगेट उनको किया जा रहा है। वहां पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। बंदर खमीर के पुल को भी निशाना बनाया गया है, पुल को उड़ाने का निशाना बनाया गया। वही 25 क्रूज मिसाइलें कुवैत दावा कर रहा है कि अब तक उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया है। साथ ही 387 बैलिस्टिक मिसाइलें भी रोकी गई हैं जो ईरान की तरफ से आई थी, ये कुवैत दावा कर रहा है। कुवैत ने यह भी कहा है कि 1002 ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद उनको तबाह कर दिया गया है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जिस चीज को लेकर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जिस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से हुर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दिया। और इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान की माली हालत को लेकर चिंता में है तो कुछ इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई भी मान रहे हैं। तेहरान से ये रिपोर्ट देखिए।

0: तेहरान का ऐतिहासिक आजादी स्क्वायर और यहाँ की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन इस सामान्य हलचल के पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन छिपी है। सड़कों पर लगे तीखे बैनर और अमेरिका विरोधी पोस्टर तेहरान के गुस्से को बयान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सीनेटरों को निशाना बनाते हुए पोस्टर साफ गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस नाकेबंदी के आगे झुकने को तैयार नहीं। स्थानीय अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही हैं कि होर्मुज पर केवल ईरान का हक है, लेकिन प्रतिबंधों की मार झेल रहे आम लोगों के लिए ये नई नाकेबंदी एक बड़ी आर्थिक आफत बनकर आई है।
1: طبیعتاً خب جای نگرانی داره و واقعاً روی اقتصاد کشور تاثیر خیلی منفی داره این قضیه، قضیه محاصره که ما نتونیم حالا نفت بفروشیم، نتونیم چیزی وارد کنیم. بحث
0: ایک انتریم سمجھوتے کے ذریعے اس سمندری مارگ کو کھولا جانا تھا، लेकिन अमेरिकी सेना की निगरानी वाले रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। तेहरान की सड़कों पर सर्वोच्च नेता खामेनी के पोस्टर लोगों से डटे रहने की अपील कर रहे हैं।
2: ما هم بتونیم که این تنگه رو مدیریت کنیم یک لحظه از جهت میهن پرستانه به نفع ماست و میتونیم یکم این زورگویی آمریکا رو واقعا کم.
0: امریکا نے اس سمندری راستے کو بل پوروک کھولنے کی دھمکی دی ہے، لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس کے لیے واشنگٹن کو بھاری سینیہ طاقت جھونکنی ہو۔ دشکوں کے پرتیبندھوں اور سنگھرشوں سے جوجھ رہی ایران کی بیمار ارتھ ویوستھا کے لیے آنے والے دن بے حد مشکل ہونے والے۔ آج تک بیو۔
3: अब खबर सियासत से जुड़ी। दरअसल संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर सरकार ने अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी है। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद और मीटिंग में मानसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक, पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीय नाविकों की मौत और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। तो मानसून सत्र को लेकर मजे घमासान की बात भी कर लेते हैं, जहां पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी तैयारियां दुरुस्त करने में लगे हैं। डिलिमिटेशन बिल को इस बार पास कराने का मंच सरकार बना चुकी है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को पत्र लिखकर ऑल पार्टी मीट बुलाने की मांग की है।
4: 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं। बीजेपी की बैठकों के बीच कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप ने भी मंथन किया। यूं तो 19 दिन के सत्र में 16 दिन की बैठकों के एजेंडे पर 19 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में चर्चा होने वाली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि इस सत्र में तीन महत्वपूर्ण विधेयक आ सकते हैं, परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, एक देश एक चुनाव विधेयक। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस कहती है कि वो फिर से सरकार को हराएगी।
5: हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे, और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे।
4: कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी गठबंधन के सभी दलों में एकजुटता है और आगामी सत्र में एक साथ सरकार की कोशिशों का विरोध किया जाएगा, लेकिन 17 अप्रैल के बाद देश में बड़ी हलचल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, 20 सांसद अलग हो गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, 6 सांसद शिवसेना में चले गए। तमिलनाडु में बेवफाई से नाराज डीएमके कांग्रेस के साथ बैठना तक नहीं चाहती। शरद पवार की पार्टी का रुख पहले के मुकाबले नरम नजर आ रहा है। बहरहाल इस मानसून सत्र में एक बार फिर जोरदार हंगामे के आसार हैं, जिसकी तैयारी दोनों ओर से की जा रही है। पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
3: अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के पंजाब और हरियाणा के दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही एक सभा को संबोधित भी आज पीएम मोदी करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ जाएंगे, जहां पर दोपहर करीब 2 बजे वो 600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जालंधर जाएंगे, जहां पर वो 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करने वाले हैं। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी, जहां पर ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं।
4: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई है।
6: देख लो, आरएकजन एमपी চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে ডিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার্ট যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
4: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
7: सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
8: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं, और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे।

0: रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
1: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
2: কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না, যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
1: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
3: वहाँ जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
1: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
4: चलिए अब बात कर लेते हैं चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत की। एक तरफ SIT चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा करेंगे। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
1: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही SIT कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि SIT जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि SIT पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने CCTV फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर SIT रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
5: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
1: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
6: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण गांठने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाए।
1: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit.

0: Disclosures for fees and details.
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: क्या आप पुरुष हैं और विवाह में अड़चने आ रही हैं? विवाह की उम्र बीत रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, या अब आप विवाह की उम्मीद छोड़ चुके हैं? क्या है पुरुषों के विवाह में विलंब के कारण और पुरुषों के विवाह के विलंब को दूर करने के कौन से हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

केशम द्वीप में धमाके, ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइलें और ड्रोन। हमले के बीच ईरान को लेकर अमेरिका का दावा, व्हाइट हाउस ने कहा समझौता करना चाहता है ईरान। अमेरिकी सेना ने ईरान को पहुंचाया भारी नुकसान। मॉनसून सत्र से पहले सियासी घमासान, राजनाथ सिंह के आवास पर आज एनडीए की बैठक, खड़गे ने पीएम को लिखा खत, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब और हरियाणा को आज पीएम मोदी देंगे सौगात, कहा बीजेपी की तरफ से सभी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं पंजाब के लोग। वहीं हरियाणा में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी 2026 परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल लड़कियों के महिलाओं के विवाह में विलंब हो, पुरुषों के विवाह में भी बहुत बार विलंब होता है अलग अलग वजहों से। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो कौन से उपाय आपको करने चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:27 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 6:34 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पुरुषों के शीघ्र विवाह के उपाय के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि पुरुषों के विवाह का किस ग्रह के साथ संबंध होता है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र को पारिवारिक जीवन का कारक माना जाता है, पारिवारिक जीवन का, खास तौर से मैरिटल लाइफ का स्वामी माना जाता है। यही शुक्र अकेला पुरुषों के वैवाहिक जीवन का कारक भी होता है, पुरुषों के वैवाहिक जीवन को कंट्रोल करता है। शुक्र अगर कमजोर है तो ये विवाह होने में पुरुषों के ज्यादा विलंब करवा देता है। और अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब है तो ये विवाह होने ही नहीं देता। इसके कारण खराब शुक्र की वजह से वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आती हैं, वैवाहिक जीवन भी चौपट हो जाता है। और खराब शुक्र होने पर अगर विवाह हो भी गया तो विवाह का चल पाना बहुत मुश्किल होता है। सामान्यतः देवी की उपासना करने से, विशेष तौर से माता दुर्गा या माता लक्ष्मी की उपासना करने से पुरुषों का विवाह जल्दी हो जाता है। पुरुषों के शीघ्र विवाह के उपाय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, दही का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, कोई यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सबसे पहले उन पुरुषों की बात करते हैं जिनकी उम्र है 20 से 25 साल। अगर किसी पुरुष की उम्र 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच की है और उनको शीघ्र विवाह करना है तो क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को शिवलिंग पर या शिव जी की मूर्ति पर पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद नमः शिवाय का कम से कम 3 माला 108x3 बार जप करिएगा और ये प्रयोग

विवाह शीघ्र होगा। जिन पुरुषों की आयु 26 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, वो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? रोज शाम को शिव जी को पीले और माता पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करेंगे। पहले 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे, इसके बाद 108 बार ओम ह्रीं गौर्ये नमः इस मंत्र का जप करेंगे। लगातार 3 महीने तक रोज शाम को ये उपाय करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। अन्य उम्र की पुरुषों के विवाह के उपाय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, पैसे के नुकसान से धन हानि से बचाव करें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अभिजीत वर्मा ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखते हैं। 30 अप्रैल 1975 का जन्म है, 3:40 अर्ली मॉर्निंग भोर में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बहुत अच्छी होगी, मेरी बहुत ज्यादा ग्रोथ कब तक होगी और आर्थिक चिंताएं कब समाप्त होंगी, ऑफिस स्टाफ की तरफ से व्यापार में समस्या बनी रहती है, क्या करना चाहिए। अभिजीत, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, आपका वर्तमान समय आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके काम के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मध्यम समय है। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का ध्यान दीजिए अगले 1.5 साल तक, और अप्रैल 2028 तक अभी स्थितियां साधारण हैं। अप्रैल 2028 के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी और बहुत बेहतर होंगी अप्रैल 2029 के बाद। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे एक पुखराज धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का रोज शाम को जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब उन पुरुषों की बात करते हैं जिनकी उम्र 31 से लेके 35 वर्ष के बीच की है। अगर आपका शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप क्या उपाय करेंगे, रोज शाम को माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। अगर गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद माता दुर्गा की कपूर से आरती करेंगे और माता से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। और जितने दिनों तक ये उपाय करेंगे उतने दिनों तक पूर्ण सात्विक रहिएगा,
मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। पुरुषों के शीघ्र विवाह पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, आपको एक ऐसा मंत्र बताते हैं, आप किसी भी आयु के हों, अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो कौन सा मंत्र कैसे पढ़ेंगे? रोज सवेरे या शाम के समय देवी के सामने, माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर बैठें। एक समय निश्चित कर लें कि मैं शाम को पढ़ूंगा या सुबह पढ़ूंगा या दोनों समय पढ़ूंगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का एक माला या तीन माला जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है, पत्निम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणिम, पत्निम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणिम, तारिणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, तारिणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र कम से कम एक माला सुबह और एक माला शाम को, या अगर केवल शाम को पढ़ना चाहते हैं तो एक या तीन माला शाम को पढ़िए। मंत्र जप के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। इस मंत्र का जप करने से विवाह शीघ्र तो होता ही है, एक बड़े अच्छे स्वभाव की, बहुत अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुषों के विवाह में
अत्यधिक विलंब हो जाता है। 38 साल हो गया, 40 साल हो गया, कभी कभी 42, 43 साल भी हो जाता है और विवाह होने की स्थिति नहीं होती, लगता ही नहीं है कि विवाह होगा, सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं, तब क्या करना चाहिए? इसके लिए मध्य रात्रि को आपको उपासना करनी है, जब विवाह होने की स्थिति ही ना बन पा रही हो। अपने सामने सुगंधित धूप बत्ती जला लें, गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएं तो बहुत अच्छा होगा। आप स्वयं को भी इत्र या सुगंध लगा लें, हाथ में जल लीजिए अंजुलि में और 7 अंजुलि जल 7 बार अपने सामने गिराएं और ये प्रार्थना करें कि ये जल मैं गंधर्वों को समर्पित कर रहा हूं। इसके बाद जल अर्पित करने के बाद एक विशेष मंत्र का इस फटिक की माला से 108 बार जप करिएगा। गंधर्व मंत्र है, अत्यंत विशेष स्थिति में पढ़ा जाता है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम क्लीम विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति, ओम क्लीम विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि मे देव, सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि मे देव। ये गंधर्व मंत्र है और अगर विवाह होने की उम्मीद ना हो, कोई पुरुष मध्य रात्रि को निरंतर जिस तरीके से बताया उस तरीके से निरंतर 3 महीने तक इस मंत्र का जप करे तो उनका विवाह शीघ्र होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद।

योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि अगर कोई मिर्च आपसे मांगे तो उसके हाथ में मिर्च डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मिर्च आपसे मांगे और हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो, आप सीधा उसके हाथ में देंगे तो संबंध खराब होंगे, आपका झगड़ा उसके साथ हो सकता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी को हाथ में मिर्च देते हैं, लाल या हरी मिर्च, तो इससे झगड़ा होने की संभावना सामान्यता नहीं होती है। लेकिन हरी मिर्च के अंदर एक गुण होता है कि वो नकारात्मक तरंगों को सोख लेती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने मन में बुरी भावना रखकर आपको हरी मिर्च देगा, तब आपका उसके साथ झगड़ा या विवाद हो सकता है। सामान्य स्थिति में आप किसी से हाथ में हरी मिर्च ले लें या लाल मिर्च ले लें तो उससे कोई दिक्कत की संभावना नहीं बनती है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा, आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, कोई रुके हुए काम को पूरा करने जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आज सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करने के बाद जाइएगा, लाभ होगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि की स्वामिनी है माता गौरी।

करिएगा आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

आज लगातार छठी रात भी जारी अमेरिकी कार्रवाई, ईरान पर नए हवाई हमलों की शुरुआत, सेंटकॉम ने किया दावा। ईरान के कई शहर पर अमेरिकी हमले जारी, अहवाज शहर में धमाके से हड़कंप। रॉयटर्स के हवाले से खबर, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइल से किया हमला। अमेरिकी हमले में बंदर खमीर का पुल भी निशाने पर, रॉयटर्स के हवाले से खबर। साथ ही ईरान अमेरिकी कैदी अदला बदली के दावों को प्रेस टीवी ने किया खारिज, जासूसों की रिहाई से भी किया इनकार। व्हाइट हाउस का नया बयान, ईरान अब भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है, समझौता करना चाहता है। व्हाइट हाउस का दावा, ईरान डील की इच्छा रखता है लेकिन ईरान ने हुर्मुज समझौते का उल्लंघन किया। कुवैत की सेना का दावा, 32 दुश्मन ड्रोन मार गिराए, ईरानी हमले में कई अहम ठिकाने बने निशाना। कुवैत के हवाई क्षेत्र में 32 ड्रोन इंटरसेप्ट होने की वजह से रिहायशी इलाकों में मलबा गिरा, कोई भी जनहानि नहीं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच हुर्मुज में शिपिंग गतिविधियां बेहद कम, सामान्य स्तर के मुकाबले सिर्फ 10% जहाजों की आवाजाही। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के केवल 13 व्यापारी जहाज गुजरे, सुरक्षा चिंताओं के बीच समुद्री यातायात प्रभावित। ईरान की चेतावनी, अमेरिका ने बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो क्षेत्र के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमला, कुवैत के एयर डिफेंस ने मोर्चा संभाला। स्पेन के जरागोजा के पास भड़की भीषण वाइल्ड फायर, जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी से हालत गंभीर। उत्तरी स्पेन में भीषण जंगल की आग, 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बाढ़ और तूफान की वजह से रूस के यूराल क्षेत्र में भारी तबाही, तेज हवाओं की वजह से गिरे कई पेड़, सैकड़ों घरों को में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें हुई जलमग्न। व्हाइट हाउस का ऐलान, रविवार को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में शिरकत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अर्जेंटीना और स्पेन के मुकाबले में होंगे शामिल। ट्रंप टावर में फीफा रिसेप्शन में शामिल होंगे ट्रंप, आज न्यूयॉर्क में आयोजन। वहीं इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की 50 काम नहीं आई, विराट ने 66 गेंद में 65 रन और साथ ही श्रेयस अय्यर ने 71 गेंद में 66 रन की पारी खेली। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में गुरुवार देर रात 234 रन चेज करते हुए मेजबान टीम ने 45वें ओवर में 6 विकेट खोकर जीता मुकाबला। तो वही जीत के हीरो जो रूट रहे वो 99 रन बनाकर नाबाद लौटे, जो रूट बने प्लेयर ऑफ द मैच। अब सीरीज का फैसला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे में होगा। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, 11,21,000 स्टूडेंट्स हुए परीक्षा में पास। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर किया ऑल इंडिया टॉप। परीक्षा में 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए। टॉप स्कोरर्स में 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार दी थी परीक्षा, 99% टॉप रैंकर्स की उम्र 17 से 19 साल के बीच रही। 2027 से नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन मोड में की जाएगी, आयोजित पहले से मॉक टेस्ट और डेमो की रहेगी सुविधा ताकि वो नए सिस्टम के अनुसार हो तैयार। आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजना की देंगे सौगात। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार, आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। तो वहीं हरियाणा में सड़क रेल परियोजना की देंगे सौगात, कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। संत रविदास एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी चंडीगढ़ में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों की परियोजनाओं को देंगे सौगात, पीजीआईएमईआर में एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरोसाइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। जालंधर में आज बीजेपी की रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, बोले पंजाब को विकास और ईज ऑफ लिविंग का भरोसा।
मॉनसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति, आज राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बड़ी बैठक, अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज रहेंगे मौजूद। परिसीमन बिल पर खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस, परिसीमन बिल पर विपक्षी एकजुटता का दावा, जयराम रमेश बोले सरकार को लोकसभा में नहीं मिलेगा दो तिहाई बहुमत। सूत्रों के हवाले से खबर, परिसीमन मुद्दे पर डीएमके का फैसला टला, पार्टी बोली बिल पेश होने के बाद लेंगे कोई फैसला। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का आज देहरादून मार्च, छात्रों की गूंज, रैली में होंगे शामिल, बोले युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिले केजरीवाल, वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की अपील। संबोधन के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना, कहा युवाओं आंदोलन और सोनम वांगचुक की बात सुने वरना 3 साल बाद आपका वही हाल होगा जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव, सोनम वांगचुक से मिलकर किया आंदोलन का समर्थन। आज पश्चिम यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद शामली बिजनौर में लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा की परियोजना के देंगे सौगात। आरजेडी नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले तेजस्वी यादव ने मेरी शिकायतें संज्ञान नहीं लिया उन पर और किसी भी पार्टी में अपमानित होकर कोई रणनीति नहीं करता। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद जावेद आजाद के बयान पर बवाल मचा, संस्कृत को बताया विदेशी भाषा, बीजेपी और स्थानीय संगठनों में तीखा आक्रोश। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पेयर कॉर्प्स के दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियों और सुरक्षा हालत की समीक्षा की, जवानों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का दिया संदेश। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। ग्रेटर नोएडा के महागुण मिडोस सोसाइटी में सुरक्षाकर्मियों का वेतन न मिलने पर बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, गेट बंद कर जड़ा ताला, निवासी हुए परेशान। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में शुरू हुई नई पहल, आज से बिना जेब वाले कपड़ों में नजर आएंगे मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी, पुजारी और पंडित। उज्जैन के विश्वविख्यात मंदिर श्री महाकालेश्वर में अब दान में दिए जाने वाले आभूषणों की भी जांच होगी, लगाई जाएंगी कैरेट मीटर मशीन। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सावलिया सेठ को एक भक्त ने चढ़ाया सोने के बनी बांसुरी, 20 लाख बताई जा रही है इस बांसुरी की कीमत, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए सावलिया सेठ के दर्शन। पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात मचे, दम घुटने की वजह से एक श्रद्धालु की मौत हुई, भारी भीड़ में कई लोगों के घायल होने की भी खबर। पूरी रथ यात्रा हादसे पर विपक्षी नेता बीजेडी के नवीन पटनायक ने जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कें और रिहायशी इलाकों में भरा पानी, आवागमन के लिए नाव के सहारा ले रहे लोग। महाराष्ट्र के मार्शेस घाट में भी अचानक से चली तेज हवा, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। मार्शेस घाट में तेज हवाओं के झोंके के बीच कई बाइक सवारों ने वाहनों पर खोया नियंत्रण और एक एक कर सड़क पर गिरने लगे लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। तमिलनाडु में खरीफ सीजन की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कृष्णागिरी जलाशय परियोजना के बांध से 151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गया में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का पीयूष कुमार, एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। जामनगर नगर निगम फिर से विवादों में, दरअसल अधिकारी का टेबल पर पैर रखे वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल, जामनगर महानगर पालिका अधिकारी के आचरण पर नागरिकों ने मांगी जांच। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में 150 मीटर तक घिसटता नजर आया यात्री, बेटी के लिए लेने गया था कोल्ड ड्रिंक। जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम, सरिये रस्सी से बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश की। वहीं प्रयागराज में यमुना में प्रेमी ने प्रेमिका संग हाथ पकड़कर यमुना में छलांग लगाई, नए यमुना ब्रिज से कूदने का एक वीडियो तेजी से वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चलती बस पर गिरा बड़ा पेड़, चालक की सूझबूझ से 40 यात्रियों की बची जान। वहीं हावड़ा में 16 साल की छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, पीछा कर रहे आरोपी ने बीच सड़क पर हमला किया, सीसीटीवी आया सामने।
सूरत एयरपोर्ट रनवे पर सांप दिखने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एयरपोर्ट डायरेक्टर बोले एआई जनरेटेड भी हो सकता है वीडियो। लखनऊ में नर्सरी के 5 साल के छात्र की क्लास मॉनिटर ने 12 मिनट तक पिटाई की, अस्पताल में भर्ती। अलवर में वकील के घर निकला 8 फीट लंबा कोबरा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के महाराजगंज में जुगाड़ से चल रही स्कूली वैन सीज हुई, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर, चालक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई। वहीं गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। सिलकियारा टनल में फिर से हादसा हुआ, सुरंग के अंदर शॉर्टक्रीट गिरने की वजह से 22 वर्षीय मजदूर की मौत। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, सभी को बचाया गया सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा में नाले की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ, भरभराकर गिरा निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गुरुग्राम में ठेकेदार से रंगदारी मांगने का मामला, पानी के कारोबार को लेकर विवाद में गैंगस्टर कौशल चौधरी के 50 से 60 बदमाश 20 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे और खुलेआम दी धमकी। तो वहीं दिल्ली के बुराड़ी में एक मकान में खून से लथपथ युवक युवती का शव मिला, पुलिस ने बॉयफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड को गोली मारने के बाद खुद की हत्या करने की जताई आशंका। झांसी में चलती ट्रेन में महिला टीटी पर हमला हुआ, बिना टिकट यात्री ने बाल पकड़कर मारपीट की, वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। वाराणसी में इटली के पर्यटक पर हाई वोल्टेज ड्रामा, घरों में घुसकर हंगामा करने पर लोगों ने पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर की वजह से बाइक सवार की मौत हुई, हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। नालंदा में पुलिस वाहन से युवक की मौत के बाद बवाल, पथराव आगजनी के बीच पुलिस ने किया लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। एमपी के सागर में स्कूल बैग से निकला एक सांप, चेन खोलते ही मचा हड़कंप, टीचर की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। भिवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार हुए, अमेरिका कनाडा समेत कई देशों के लोगों को बना देते निशान। राजस्थान के डूंगरपुर में एक स्कूल में बड़ा हादसा हुआ, जर्जर इमारत के ऑफिस की अचानक से गिरी छत, 2 टीचर गंभीर रूप से हुए घायल। तो वहीं झारखंड के लातेहार में मिनी ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक से कुचलकर 3 लोगों की मौत हुई, गुस्साए ग्रामीणों ने वाराणसी सोनभद्र मार्ग जाम कर किया प्रदर्शन। अलवर में एक वर्कशॉप में फन फैलाकर बैठा दिखा कोबरा सांप, दहशत में आए कर्मचारी। वहीं औरैया में प्राइवेट अस्पताल कर्मचारी ने यमुना नदी में लगाई छलांग, वीडियो पोस्ट कर स्टाफ कर मारपीट और बदसलूकी का लगाया गया आरोप, राहत बचाव टीम कर रही है तलाश। महाराष्ट्र के अकोला में गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 लाख का प्रतिबंधित माल जब्त हुआ, मास्टरमाइंड फरार। मुंबई के मगाठाणे में बड़ा हादसा हुआ, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग हुए घायल। मुंबई लोकल ट्रेन के विरार चर्च गेट में खचाखच भरी लोकल की वजह से विवाद हुआ, चलती ट्रेन में 2 यात्रियों के बीच जमकर चली लात घुसी। वहीं गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। विशाखापट्टनम में समुद्र में पलटी मछुआरों की नाव, हादसे के समय 9 लोग थे सवार, जिसमें 7 सुरक्षित और 2 की हालत गंभीर। दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर रिलीज हुआ, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म फराक में श्री मुरली की एंट्री होगी, दरअसल फिल्म निर्माता ने पहली झलक जारी की। फिल्म हैवान का फर्स्ट लुक जारी हुआ, 11 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म रागिनी 3 की शूटिंग शुरू, तमन्ना भाटिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। रणबीर कपूर की रामायण को सीबीएफसी से ग्रीन सिग्नल, बिना किसी कट के पास हुए 2 महा ट्रेलर, 24 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर दुनिया भर में रिलीज होगा।

चलिए अब बात कर लेते हैं नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,21,000 स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल, आयुषर और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई भी हुए हैं। पंजाब के आर्यन गुप्ता, हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया। परीक्षा में 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए। पेपर लीक के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो गई थी। इसके बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई।

देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट जारी। 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया क्वालिफाई। पंजाब और हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका मेडिकल के छात्रों को काफी इंतजार था। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11 लाख 21 हजार छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पान

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए. सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स. और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती.
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स.
9: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से.
10: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
9: Vimal, bolo zubaan kesri.
12: Uttar Pradesh chunav ka shankhnaad. और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर.
13: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
12: हैट्रिक का दावा.
13: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी.
12: विश्वास पूरा.
13: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश इस संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है.
12: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार.
14: राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था. असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है. फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा. 2/3 ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है. ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है.
15: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे.
16: क्या श्री कृष्ण मुस्लिम थे?
17: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है.
16: क्या श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे?
15: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे.
16: क्या श्री कृष्ण दीन का प्रचार करते थे? मिलिए मौलाना जर्जिश अंसारी से. इस मौलाना के नाम में जर्जिश जुड़ा है लेकिन इसकी जुबान में जहर भरा है. यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है. तब जबकि

0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती दिख रही है। इस मौलाना ने फिर अपना चरित्र दिखाया है। इसकी बातें सुनकर आपका सिर चकराने लगेगा, इसकी दलील सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कुनबा बनाने की इसकी कोशिश की मिसाल देखिए। इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे, और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है। ये सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने की इसकी कोशिश देखिए। श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को ये उल्टी दिशा में मोड़ने लगा है। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। ये पहला मौका नहीं है जब इस मौलाना ने विवाद भड़का कर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और इससे ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है। मौलाना जरदोश अंसारी जैसे चेहरे फिर तेजी से दिखने लगे हैं। ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है, और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

भारतीय घरों के लॉकर में रखे सोने की चमक इकॉनमी को नई रफ्तार दे सकती है। अब घरों की तिजोरियों से बाहर निकलकर गोल्ड मार्केट में अपनी ताकत दिखाएगा। केंद्र सरकार सराफा कारोबारियों के एक ऐसे बड़े प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो गोल्ड मार्केट की पूरी तस्वीर बदल सकता है। इस महायोजना को गोल्ड मोनेटाइजेशन 2.0 का नाम दिया जा रहा है। इसके तहत शुरुआती फेज में 200 टन सोना मार्केट में लाने का टारगेट है। इसके अमल में आने से गोल्ड इंपोर्ट पर होने वाले भारी भरकम खर्च में बड़ी कमी आएगी। इसके लिए सराफा संगठनों ने सरकार को ब्लूप्रिंट सौंप दिया है, जिससे ग्राहकों और अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। पुरानी स्कीम की कमियों को दूर करते हुए इसे पूरी तरह व्यवहारिक बनाया गया है। पहले लोग सीधे बैंक जाने से हिचकते थे, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत ग्राहक पुराने डिजाइन के गहने लेकर सीधे रजिस्टर्ड सराफा कारोबारियों के पास जा सकेंगे। ज्वेलर पुराने गहनों को गलाकर उनकी शुद्धता तय करेगा और उन्हें बैंक में जमा कराया जाएगा। जमा सोने के बदले कस्टमर के अकाउंट में उतनी ही वैल्यू की गोल्ड यूनिट्स क्रेडिट कर दी जाएंगी। नई पीढ़ी को पुराने ट्रेडिशनल डिजाइन की जगह लेटेस्ट ट्रेंडी ज्वेलरी ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से पुराना सोना घरों में बेकार पड़ा रहता है। इस स्कीम के जरिए ग्राहकों को अपने उसी बेकार पड़े सोने की सही कीमत और नए डिजाइन आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी तरफ बैंकों के पास जमा होने वाले इस सोने को कारोबारी करीब 4.5% की लागत पर रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा टैक्स और इनकम टैक्स नोटिस के डर से जो लोग सोना सामने लाने से कतराते हैं, उनके लिए भी मौजूदा नियम एकदम साफ है। तय लिमिट के भीतर सोना रखने वाले किसी भी नागरिक को इस स्कीम का फायदा उठाने में कोई लीगल परेशानी नहीं होगी। इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के मुताबिक एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। अविवाहित महिलाओं के लिए ये लिमिट 250 ग्राम और पुरुषों के लिए 100 ग्राम है। तय सीमा के भीतर सोना रखने वालों को किसी भी तरह की स्क्रूटनी या जांच का डर नहीं होगा। इस स्कीम को लेकर हालांकि सरकार ने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन सराफा बाजार इस कदम को लेकर बेहद पॉजिटिव है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद से ही डोमेस्टिक गोल्ड को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ने की कवायद तेज हो चुकी है। सराफा बाजार की इस नई पहल से ये साफ है कि घरों में रखा सोना केवल लॉकर की शोभा न रहकर देश की आर्थिक तरक्की का एक बड़ा जरिया बनने जा रहा है। आदित्य के नाम आज तक।

0: खमीर और केशम द्वीप में धमाके, ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइलें, हूती की धमकी, कहा पावर प्लांट को कुछ हुआ रोक देंगे अलमंडे। ईरान युद्ध के बीच चीन पर ट्रंप आक्रामक, कहा चीन ने 2020 में चुराया अमेरिकी डेटा, 22 करोड़ लोगों के नाम पते की सेंधमारी कर चुनाव में भी इतिहास की सबसे बड़ी धांधली। मानसून सत्र से पहले सियासी घमासान, राजनाथ सिंह के आवास पर आज एनडीए की बैठक, खड़गे ने पीएम को लिखा खत, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब और हरियाणा को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, कहा बीजेपी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं पंजाब के लोग, हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी 2026 परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे है और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, इसमें बताएंगे कि लगातार 6ठे दिन ईरान पर अमेरिका के हमले तेज हो गए हैं, अमेरिका ने अब कहां पर एयर स्ट्राइक की है वो भी आपको बताएंगे, साथ ही कुवैत पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला जारी है, इस पर एक एक अपडेट आपको देंगे, बताएंगे कि क्यों अमेरिका ने कहा ईरान समझौता करना चाहता है, बात ट्रंप के उस आरोप की भी होगी जिससे चीन अब भड़क सकता है, खबरें सियासत की भी करेंगे क्योंकि एनडीए की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, बताएंगे कि पंजाब और हरियाणा को पीएम क्या सौगात देने जा रहे हैं, तो वहीं री एग्जाम के बाद एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट भी जारी कर दिया है, इस खबर पर भी पूरी डिटेल आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में मची जंग की खबर के साथ, इस वक्त एक बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका लगातार 6ठे दिन भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ऐसे में अमेरिका की सेनाओं ने ईरान के कई इलाकों और द्वीप को भी निशाना बनाया। दरअसल ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बंदर खमीर, केशम द्वीप, एवाज और साथ ही ईरान शहर एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास में कई धमाके हुए, केशम द्वीप पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरा है। साथ ही फार्स मीडिया के मुताबिक, आपको बता दें कि बंदर और खमीर में एक ब्रिज पर भी हमला किया गया। इसके अलावा ईरान शहर में एयरपोर्ट और एवाज में अमेरिकी मिसाइल से तबाही मची है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के किन किन ठिकानों पर हमला किया है, कहां कहां पर अमेरिका लगातार बम बरसा रहा है, मिसाइलें दाग रहा है ईरान के, वो कौन कौन सी जगह है जिसको अमेरिका टारगेट कर रहा है। बंदर अब्बास, ईरान शहर एयरपोर्ट, साथ ही केशम द्वीप को तो लगातार निशाना बनाया जा रहा है, एवाज में भी हमले किए जा रहे हैं और बंदर खमीर, यहां पर बम बरसाए जा रहे हैं, अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बम बरसाए हैं। आज 6ठा दिन है इस युद्ध का और ऐसे में अभी भी अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने एक बयान भी जारी किया है। दरअसल सोशल मीडिया पोस्ट पर सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कम करने के लिए लगातार 6ठी रात ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया। तो वहीं ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर, दरअसल कुवैत पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी है। कुवैत रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि अब तक कुवैत की 25 क्रूज मिसाइलें, 387 बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही 1002 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर तबाह किया है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों का मलबा करने की वजह से कई रिहायशी इलाकों को नुकसान भी पहुंचा है मलबा गिरने के कारण। हालांकि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तो 25 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया जा रहा है कुवैत की तरफ से, 387 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की बात भी कही जा रही है। चलिए अब आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, दरअसल 25 ईरानी क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की बात कुवैत की तरफ से कही जा रही है। इस बयान में कहा गया है कि 387 बैलिस्टिक मिसाइलें भी तबाह की गई है, साथ ही जो ड्रोन से हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से, 1002 ड्रोन उनको भी नष्ट करने का दावा कुवैत की तरफ से किया जा रहा है। वहीं ईरान को लेकर अमेरिका एक बड़ा दावा कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि वो हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हमारी अमेरिकी सेना से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों की वजह ये है कि ईरान ने उस एमओयू का उल्लंघन किया जो हमने उनके साथ किया था। तो अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी सेना लगातार छठे दिन कैसे ईरान के ठिकानों को तबाह करने में जुटा हुआ है। देखिए,
2: मिडिल ईस्ट में फिर मचा कोहराम, ईरान पर अमेरिका के नॉन स्टॉप हमले जारी। लगातार छह दिन से ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी। सीज फायर टूटने के बाद से अमेरिका ने जैसे ईरान को तबाह करने की कसम खा ली है। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, बंदर खमीर, ईरान शहर एयरपोर्ट, अहवाज पर हमले किए हैं। ईरान पर लगातार हमले कर रही अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा, लगातार छठी रात ईरान के खिलाफ हमले जारी हैं और उनकी सैन्य ताकत को निशाना बनाया गया है। वहीं बदले की आग में जल रहा ईरान खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। ईरान के निशाने पर इस बार कुवैत, बहरीन और जॉर्डन दिख रहा है। कुवैत की सेना ने बयान जारी कर कहा कि अब तक ईरान की 25 क्रूज मिसाइल, 387 बैलिस्टिक मिसाइल और 1002 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर तबाह किया है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दावा किया है कि ईरान लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि वे हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हमारी अमेरिकी सेना से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
3: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them.
2: मिडिल ईस्ट में चल रही महाजंग का असर दुनिया भर में भी देखा जा रहा है और सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। आज तक ब्यूरो।
0: तो चलिए अब इस युद्ध से जुड़े कुछ बड़े अपडेट आपको दे देते हैं। अभी तक युद्ध कहां तक पहुंचा, किस तरीके से ईरान भी जवाब दे रहा है। आज छठा दिन है, ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वही आपको भी बता दें कि बंदर अब्बास, केशम द्वीप, अहवाज में धमाके की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। इसी के साथ बंदर खमीर को भी निशाना बनाया जा रहा है, उस पर पुल पर निशाना बनाया गया। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, कुवैत का दावा है कि अब तक 25 क्रूज मिसाइलें उन्होंने इंटरसेप्ट किए जो ईरान की तरफ से दागी गई। वहीं 387 बैलिस्टिक मिसाइल भी कुवैत ने रोकी है और 1002 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर तबाह करने का दावा भी कुवैत की तरफ से किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि समझौता ईरान अभी भी करना चाहता है। यह बड़ा दावा व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, समझौता करना चाहता है ईरान, ऐसा व्हाइट हाउस दावा कर रहा है, तो समझौता आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहे हैं।
4: बिल्कुल, दोनों समझौता चाहते हैं, न सिर्फ ईरान समझौता चाहता है बल्कि उससे ज्यादा जो है अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। पिछली बार भी उन्होंने एमओयू साइन किया था ईरान के साथ, लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से उसको अपनाने लगे दोनों देश, अमेरिका भी और ईरान भी। लेकिन अब जो कि दायरा, क्योंकि 6 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं और अब इनका दायरा जो है अमेरिका ने बढ़ाया है। आपने अभी बात की अमीर है बंदर अमीर, वहां पर जो है एक पुल को उड़ा दिया गया है जहां से सप्लाई जाती थी ईरानी पोर्ट से जमीनी रास्ते के जरिए अलग अलग पड़ोसी देशों को ईरान की। तो काफी वहां पर 3 लोग मारे गए हैं ईरान में, 40 लोग घायल हैं। और उसके जवाबी कार्रवाई में अब जो है ईरान और IRGC ने धमकी दी है कि यदि उनके बिजली घरों को निशाना बनाया जाता है, जिस तरह से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया, वो जो है बाबुल मंडप जो कि रेड सी में है उसको भी बंद करवाएंगे होती से, तो जाहिर है दुनिया पर और दबाव बढ़ेगा, सप्लाई लाइन में बाधा आएगी। इस बीच कोशिश मध्यस्थताओं की तरफ से, खासतौर से कतर की तरफ से, कि कोई ना कोई डील जो है ईरान और अमेरिका के बीच बने और ये युद्ध रुके, क्योंकि इस युद्ध से सिर्फ ईरान को ही नुकसान नहीं पहुंच रहा है,
0: बिल्कुल अमेरिका को भी काफी नुकसान इसको पहुंच रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने एक दावा किया है कि 2020 का राष्ट्रपति चुनाव धांधली वाला था। उन्होंने आरोप लगाया है कि चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का डेटा चुराया और उनके मुताबिक इस डेटा में मतदाताओं के नाम पते, फोन नंबर, राजनीतिक पसंद समेत अन्य जानकारियां शामिल थी। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ये अमेरिकी चुनावी सुरक्षा के इतिहास की सबसे बड़ी सेंध है और चीन ने इस डेटा का इस्तेमाल के लिए विशेष इकाई भी बनाई थी। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि इससे जुड़ी खुफिया जानकारी राष्ट्रपति, कांग्रेस और जनता से भी छिपाई गई है।
5: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China has signed a data exploitation unit specifically to this new project.
0: अब सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर। दरअसल संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर सरकार ने अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। मीटिंग में मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। साथ ही संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक, पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीय नाविकों की मौत और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं परिसीमन विधेयक को लेकर मचे सियासी बवाल की। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि सरकार मॉनसून सत्र में संशोधित विधेयक पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए ताकि प्रस्तावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा हो सके। सूत्रों की माने तो खड़गे ने अपने पत्र में कहा है कि मार्च और अप्रैल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कई बार पत्र लिखकर परिसीमन समेत अन्य संवैधानिक प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांग स्वीकार ही नहीं की। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब और हरियाणा के दौरे की। दरअसल पीएम मोदी आज सुबह जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद पीएम जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित आज पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ जाएंगे, जहां पर वो दोपहर करीब 2 बजे 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जालंधर जाएंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन भी करेंगे। अब बात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबर की। शरद पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास नंदनवन में उनसे मुलाकात की और इससे पहले मंगलवार रात जयंत पाटिल के साथ दोनों एनसीपी के वरिष्ठ नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मिल चुके हैं। अभी अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि शरद पवार की एनसीपी एसपी तेजी से एनडीए में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। हालांकि जयंत पाटिल ने आधिकारिक रूप से कहा है कि वो शहरी विकास से जुड़े मामले और अपने कुछ निजी काम के सिलसिले में एकनाथ शिंदे से मिले थे।
2: महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत। एनसीपी के दोनों गुटों में अब वजूद बचाने की जद्दोजहद। फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मिले जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड। महाराष्ट्र में एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। जहां एक तरफ शरद पवार चुप्पे साधे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके करीबी सहयोगी सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से गुपचुप मुलाकात कर रहे हैं। वहीं सुनेत्रा पवार की एनसीपी के दो वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। इस बीच सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के आधे सांसद और विधायक चुपके से सत्ताधारी एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा सकें। इसके साथ ही सत्ताधारी एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट भी नेतृत्व को लेकर अंदरूनी कलह का सामना कर रहा है। वहीं ऐसी भी अटकलें हैं कि शरद पवार ने अपनी पार्टी में टूट रोकने के लिए एनडीए के साथ जाने के संकेत दिए हैं। पवार सत्ताधारी एनसीपी की कलह का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस हालत में अगर पवार ने एनडीए का दामन थामा तो मोदी सरकार में वो मंत्री पद को लेकर बेहतर मोलभाव करने की स्थिति में रहेंगे। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के देहरादून में होने वाले कार्यक्रम की। दरअसल छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान कल एक बड़ा हादसा हुआ। कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाने का काम चल रहा था, तभी लोहे का एक गटर कांग्रेस कार्यकर्ता अमर मेहता के सिर पर जाकर गिर गया। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है और आज राहुल गांधी देहरादून में शाम 7:30 बजे युवाओं से जुड़ने की मुहिम में शामिल भी होंगे।
2: राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले बड़ा हादसा, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता की रॉड गिरने से मौत। देहरादून में बन्नू ग्राउंड में छात्रों की गूंज के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाया जा रहा था। इस दौरान लोहे का भारी गार्डर अचानक गिर पड़ा और उसकी चपेट में 65 साल के अमर मेहता आ गए। अमर मेहता के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस दौरान अस्पताल में उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे।
6: डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की उन्हें बचाने की, तत्काल जो जो हो सकता था मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर जो कुछ भी हो सकता था वो सब चीजें की गई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये कहना पड़ रहा है कि हम सब उन्हें नहीं बचा पाए।
2: हादसे के बाद राहुल के कार्यक्रम को लेकर बन्नू ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं।
7: जो ये लोहे के रॉड लगे हुए हैं, कुछ इसी तरह का जो हैंगर का ये पोल था, ये बताया जाता है कि अमर मेहता के सर पर गिरा और एकाएक करके उनका सर से खून निकलने लगा, जिसके बाद वो घायल हो गए। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
2: उत्तराखंड कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कार्यक्रम तय समय पर किया जाएगा, लेकिन कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया जाएगा और संभावना जताई है कि राहुल गांधी अमर गुप्ता के परिजनों से मिलने उनके घर भी जाएंगे। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया है और इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,21,000 स्टूडेंट मेडिकल, डेंटल, आयुष और साथ ही अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा की पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल किए और इसके साथ ही ऑल इंडिया टॉप उन्होंने किया है। परीक्षा में 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए हैं। पेपर लीक के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो गई थी। इसके बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई।

0: देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट जारी। 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया क्वालिफाई। पंजाब और हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका मेडिकल के छात्रों को काफी इंतजार था। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11 लाख 21 हजार छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया। बात करें परीक्षा के टॉप स्कोरर्स में, 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार परीक्षा दी थी। वहीं क्वालिफाई करने वाले कुल स्टूडेंट्स में 58% से ज्यादा छात्राएं और 55.1% छात्र हैं। पेपर लीक होने के बाद नीट परीक्षा को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया। वहीं अगले साल यानी 2027 से नीट यूजी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। दिल्ली से अनमोल वाली के साथ आज तक ब्यूरो।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। कल पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है, इसके बावजूद 10 लाख से ज्यादा लोग यात्रा रूट पर मौजूद हैं और ऐसे में एक बड़ा हादसा वहां पर हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पहाड़ी रस्म के दौरान जो श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है उसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं बंगाल में मचे नए सियासी बवाल की। कोलकाता एयरपोर्ट में दरअसल नवाज की रोक के बाद अब जमीयत उलेमाए हिंद पश्चिम बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता एयरपोर्ट के भीतर से मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात कही है। दरअसल सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि अगर नमाज पढ़ने से रोका गया तो शांतिपूर्ण विरोध होगा, पर कोई भी माइकिंग नहीं होगी और साथ ही सड़कों पर नहीं उतारेंगे और बवाल भी नहीं करेंगे।
0: कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर बंगाल में सियासी बवाल। मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की बात पर भड़का जमीयत उलेमाए हिंद। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने शुभेंदु सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी मस्जिद में नमाज रोक के बाद अब जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने साफ कह दिया है कि सरकार मस्जिद को गिरा नहीं सकती और सीएम के पास मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने का फैसले का भी अधिकार नहीं है।
2: देश के उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार ये डिसीजन लेती है कि वो मस्जिद को रिलोकेट करना जरूरी है,
3: सरकार
2: उसको सपोर्ट नहीं करेंगे।
3: मस्जिद तोड़ना हम नहीं देंगे, तोड़ने आप जबरदस्ती तोड़ना
2: तोड़ कहा रहे हैं, उसको रिलोकेट कर रहे हैं।
3: रिलोकेट के इख्तियार नहीं है उनको, जो पावर मुझे नहीं है वो पावर सीएम को भी नहीं है।
0: वही जुमे की नमाज को लेकर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इजाजत मांगेंगे, अगर इजाजत मिली तो अंदर जाएंगे वरना नहीं। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसले का बंगाल भर में विरोध करेंगे। आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी, जो अब बैन कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि ईरान में 5 पुल उड़ा दिए गए हैं। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये चेतावनी दी थी कि ईरान में सभी पुलों पर हमला किया जाएगा। ऐसे में ईरानी मीडिया के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि यूएस ने दक्षिणी ईरान में 5 पुलों को उड़ाया है, कई इलाकों को निशाना भी बनाया जा रहा है यूएस की तरफ से। ऐसे में अब एक तबाही की तस्वीर सामने आ रही है दक्षिणी ईरान से, जहां पर अमेरिकी हमले हुए हैं। 7 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है इस भीषण बमबारी में। कहा जा रहा है कि करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएस ने दक्षिणी ईरान में 5 पुलों को उड़ा दिया है। इससे पहले भी यूएस की तरफ से चेतावनी दी गई थी, ईरान में सभी पुलों को उड़ाने की बात कही गई थी। अब ऐसे में अमेरिकी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो ईरानी मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है सुपर 8 में फटाफट खबरों का। लखनऊ में नर्सरी के 5 साल के छात्र की क्लास मॉनिटर ने 12 मिनट तक की पिटाई अस्पताल में भर्ती। गया में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का पीयूष कुमार, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला सुरक्षित। जामनगर नगर निगम फिर से विवादों में पहुंचा, दरअसल अधिकारी का टेबल पर पैर रखने वाला वीडियो वायरल। जामनगर महानगर पालिका अधिकारी के आचरण पर नागरिकों ने मांगी जांच। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में 150 मीटर तक घिसटता नजर आया यात्री, बेटी के लिए लेने गया था कोल्ड ड्रिंक। जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम नजर आई, सरिये रस्सी से बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश। हावड़ा में 16 साल की छात्रा की चाकू मारकर हत्या, पीछा कर रहे आरोपी ने बीच सड़क किया हमला, सीसीटीवी आया सामने। ग्रेटर नोएडा में नाले की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वाराणसी में इटली के पर्यटक का हाई वोल्टेज ड्रामा, घरों में घुसकर हंगामा करने पर लोगों ने पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। चलिए इसी के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: ओ अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
6: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
13: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
14: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
12: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम,
15: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, घुमाने की आदत छोड़ दीजिएगा। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

लगातार छठे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप में धमाके। ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइल। हूती की धमकी, कहा पावर प्लांट को कुछ हुआ तो रोक देंगे अलमंडे। तो ईरान युद्ध के बीच चीन पर ट्रंप आक्रामक, कहा चीन ने 2020 में चुराया अमेरिकी डेटा। 22 करोड़ लोगों के नाम पते की सेंधमारी कर चुनाव में की इतिहास की सबसे बड़ी धांधली। मानसून सत्र से पहले सियासी घमासान, राजनाथ सिंह के आवास पर आज एनडीए की बैठक। खड़गे ने पीएम को लिखा खत, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब और हरियाणा को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, कहा बीजेपी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं पंजाब के लोग। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से किया बड़ा दावा, चीन पर 2020 के चुनाव के दौरान 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का डेटा चुराने का बड़ा आरोप लगाया। ट्रंप ने डेटा चोरी मामले का जिक्र करते हुए अपने ही देश के अधिकारी पर भी बड़े आरोप लगाए, मामले में शामिल लोगों को नौकरी से निकालने का दिया आदेश। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और गैर सरकारी समूहों सहित विरोधी ताकतों में अमेरिकी चुनाव बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता। ट्रंप ने यह दावा किया है कि चीनी सरकार ने चुनाव से पहले अमेरिकी जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश की, नेगेटिव खबरें छिपाने के लिए अमेरिकी पत्रकारों को पैसे दिए गए। कई बड़े दावों का खुलासा करते हुए ट्रंप ने संबोधन के दौरान बैलेट पेपर से चुनाव करने की सिफारिश की, ईवीएम पर साइबर अटैक का दिया हवाला। आज लगातार छठी रात भी जारी अमेरिकी कार्रवाई, ईरान पर नए हवाई हमलों की शुरुआत, सेंटकॉम ने किया दावा। वहीं ईरान के कई शहर पर अमेरिकी हमले जारी, अहवाज शहर में धमाके से हड़कंप मचा। रॉयटर्स के हवाले से खबर, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया। वहीं अमेरिकी हमले में बंदर खमीर का पुल भी निशाना बना, रॉयटर्स के हवाले से खबर। साथ ही ईरान अमेरिका कैदी अदला बदली के दावों को प्रेस टीवी ने खारिज करते हुए कहा कि जासूसों की रिहाई से भी इनकार। व्हाइट हाउस का नया बयान, ईरान अब भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है, समझौता करना चाहता है। व्हाइट हाउस का दावा, ईरान डील की इच्छा रखता है लेकिन ईरान ने होर्मुज समझौते का किया उल्लंघन। कुवैत की सेना का दावा, 32 दुश्मन ड्रोन मार गिराए गए, ईरानी हमले में कई अहम ठिकाने बने निशाना। कुवैत के हवाई क्षेत्र में 32 ड्रोन इंटरसेप्ट होने की वजह से मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा, कोई जनहानि नहीं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज में शिपिंग गतिविधियां बेहद कम रही, सामान्य स्तर के मुकाबले सिर्फ 10% जहाजों की आवाजाही। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में केवल 13 व्यापारी जहाज गुजरे, सुरक्षा चिंताओं के बीच समुद्री यातायात प्रभावित। ईरान की चेतावनी, अमेरिका के बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो क्षेत्र के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। कुवैत पर मिसाइल ने और ड्रोन से हमला, कुवैत के एयर डिफेंस ने मोर्चा संभाला। वहीं स्पेन के जरागोसा के पास भीषण बमबारी, वाइल्ड फायर, जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी की वजह से हालात गंभीर हुए, आग लगी। उत्तरी स्पेन में भीषण जंगल की आग, वहीं 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बाढ़ और तूफान की वजह से रूस के यूराल क्षेत्र में भारी तबाही, तेज हवाओं की वजह से गिरे कई पेड़, सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें जलमग्न। व्हाइट हाउस का ऐलान, रविवार को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में शिरकत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अर्जेंटीना और स्पेन के मुकाबले में होंगे शामिल। ट्रंप टावर में फीफा रिसेप्शन में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप, आज न्यूयॉर्क में आयोजन। दरअसल इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से अब बराबर कर ली है। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की 50 काम नहीं आई, विराट ने 66 गेंद में 65 रन और श्रेयस ने 71 गेंद में 66 रन की खेली पारी। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में गुरुवार देर रात 234 रन चेस करते हुए मेजबान टीम ने 45वें ओवर में 6 विकेट खोकर जीता मुकाबला। जीत के हीरो जो रूट रहे वो 99 रन बनाकर नाबाद लौटे, जो रूट बने प्लेयर ऑफ द मैच। अब सीरीज का फैसला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे में होगा। रीनीट यूजी 2026 की परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ, 11,21,000 स्टूडेंट्स हुए परीक्षा में पास। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर किया ऑल इंडिया टॉप। वहीं परीक्षा में 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए। टॉप स्कोरर्स में 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार दी थी परीक्षा। 99% टॉप रैंकर्स की उम्र 17 से 19 साल के बीच रही। 2027 से नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन मोड में की जाएगी आयोजित। पहले से ही मॉक टेस्ट और साथ ही डेमो की रहेगी सुविधा ताकि वो नए सिस्टम के अनुसार हो तैयारी। आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजना की देंगे सौगात। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी, आज प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। हरियाणा में सड़क रेल परियोजना की देंगे सौगात, कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास, संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी चंडीगढ़ में भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना की देंगे सौगात। पीजीआईएमईआर में एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरोसाइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। जालंधर में आज बीजेपी की रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, बोले पंजाब को विकास और ईज ऑफ लिविंग का भरोसा। मॉनसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति, आज राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बड़ी बैठक, अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज रहेंगे मौजूद। परिसीमन बिल पर खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस, परिसीमन बिल पर विपक्षी एकजुटता का दावा। जयराम रमेश बोले सरकार को लोकसभा में नहीं मिलेगा 2/3 बहुमत। सूत्रों के हवाले से खबर, परिसीमन मुद्दे पर डीएमके का फैसला टला, पार्टी बोली बिल पेश होने के बाद लेंगे कोई।
फैसला। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का आज देहरादून मार्च, छात्रों की गूंज, रैली में होंगे शामिल, बोले युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिले केजरीवाल, वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की अपील की गई। संबोधन के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना, कहा युवाओं आंदोलन और सोनम वांगचुक की बात सुने वरना 3 साल बाद आपका वही हाल होगा जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव, सोनम वांगचुक से मिलकर किया आंदोलन का समर्थन। तो वहीं आज पश्चिम यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, गाजियाबाद शामली बिजनौर में लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा की परियोजना के देंगे सौगात। आरजेडी नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले तेजस्वी यादव ने मेरी शिकायतें पर संज्ञान नहीं लिया, किसी भी पार्टी में अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं करता। बिहार में किशनगंज से कांग्रेस सांसद जावेद आजाद के बयान पर बवाल, संस्कृत को बताया विदेशी भाषा, बीजेपी और स्थानीय संगठनों में तीखा आक्रोश। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पीयर कॉप्स के दौरे पर ऑपरेशनल तैयारियों और सुरक्षा हालात की समीक्षा की, जवानों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का दिया गया संदेश। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, वहीं 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा इसको लॉन्च। ग्रेटर नोएडा के महागुन मिडो सोसाइटी में सुरक्षाकर्मियों का वेतन न मिलने पर बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, गेट बंद कर जड़ ताला, निवासी हुए परेशान। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में शुरू हुई नई पहल, आज से बिना जेब वाले कपड़ों में नजर आएंगे मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी, पुजारी और पंडित। उज्जैन के विश्वविख्यात मंदिर श्री महाकालेश्वर में अब दान में दिए जाने वाले आभूषणों की होगी जांच, लगाई जाएंगी कैरेट मीटर मशीन। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सावलिया सेठ को एक भक्त ने चढ़ाया सोने से बनी बांसुरी, 20 लाख बताई जा रही है बांसुरी की कीमत। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए सावलिया सेठ के दर्शन। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात मचे, दम घुटने की वजह से एक श्रद्धालु की मौत, भारी भीड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर। पुरी रथ यात्रा हादसे पर विपक्षी नेता बीजेडी के नवीन पटनायक ने शोक जताया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हिमाचल प्रदेश में फिर से 18 जुलाई पर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद जलभरा सड़कें और रिहायशी इलाकों में भरा पानी, आवागमन के लिए नाव के सहारा ले रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के मालश्वेज घाट में अचानक से चली तेज हवा, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। मालश्वेज घाट में तेज हवाओं के झोंके से कई बाइक ने वाहनों पर खोया नियंत्रण और एक एक कर सड़क पर गिरने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तमिलनाडु में खरीफ सीजन की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कृष्णागिरी जलाशय परियोजना के बांध से 151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गया में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का पीयूष कुमार, एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। जामनगर निगम फिर से विवादों में आया, दरअसल अधिकारी का टेबल पर पैर रखने वाला एक वीडियो वायरल हुआ। जामनगर महानगर पालिका अधिकारी के आचरण पर नागरिकों ने मांगी जांच। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में 150 मीटर तक घसीटता गया यात्री, बेटी के लिए लेने गया था कोल्ड ड्रिंक। जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम रही, सरिये रस्सी से बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश की। प्रयागराज में यमुना में प्रेमी ने प्रेमिका संग हाथ पकड़कर छलांग लगाई, नए यमुना ब्रिज से कूदने का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चलती बस पर गिरा बड़ा पेड़, चालक की सूझबूझ के कारण 40 यात्रियों की बची जान। हावड़ा में 16 साल की छात्रा की चाकू मारकर हत्या, पीछा कर रहे आरोपी के बीच सड़क पर किया गया हमला, सीसीटीवी आया सामने। सूरत एयरपोर्ट रनवे पर सांप दिखने वाला एक वीडियो वायरल हुआ, एयरपोर्ट डायरेक्टर बोले एआई जनरेटेड भी हो सकता है वीडियो। लखनऊ में नर्सरी के 5 साल के छात्र की क्लास मॉनिटर ने 12 मिनट तक पिटाई की, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर में वकील के घर निकला 8 फीट लंबा कोबरा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के महाराजगंज में जुगाड़ से चल रही स्कूली वैन सीज, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर चालक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। सिलकियारा टनल में फिर से हादसा हुआ, सुरंग के अंदर शॉर्टकट गिरने की वजह से 22 वर्षीय मजदूर की मौत हुई। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, सभी को बचाया गया सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा में नाले की खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। गुरुग्राम में ठेकेदार से रंगदारी मांगने का मामला आया सामने, पानी के कारोबार को लेकर विवाद में गैंगस्टर कौशल चौधरी के 50 से 60 बदमाश 20 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे और खुलेआम दी धमकी। दिल्ली के बुराड़ी में एक मकान में खून से लथपथ युवक युवती का शव मिला, पुलिस ने बॉयफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड को गोली मारने के बाद खुद की हत्या करने की जताई आशंका। झांसी में चलती ट्रेन में महिला टीटी पर हमला हुआ, बिना टिकट यात्री ने बाल पकड़कर की मारपीट, वीडियो वायरल। वाराणसी में इटली के पर्यटक का हाई वोल्टेज ड्रामा, घरों में घुसकर हंगामा करने पर लोगों ने पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर की वजह से बाइक सवार की मौत हुई, हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। नालंदा में पुलिस वाहन से युवक की मौत के बाद बवाल मचा, पथराव आगजनी के बीच पुलिस ने किया लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। एमपी के सागर में स्कूल बैग से निकला सांप, चेन खोलते ही मचा हड़कंप, टीचर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा।
भिवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार हुए। अमेरिका कनाडा समेत कई देशों के लोगों को बनाते थे निशान। राजस्थान के डूंगरपुर में स्कूल में बड़ा हादसा, जर्जर इमारत के ऑफिस की अचानक से गिरी छत, 2 टीचर गंभीर रूप से हुए घायल। झारखंड के लातेहार में मिनी ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक से कुचलकर 3 लोगों की मौत हुई, गुस्साए ग्रामीणों ने वाराणसी सोनभद्र मार्ग जाम कर किया प्रदर्शन। अलवर में एक वर्कशॉप में फन फैलाकर बैठा दिखा कोबरा सा, दहशत में आए कर्मचारी। औरैया में प्राइवेट अस्पताल कर्मचारी ने यमुना नदी में लगाई छलांग, वीडियो पोस्ट कर स्टाफ पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया, राहत बचाव टीम कर रही है तलाश। महाराष्ट्र के अकोला में गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, 50 लाख का प्रतिबंधित माल जब्त, मास्टरमाइंड फरार। मुंबई के बगाठाणे में बड़ा हादसा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 6 गाड़ी आपस में जाकर टकराई, कई लोग हुए घायल। मुंबई लोकल ट्रेन में एक विरार चर्च गेट में खचाखच भरी लोकल की वजह से लोगों पर विवाद हुआ, चलती ट्रेन में 2 यात्रियों के बीच जमकर चले लातभूसे। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। विशाखापट्टनम में समुद्र में पलटी मछुआरों की नाव, हादसे में समय रहते हुए 9 लोगों को बचा लिया गया, जिसमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:27 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 6:34 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, कार्यक्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार।

जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद।

योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी सियासत का मुद्दा थी। आज अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी सियासत का मुद्दा बन गई है। रामपुर के जिला प्रशासन ने बुधवार को जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध करार देकर उन्हें गिराने का रास्ता साफ किया है। नोटिस मिलने के 15 दिन में अगर यूनिवर्सिटी ने खुद इमारतें नहीं गिराई तो योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर पहुंच जाएगा। यह सवाल आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलने की नौबत का ही नहीं है, सवाल खुद आजम खान की शख्सियत है और बदल गई राजनीतिक परिस्थितियां हैं। बीते कई वर्षों में कई बार आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वैसे जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का नोटिस मिलने की खबर पर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा है, भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं, तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे?
1: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: जौहर यूनिवर्सिटी के जिन 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण होना है उनका नक्शा पास नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी जिस जमीन पर बनी है पहले वो जगह जिला पंचायत के अधीन थी जिससे दो भवनों का नक्शा पास हुआ था। 2024 में रामपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद अब आरडीए ने नियमों के हवाले से कार्रवाई की बात की है। इस बीच 2016-17 में सरकारी फंड से यूनिवर्सिटी में बनी 4 लेन की सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग ने आम रास्ता घोषित कर दिया है। सड़क पर यूनिवर्सिटी के निजी इस्तेमाल के मसले पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उधर आजम खान के खिलाफ अब तक की इस सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने न सिर्फ सरकार बल्कि अखिलेश यादव को भी घेरा।
2: जो अखिलेश यादव राम मंदिर के विषय में 28 दिन में 29 ट्वीट करते हैं, 14 प्रेस वार्ता करते हैं, मस्जिद मदरसा खानका पर टारगेट किया गया, एक ट्वीट एक आंदोलन इनके विधायक और इनके द्वारा नहीं किया गया, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, कारोबार पे हमले हुए और तमाम इश्यूज, वक्फ का इश्यूज आया, कभी भी ये मुसलमानों के विषय पे बात नहीं करते क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं।
0: जुलाई 2024 में आजम खान के हमसफर रिसॉर्ट के हिस्से पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। अब 2 साल बाद जौहर यूनिवर्सिटी का नंबर आ गया।
3: सर, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, 40 में से 38 कमरे जमीन।
4: मैंने भी देखा है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो इसको सुनिश्चित करें।
0: गुरुवार को आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंची थी। उन्होंने अपने अगले कदम पर कोई संकेत नहीं दिया।
5: 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें,
6: क्या कोर्ट जाएंगे?
5: अभी कुछ कह नहीं सकती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

सीए की बैठक, खड़गे ने पीएम को लिखा खत, सर्वदलीय बैठक की मांग, कांग्रेस ने किया हर बिल पर सरकार के विरोध का ऐलान। आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, दोनों राज्यों को मिलेगी बड़ी सौगात, कहा पंजाब के लोगों को बीजेपी से उम्मीद, हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कोलकाता एयरपोर्ट की विवादित मस्जिद पर आज टकराव के आसार, जमीयत उलेमाए हिंद की ने किया जुमे की नमाज पढ़ने का ऐलान, प्रशासन की रोक के बावजूद करेंगे कूच। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी 2026 परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। लगातार छठे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान, बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप में धमाके, ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइल, हूती की धमकी, कहा पावर प्लांट को कुछ हुआ रोक देंगे अलमंडे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक मॉर्निंग प्राइम टाइम के सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा पाराशर। बिना ब्रेक के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो में देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर है। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल क्या परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार ने इस बार कर ली है फुल प्रूफ तैयारी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली में सरगर्मी तेज है। पूरी खबर बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो वही छात्रों से आज राहुल गांधी का संवाद होने वाला है। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, इस बात पर भी होगी बात। देश को आज मिलने जा रहे हैं पहली हाइड्रोजन ट्रेन तोहफे में, और क्या इस ट्रेन की खासियत है, वहां कहां से कहां तक चलेगी ये ट्रेन, पूरी खबर थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे देखिएगा 100 शहर 100 खबर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते कोलकाता से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर की गौरीपुर मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच जमीयत आज मस्जिद में जुमे की नमाज पर अड़ा हुआ है। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने जुमे पर आज उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया है जिसे बंगाल सरकार ने बंद कर दिया है। दरअसल सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि अगर उन्हें रोका गया तो इसका विरोध वो करेंगे।
2: ये हमारा अधिकार है।
3: कानून तोड़ने वाले किसी के साथ कोई रियायत नहीं किया जाएगा।
4: सरकार की पाबंदी के बावजूद एक पक्ष मस्जिद में नमाज पर अड़ा है, वहीं दूसरा पक्ष मुस्लिम समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहा है। आज होने वाली जुमे की नमाज से पहले कोलकाता एयरपोर्ट की गौरीपुर मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने साफ ऐलान किया है कि वो मस्जिद में नमाज जरूर पढ़ेंगे और अगर उन्हें रोका गया तो इसका विरोध करेंगे।
2: आप करेंगे, ये हमारा अधिकार है। अब नमाज धोती पहन के जा सकते हैं, अब सिर्फ ये लगा के जाएंगे। जगह किसका
5: ठीक,
2: ना कोई विरोध होगा ना जलसा होगा, वो कोई क्या होगा नहीं होगा, चलिए झूठ बोलेंगे।
4: दरअसल सरकार ने एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और सुरक्षा का हवाला देते हुए मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही फिलहाल मस्जिद में एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है, जिसे लेकर जमीयत भड़की हुई है। साथ ही आज गौरीपुर मस्जिद में झूमे की नमाज पर अड़ी है।
3: कानून तोड़ने वाले किसी के साथ कोई रियायत नहीं किया जाएगा, इसीलिए कोई कानून ना तोड़े। हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं। बंगाल के सारे मुस्लिम भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी के भड़काव में ना आए, किसी के उसकाव में मत आए और कानून ना तोड़े, कानून का खिलाफ ना किए। कोई शरियाती, कोई जमायती, कोई भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से बंगाल नहीं चलेगा। हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं करता है और ना करने का जरूरत है।
4: करीब हफ्ते भर पहले जब सरकार की ओर से कोलकाता एयरपोर्ट परिसर की इस मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था, तब भी सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अन्याय बताया था।
6: 130 बसर मस्जिद नमाज होता अन्याय, एटा बल प्रयोग हुए। आम्रा भारत नागरिक, एयरपोर्ट सुविधा असुविधा आम्रा जानी, मुसलमान निजे राते मस्जिद तुले दीते पारे ना।
4: अब फिर से वो इस फैसले के खिलाफ मस्जिद पहुंचकर विरोध की तैयारी में है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में जबरदस्त तनातनी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
1: इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तापस सिंह गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, क्या जमीयत चीफ के ऐलान को लेकर हलचल तेज हो गई है वहां पर, क्या किसी तरह के टकराव की नौबत आ सकती है आज?
5: जी देखिए बिल्कुल, जमीयत उलमाए हिंद के पश्चिम बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी का ऐलान के बाद यहाँ आज हम एयरपोर्ट के ठीक और उसी मस्जिद का जो एंट्री है उसके बाहर हम खड़े हैं और हम आपको यहाँ पे चित्र दिखाते हैं। यहाँ पे भारी तादाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, CRPF है, CISF है, साथ में विधाननगर कमिश्नरेट के पुलिस भी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पर माइकिंग करके ये बताया गया है कि धारा 144 CRPC के और 163 BNS के लागू किया गया है इस इलाके में और अवैध रूप से कोई भी बड़े मात्रा में लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सिद्दीकुल्ला चौधरी ने साफ तौर पर कल कहा था कि तकरीबन 11:30 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे, मस्जिद के अंदर जैसे नमाज पढ़ने लोग जाते थे पहले वैसे ही वो जाने की कोशिश करेंगे, अगर उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई तो वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, काला धागा पहनकर वो अपने विरोध को प्रदर्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल सिद्दीकुल्ला चौधरी का जो हिस्ट्री है या फिर जो इतिहास रहा है इस तरीके के विरोध प्रदर्शन का कई मायने में वो हिंसक भी रहा है, पिछले कई सालों से हमने देखा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसे पूरी तरीके से चौक चौबंद किया गया है और भी तादाद में पुलिस तैनात किया जाएगा और 11:30 बजे का इंतजार है। लेकिन जो जितने मात्रा में यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ये देखकर कम से कम ये तो नहीं लग रहा है कि यहाँ टकराव की कोई स्थिति पैदा होगी, क्योंकि यहाँ आसपास लोगों को खड़े होने की या जमावड़ा करने की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा रही आज सुबह से।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तापसिन गुप्ता तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, दरअसल आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर का रुख करते हैं, क्योंकि 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और राजधानी में बैठकों के दौर के बीच आज एक अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर राजनाथ सिंह के घर एनडीए की एक बैठक हो रही है जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत एनडीए घटक दल के कई नेता शामिल होंगे। इस बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी।
7: राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, परिसीमन बिल, पेट्रोल में एथेनॉल, ये वो चार बड़े मुद्दे हैं जिस पर 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में हंगामे के पक्के आसार हैं। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में कल कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक में सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार भी हो चुका है।
8: चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं, बीजेपी RSS द्वारा जो किया गया जो चंदा चोरी आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी।
7: सरकार को भी पता है कि मानसून सत्र में हंगामा तय है, लेकिन सरकार भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उनके आवास पर एनडीए की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी की तरफ से राजनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद होंगे, तो तेलुगु देशम से नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, JDS से भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी और JDU से पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शिरकत करेंगे। बैठक में मानसून सत्र में एनडीए की रणनीति पर चर्चा होगी। संकेत पहले से साफ है कि विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा।
9: वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी राम जी का के मंदिर का आंदोलन का विरोध किया, पतंगा पर नहीं मारेगा, जो छत पर लिपटे थे, चढ़े थे गुंबज पर, उनको वहीं चिपका दिया गया, वो जिंदा नीचे लौटे नहीं, हमको हिंदुओं के वोट की जरूरत नहीं है, राम काल्पनिक है, राम सेतु बंधु रामेश्वरम है नहीं, राम का जन्म कहां हुआ ये सिद्ध नहीं होता, ये बयान देने वाले आज राम जी की चिंता कर रहे हैं।
7: मानसून सत्र से पहले दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और शिवसेना के एकनाथ शिंदे मिल चुके हैं, जबकि बुधवार को PM के साथ नितिन नवीन, अमित शाह और BL संतोष की 2.25 घंटे की मुलाकात हो चुकी है और अब आज NDA की बैठक। पीयूष मिश्रा और राहुल गौतम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: हिमांशु जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, क्या माना जाए इस बार सरकार क्या पूरी तरह से तैयार लग रही है, क्योंकि पिछली बार जो कसर रह गई थी क्या उससे अब उबर चुकी है सरकार?
10: देखिए बिल्कुल सरकार की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो 2029 के लोकसभा चुनाव में जो है उससे पहले लागू हो जाए और उसके साथ साथ जो है परिसीमन बिल को भी जो है इस संसद के सत्र में जो है वो मंजूरी मिल जाए और इस बार जो महिला आरक्षण बिल लागू हो और जो परिसीमन हो वो 2011 के सेंसस के आधार पर हो। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके ज्यादातर दल जो है जो उन्होंने पिछली बार इस बिल को अपोज किया था वो साथ आए। इसमें डीएमके से उनकी बातचीत चल रही है, टीएमसी के जो बागी 20 सांसदों का ग्रुप है वो इस बिल को समर्थन कर सकता है, एनसीपी की तरह शरद पवार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस बिल के पक्ष में वो वोट कर सकते हैं आने वाले दिनों में जो है चर्चा करके। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार की जो रणनीति है वो इसी को लेकर है। दूसरा, आज जो है 11 बजे जो बैठक होगी उसमें एनडीए के सभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी और जब भी संसद का सत्र होता है उससे पहले ये बैठक होती है और संसद के अंदर जिन बिल्स को लाना है उनको लेकर बातचीत होती है, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर विपक्ष जो है वो चर्चा चाह सकता है या विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है, उन सबको लेकर चर्चा होती है और सरकार किस तरीके से इन सब मुद्दों को पार्लियामेंट में टैकल करेगी इन चीजों को लेकर एक प्रेजेंटेशन जो हमेशा होती है। इस बार सरकार को लगता है कि राम मंदिर में चंदा चोरी की बात हो, नीट में पेपर लीक का मामला हो या इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है हमलावर होगा और उसके साथ साथ विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि महिला आरक्षण बिल जब लागू हो तो उसमें ये इंश्योर किया जाए कि हर राज्य में जितनी लोकसभा सीटें हैं उसमें 50% की जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी परिसीमन बिल के अंदर।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। अब क्या सरकार ने परिसीमन बिल को पास कराने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है? दो तिहाई बहुमत नहीं होने की वजह से पिछले सत्र में यह विधेयक गिर गया था लेकिन अब स्थितियां बदली है, कई सांसदों ने पाला भी बदला है। इस बिल को लेकर क्या हलचल है, क्या समीकरण बन रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए।
11: सिर्फ वक्त का इंतजार है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं।
12: संसद में सरकार का महत्वाकांक्षी परिसीमन बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने जो संकल्प जताया था क्या उसे मॉनसून सत्र में पूरा करने की पुख्ता तैयारी हो चुकी है? दिल्ली में बैठकों के दौर के बीच कहा जा रहा है कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को थोड़ा पीछे कर दिया गया है और सारी रणनीति मॉनसून सत्र को लेकर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन बिल 2029 से महिला आरक्षण लागू करने, वन नेशन वन इलेक्शन और पीएमसीएम के जेल जाने पर कुर्सी से हटने वाला संविधान का 130वें संशोधन विधेयक इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार ने दो तिहाई का आंकड़ा जुटा लिया है? राज्यसभा के आंकड़ों को देखें तो सदस्यों की कुल संख्या 245 है, दो तिहाई का आंकड़ा 164 तक पहुंचता है। अभी ऊपरी सदन में एनडीए की कुल ताकत 153 है, इसमें नॉमिनेटेड 7 और 3 निर्दलीय सांसद भी शामिल हैं। यानी दो तिहाई बहुमत के आंकड़े से 11 सांसद कम, इनमें से वाईएसआर के 4 सांसद अप्रैल में परिसीमन बिल पर साथ दे ही चुके हैं, यानी केवल 7 सांसद कम है। अब एनडीए की नजर डीएमके के 8, बीजेडी के 5, बीआरएस के 3, साथ ही एनसीपी शरद पवार के 1 सांसद पर टिकी है। अगर इन दलों का समर्थन एनडीए को मिल जाता है तो वो राज्यसभा में भी आसानी से दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ऐसा कर नहीं पाएगी।
13: संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, वो राज्यसभा में लाए वो दो तिहाई बहुमत मिले उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी दो तिहाई बहुमत मिलना जरूरी है। और अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दो तिहाई बहुमत लोकसभा में काफी दूर है और मुझे नहीं दिखता कि उनको दो तिहाई बहुमत मिलेगा।
12: सबकी नजर इस वक्त सबसे ज्यादा स्टालिन और उनकी पार्टी पर लगी है, क्योंकि राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों जगह स्टालिन का समर्थन बीजेपी को एक झटके में दो तिहाई तक पहुंचा सकता है।
13: उन्होंने 16 और 17 तारीख को परिसीमन विधेयक के खिलाफ वोट दिया था और बड़े उत्साहजनक तरीके से उन्होंने वोट किया। इस बीच पिछले 2 महीने में मुझे ऐसा नहीं दिखता कुछ हुआ है कि अचानक डीएमके की विचारधारा और बीजेपी के विचारधारा के बीच में कुछ मिलन होने की संभावना, मुझे कुछ नहीं दिखता।
12: असल में डीएमके तमिलनाडु में कांग्रेस के पाला बदलने के बाद ही नाराज होकर संसद में इंडिया गठबंधन से अपनी सीट अलग करा चुकी है। वहीं डीएमके और उन जैसे ही बिल का विरोध करने वाले दूसरे दलों को साधने में शाह पहले ही जुटे रहे। जैसे मसलन स्टालिन बिल की कॉपियां जला रहे थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर भारत में ज्यादा और दक्षिण भारत में कम सीटें हो जाएंगी। सरकार ने कह दिया है कि हर राज्य में 50% सीट बढ़ेगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने कहा कि नई सीटों में जाति गणना के हिसाब से आरक्षण मिले। सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण के भीतर SC/ST की महिलाओं के लिए पहले से तय अनुपातिक कोटा सुरक्षित होगा, इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। यानी विपक्ष की आपत्तियों को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके संकेत भी अच्छे मिल रहे हैं।
14: वी विल कंसिडर प्रोवाइडेड कंसिडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड इज स्टिल अ क्वेश्चन।
12: एनडीए के पास 293 सांसद हैं, लेकिन अप्रैल में बिल के पक्ष में 298 वोट मिले थे। इसी को आधार माने तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद जुड़ गए। उद्धव गुट से शिवसेना में 6 सांसद आ गए। अब पवार की पार्टी के 8 सांसद भी साथ देते हैं और अगर 22 सांसद डीएमके के भी जुड़ जाते हैं तो 360 से सिर्फ 6 सांसद कम पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर कुछ छोटे दल गैर हाजिर भी हो जाए तो फिर बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: तो मानसून सत्र से पहले विपक्षी खेमे में भगदड़ मची हुई है। शरद पवार को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। क्या शरद पवार एनडीए में जाने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखिए।
15: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुट अपने सियासी वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ शरद पवार की चुप्पी के बावजूद उनके करीबी सहयोगी जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंगलवार रात गुपचुप मुलाकात की, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई। इसी के साथ सुनेत्रा पवार की एनसीपी के दो वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने भी सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। अब खबर है कि सुनेत्रा पवार इस बात से नाराज हैं कि दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया।
16: छोटा पार्टी में किसी तरह का रिफ्ट है क्या मैम? रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी कुछ लेटर्स शेयर हो रहे हैं मैम।
17: मैम क्लेरिफिकेशन कर दीजिए।
16: जस्ट एक क्लेरिफिकेशन मैम, एक छोटा सा अगर।
15: इस बीच सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के आधे सांसद और विधायक चुपके से सत्ताधारी एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा सकें। इस समय शरद पवार की एनसीपी के पास 8 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 10 विधायक और 3 MLC हैं। इसके साथ ही सत्ताधारी एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट भी नेतृत्व को लेकर अंदरूनी कलह का सामना कर रहा है। आलाकमान ने यह भी फैसला किया है कि वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाले अपने राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देगी। इस मामले में सुनील तटकरे ने कहा कि वो नोटिस की कानूनी वैधता की जांच करेंगे। ऐसी चर्चा है कि अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार के सक्रिय सियासत में आने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। हालांकि एनसीपी के दोनों गुट के मौजूदा समीकरण को देखते हुए लग रहा है कि दोनों धड़ों का विलय होकर रहेगा। जयंत पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि अजीत पवार के समय विलय की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई थी, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद विलय की बात वहीं रुक गई थी।
18: सही है ना दादा की इच्छा थी कि हम साथ में आकर काम करें। अचानक दादा की दुर्दैवी मृत्यु होने के बाद उसको पूर्ण विराम मिल गया है।
17: दूसरा सवाल ये कि लवासा में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, खासकर जो काफी चर्चा में मिला,
18: देश की न्याय संस्था ने खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ।
7: ऐसी भी अटकलें हैं कि शरद पवार ने अपनी पार्टी में टूट रोकने के लिए एनडीए के साथ जाने के संकेत दिए हैं। पवार सत्ताधारी एनसीपी की कला का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस हालात में अगर पवार ने एनडीए का दामन थामा तो मोदी सरकार में वो मंत्री पद को लेकर बेहतर मोलभाव करने की स्थिति में रहेंगे।
1: और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की। दरअसल ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं।
7: मदन मित्रा के जाने के झटके से ममता बनर्जी अभी उभरी भी नहीं थी कि कोयल मलिक के इस्तीफे ने उन्हें एक और झटका दे दिया। इसी साल 6 अप्रैल को ममता बनर्जी ने उन्हें टॉलीवुड से राज्यसभा भेजा था, लेकिन महज 3.5 महीने बाद ही कोयल ने भी टीएमसी का साथ छोड़ दिया।
19: देख लाम आड़क जोन एमपी चलचित्र शिल्पी भालो शिल्पी ताके आमी सम्मान करी तिनी गेछेन बीजेपी कोनो एकटा नेतार साथे मीटिंग करे रिजाइन करते। आमी आपनादेर ज्ञातार्थे बोली उनी आगे ईमेल पाठिएछिलेन एबं Thanks to her, जो आज के उन्हें फिजिकली जमा दिते गए।
7: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और तेज कर दिया है।
20: लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं वो?
21: ये 2 महीना में जिस तरीका से एमपी एमएलए चला गया बीजेपी के खुश करने के लिए, ये पश्चिम बंगाल का राजनीति में एक डाटी पिक्चर है। जिसको जो मर्जी करे करिए, उसमें कुछ नहीं है मेरा, चलने दीजिए, होगा।
7: कोयल के बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी कोयल पर निशाना साधा है।
22: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं, और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
7: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफों की बात करें तो कोयल मलिक इस सूची में 4th स्थान पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराइक और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अब वे बीजेपी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इसी राह पर चलने वाली है? इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
1: अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन पंजाब की। दरअसल पीएम मोदी आज चुनावी राज्य पंजाब जाएंगे, और पंजाब के साथ साथ वो हरियाणा और चंडीगढ़ भी जाएंगे, लेकिन पीएम के इस दौरे को खास तौर पर पंजाब चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब के जालंधर से पीएम मोदी 5,470 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। भारत में पहली बार क्लीन एनर्जी वाली ट्रेन चलेगी, इसमें ना तो डीजल जलेगा और ना ही कोयला। दरअसल कंप्रेस्ड हाइड्रोजन की ऊर्जा से ये ट्रेन संचालित होगी। इसके अलावा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का भी आज शिलान्यास किया जाएगा। इससे दिल्ली से कटरा जाने का समय लगभग आधा होने वाला है। इसके अलावा भी कई और परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, लेकिन नजरें पंजाब पर है, क्योंकि पंजाब में यूपी के साथ ही चुनाव होना है, और पीएम का ये दौरा पंजाब में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज भी माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आज इसी को लेकर हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। तो आज पंजाब में बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी 5,470 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास आज करने वाले हैं। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन का रूट भी सामने आएगा, और देखिए इस ट्रेन को लेकर भी हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं, जो जींद से सोनीपत तक चलेगी। 3,200 हॉर्स पावर का इंजन इसमें है, और ईंधन अब हाइड्रोजन से चलेगा।
0: 30,000 crore ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 30,000 crore ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ 25 ਗੁਣਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 25 ਗੁਣਾ
1: बात राहुल गांधी के देहरादून में होने वाले कार्यक्रम की कर लेते हैं, क्योंकि देहरादून के बनू स्कूल मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान कल बड़ा हादसा हुआ। कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाने का काम चल रहा था, तभी एक कांग्रेस कार्यकर्ता के सिर पर लोहे की रॉड गिर गई। इस हादसे में कार्यकर्ता की मौत हो गई।
2: राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले बड़ा हादसा, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता की रॉड गिरने से मौत। देहरादून में बन्नू ग्राउंड में छात्रों की गूंज के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाया जा रहा था। इस दौरान लोहे का भारी गार्डर अचानक गिर पड़ा और उसकी चपेट में 65 साल के अमर मेहता आ गए। अमर मेहता के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस दौरान अस्पताल में उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे।
3: डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की उन्हें बचाने की, तत्काल जो जो हो सकता था मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर जो कुछ भी हो सकता था वो सब चीजें की गई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये कहना पड़ रहा है कि हम सब उन्हें नहीं बचा पाए।
2: हादसे के बाद राहुल के कार्यक्रम को लेकर बन्नू ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं।
23: जो ये लोहे के रॉड लगे हुए हैं, कुछ इसी तरह का जो हैंगर का ये पोल था, ये बताया जाता है कि अमर मेहता के सर पर गिरा और एकाएक करके उनका सर से खून निकलने लगा, जिसके बाद वो घायल हो गए। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
2: उत्तराखंड कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कार्यक्रम तय समय पर किया जाएगा, लेकिन कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया जाएगा और संभावना जताई है कि राहुल गांधी अमर गुप्ता के परिजनों से मिलने उनके घर भी जाएंगे। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब बात नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशु बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया है।

0: देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट जारी। 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया क्वालिफाई। पंजाब और हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका मेडिकल के छात्रों को काफी इंतजार था। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11 लाख 21 हजार छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया। बात करें परीक्षा के टॉप स्कोरर्स में 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार परीक्षा दी थी। वहीं क्वालिफाई करने वाले कुल स्टूडेंट्स में 58% से ज्यादा छात्राएं और 55.1% छात्र हैं। पेपर लीक होने के बाद नीट परीक्षा को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया। वहीं अगले साल यानी 2027 से नीट यूजी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। दिल्ली से अनमोल वाली के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तो 9 बज गए। मैं आगे बढ़ने से पहले वक्त है इस वक्त की सुर्खियों का।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

राहत सर्वदलीय बैठक की मांग, कांग्रेस ने किया हर बिल पर सरकार के विरोध का ऐलान। आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, दोनों राज्यों को मिलेगी बड़ी सौगात। कहा पंजाब के लोगों को बीजेपी से उम्मीद, हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कोलकाता एयरपोर्ट की विवादित मस्जिद पर आज टकराव के आसार, जमीयत उलमाए हिंद ने किया जुमे की नमाज पढ़ने का ऐलान, प्रशासन की रोक के बावजूद करेंगे कूच। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी 2026 परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। लगातार छठे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान, बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप में धमाके, ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइल, हूती की धमकी, कहा पावर प्लांट को कुछ हुआ रोक देंगे अलमंडे। चलिए अब देख लेते हैं 100 शहर 100 खबर। यूपी के बांदा में महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट, सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल, वायरल वीडियो होने के बाद एक्शन में आई बांदा पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। मुंबई में बड़ा हादसा, एक सोसाइटी में 11वें फ्लोर से गिरी क्रेन, एक की मौत हुई, 15 से अधिक गाड़ियां चकनाचूर। गुरुग्राम में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस के हत्थे चढ़े 13 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट, चेकिंग अभियान जारी। मुजफ्फरपुर में 2000 रुपए के लिए भाई की हत्या, साथ बैठकर नशा करने के बाद फिर उतार दिया मौत के घाट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों की बड़ी मुश्किलें, नदियों में उफान के बाद प्रशासन अलर्ट, लोगों से भी नदी किनारे से दूर रहने की अपील। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद अवैध घोषित, कोर्ट ने लगाया 6,41,00,000 का जुर्माना। यूपी के हाथरस में खून की जांच कराने गई किशोरी से पैथोलॉजी में दुष्कर्म हुआ, दरअसल किशोरी को बेहोश कर दिया गया और घटना को अंजाम फिर दिया गया, आरोपी गिरफ्तार। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन और 18 सिम और साथ ही 17 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। भदोही में पत्नी की बेरहमी से हत्या, चार्जर केबल से गला घुटकर पति ने ली जान, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वारदात में शामिल उपकरण भी जब्त। राजस्थान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट ने एक्शन पर रोक वाली याचिका कर दी थी खारिज। प्रयागराज में यमुना में प्रेमी ने प्रेमिका संग हाथ पकड़कर लगाई छलांग, नए यमुना ब्रिज से कूदने का वीडियो तेजी से वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चलती बस पर गिरा बड़ा पेड़, चालक की सूझबूझ से 40 यात्रियों की बची जान। हावड़ा में 16 साल की छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, पीछा कर रहे आरोपी ने बीच सड़क पर हमला किया, सीसीटीवी आया सामने। सूरत एयरपोर्ट रनवे पर सांप दिखने का एक वीडियो वायरल, एयरपोर्ट डायरेक्टर बोले एआई जनरेटेड भी हो सकता है वीडियो। लखनऊ में नर्सरी के 5 साल के छात्र की क्लास मॉनिटर ने 12 मिनट तक उसकी पिटाई की, अस्पताल में भर्ती। अलवर में वकील के घर निकला 8 फीट लंबा कोबरा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया कोबरा। यूपी के महाराजगंज में जुगाड़ से चल रही स्कूली वैन सीज, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर चालक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। सिलकियारा टनल में फिर से टला हादसा, दरअसल सुरंग के अंदर शॉर्टक्रीट गिरने की वजह से 22 वर्षीय मजदूर की मौत भी हो चुकी है। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, सभी को बचाया गया सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा में नाले की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े मांगी गई रंगदारी, 12 स्कॉर्पियो से हथियार लेकर पहुंचे बदमाश, ठेकेदार को धमकाया। दिल्ली के बुराड़ी में एक मकान में खून से लथपथ युवक युवती का शव मिला, पुलिस ने बॉयफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड को गोली मारने के बाद खुद की हत्या करने की जताई आशंका। झांसी में चलती ट्रेन में महिला अतिथि पर हमला, बिना टिकट यात्री ने बाल पकड़कर की मारपीट, वीडियो तेजी से हुआ वायरल। वाराणसी में इटली के पर्यटक का हाई वोल्टेज ड्रामा, घरों में घुसकर हंगामा करने पर लोगों ने पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। यूपी कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर की वजह से बाइक सवार की मौत, हादसा सीसीटीवी में कैद। नालंदा में पुलिस वाहन से युवक की मौत के बाद बवाल, खतराब आगजनी के बीच पुलिस ने किया लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। एमपी के सागर में स्कूल बैग से निकला एक सांप, चेन खोलते ही मचा हड़कंप, टीचर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। भिवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार, अमेरिका कनाडा समेत कई देशों के लोगों को बनाते थे निशाना। राजस्थान के डूंगरपुर के एक स्कूल में बड़ा हादसा हुआ, जर्जर इमारत के ऑफिस के अचानक से गिरी छत, 2 टीचर गंभीर रूप से हुए घायल।
वहीं झारखंड के लातेहार में मिनी ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, दो युवकों की मौके पर हुई मौत। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक से कुचलकर तीन लोगों की मौत हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने वाराणसी सोनभद्र मार्ग जाम कर किया प्रदर्शन। अलवर में एक वर्कशॉप में फन फैलाकर बैठा दिखा कोबरा सांप, दहशत में आए कर्मचारी। औरैया में प्राइवेट अस्पताल कर्मचारी ने यमुना नदी में लगाई छलांग, वीडियो पोस्ट कर स्टाफ पर मारपीट और बदसलूकी का लगाया गया आरोप, राहत बचाव टीम कर रही है तलाश। महाराष्ट्र के अकोला में गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, 50 लाख का प्रतिबंधित माल जब्त हुआ, मास्टरमाइंड फरार। मुंबई के मगाढाणे में बड़ा हादसा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग हुए घायल। मुंबई लोकल ट्रेन के विरार चर्च गेट में खचाखच भरी लोकल में जगह को लेकर विवाद हुआ, चलती ट्रेन में दो यात्रियों के बीच जमकर चले लातखुसे। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। विशाखापट्टनम में समुद्र में पलटी मछुआरों की नाव, हादसे के समय 9 लोग थे सवार, जिसमें 7 सुरक्षित और 2 की हालत गंभीर। गया में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला सुरक्षित बाहर। जामनगर नगर निगम फिर से विवादों में, अधिकारी का टेबल पर पैर रखे वीडियो वायरल हुआ। जामनगर महानगर पालिका अधिकारी के आचरण पर नागरिकों ने मांगी जांच। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में 150 मीटर तक घिसटता नजर आया यात्री, बेटी के लिए लेने गया था कोल्ड ड्रिंक। जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम रही, सरिये रस्सी से बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश की। तो वहीं आज लगातार 6वीं रात भी जारी अमेरिकी कार्रवाई, ईरान पर नए हवाई हमलों की शुरुआत, सेंटकॉम ने किया दावा। ईरान के कई शहरों पर अमेरिकी हमले जारी, अहवाज शहर में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। रॉयटर्स के हवाले से खबर, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल से हमला किया। अमेरिकी हमले में बंदर खमीर का पुल भी निशाना बना, रॉयटर्स के हवाले से खबर। साथ ही ईरान अमेरिका कैदी अदला बदली के दावों को प्रेस टीवी ने खारिज किया, जासूसों की रिहाई से भी किया इनकार। व्हाइट हाउस का नया बयान, ईरान अब भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है, समझौता करना चाहता है। व्हाइट हाउस का दावा, ईरान डील की इच्छा रखता है लेकिन ईरान ने हुर्मुज समझौते का उल्लंघन किया। कुवैत की सेना का दावा, 32 दुश्मन ड्रोन मार गिराए गए, ईरानी हमले में कई अहम ठिकाने बने निशान। कुवैत के हवाई क्षेत्र में 32 ड्रोन इंटरसेप्ट होने से मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा, कोई जनहानि नहीं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच हुर्मुज में शिपिंग गतिविधियां बेहद ही कम हुई, सामान्य स्तर के मुकाबले से 10% जहाजों की आवाजाही। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में केवल 13 व्यापारी ढांचे पर हमला किया तो क्षेत्र के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमला, कुवैत के एयर डिफेंस ने मोर्चा संभाला। स्पेन के जरागोजा में भी उसके पास भड़की भीषण आग, वाइल्ड फायर, जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी से हालात गंभीर। उत्तरी स्पेन में भीषण जंगल की आग, 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बाढ़ और तूफान की वजह से रूस के यूराल क्षेत्र में भारी तबाही, तेज हवाओं की वजह से गिरे कई पेड़, सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें जलमग्न। व्हाइट हाउस का ऐलान, रविवार को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में शिरकत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अर्जेंटीना और स्पेन के मुकाबले में होंगे शामिल। ट्रंप टावर में फीफा रिसेप्शन में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप, आज न्यूयॉर्क में आयोजन। प्रीनीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, 11,21,000 स्टूडेंट्स हुए परीक्षा में पास। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर किया ऑल इंडिया टॉप। परीक्षा में 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए। टॉप स्कोरर्स में 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार दी थी परीक्षा, 99% टॉप रैंकर्स की उम्र 17 से 19 साल के बीच है। 2027 से नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और आयोजक पहले से ही मॉक टेस्ट और डेमो की सुविधा रहेगी ताकि वो नए सिस्टम के अनुसार तैयार हो। आज हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजना के देंगे सौगात। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार, आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। हरियाणा में सड़क रेल परियोजना के देंगे सौगात, कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास।
जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। संत रविदास एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी चंडीगढ़ में भी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना की देंगे सौगात। पीजीआईएमईआर में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरो साइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। जालंधर में आज बीजेपी की रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बोले पंजाब को विकास और ईज ऑफ लिविंग का भरोसा। तो वही मॉनसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति, आज राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बड़ी बैठक। अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज रहेंगे मौजूद। परिसीमन बिल पर खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस, परिसीमन बिल पर विपक्षी एकजुटता का दावा। जयराम रमेश बोले सरकार को लोकसभा में नहीं मिलेगा दो तिहाई बहुमत। सूत्रों के हवाले से खबर, परिसीमन मुद्दे पर डीएमके का फैसला टला, पार्टी बोली बिल पेश होने के बाद लेंगे कोई फैसला। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का आज देहरादून मार्च, छात्रों की गूंज रैली में शामिल होंगे। बोले युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिले केजरीवाल, वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की अपील। संबोधन के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा युवाओं आंदोलन और सोनम वांगचुक की बात सुने वरना 3 साल बाद आपका वही हाल होगा जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव, सोनम वांगचुक से मिलकर किया आंदोलन का समर्थन। आज पश्चिम यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद शामली बिजनौर में लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा की परियोजना को देंगे सौगात। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में शुरू हुई नई पहल, आज से बिना जेब वाले कपड़ों में नजर आएंगे मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी, पुजारी और पंडित। उज्जैन के विश्वविख्यात मंदिर श्री महाकालेश्वर में अब दान के लिए जाने वाले आभूषणों की होगी जांच, लगाई जाएंगी कैरेट मीटर मशीन। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सावलिया सेठ को एक भक्त ने चढ़ाया सोने के बनी बांसुरी, 20 लाख बताई जा रही है बांसुरी की कीमत। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए सावलिया सेठ के दर्शन। पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात मचे, दम घुटने की वजह से एक श्रद्धालु की मौत, भारी भीड़ में कई लोगों के घायल होने। पूरी रथ यात्रा हादसे पर विपक्षी नेता बीजेडी के नवीन पटनायक ने जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कें और रिहायशी इलाकों में भरा पानी, आवागमन के लिए नाव के सहारे ले रहे। महाराष्ट्र के मालशेज घाट में अचानक से चली तेज हवा, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। मालशेज घाट में तेज हवाओं के झोंकों की वजह से कई बाइक सवारों ने वाहनों पर खोया नियंत्रण और एक एक कर सड़क पर गिरने लगे, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। तमिलनाडु में खरीफ सीजन की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कृष्णागिरी जलाशय परियोजना के बांध से 151 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर रिलीज हुआ, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म पराग में श्री मुरली की एंट्री होगी, दरअसल फिल्म निर्माता ने इसकी पहली झलक जारी की। फिल्म हैवान का फर्स्ट लुक जारी हुआ, 11 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म रागिनी 3 की शूटिंग शुरू, तमन्ना भाटिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की इसकी तस्वीर। रणबीर कपूर की रामायण को सीबीएफसी से ग्रीन सिग्नल, बिना किसी कट के पास हुए 2 माह ट्रेलर, 24 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर दुनिया भर में होगा रिलीज।

0: अब बात कर लेते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। कल पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और भीड़ में दम घुटने की वजह से एक श्रद्धालु की मौत हो गई है।
1: ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी से सामने आई हैं। भगवान जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसे हालात बने, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। यात्रा के दौरान कल शाम के वक्त पहांडी रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अचानक लोग रथों के पास जाने की कोशिश करने लगे, तभी लोगों में धक्का मुक्की होने लगी और अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए कैसे श्रद्धालुओं के अथाह समंदर के बीच अफरा तफरी मची है। इसी अफरा तफरी में श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरने लगे। सांस लेने में तकलीफ के बाद कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 60 साल के एक श्रद्धालु की मौत हो गई। रथ यात्रा के दौरान करीब 10 लाख लोग वहां मौजूद रहे, जिसके बाद ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल जाकर लोगों का हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि यात्रा के दौरान कोई भगदड़ नहीं मची।
2: पहले एक बात को डिनाय करता हूं कि देयर हैज बीन नो स्टैम्पेड इन द ड्यूरिंग रथ यात्रा। और जो एक केस डेथ हुआ है, 60 इयर्स एज ओल्ड है, उनका मेल है, वो सफोकेशन के वजह से इधर आए थे ट्रीटमेंट के लिए और उनका
1: वहीं सीएम ऑफिस की तरफ से भी बयान जारी कर कहा गया था कि रथ यात्रा का आयोजन शांतिपूर्ण व्यवस्थित रहा। इधर कल शाम 7:30 बजे भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा और कुछ ही मीटर चलने के बाद पहले दिन की यात्रा रोक दी गई। अब रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे दोबारा शुरू होगी और गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। अजय नाथ, पुरी आज तक।
0: बात मिडिल ईस्ट में मची जंग की कर लेते हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ऐसे में अमेरिका की सेनाओं ने ईरान के कई इलाकों और द्वीप को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बंदर खमीर, केशुमदीप, रहवाज और साथ ही ईरान शहर एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान की मेयर एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास में कई धमाके हुए, केशुमदीप पर भी अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरा और वहीं फार्स मीडिया के मुताबिक बंदर खमीर में एक ब्रिज पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा ईरान शहर एयरपोर्ट और एवाज में अमेरिकी मिसाइल से तबाही मची है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, 5 पुलों को भी उड़ाया है। यूएस ने दक्षिणी ईरान में 5 पुलों को उड़ाया है। इसकी धमकी पहले यूएस दे भी चुका था और वहीं भीषण बमबारी में करीब 7 लोगों की मौत का दावा ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है। छठा दिन है, ऐसे में हमले अभी भी जारी है। चलिए यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है।
8: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
9: वाह वाह वाह वाह।
8: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
10: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
11: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: In association with Hind, बड़े आराम से
16: Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
17: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
15: विमल बोलो जुबां केसरी।
18: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
19: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
20: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
18: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
16: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
15: इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की है। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की 50 काम नहीं आई। दरअसल विराट ने 66 गेंद में 65 रन और श्रेयस ने 71 गेंद में 66 रन की पारी खेली। कार्डिफ

0: के सोफिया गार्डन्स में गुरुवार देर रात 234 रन चेज करते हुए मेजबान टीम ने 45वें ओवर में 6 विकेट खोकर मुकाबला जीता। जीत के हीरो जो रूट रहे वो भी 99 रन बनाकर नाबाद लौटे और जो रूट बने प्लेयर ऑफ द मैच। ऐसे में अब सीरीज का फैसला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे में होगा। तो एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे, 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।
5: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
6: क्या श्री कृष्ण मुस्लिम थे?
7: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
6: क्या श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे?
5: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
6: क्या श्री कृष्ण दीन का प्रचार करते थे? मिलिए मौलाना जर्जिश अंसारी से। इस मौलाना के नाम में जर्जिश जुड़ा है लेकिन इसकी जुबान में जहर भरा है। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। तब जबकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती दिख रही है, इस मौलाना ने फिर अपना चरित्र दिखाया है। इसकी बातें सुनकर आपका सिर चकराने लगेगा, इसकी दलील सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कुनबा बनाने की इसकी कोशिश की मिसाल देखिए। इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है। सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने की इसकी कोशिश देखिए। श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को ये उल्टी दिशा में मोड़ने लगा है। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। ये पहला मौका नहीं है जब इस मौलाना ने विवाद भड़का कर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है। मौलाना जर्जिश अंसारी जैसे चेहरे फिर तेजी से दिखने लगे हैं। ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा? इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

गति तेज। राजनाथ सिंह के आवास पर आज एनडीए की बैठक। दो लंबित विधेयक और 5 अहम बिल ला सकती है सरकार। विरोध के ऐलान के बीच खड़गे ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों राज्यों को मिलेगी बड़ी सौगात। कहा, पंजाब के लोगों को बीजेपी से उम्मीद। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कोलकाता एयरपोर्ट की विवादित मस्जिद पर आज टकराव के आसार। जमीयत उलेमाए हिंद ने आज जुम्मे की नमाज पढ़ने का ऐलान किया। प्रशासन की रोक के बावजूद करेंगे कूच। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी 2026 परीक्षा का रिजल्ट। 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई। आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर। 21 जून को हुआ था री एग्जाम। लगातार छठे दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशव द्वीप में धमाके। ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइलें। हुतियों की धमकी। कहा, पावर प्लांट को कुछ हुआ तो रोक देंगे आलमंदेप।

0: श्रीस्टवाल मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ फिर हाजिर है। आज सुबह में अगले एक घंटे तक बात होगी सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र की, जिसके तूफानी होने के आसार हैं। इस खास पेशकश में हम बताएंगे कि आखिर मॉनसून सत्र से पहले सियासी हलकों में क्या चल रहा है, मिशन दो तिहाई के लिए सरकार क्या कर रही है, कैसे अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्षी दलों तक पहुंच रही है, तो विपक्षी खेमा कैसे एकजुटता का दम भर रहा है, बताएंगे कि कांग्रेस के दावों में कितना दम है आखिर। साथ ही बात होगी पवार पावर की, जिसे लेकर अटकलें थम नहीं रही। पहले शरद पवार की शिंदे से मुलाकात हुई और अब उनकी पार्टी के दो बड़े नेता सीएम फडणवीस और शिंदे से मिले हैं। तो इस सब के बीच मॉनसून सत्र से पहले क्या है गहमा गहमी, आइए नजर डालेंगे।
1: सिर्फ वक्त का इंतजार है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का वक्त। बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है।
2: महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया।
1: कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
2: लोकसभा में इनको दो तिहाई बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा।
1: हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं।
2: ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।

तो रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। थोड़ी देर में दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए नेताओं की ये बैठक है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उनके साथ बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा सोमवार से शुरू होने वाला मानसून सत्र ही है। सरकार अपने साथियों को बताएगी कि वो मानसून सत्र में किन किन बिलों को लाने जा रही है। सबसे ज्यादा जोर परिसीमन संशोधन बिल और महिला आरक्षण बिल रहेंगे, जिसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और सरकार इसी जोड़ घटाव में लगी हुई है कि किसी तरीके से उसे ये 2/3 बहुमत मिल जाए।

तो चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये बैठक अहम क्यों है और कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, राजनाथ सिंह जिनके घर पर होगी ये बैठक, साथ में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री, बेहद अहम उनका रोल यहाँ पे, किरेन रिजिजू वहां पे होंगे, अर्जुन राम मेघवाल, राजीव रंजन सिंह, एचडी कुमारस्वामी, यानी कि जो एलाइज हैं, जो घटक दल हैं, वो भी साथ जुड़ेंगे, और के राम मोहन रायडू, एल मुरुगन, ये सब वहां पर मौजूद होंगे। तो एनडीए की बैठक है, साथ में होंगे बीजेपी के नेता और उनके घटक दल के नेता। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान होगा क्या क्या, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में यह बैठक आज की है। इसके बाद आपने ये भी देखा कि सोनिया गांधी के घर पे भी एक मीटिंग हुई थी कल, तो यानी कि विपक्षी खेमा भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है इस आने वाले मॉनसून सत्र के लिए, क्योंकि जाहिर है ये होने वाला है तूफानी। इससे पहले हमने देखा था अमित शाह के घर पे भी बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर भी बैठक हुई। तो बैठकों का पहले तूफान आया और बाद में आएगा संसद में तूफान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में आज है बैठक, इस बैठक में एजेंडे रहेंगे कई, लेकिन सबसे अहम होगा परिसीमन बिल और साथ में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा, क्योंकि वही दो हैं जिन पर उन्हें दो तिहाई बहुमत जुटाना है और यही कोशिश रहेगी सरकार की। तो आज एनडीए की एक बैठक है, वहीं कल सर्वदलीय बैठक होगी। एनडीए की बैठक में सरकार अपने साथियों को संसद का एजेंडा बताएगी, तो कल विपक्ष को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कल कांग्रेस की बैठक में परिसीमन बिल पर विरोध करने का फैसला हुआ, तो महिला बिल पर मौजूदा संसदीय सीटों पर समर्थन का।

0: तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पहले हिमांशु आपके पास आते हैं। आज बैठक है एनडीए की, जाहिर तौर पर अहम बैठक है। ये तो हमने अभी भी दिखाया कि कौन कौन शामिल होने वाले हैं, लेकिन कब शुरू होगी ये बैठक और सबसे अहम मुद्दे कौन से रहेंगे?
1: देखिए, 11 बजे जो है ये एनडीए के फ्लोर लीडर्स की जो है बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर होगी। इस बैठक के अंदर जिन बिलों को इस बार संसद के मानसून सत्र में सरकार पेश करकर उन्हें कानूनी रूप से जो है कानूनी रूप देना चाहेगी, उन बिलों को लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ विपक्ष के मुद्दों को लेकर जो है संसद में चर्चा चाहता है और हंगामा कर सकता है, इन सब को लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह भी रहेगा कि महिला आरक्षण बिल 2029 में लागू हो, इसके लिए परिसीमन बिल को पास कराया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार स्पेशल सेशन लेकर आई थी, विशेष सत्र लेकर आई थी, लेकिन तब उस बिल को पास नहीं करवा पाई थी। आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सरकार जो है वो 2/3 बहुमत के करीब है। अब ऐसे में सरकार की ये कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल जो है वो परिसीमन बिल पर साथ आए सरकार के और सरकार के साथ वोट करें या अब्सटेन करें। इन इसको अगर आप देखें तो टीएमसी के 20 रेबल जो है वो साथ आ सकते हैं। पिछली बार एनडीए को जो है वो 298 वोट मिले थे, अगर ये 20 आते हैं तो 318, और अगर 22 और जुड़ते हैं इसके अंदर तो आप देखें 340 होंगे। एनसीपी शरद पवार की तरफ से कह दिया गया है कि महिला आरक्षण बिल को लागू करने और परिसमन बिल पर सरकार का वो समर्थन करने पर विचार कर रहे हैं, ऐसा होता है तो 346। ऐसे छोटी छोटी पार्टियों को जो है सरकार की कोशिश है कि परिसीमन बिल पर जो है वो मनाया जाए, उनको साथ लाया जाए और उनको समझाया जाए कि सभी राज्यों में जितनी लोकसभा सीटें हैं उसमें 50% की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो जनगणना है उसके अनुसार, और नंबर ऑफ सीट्स को भी जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि इस मानसून सत्र में जो है वो परिसीमन बिल जो है वो पास कराया जाए, जिससे 2029 में महिला आरक्षण बिल का रास्ता जो है वो साफ हो सके।
0: जी बिल्कुल हिमांशु, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि परिसीमन बिल, जिसकी बात अभी हिमांशु भी कर रहे थे, आखिर उसको लेकर विवाद क्या है? क्यों जो विपक्ष है वो तैयार नहीं है परिसीमन बिल को आगे बढ़ने से लेकर के? चलिए आपको समझाते हैं कि विवाद क्या है। पहले 2026 में एक बिल लाया गया और कोशिश की गई परिसीमन बिल के जरिए डीलिमिटेशन किया जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आकार बदला जाए, और ये सब जो है विपक्ष का आरोप था कि ये हड़बड़ी में किया गया। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं वोटिंग पैटर्न्स चेंज होंगे, और जनगणना के आधार पर उन्होंने कहा, सरकार का यह कहना था कि जितनी पॉपुलेशन होगी उसके आधार से उतनी ही सीटें बनेंगी। तो आइए आपको समझाते हैं कि सरकार का प्लान क्या है। 1971 की जनगणना पर लोकसभा में, जैसा कि आप जानते हैं कि 543 सीटें इस वक्त मौजूद हैं, तो सरकार क्या चाहती है? वो डीलिमिटेशन करके सीटें बढ़ाने के लिए उसने परिसीमन आयोग को बनाया, क्योंकि ये जरूरी भी था। आप ऐसे ही डिलिमिटेशन नहीं ला सकते हैं, जैसा कि इसको संसद में लाने के लिए भी आपको 2/3 की वो मेजॉरिटी आपको चाहिए होती। परिसीमन आयोग को आबादी के आंकड़े चाहिए, और ये आबादी के आंकड़े कहां से आते हैं? जनगणना से आते हैं, और जनगणना की जो प्रक्रिया है वो लंबे वक्त से नहीं हुई है। 2011 से बाद से अगर हमारे देश में देखें तो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई ही नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से आंकड़े लाएंगे और किस तरीके से डिलिमिटेशन का कोई आधार बनाएंगे? तो इसलिए जनगणना पर ही, जो 2011 की हुई थी, उसी के आंकड़ों पर परिसीमन करने का फैसला लिया गया। तो इतने पुराने आंकड़े, और परिसीमन आयोग अब यह तय करेगा कि आरक्षित जो सीटें हैं, क्योंकि कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं कुछ खास कम्युनिटीज के लिए, वो कितनी होंगी। इस सब को लेकर विवाद खड़े हुए, क्योंकि कईयों का कहना था कि कोशिश ये हो रही है कि दक्षिण भारत की सीटें, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से जाएंगे, जनसंख्या के हिसाब से, तो वो कम हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम भी इस वक्त जुड़ गए। राहुल, क्या शिकायतें हैं विपक्ष की, और विपक्ष के पास घेरने के लिए सरकार को मानसून सत्र में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन चिंता शायद सबसे बड़ी यही होगी कि क्या उनके पास 2/3 का आंकड़ा किसी न किसी तरीके से पहुंच ना जाए।
2: सबसे बड़ी लड़ाई यही है विपक्ष के लिए कि जो विपक्षी खेमा है वो एकजुट रहे। आपको ध्यान होगा जब पिछली बार ये बिल लाया गया था तब भी कांग्रेस ने ही पूरे आप कह सकते हैं पूरी प्रोसेस को लीड किया था विपक्षी एकता के लिए। बाकायदा उन्होंने अपने नेताओं को डिप्यूट किया था कि देखिए कहीं से क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और जाहिर है बिल गिरा। और अब भी जो कोशिश है कांग्रेस की वो यही है कि समूचा जो विपक्षी खेमा है वो एक रहे। लेकिन जाहिर है उनकी चिंताएं इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से परिसीमन बीजेपी सरकारें कर चुकी हैं दो राज्यों में, खास तौर पर एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है असम, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से नई सीट्स बनाई जा रही हैं वो इस तरीके से बनाई जा रही हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। तो ऐसे में वो इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, और साथ ही साथ जो दक्षिण के राज्य हैं या जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कमजोर होगा। वो लगातार ये मांग करते रहे कि देखिए आप जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी से खत्म कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली इररिलेवेंट बना रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो असहज है। कल भी साफ किया कांग्रेस पार्टी ने कि हम इसके खिलाफ वोट करेंगे, ना सिर्फ वोट करेंगे बल्कि विपक्षी एकता भी बनाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कह सकते हैं जिनसे लोडेड होकर विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर आएगा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, E20 को तो बाकायदा स्कैम की संज्ञा दे दी गई है कांग्रेस की तरफ से। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कांग्रेस लेकर आएगी।
0: लेकिन राहुल, बड़ी चिंता ये नहीं होगी कि डीएमके क्या करेगा या दूसरी पार्टियां जिनके बारे में कहा जा रहा है एनसीपी एसपी, ये बड़ी चिंताएं ज्यादा रहेंगी। आपके साथ हम दोबारा बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र अब शुरू होने वाला है। इस बार संसद में सिर्फ कानून नहीं, सियासत की सबसे बड़ी जंग भी लड़ी जाएगी। सरकार की नजर दो तिहाई बहुमत के मिशन पर है ताकि परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल लागू करने का रास्ता और संविधान संशोधन जो कि जरूरी है इन्हीं बिलों को पास करने के लिए, इस जैसे बड़े एजेंडे आगे बढ़ाए जाए। तो विपक्ष सरकार को नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद, विदेश नीति, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। यानी कि संसद के भीतर सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी टक्कर तय है।
3: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में रणनीति का दौर तेज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनडीए के मंत्रियों की बैठक, फिर 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक और 20 जुलाई से संसद का रण। मतलब साफ है, संसद में संग्राम से पहले मुद्दों की तरकश में तीर जुटाए जा चुके हैं। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फॉर्मूला, और वो संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है।
4: वक्त का इंतजार है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं।
3: सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटाना। राज्यसभा में तस्वीर पहले से ज्यादा आसान मानी जा रही है, लेकिन लोकसभा में अब भी जरूरी संख्या तक पहुंचने के लिए सहयोगियों और नए समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए मॉनसून सत्र में पहले सियासी जोड़तोड़, दल बदल और नए समीकरणों की चर्चा केंद्र में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी में रणनीति बन चुकी है। जयराम रमेश ने साफ कहा कांग्रेस परिसीमन बिल का विरोध करेगी, महिला आरक्षण का समर्थन तभी होगा जब वो मौजूदा लोकसभा में लागू किया जाए। साथ ही चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, विदेश नीति, E20, महंगाई और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा।
5: लोकसभा में इनको दो तिहाई बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा, और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये दो तिहाई बहुमत कलंकित बहुमत होगा। दो तिहाई ये चाहते थे, 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब दो तिहाई बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।
3: दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार दक्षिण भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए लोकसभा सीटों में सभी राज्यों के लिए करीब 50% बढ़ोतरी का फॉर्मूला तैयार कर रही है ताकि परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की नाराजगी कम हो। लेकिन कांग्रेस, डीएमके और कई विपक्षी दल अब भी संशय में हैं।
5: हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है, एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर एक तिहाई आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया, पूरे एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया।
3: बीजेपी का दावा है विपक्ष पहले ही बिखर चुका है, कांग्रेस को अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं और मोदी सरकार विकास के एजेंडे के साथ संसद जाएगी, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर दो तिहाई बहुमत जुटाना चाहती है।
6: कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही जो कुछ इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ा है उससे कम ज्यादा होकर बेहतर होता कि जयराम रमेश जी सबसे पहले इस बात के लिए राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते कि विदेश में गायब होने के बाद कम से कम संसद सत्र से 4 दिन पहले तो वो भारत में प्रकट हो गए, तो मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं की जान में जान आई होगी।
3: 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र सिर्फ विधेयकों का नहीं बल्कि संख्या बल, रणनीति और राजनीतिक भरोसे की भी सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। एक तरफ सरकार का मिशन दो तिहाई, दूसरी तरफ विपक्ष का मिशन रोक दो। देखना होगा संसद में जीत कानूनों की होती है या फिर राजनीति की। राहुल गौतम, ऐश्वर्या पालीवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि सरकार मॉनसून सत्र में संशोधित विधेयक पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए ताकि प्रस्तावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा हो सके। सूत्रों की माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि मार्च और अप्रैल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कई बार पत्र लिखकर परिसीमन समेत अन्य संवैधानिक प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। और अब गुजरात एटीएस के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। एटीएस ने जैश के 5 और आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात सहित देश के कई शहरों में बम धमाकों का प्लान था जिसे नाकाम कर दिया गया है। ये सभी आतंकी पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से एक दूसरे के संपर्क में थे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इन आतंकियों ने गुजरात में बम बनाकर सुनसान इलाकों में धमाकों का ट्रायल भी किया। 6 से 7 बार ट्रायल किए गए इस तरीके के धमाकों के। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है। इन पर आरोप ये लग रहा है कि इनकी मंशा ये थी कि देश के कई शहरों में बम ब्लास्ट किया जाए और इसके लिए इन्होंने बम बनाने की पूरी प्रक्रिया को सीखा और उसके बाद सुनसान इलाकों में ट्रायल भी की। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: No.
3: Oh, no.
4: Welcome to Get Real.
2: I got something to say.
4: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh, my God.
2: It's got to be deliciously desperate.
5: Why do these girls forgive him?
6: Well, she has a soft spot for troubled men.
2: Boo bloody.
4: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
3: Love runs deeper than we know.
4: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
7: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
8: Money every month.
9: Soch batlo aur bank bhi.
10: Jab baat ho soyabeen ke kheton ko kharpatwar se bachane ki, to har asli hero ki pehli pasand hai Crystal Crop ka Amora. Amora, tez tarar war, hare ab kharpatwar. Desh ke hero ki pehli pasand.
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
13: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
14: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
15: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
13: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
16: इन एसोसिएशन विद
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, आज तक वर्टिकल

0: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
1: वी विल कंसिडर प्रोवाइडेड कंसिडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
0: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 MLC हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर TMC जैसा हाल होना तय है।
2: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
0: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: सत्र से पहले सियासी लामबंदी तेज। राजनाथ सिंह के आवास पर आज एनडीए की बैठक। दो लंबित विधेयक और 5 अहम बिल ला सकती है सरकार। विरोध के ऐलान के बीच खड़गे ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। बीजेपी से शरद पवार की नजदीकियों पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक अटकलें तेज। जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्वाड़ की शिंदे से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन में बेचैनी। संसद में विपक्षी एकता की अग्नि परीक्षा। आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों राज्यों को मिलेगी बड़ी सौगात। कहा, पंजाब के लोगों को बीजेपी से उम्मीद। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कोलकाता एयरपोर्ट की विवादित मस्जिद पर आज टकराव के आसार। जमीयत ए उलेमा हिंद ने किया जुमे की नमाज पढ़ने का ऐलान। प्रशासन की रोक के बावजूद करेंगे कूच। अमेरिका ने नहीं रोका हमला तो पूरी तरह बंद कर देंगे हॉर्मूज। ईरानी सेना की धमकी। बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप में हुए धमाके। ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइलें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: और आइए रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का। गुजरात एटीएस के सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। एटीएस ने जैश के 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात सहित देश के कई शहरों में बम धमाकों का इनका प्लान था, इसे नाकाम कर दिया गया है। ये सभी आतंकी पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से एक दूसरे के संपर्क में भी थे और इन आतंकियों ने गुजरात में बम बनाकर सुनसान इलाकों में धमाकों का ट्रायल भी किया है। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश दोषी का, जो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से क्या सबूत मिले हैं, क्या पता चल रहा है, प्लान था क्या?
3: देखिए, जो गुजरात एटीएस सूत्रों का दावा है कि 4 जुलाई को जो 8 आतंकी पकड़े गए थे जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे, उनकी इंट्रोगेशन में उनको रिमांड पे लिया गया था। कल तक उनके रिमांड थे और कल फिर फर्दर रिमांड भी लिए गए हैं। तो उनके रिमांड के दौरान जो जानकारी मिली उसके अंदर इन 5 लोगों का जो है नाम आया था, वो लोग कैसे कनेक्टेड थे और किस तरह से वो ट्रायल कर रहे थे, बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। तो ब्लास्ट भी उन्होंने कुछ डिवाइस से ब्लास्ट किए थे, एक्सप्लोसिव डिवाइस यूज किए थे। वो डिवाइस के प्रूफ के साथ एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया है। 5 लोगों को जो है वो और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी अब कुल मिलाकर 13 आतंकी जो है वो गुजरात एटीएस की गिरफ्त में है। ये लोग पाकिस्तान बेस्ड जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए थे, उनसे प्रभावित होने के बाद उनके साथ वो लोग काम कर रहे थे, ये गुजरात एटीएस का दावा है। जब उन्होंने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब पूरी जानकारी थी कि किस तरह से लोग जैसे प्रभावित हुए थे और कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे, बट तब तक उनके पास ये जानकारी नहीं थी गुजरात एटीएस के पास कि बम ब्लास्ट का प्लान हो रहा है। पर रिमांड में ये सारी जानकारी सामने आई और आज ज्यादा जानकारी जो है 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी साझा की जाएगी कि किन राज्यों में और कौन कौन से इलाकों में ये लोग प्लान कर रहे थे ब्लास्ट का, और उससे पहले गुजरात एटीएस ने उनको रोक लिया है, तो ये बड़ी सफलता है।
0: जी, हमारे साथ बने रहे ब्रिजेश, क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि पकड़े गए आतंकियों में से 3 आतंकी टॉप कमांडर्स के संपर्क में थे, यानी कि जैश ए मोहम्मद के जो टॉप कमांडर्स हैं उनके साथ इनका सीधा संपर्क था इन 3 आतंकियों का, और आतंकियों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इन सारी बातों का खुलासा हुआ है। बाबलपुर जैश हेडक्वार्टर से सीधा संपर्क था इन आतंकियों का, यानी सीधा पाकिस्तान से इनका कनेक्ट था। जैश के टेरर प्लान पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से ब्रिजेश के पास चलते हैं। ब्रिजेश, तो जो डिजिटल स्क्रूटनी होती है, जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन है, उससे कई बड़ी बातें सामने आई है।
3: गुजरात एटीएस ने जो आतंकियों के रिमांड लिए थे उनको जो काफी लंबे वक्त रिमांड मिला था, तो रिमांड में ये सारी जानकारी सामने आई, जो उनके डिवाइस से इंट्रोगेशन किया गया, वहां से जांच की गई और साथ ही उनसे पूछताछ भी की गई। आमतौर पे जो जैश जैसे संगठन से जुड़े हुए आतंकी होते हैं वो ज्यादा जानकारी रिवील नहीं करते, क्योंकि उनको ट्रेनिंग उस हिसाब से दी गई होती है। तो वो लोग कभी भी जो है वो अपना जुर्म कबूल नहीं करते, पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके साथ उनको पकड़ा गया था, वो डिवाइस के अलावा उनके जो कम्युनिकेशन थे, क्योंकि हर बार आतंकी जो है वो टेलीग्राम या फिर दूसरे सोशल मीडिया जो है डिवाइस का यूज करते हैं जिससे वो पकड़े ना जाएं, पर उनकी जो डिजिटल फुटप्रिंट होती है वो हमेशा एटीएस जैसी संस्थाओं के साथ रहती है, तो वो लोग उसके आधार पे पूरी शिनाख्त करते हैं। लंबे समय से एटीएस इनके ऊपर नजर रखे हुई थी और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार होने के बाद ये सारी डिटेल रिवील हुई है कि वो पाकिस्तान से सीधा कनेक्टेड।
0: जी ब्रजेश जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। मॉनसून सत्र में सरकार की परीक्षा है तो विपक्ष की भी अग्नि परीक्षा है। सरकार का मिशन है दो तिहाई बहुमत और इसमें विपक्षी एकता बिखरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के बड़े स्तंभ शरद पवार के पाला बदलने की अटकलें अब और तेज हो गई है। शरद पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र आवार ने मुंबई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास नंदनवन में उनके साथ मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार रात जयंत पाटिल के साथ दोनों एनसीपी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिल चुके हैं। अब ये अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि शरद पवार की एनसीपी एसपी तेजी से एनडीए में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं विद्या। विद्या, एनडीए अलायंस के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल और सिरदर्द है, ये मुलाकातें आखिर क्यों हो रही है? और सिर्फ एनसीपी एसपी नहीं, दूसरी एनसीपी की भी बड़ी मुलाकातें हो रही है और वहां उनकी अध्यक्ष कहती है कि उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में।
4: जी देखिए, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि जो शरद पवार फैक्शन है, हालांकि उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो डिनाई कर रहे हैं इन बातों को, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि ये सारी जो चहलकदमी हो रही है वो एनडीए में ही घुसने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कोशिश यही है कि या तो हम अजीत पवार फैक्शन के साथ मिल लें और उसके साथ एनडीए में आ जाएं, या फिर अकेले ही, अगर अजीत पवार फैक्शन के साथ अलायंस नहीं होता है वापस, तो एनडीए में आ जाएं और सरकार का एक हिस्सा बन जाएं। लोग यही कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं, खासतौर से ये तमाम अटकलें अगर आप देखें, जयंत पाटिल पहले जाते हैं वर्षा पे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, उसके बाद जाते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, और वही सब जब तब जब सरकार में की डिलिमिटेशन बिल को लेकर सुप्रिया सुले कह चुकी हैं कि वो कैवियट्स के साथ ही सही बट समर्थन करेंगी, तो ये तमाम चीजें जो एक साथ अगर आप देखें तो लोगों का यही मानना है, र्यूमर्स भी यही है कि हो सकता है कि वो जो एसपी फैक्शन है वो मिल जाए एनडीए में। लेकिन ये सारे अगर हम बात करें तो ऑफिशियली अपने समाज जो एसपी के लोग हैं वो यही मना कर रहे हैं, शरद पवार फैक्शन के लोग।
0: जी विद्या, मना भले ही करें लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष का सिरदर्द जरूर बढ़ गया है। सरकार के लिए मॉनसून सत्र संख्या की परीक्षा है तो विपक्ष के लिए भरोसे की। इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष खुद एकजुट रहेगा, क्योंकि संसद से पहले विपक्षी खेमे में मुलाकातों, नाराजगी, टूट और बदलते सुरों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र से तमिलनाडु, बंगाल से दिल्ली तक सियासत का मौसम तेजी से बदल रहा है।
5: सबसे ज्यादा हलचल महाराष्ट्र में है, जहां शरद पवार खेमे के दो सबसे बड़े चेहरे जयंत पाटिल और जितेंद्र आह्वाड उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले। इससे पहले जयंत पाटिल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। लगातार इन बैठकों ने एनसीपी शरद पवार के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। हफ्ते भर में दो दो बड़ी बैठकें, सवाल तो उठाते ही है। टाइमिंग भी ऐसी है कि शरद पवार के पाला बदलने की अटकलों को पंख लग गए हैं। सरकार को भी दो तिहाई नंबर चाहिए। मुलाकात के बाद जयंत पाटिल की दलील भी हजम नहीं हो रही कि मुलाकात सिर्फ विकास कार्यों के लिए थी और कुछ निजी मामलों को लेकर।
6: हमारी जो केंद्रीय यानी पार्लियामेंट के जो 5-8 सदस्य है वो पवार साहब, हमारे जितेंद्र आवाड जी राष्ट्रीय महासचिव है, ये सारे बैठ के उसका निर्णय करने वाले हैं। बिल क्या आता है, बिल का फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या प्रोविजन है, ये सब देखने के बाद अंतिम निर्णय हमारी पार्टी ले सकती है।
5: सुप्रिया सुले के ताजा बयान ने भी विपक्ष को कंफ्यूज कर दिया है, मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शरद पवार के गुट ने साफ किया है कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर वो सशर्त समर्थन करेगा। मसलन 50% वाला फॉर्मूला होता है तो समर्थन रहेगा।
7: वी विल कंसिडर प्रोवाइडेड कंसिडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड इज स्टिल अ क्वेश्चन।
5: कांग्रेस को भी सब दिख रहा है लेकिन जुबान पर यही है कि विपक्ष एकजुट है।
8: सुप्रिया सूले ने खंडन किया है, जो खबर चलाए गए थे सुप्रिया सूले जी ने उसका खंडन किया है, विस्तार से खंडन किया है, कल रात को ही इन्होंने स्पष्ट तरीके से खंडन किया है।
5: तमिलनाडु में भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। डीएमके ने फिलहाल परिसीमन बिल पर अंतिम फैसला टाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और विजय की टीवीके के बीच बढ़ती नजदीकियों से डीएमके पूरी तरह सहज नहीं है। यही वजह है कि अब डीएमके हर बिल पर अलग से फैसला लेने की बात कह रहा है, यानी इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ पहले जैसा नहीं दिख रहा। बंगाल में भी विपक्ष की मुश्किलें कम नहीं है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की खबरें, राज्यसभा से 4 सांसदों के इस्तीफे और लोकसभा में भी कई सांसदों के अलग रुख की चर्चाओं ने ममता बनर्जी की ताकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी जिस विपक्षी एकजुटता के दम पर सरकार को अप्रैल में रोका गया था वो अब पहले जैसी नहीं दिख रही। कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे डीएमके, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत सभी सहयोगियों के संपर्क में है। 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी जहां साझा रणनीति तय होगी, लेकिन असली परीक्षा संसद के फ्लोर पर होगी, क्योंकि संविधान संशोधन में हर वोट की कीमत बहुत बड़ी है। और अगर विपक्ष के कुछ साथी भी अलग हुए तो सरकार का मिशन 2/3 आसान हो सकता है।
9: संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। वो राज्यसभा में लाएं, वो 2/3 बहुमत मिले, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। और अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत लोकसभा में काफी दूर है और मुझे नहीं दिखता कि उनको 2/3।
5: बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के भीतर भरोसा खत्म हो चुका है और सहयोगी दल खुद अपना रास्ता चुन रहे हैं, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्षी दलों में सेंध लगाकर 2/3 बहुमत का रास्ता बना रही है। यानी संसद शुरू होने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन बना रहेगा या हर दल अपना अपना रास्ता चुन लेगा।
10: कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही जो कुछ इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ा है उससे कम ज्यादा होकर बेहतर होता कि जयराम रमेश जी सबसे पहले इस बात के लिए राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते कि विदेश में गायब होने के बाद कम से कम संसद सत्र से 4 दिन पहले तो वो भारत में प्रकट हो गए, तो मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं की जान में जान आई होगी।
5: 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती सरकार नहीं अपनों को साथ रखना है। महाराष्ट्र में मुलाकातें, तमिलनाडु पर संशय, बंगाल में टूट और बदलते राजनीतिक संकेत ये बता रहे हैं कि इस बार संसद में सिर्फ सरकार का नंबर गेम नहीं बल्कि विपक्ष की एकता की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। राहुल गौतम, ऐश्वर्या पालीवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और मुंबई से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हमारी सहयोगी विद्या। जितना जरूरी एक एक नंबर, एक एक सांसद सरकार के लिए है अपने संविधान संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए, उतना ही जरूरी विपक्ष के लिए भी है रोकने के लिए। ऐसे में आप बताएं कि किस तरीके से विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ सकती है, जो हम नई डेवलपमेंट्स देख रहे हैं महाराष्ट्र में।
11: जी बिल्कुल, अगर आप देखें हर चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में आपस में ही फूट नजर आती है।
4: खासतौर से अगर आप देखें जो स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शंस चाहे वेस्ट बंगाल का हो या फिर महाराष्ट्र का या फिर अलग अलग जो इलेक्शंस, हमने बीएमसी का जो इलेक्शन था उसमें भी देखा था कि इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा नहीं दिखा था। यही चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं अब जब डिलिमिटेशन का जो
11: आ रहा है कि जिस तरह से शरद पवार फैक्शन और जिस तरह से सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये बता दिया कि अगर 50% की जो बात है अगर बढ़ोतरी होगी उसके साथ हम डिलिमिटेशन पर सरकार का समर्थन करेंगे, ये अपने आप में खुल के अगर जब वो ऐलान कर रही है तो अपने आप में इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है।
0: बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया विद्या इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में अटकलें हैं ही जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बंगाल में भी विपक्ष खेमा बिखर गया है। ममता बनर्जी की पार्टी के लोकसभा से लेकर राज्यसभा के सांसद बागी हो गए हैं। पहले 9 लोकसभा सांसदों ने अलग गुट बनाकर बीजेपी के साथ होने का फैसला किया, फिर 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। जो नया नाम है वो कोयल मलिक का है, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इससे मुश्किलें बढ़ गई हैं।
12: मदन मित्रा के जाने के झटके से ममता बनर्जी अभी उभरी भी नहीं थी कि कोयल मलिक के इस्तीफे ने उन्हें एक और झटका दे दिया। इसी साल 6 अप्रैल को ममता बनर्जी ने उन्हें टॉलीवुड से राज्यसभा भेजा था, लेकिन महज 3.5 महीने बाद ही कोयल ने भी टीएमसी का साथ छोड़ दिया।
13: देख लाम आरेक जन एमपी चलचित्र शिल्पी भालो शिल्पी ताके आमी सम्मान करी, তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
12: টিএমসি সে ইস্তিফেকে বীচ কোয়েল মলিক কি বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব সে মুলাকাত কি খবরো নে উনকে বিজেপি মে শামিল হোনে কি আটকলো কো অর তেজ কর দিয়া হ্যায়।
14: লোক চুনকে আয়ে উনকি পার্টি মে আলাগ আলাগ উনকে নেতা হ্যায়, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं वो?
15: ये 2 महीना में जिस तरीका से एमपी एमएलए चला गया बीजेपी के खुश करने के लिए, ये पश्चिम बंगाल का राजनीति में एक डाटी पिक्चर है। जिसको जो मर्जी करे करिए, उसमें कुछ नहीं है मेरा, चलने दीजिए, होगा।
12: कोयल के बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी कोयल पर निशाना साधा है।
0: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं, और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
12: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफों की बात करें तो कोयल मलिक इस सूची में 4th स्थान पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराइक और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अब वे बीजेपी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इसी राह पर चलने वाली हैं? इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
0: और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी तपस सेनगुप्ता कोलकाता से। तपस, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक एक करके साथी साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा तब होता है जब संसद

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: Savari, Sokudo.
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
8: सोच बदलो और बैंक भी.
9: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
10: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे.
11: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
9: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
13: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें.
14: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते. अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है. तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है.
15: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
12: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
16: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
17: Hey everybody, Lady Luck here. And we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
18: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
19: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नजदीकियों पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक अटकलें तेज। जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्वाड़ की शिंदे से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन में बेचैनी। संसद में विपक्षी एकता की अग्नि परीक्षा।
1: आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों राज्यों को मिलेगी बड़ी सौगात। कहा पंजाब के लोगों को बीजेपी से उम्मीद। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी।

0: लखनऊ के आसार जमीयत उलेमाए हिंद ने किया जुमे की नमाज पढ़ने का ऐलान, प्रशासन की रोक के बावजूद करेंगे कूच।
1: अमेरिका ने नहीं रोका हमला तो पूरी तरह से बंद कर देंगे होर्मुज, ईरानी सेना की धमकी। बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप में हुए धमाके, ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइल।

0: गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद नेटवर्क से जुड़े 5 और आरोपी गिरफ्तार। पहले पकड़े गए 8 आतंकियों से पूछताछ के बाद अलग अलग जिलों से हुई गिरफ्तारी। जैश मॉड्यूल का खुलासा, देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप। एटीएस के मुताबिक आरोपी पिछले 6 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। बम बनाने और ट्रायल ब्लास्ट करने की बात आई सामने, गुजरात में ही किए गए परीक्षण। जांच में खुलासा, आरोपियों ने कई बार सुनसान इलाकों में विस्फोट की कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा, जैश के 3 संदिग्ध सीधे टॉप लीडरशिप के संपर्क में थे। जांच एजेंसियों के अनुसार 3 बहावलपुर स्थित जैश हेडक्वार्टर से जुड़े हुए थे। एटीएस जांच में सामने आया जैश का नए सिरे से नेटवर्क खड़ा करने का प्रयास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संगठन की गतिविधियों को लेकर एजेंसियां कर रही हैं कार्रवाई। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार, आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। हरियाणा में सड़क रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात, कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। संत रविदास एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी चंडीगढ़ में भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीजीआईएमईआर में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरोसाइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास।
1: जालंधर में आज बीजेपी की रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, बोले पंजाब को विकास और ईज ऑफ लिविंग पर भरोसा। मॉनसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति, राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बड़ी बैठक, अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज मौजूद। परिसीमन बिल पर खड़गे ने पीएम मोदी को फिर से लिखी चिट्ठी, संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस, परिसीमन बिल पर विपक्षी एकजुटता का दावा, जयराम रमेश बोले सरकार को लोकसभा में नहीं मिलेगा 2/3 बहुमत। सूत्रों के हवाले से खबर, परिसीमन मुद्दे पर डीएमके का फैसला टला, पार्टी बोली बिल पेश होने के बाद लेंगे कोई फैसला। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का आज देहरादून मार्च, दरअसल छात्रों की गूंज रैली में वो शामिल होंगे, बोले युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिले केजरीवाल, वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की अपील। संबोधन के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना, कहा युवाओं आंदोलन और सोनम वांगचुक की बात सुने, वरना 3 साल बाद आपका वही हाल होगा जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव, सोनम वांगचुक से मिलकर किया आंदोलन का समर्थन।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में 2,452 करोड़ से की गई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव और मनीष यादव की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी, आदेश के बाद आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी शुरू। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एसएसएफ के 1155 पद हुए स्थायी, चढ़ावा चोरी के बाद हुआ फैसला, वेतनमान और भत्ते भी निर्धारित कर दिए गए। संभल के मुकर्रबपुर गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध इमामबाड़े और मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की है तैयारी, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची टीम। AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान का अखिलेश यादव और योगी सरकार पर हमला, कहा मुसलमानों पर अत्याचार की शुरुआत 2013 मुजफ्फरनगर दंगों से हुई। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज की, जिलों का दौरा और संगठन की समीक्षा, बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता पर जोर। बीजेपी संगठन ने अंबेडकर सम्मान और सामाजिक समीकरणों को बनाया चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा, पश्चिमी यूपी में दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति। बीएसपी ने 2027 चुनाव से पहले मायावती सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की कवायद, यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अभियान की शुरुआत। एसपी 2027 चुनाव में भाजपा के 10 साल बनाम सपा के 5 साल को बनाएगी मुद्दा, पीडी अत्याचार वाली किताब से करेगी प्रचार। बीजेपी नेता पूजा पाल ने अखिलेश यादव के तंज का दिया जवाब, बीजेपी में जाने को बताया पाल समाज के लिए अफसरों की पार्टी।
1: आज लगातार छठी रात भी जारी है अमेरिकी कार्रवाई, ईरान पर नए हवाई हमलों की शुरुआत सेंटकॉम ने किया दावा। ईरान के कई शहरों पर अमेरिकी हमले जारी, अहवाज शहर में भी धमाके से हड़कंप मचा। रॉयटर्स के हवाले से खबर, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया। अमेरिकी हमले में बंदर खामीर का भी पुल निशाने पर बना, रॉयटर्स के हवाले से खबर। साथ ही ईरान अमेरिका कैदी अदला बदली को लेकर भी दावों को प्रेस टीवी ने खारिज किया, जासूसों की रिहाई से भी किया इनकार। व्हाइट हाउस का नया बयान, ईरान अब भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है, समझौता करना चाहता है। व्हाइट हाउस का दावा, ईरान डील की इच्छा रखता है लेकिन ईरान ने हुर्मुज समझौते का किया उल्लंघन। कुवैत की सेना का दावा, 32 दुश्मन ड्रोन मार गिराए गए, ईरानी हमले में कई अहम ठिकाने बने निशाना। कुवैत के हवाई क्षेत्र में 32 ड्रोन इंटरसेप्ट होने से मलबा रिहायशी इलाकों में जाकर गिरा, कोई जनहानि नहीं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच हुर्मुज में शिपिंग गतिविधियां बेहद कम हुई, सामान्य स्तर के मुकाबले सिर्फ 10% जहाजों की आवाजाही।
0: गया में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला सुरक्षित। जामनगर नगर निगम फिर विवादों में, अधिकारी का टेबल पर पैर रखे वीडियो वायरल, जामनगर महानगर पालिका अधिकारी के आचरण पर नागरिकों ने मांगी जांच। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में 150 मीटर तक घसीटा यात्री, बेटी के लिए लेने गया था कोल्ड ड्रिंक। जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम, सरिये रस्सी से बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश की। मुंबई में बड़ा हादसा, एक सोसाइटी में 11वें फ्लोर से गिरी क्रेन, एक की मौत, 15 से अधिक गाड़ियां चकनाचूर। गुरुग्राम में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस के हत्थे चढ़े 13 बांग्लादेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट, चेकिंग अभियान जारी। मुजफ्फरपुर में 2000 रुपए के लिए भाई की हत्या, साथ बैठकर नशा करने के बाद फिर उतार दिया मौत के घाट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार की के सीमावर्ती इलाकों की बड़ी मुश्किलें, नदियों में उफान के बाद प्रशासन अलर्ट, लोगों से भी नदी किनारे से दूर रहने की अपील।
1: यूपी के हाथरस में खून की जांच कराने के किशोरी से पैथोलॉजी में दुष्कर्म हुआ, दरअसल किशोरी को बेहोश कर दिया गया, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया, आरोपी गिरफ्तार। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 18 सिम और 17 एटीएम कार्ड बरामद। भदोही में पत्नी की बेरहमी से कर दी गई हत्या, चार्जर केबल से गला घोटकर पति ने ली जान, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वारदात में शामिल उपकरण भी जब्त। राजस्थान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट ने एक्शन पर रोक वाली याचिका कर दी थी खारिज। लखनऊ के नर्सरी स्कूल में 5 साल के छात्र से मारपीट, क्लास मॉनिटर पर थप्पड़ घूंसे मारने का आरोप, शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, आरोपी छात्र को स्कूल से निकाला गया। लखनऊ के जेएमयू ट्रॉमा सेंटर में शरीर के आर पार घुसी 4 सरियों के साथ पहुंचे मजदूर का सफल ऑपरेशन, फेफड़े समेत कई अंगों की मरम्मत कर 8 घंटे चला ऑपरेशन। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक से कुचलकर 3 लोगों की मौत हुई, गुस्साए ग्रामीणों ने वाराणसी सोनभद्र मार्ग जाम कर किया प्रदर्शन। हरदोई में 8 महीने के मासूम की एम्बुलेंस से लखनऊ ले जाते वक्त मौत हुई, परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप, पिता का दावा ऑक्सीजन देने के तरीके से बिगड़ी है हालत। गाजियाबाद में पुलिस बूथ के सामने शख्स की मौत, मामले में 2 महिला पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुई, जांच जारी, वायरल वीडियो और सीसीटीवी जांच के बाद कार्रवाई।
0: मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती से नाराज सैकड़ों लोगों का हंगामा, चौक पर जाम लगाकर नारेबाजी, कई दिनों से घंटों बिजली गुल होने से भड़के लोग। लखनऊ साइबर क्राइम सेल और क्राइम ब्रांच ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, छापेमारी में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की जांच शुरू की। बांदा में महिलाओं की दबंगई, घर से घसीटकर महिला की सड़क पर बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पीड़िता ने एसपी से शिकायत की, एफआईआर के आदेश। गोरखपुर तहसील में डंडा लेकर पहुंची महिला, सरकारी रास्ते की पैमाइश की मांग को लेकर किया गया हंगामा, एसडीएम ने समझाकर शांत कराया, घटना का वीडियो वायरल। सहारनपुर डीसी ऑफिस के परिसर में बने 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने के आदेश, बेदखली के साथ करीब 6 करोड़ रुपए जुर्माना वसूली के निर्देश। नू के फिरोजपुर झिरका में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़, आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली। रावली डैम इलाके में हुई कार्रवाई के बाद घायल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में महिला ने खड़े खड़े दिया बच्चे को जन्म, लापरवाही का आरोप। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। नागपुर में फिल्मी डायलॉग पर रील बनाने का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने वायरल रील की जांच शुरू की, मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बड़ी चिंता, प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी, नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी जारी। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद यात्रा मार्ग बंद, आवाजाही प्रभावित, प्रशासन ने रास्ता रोकने के लिए काम शुरू किया, यात्रियों ने सतर्क रहने की अपील की।
1: राजस्थान के बाड़मेर में मैथ की कॉपी नहीं लाने पर चौथी क्लास के छात्र के शिक्षक ने बुरी तरह से पिटाई की, बेहोश होने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद में नवोदय विद्यालय में रैगिंग जैसी वारदात आई सामने, दसवीं के छात्र को सहपाठियों ने बांध कर पीटा, जांच के लिए कमेटी गठित कर कार्रवाई का आश्वासन। जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्विस राइफल छीनने की कोशिश के बाद गोलीबारी हुई, एक की मौत और 4 जवान घायल हुए, हालांकि पुलिस ने इस घटना के आतंकी घटना होने की पुष्टि नहीं की है। इंटरनेट बंद करने के साथ एहतियात के तौर पर भद्रवाह में सीआरपीएफ और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई और इसमें से तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, कई जगहों पर जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित। प्रयागराज में यमुना में प्रेमी ने प्रेमिका संग हाथ पकड़कर लगाई छलांग, नए यमुना ब्रिज से कूदने का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चलती बस पर गिरा बड़ा पेड़, चालक की सूझबूझ से 40 यात्रियों की बची जान। हावड़ा में 16 साल की एक छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, पीछा कर रहे आरोपी ने बीच सड़क पर हमला किया, सीसीटीवी आया सामने। सूरत एयरपोर्ट रनवे पर सांप दिखने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, एयरपोर्ट डायरेक्टर बोले एआई जनरेटेड भी हो सकता है वीडियो। लखनऊ में नर्सरी के 5 साल के छात्र की क्लास मॉनिटर ने 12 मिनट तक उसकी पिटाई की, अस्पताल में भर्ती।
0: अलवर में वकील के घर निकला 8 फीट लंबा कोबरा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के महाराजगंज में जुगाड़ से चल रही स्कूली वैन सीज, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर चालक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। सिलकियारा टनल में फिर हादसा, सुरंग के अंदर शॉर्टकट गिरने से 22 वर्षीय मजदूर की मौत। हिमाचल प्रदेश के 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कें और रिहायशी इलाकों में भरा पानी, आवागमन के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के मालशेज घाट में अचानक चली तेज हवा, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। मालशेज घाट में तेज हवाओं के झोंके से कई बाइक सवारों ने वाहनों पर खोया नियंत्रण और एक एक कर सड़क पर गिरने लगे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तमिलनाडु में खरीफ सीजन की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कृष्णगिरी जलाशय परियोजना के बांध में 151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
1: पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आज दूसरा दिन, भगवान का रथ खींचने उमड़े लाखों श्रद्धालु। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए मानवता की बड़ी मिसाल, दरअसल एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाने के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई। आस्था और उल्लास के बीच थूथुकुड़ी में आदि उत्सव की भव्य शुरुआत, पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच खोले गए मंदिर के पट। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान को 11,000 किलो आम का भोग किया गया अर्पित, भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ निकाली रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद हुए शामिल, भगवान की आस्था में रवे नजर आए आशीष सूद। दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर रिलीज, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म पर आकृषि मुरली की एंट्री, फिल्म निर्माता ने पहली झलक की जारी। फिल्म हैवान का फर्स्ट लुक आया सामने, 11 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म रागिनी 3 की शूटिंग शुरू हुई, तमन्ना भाटिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। रणबीर कपूर की रामायण को सीबीएफसी से ग्रीन सिग्नल, बिना किसी कट के पास हुए 2 माह ट्रेलर, 24 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर दुनिया भर में होगा रिलीज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: और अब रुक करते हैं दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर का। दिल्ली में अब अनुराग कुमार नए पुलिस कमिश्नर होंगे और सतीश गोलशा को पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया है। 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं अनुराग कुमार और आईबी में वो स्पेशल डायरेक्टर थे। सतीश गोलशा को उनके पद से अब हटाया गया है और अनुराग कुमार अब इस पदभार को संभालेंगे। उधर सतीश गोलशा को एलजी को रिपोर्ट करने के आदेश इस वक्त दिए गए हैं। अनुराग कुमार अब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, दिल्ली में एक बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली पुलिस में अब पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार होंगे।
1: अरविंद ओझा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, अब नई जिम्मेदारी दी गई है अनुराग कुमार को, ऐसे में और क्या अपडेट सामने आ रहा है?
3: देखिए, जो 1994 बैच के अनुराग कुमार हैं, जो अभी स्पेशल डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जो बड़ा पद माना जाता है, वो अब दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। जो सतीश गोलशा जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उनको हटाया गया है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि सतीश गोलशा अप्रैल 2027 में रिटायर होने वाले थे और लगभग एक साल हुए हैं उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने, और अमूमन वक्त से पहले सतीश गोलशा को हटाया गया है। ये एक बड़ा गृह मंत्रालय की तरफ से जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में कहा गया है कि जो 1994 बैच के अनुराग कुमार हैं, वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होंगे, जबकि सतीश गोलशा दिल्ली एलजी को रिपोर्ट करेंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है, कोई दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनता है तो कार्यकाल पूरा करता है जब तक कि कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट न हो, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है सतीश गोलशा को, उनको उनका रिटायरमेंट अप्रैल 2027 में होना था, लेकिन बीच में गृह मंत्रालय की तरफ से एक ये ऑर्डर आता है जिसमें ये बताया जाता है कि अनुराग कुमार 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी, वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होंगे, और उसके अलावा सतीश गोलशा एलजी को रिपोर्ट करेंगे। अनुराग कुमार की बात की जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में इनका अच्छा खासा अनुभव रहा है। लंबे वक्त तक ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही काम करते ना, इसके पहले वो दिल्ली पुलिस में तैनात थे, दिल्ली के कई जिलों के वो डीसीपी रहे हैं। तो अब ये दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे, लेकिन इसे एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है।
0: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद। बड़ी खबर, जैसे अरविंद हमें बता रहे थे कि सतीश गोलशा को उनके पद से हटा दिया गया है और रिटायरमेंट से पहले मूवमेंट ऑर्डर आ गया है सतीश गोलशा को, और उनकी जगह अब जो बताया जा रहा है वो अनुराग कुमार होंगे, जो 1994 के आईपीएस हैं, उनको अब पुलिस कमिश्नर का पद दिया गया है।
1: दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलशा को हटाया गया है, समय से पहले उनको हटा दिया गया है। सीपी पद से हटाए जाने के बाद अब नई जिम्मेदारी अनुराग को सौंप दी गई है। तो वही आगे बढ़ते हैं, अयोध्या चंदा चोरी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक टिनू यादव की कंस्ट्रक्शन कंपनी का पता चला है। दरअसल टिनू यादव और उसकी पत्नी के बैंक खातों को खंगालने के बाद मनी ट्रेल का पता चला, और साल 2023 में रजिस्टर हुई फर्म को पहले ही साल मिला था 45 लाख का काम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ा खुलासा, जांच में टिनू यादव की जो कंस्ट्रक्शन फर्म है उसको लेकर एक खबर सामने आई है कि पहले साल मिला था उसको 45 लाख का काम, उसको पहले ही मिल चुका था।
0: तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा का। तो संतोष, टिनू यादव महज एक ड्राइवर नहीं थे, वो तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे।
4: देखिए बिल्कुल, वो दिखाने के लिए ड्राइवर थे चंपत राय के, और इसी चंपत राय के ड्राइवरी का ही ये कारनामा है कि अभी तक जो पुलिस को मनी ट्रेल निकली है। दरअसल अयोध्या पुलिस ने जितने भी एक्यूज थे इनके बैंक अकाउंट खंगाले, और बैंक अकाउंट को खंगालने के बाद और ये साल छह महीने
0: संतोष आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं जींद में, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। ये तस्वीरें वहीं से सीधी लेकर आ रहे हैं समारोह की, जहां 10 कोच वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन आप देख सकते हैं इस वक्त इसने रफ्तार पकड़ ली है। क्लीन फ्यूल की हाइड्रोजन पावर्ड ये ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरी झंडी दी है। ये जींद से चल रही है, सोनीपत तक जाएगी, और ये पूरा रास्ता जो है उस में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कहा जा रहा है कि चलेगी।
1: तो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद पहुंच चुके हैं, और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि हरियाणा के जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी, इसको हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी स्टेशन पर मौजूद है। कुछ देर में ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी जाएगी, वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी।
0: तो आपको बता दें कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसे हरी झंडी आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है। बहुत अहम हो जाता है भारत के लिए, क्योंकि पहले तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना है, स्वदेशी है, ऊपर से ये पर्यावरण को लेकर बहुत अहम हो जाती। क्लीन फ्यूल है हाइड्रोजन जिसके जरिए इस ट्रेन को चलाया जाएगा। हाइड्रोजन सेल की तकनीक से इस ट्रेन को चलाया जाएगा, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। ये जींद से जींद सिटी, पांडू पिंडारा और उसके बाद ललित खेड़ा होते हुए भांगभेवा और फिर ईशापुर खेड़ी और बुटाना का रास्ता पकड़ेगी, उसके बाद खडराई से होते हुए ये इसकी आखिरी जो इसका पड़ाव होगा वो सोनीपत होगा।
1: और असीम बस्सी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। असीम, देखिए हरी झंडी अब हाइड्रोजन ट्रेन को दिखा दी गई है, थोड़ी खासियत इसके बारे में जानना चाहेंगे।
5: जी, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसमें 10 कोचेज रहेंगे, और बड़ी बात यह है कि जीरो एमिशन है, ना कोई डीजल यूज होगा ना कोई यूज होगा, और ये हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी से, जिसमें किलोवाट के 12,000 किलोवाट की बैटरीज भी हैं, और उससे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उससे ये चलेगी। और बड़ी बात यह है इसका जो सिर्फ वाटर वेपर जो है वो इसका इसमें से निकलेंगे, और 75 किलोमीटर की स्पीड पे इनिशियली ये एक्सेलरेट करेगी और उससे भी बढ़ सकती है, लेकिन जींद से सोनीपत को ये कनेक्ट करेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, और भारत जो है अब वो कुछ सिलेक्ट नेशंस के अंदर आ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुल्कों में ये ट्रेन नहीं चलती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन कही जा रही है, 10 कोचेज वाली, और बड़ी पावरफुल ट्रेन है। सो जो भारतीय रेलवे में ये जो प्रोजेक्ट है कि जीरो एमिशन, उसके लिए बड़ा कदम है, पहला कदम है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत को।
0: जी असीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी कमल जीत जुड़ गई है जो की वही मौजूद है। कमल जीत, पहले तो ये बताएं कि वहां पर जब प्रधानमंत्री आए तो कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ा, क्योंकि छात्र भी नजर आ रहे हैं, उत्साह दिख रहा है, और फिर इस ट्रेन लिंक और इस ट्रेन की अहमियत भी समझाएं।
6: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात पूरे देश को, और इसकी शुरुआत हो रही है जींद से, और ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको हरी झंडी दी है प्रधानमंत्री ने, वो चलेगी सोनीपत से। हालांकि 90 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, लेकिन क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी इस दोनों का ही कॉम्बिनेशन इसमें होता है, यानी कोई ओवरहेड वायर्स नहीं है, और इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें 10 कोचेज हैं, तकरीबन 2600 लोग एक बार में बैठ सकते हैं, दो बार आवाजाही होगी जींद से सोनीपत। और जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि ये कोई बड़े सिटी से नहीं है, ये सौगात है किसानों के लिए, और यहाँ पे जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी है, अब कई लोग इसे एक माने से देख रहे हैं कि चीन का जो कनेक्शन है, यहाँ से पंजाब 33 किलोमीटर दूर है जहाँ पे चुनाव है, और जींद की कहते हैं कि जो चढ़ाई होती है अपने आप में पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ भी जाएंगे और उसके बाद जलंधर भी जाएंगे, जहां पे बड़ी सौगात एक रविदास ट्रेन जो है, खासतौर पे अगर हम बात करें वो भी जलंधर से वाराणसी तक जाएगी, और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और खासतौर पे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, चंद ही कुछ ऐसे देश हैं, अगर हम बात करें जर्मनी है, इटली है, फ्रांस, यूके, अमेरिका, यही है जो कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाती है। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जहां पे हम बात करें कि जो ग्रीन सेल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना, और इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, इसमें वेपर्स निकलेंगे, और इसी वजह से इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। और इसका जो किराया है, आपको बता दें 5 से 25 रुपए है, तो यानी बहुत ही किफायती, अगर हम बात करें कि लोगों को इससे काफी फायदा भी होगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन रोड कनेक्टिविटी, हाईवेज की भी इनॉग्रेशन है, साथ में मेडिकल कॉलेजेस है भिवानी में, नरनौल में वो भी है, और उसके बाद हम बात करें सिख म्यूजियम है जो कि कुरुक्षेत्र में, उसका भी उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। तो आज का जो प्रोग्राम है वो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल फुल है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और आपको बता दें बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि बीजेपी कार्यकर्ता चाहे हरियाणा में हो और पंजाब में हो, बहुत खुश हैं, और कई बोल रहे हैं कि पंजाब में आगाज चुनाव का हो रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं पंजाब को भी और हरियाणा को भी, और इसी बीच में किस तरह से एक नया समीकरण बैठता है, क्योंकि रविदास कम्युनिटी है, एक बड़ी कम्युनिटी है, खासतौर पर हम बात करें जलंधर में, और कहते हैं कि अगर हम बात करें 32% कम्युनिटी दलित कम्युनिटी, और एक बड़ा फैक्टर माना जाता है दोआबा में, और यहां पर इस तरह के प्रोग्राम करना, हालांकि जब हमने बीजेपी के नेताओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी किए हैं, तो इसे इलेक्शन से ना जोड़ा जाए,
1: ट्रेन से बहुत बड़ा फायदा वहां के लोगों को भी होगा। कमल जीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
11: Sokudo.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
5: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। हाँ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
11: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Hind, bade aaram se.
1: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी.
3: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर.
4: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
3: हैट्रिक का दावा.
4: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी.
3: विश्वास पूरा.
4: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का. हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
0: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
6: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर.

0: विरोध के ऐलान के बीच खड़गे ने की सर्वदलीय बैठक की मांग।
1: बीजेपी से शरद पवार की नजदीकियों पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक अटकलें तेज। जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड की शिंदे से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन में बेचैनी। संसद में विपक्षी एकता की अग्नि परीक्षा।
2: जींद से निकली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा से पंजाब जाएंगे पीएम, कहा लोगों को बीजेपी से उम्मीद।
1: कोलकाता एयरपोर्ट की विवादित मस्जिद पर आज टकराव के आसार। जमीयत उलेमाए हिंद ने किया जुम्मे की नमाज पढ़ने का ऐलान, प्रशासन की रोक के बावजूद करेंगे कूच।
2: अमेरिका ने नहीं रोका हमला तो पूरी तरह से बंद कर देंगे हॉर्मुज। ईरानी सेना की धमकी, बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप में हुए धमाके। ईरान ने भी कुवैत पर दागी मिसाइलें।

0: ने कामयाबी की दिशा में आज एक और बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन सेवा की शुरुआत की। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं। ये हाइड्रोजन से बनी बिजली से चलती है और इस्तेमाल होने वाली बिजली में कार्बन का कोई भी उत्सर्जन नहीं होता।
1: ये जो ट्रेन है क्लीन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। जो इसमें बाय प्रोडक्ट या एमिशन पैदा होता है वो महज वाटर वेपर यानी कि भाप का होता है, जिसकी वजह से इसे क्लीन फ्यूल कहा जा रहा है। बहुत अहम हो जाता है क्योंकि भारत कुछ उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो इस तरह के क्लीन फ्यूल और ट्रेन को चला रही है। ये भारत में बनी है, स्वदेशी है और इसीलिए इसे बेहद अहम भी माना जा रहा है। ये जो ट्रेन है इसका जींद से शुरू होकर ये सोनीपत पर इसका आखिरी पड़ाव रहेगा और बहुत अहम हो जाती है ये क्लीन एनर्जी के तरफ भारत की जो कोशिश है उसे लेकर।
0: और देखिए 10 कोच वाली ये ट्रेन है। इस रूट पर लगभग 14 स्टेशन के बीच मैक्सिमम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी। जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन चलेगी, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। 10 कोच इसमें है जो कि 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। इस रूट पर 79 किलोमीटर का सफर लगभग 2 घंटे में तय भी हो जाएगा। इसकी जो किराया है वो भी काफी कम रखा गया है, 5 से 25 रुपए के बीच इसका किराया रखा गया है।
1: तो टॉप स्पीड तो ज्यादा है लेकिन जो इसकी आम संचालित स्पीड रहेगी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी।

0: खबर कोलकाता से, एयरपोर्ट के भीतर मस्जिद, वो भी रनवे से महज 165 मीटर दूर। सुरक्षा का बड़ा सवाल और फिर उस पर मजहब का सवाल। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने मस्जिद में नमाज पर पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया है।
1: जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने जुमे पर आज उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया है जिसे बंगाल सरकार ने बंद कर दिया है। जमीयत राज्य सरकार के आदेश को मानने से इनकार करते हुए विरोध में सामने आकर खड़ा हो गया है और नमाज पढ़ने की बात उन्होंने कही है।

0: 136 साल पुरानी इस मस्जिद पर सियासत की नई पटकथा लिखी जा रही है।
1: नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस मस्जिद को यहाँ से हटना होगा।
2: आंतर्जातिक विमानबंदर এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না।
0: लेकिन इस मस्जिद को यहाँ से हटाने के फैसले के खिलाफ लामबंदी हो रही है। जमीयत उलेमा हिंद फैसले के खिलाफ अड़ गया है, साफ साफ कह रहा है कि मस्जिद तो यहीं रहेगी, जुमे की नमाज भी जरूर होगी।
1: आप करेंगे ये हमारा अधिकार है। हम नमाज पूर्ति पहन के बन के जा सकते हैं, अब सिर्फ ये लगा के जाएं जगह जिसका
3: जी।
1: ना कोई विरोध होगा, ना जलसा होगा, कोई क्या होगा नहीं होगा।
0: आज जुमे की नमाज है और इस नमाज से पहले जमीयत की जिद ने इस विवाद को जंग की शक्ल दे दी है। कहा जा रहा है ये मस्जिद 136 साल पुरानी है। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं, इसे आस्था का सवाल बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी।
1: मुसलमान नमाज पढ़ने जाएंगे, गुरबा नहीं होता है, रास्ता पर नहीं उतरेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, माइक नहीं करेंगे, सिंपल नमाज पढ़ने जाएंगे, इसको पहन करके। इसमें परेशानी क्या है? ये धार्मिक मसला, हम चाहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी खत लिख कर पोस्टनेस बने, हम भी जाने को तैयार है।
0: एयरपोर्ट परिसर में धार्मिक संस्थानों की ऐसी मौजूदगी विरले ही दिखती है। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थाई रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, मरम्मत के लिए कुछ दिन तक प्रवेश और नमाज अस्थाई रूप से रोक दी गई है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर ही लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया गया। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई।
2: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি, ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ করতে পারবে না, তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই।
0: सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने के बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रीलोकेट करने पर विचार हो रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठनों को ये भी मंजूर नहीं।
1: आप तो रोक सकता है कोई पहला मस्जिद में नमाज, हम पूछना चाहते हैं, आप रोक सकते हैं किसी मस्जिद में? ये परमिशन है मस्जिद प्यारी, परमिशन होता है नमाज, परमिशन होता है रमजान में इफ्तार, ये सब ओरिजिनल पेपर हमारे पास मौजूद है। अब हम लोग कानून का रास्ता सबसे अच्छा है।
0: सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
4: और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोलकाता से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं।
3: तापस बताइएगा कि अभी भी जिद पर वो क्यों अड़े हुए हैं नमाज पढ़ने की, जबकि इजाजत उनको नहीं दी गई है, और वहां के अभी हालात कैसे नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कैसी की गई है?
4: जी देखिए, एयरपोर्ट के अंदर जो मस्जिद है वहां पाबंदी पिछले हफ्ते लगा दी गई थी, बावजूद उसके सिद्दीकुल्ला चौधरी जो जमाते उलमाए हिंद पश्चिम बंगाल के प्रमुख भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आज वो लोगों के साथ आएंगे, मस्जिद के अंदर जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था अनुमति लेने के बाद, अनुमति नहीं दिया गया तो फिर वो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, यहाँ बांकड़ा मोड़ पर हम मौजूद हैं, यहाँ सिद्दीकुल्ला चौधरी का घर भी है और ठीक रास्ते के दूसरे छोर पर वो मस्जिद है एयरपोर्ट के भीतर। यहाँ देख सकते कि भारी तादाद में जो है पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के महिला जवान भी बड़े मात्रा में यहाँ पर तैनात किया गया है। 11:30 का वक्त बताया गया था लेकिन अभी तक सिद्दीकुल्ला चौधरी नहीं आए हैं। कुछ देर पहले मस्जिद कमेटी से कुछ लोग आए थे पुलिस से गुहार लगाने की उन्हें अनुमति दी जाए, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया। और इस आज सुबह से इस इलाके में धारा 144 सीआरपीसी यानी 163 बीएनएसएस को लागू किया गया है, यानी 4 से अधिक लोग एक जगह नहीं हो सकते। इस वजह से इस पूरे इलाके को खाली करवाया गया है और कहीं भी जो भीड़ है, भीड़ खड़े होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है कि अगर स्थिति किसी तरीके से हिंसक हुई तो उससे जल्द से जल्द निपटा जाए, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि शायद सिद्दीकुल्ला चौधरी यहाँ नहीं आएंगे नमाज पढ़ने। हालांकि वो खुद आने की एक बात है पुलिस से बातचीत करने के लिए, लेकिन अगर नमाज की बात की जाए तो इस पर अभी भी दोहराए हैं कि क्या सिद्दीकुल्ला चौधरी आएंगे। उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश किया, उन्होंने कहा कि वो आएंगे, बात करेंगे पुलिस से, लेकिन अंदर वो नहीं जा पाएंगे ये तो साफ है। अब उसके बाद देखना होगा कि सिद्दीकुल्ला चौधरी क्या कुछ करते हैं और 1:30 बजे के आसपास वो जो मीडिया है संबोधित करेंगे और उनके आगे का जो प्लान है उस बारे में चर्चा भी करेंगे।
5: जी शुक्रिया तपस इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस मस्जिद में नमाज पर जमीयत अड़ा है वो सुरक्षा कारणों से बेहद संवेदनशील यानी मानी जाती है, और नियम ये है कि रनवे से किसी इमारत की दूरी 420 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दमदम पर सेकेंडरी रनवे और मस्जिद की दूरी सिर्फ 165 मीटर है, और क्या क्या खतरे हैं आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
6: ये उसी बांकरा मस्जिद का दरवाजा है जिस पर अब राज्य सरकार के आदेश से तालाबंदी हो चुकी है। 12 जुलाई से पहले इस दरवाजे से होकर एयरपोर्ट परिसर में जाना बेहद आसान था। अपना आधार कार्ड दिखाइए और आराम से एयरपोर्ट के उस हिस्से में पहुंच जाइए जहां से रनवे करीब 300 कदम की दूरी पर है, लेकिन 12 जुलाई को स्थिति बदल गई।
7: ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी अब तक, क्योंकि इसी गेट से कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर स्थित जो मस्जिद है उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते थे, और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि इस मस्जिद को यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूंकि पिछले कई दशकों से जो ये 136 साल पुराना मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर है वो एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से महज कुछ मीटर दूर है, 160 मीटर दूर है, और जिसके वजह से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती बन चुकी है।
6: आज तक ने सबसे पहले ये खबर आपको दिखाई थी, लेकिन ये भी दिलचस्प है कि 100 से भी ज्यादा सालों से इस मस्जिद की यहाँ पर मौजूदगी को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठे। 1924 में दमदम एरोड्रम की स्थापना हुई जो कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 102 साल बाद अब इस एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर संजीदगी बढ़ी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने संसद में सवाल उठाकर इस पर पूरे देश का ध्यान खींचा था।
8: अगर वो मस्जिद नहीं होकर मंदिर भी रहता तो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता, जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी ये सवाल उठा, तो हम लोग आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। आज दूसरा सारों राज्य में देखिए कितने एयरपोर्ट, हम एक ही दमदम लेकर अभी तक खड़ा हुआ है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एयरपोर्ट को थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जैसा अपना मार्गदर्शन को एक्सपैंड कर दिया था जिसका बाहर भी चले गए थे, वो ही हम लोगों को नजर रखना चाहिए। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, इसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हुआ है।
6: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट में दो समानांतर रनवे हैं। पहले रनवे का इस्तेमाल विमानों की लगातार आवाजाही के लिए होता है, वहीं दूसरे रनवे का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब मुख्य रनवे तकनीकी खराबी या मरम्मत की वजह से उपलब्ध न हो। लेकिन मस्जिद इसकी सुरक्षा की राह में रोड़ा की तरह है। ये मस्जिद सेकेंडरी रनवे से सिर्फ 165 मीटर उत्तर में और एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के अंदर लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। एयरपोर्ट के सूत्रों का कहना है कि रनवे से किसी भी इमारत की कम से कम दूरी 240 मीटर होनी चाहिए। इस तरह ये नियमों के खिलाफ है। कहा जा रहा है कि सेकेंडरी रनवे के असुरक्षित होने के कारण ही इस एयरपोर्ट का तरीके से विकास नहीं हो पा रहा, लेकिन अब जबकि इसके विस्तार की तैयारी हो रही है तो आस्था का सवाल उठाकर अड़ंगा डाला जा रहा है।
9: कानून तोड़ने वाले किसी के साथ कोई रियायत नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई कानून ना तोड़े। हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं। बंगाल के सारे मुस्लिम भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी के भड़काव में ना आए, किसी के उसका मत आए और कानून ना तोड़े, कानून का खिलाफ ना। कोई शरियाती, कोई जमायती, कोई भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से बंगाल नहीं चलेगा। हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं करता है और ना करने का जरूरत है।
6: जहाँ तक सरकार का सवाल है तो ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि मस्जिद को सिर्फ रिलोकेट किया जा रहा है।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: Sanitary Solution.
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: In association with Hind, बड़े आराम से
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: विमल बोलो जुबां केसरी।
9: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
10: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
9: हैट्रिक का दावा।
10: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
9: विश्वास पूरा।
10: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
9: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।
11: राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे, 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: हमारे भाई अगर बुरा ना माने
2: तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
3: क्या श्री कृष्ण मुस्लिम थे?
4: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
3: क्या श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे?
2: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
3: क्या श्री कृष्ण दीन का प्रचार करते थे? मिलिए मौलाना जर्जिश अंसारी से। इस मौलाना के नाम में जर्जिश जुड़ा है, लेकिन इसके जुबान में जहर भरा है। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। तब जबकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती दिख रही है, इस मौलाना ने फिर अपना चरित्र दिखाया है। इसकी बातें सुनकर आपका सिर चकराने लगेगा, इसकी दलील सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कुनबा बनाने की इसकी कोशिश की मिसाल देखिए। इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे, और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है ये सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने की इसकी कोशिश देखिए। श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को ये उल्टी दिशा में मोड़ने लगा है। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। ये पहला मौका नहीं है जब इस मौलाना ने विवाद भड़का कर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और इससे ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है। मौलाना जगदीश अंसारी जैसे चेहरे फिर तेजी से दिखने लगे हैं। ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा? इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है, और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।

तेज राजनाथ सिंह की आवाज पर एनडीए की बैठक, दो लंबित विधेयक और पांच अहम बिल ला सकती है सरकार, कांग्रेस कर चुकी है विरोध का ऐलान। जींद से निकली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा से जालंधर जाएंगे पीएम, कहा पंजाब के लोगों को बीजेपी से बड़ी उम्मीद। कोलकाता एयरपोर्ट की विवादित मस्जिद पर आज टकराव के आसार, जमियत उलेमा हिंद ने जुमे की नमाज पढ़ने का किया ऐलान, प्रशासन की रोक के बावजूद करेंगे कूच। गुजरात से पकड़े गए जैश के पांच आतंकियों से हुआ बड़ा खुलासा, देश भर में थी धमाके की तैयारी, बम बनाकर कर चुके थे टेस्ट ब्लास्ट, मसूद अजहर के बहावलपुर हेडक्वार्टर से सीधा कनेक्शन। वक्त से पहले हटाए गए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, अनुराग सिंह बने नए सीपी, 1994 बैच के हैं आईपीएस, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर के पद पर थे तैनात।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ वांशु दीक्षित। और 12 बजे 12 रिपोर्टर में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर की गौरीपुर मस्जिद को लेकर आज विवाद बढ़ने के आसार हैं। मस्जिद पर जारी विवाद के बीच जमीयत आज मस्जिद में जुमे की नमाज पर अड़ा हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के प्रमुख सदीकुल्लाह चौधरी ने जुमे पर आज उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, जिसे बंगाल सरकार ने बंद कर दिया है। सदीकुल्लाह चौधरी ने कहा है कि अगर उन्हें रोका गया तो हम इसका विरोध करेंगे। तो सिद्दीकुल्लाह चौधरी आज नमाज पढ़ने का ऐलान कर चुके हैं। टकराव की आशंका जताई जा रही है और सिद्दीकुल्लाह चौधरी इस वक्त पहुंच गए हैं उसी मस्जिद पर जहां पर उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने वहां पर जाने पर रोक लगाई है। तापस एन गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, क्या हालात है इस वक्त मौके पर?
2: जी देखिए, कुछ देर पहले सिद्दीकुल्लाह चौधरी वो इस बाकड़ा मोड़ जहां हम खड़े हैं यहां पहुंचे थे, वो अपने घर से निकलकर आए थे और सड़क के ठीक उस पार ये मस्जिद है जहां वो जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अलाउ नहीं किया। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि वो किसी तरीके धरना या फिर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। वो विधाननगर के पुलिस कमिश्नर से मिलने की बात कर रहे थे कि वो विधाननगर पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद ये तय करेंगे आगे क्या फैसला होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि यहाँ बैठकर किसी कोई प्रदर्शन या फिर विरोध प्रदर्शन की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है। और उसके बाद वो गाड़ी में सवार निकल गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी भारी मात्रा में जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया है, क्योंकि अगर कोई स्थिति बेकाबू हो तो उसे निपटने के लिए पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। फिलहाल यहाँ पर धारा 163 BNSS का लागू किया गया है। 4 से अधिक लोगों का जमावड़ा यहाँ पर गैरकानूनी बताया गया है, तो इस वजह से इस इलाके को खाली रखा गया है। भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया है, लेकिन फिलहाल सिद्दीकुल्लाह चौधरी यहाँ से निकल गए हैं और जाते वक्त उन्होंने कहा कि वो पुलिस से बातचीत करेंगे और फिलहाल वो नहीं बैठेंगे किसी विरोध में। आपको दूसरे छोर के चित्र दिखाता हूँ कि मस्जिद में घुसने का जो
1: रास्ता, पुलिस बल वहां पर भारी संख्या में तैनात है। बने रहिए तापस, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। वहीं आज तक ने सिद्दीकुल्लाह चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने कहा कि कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं रोका जाएगा और ना माइकिंग होगी।
3: आंदोलन नहीं करेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। महीने का जुमा की नमाज पढ़ते आए मस्जिद में पढ़ेंगे, अपने अपने मस्जिद पढ़ेंगे, कोई आंदोलन नहीं होगा, रास्ता नहीं रोका जाएगा, माइकिंग नहीं होगी, घर से नमाज पढ़ेंगे, ये दुख बताएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। आप झूठ क्यों बोलते हैं आंदोलन करेंगे?
4: नहीं, बिल्कुल अल्लाह से इबादत कीजिए, उसमें वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें कोई किसी को कोई भी मुसीबत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जिस मस्जिद में आपको एक्सेस नहीं है, सिक्योरिटी के रीजन के मुताबिक जिसको बंद कर दिया गया है, अब वहां पे कहां से कैसे नमाज अदा करेंगे?
3: मैं बता रहा हूँ, नोटिस दे दे नोटिस। अगर दिल में ताकत है तो नोटिस क्यों नहीं देते 5 दिन से?
1: तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तापस, बातचीत का रास्ता तो पहले भी सरकार की तरफ से रखा गया था, लेकिन तब तो बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला, क्या अब उम्मीद है?
2: जी, उम्मीद तो कम नजर आ रहा है, क्योंकि मस्जिद कमेटी की ओर से ये बताया गया था कि वो इस ये जो फैसला लिया गया है कि इस मस्जिद को रिलोकेट किया जाएगा, इसको लेकर कई बयाने मस्जिद कमेटी से आ रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, सिद्दीकुल्लाह चौधरी इसके विरोध में खड़े हैं, तो अभी आने वाले समय में क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये साफ है जो विवाद खड़ा हुआ है, ये विवाद फिलहाल थमने की आपको गुंजाइश तो दिख नहीं रही है, क्योंकि सिद्दीकुल्लाह चौधरी थोड़ी देर पहले उन्होंने साफ किया कि हालांकि वो विरोध प्रदर्शन या नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस से बातचीत करके क्या रास्ता निकाला जाए।
1: ठीक है तापस, मतलब बारिश भले ही हो रही है बंगाल में, लेकिन माहौल अभी भी गर्म है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश की संभल से। संभल में अवैध इमामबाड़े और मजार पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है और संभल में सरकारी भूमि पर बनी हुई मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर एक्शन के लिए प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में बुलडोजर एक्शन शुरू होगा और यह आरोप है कि 312 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर इमामबाड़ा और मजार बनाकर अवैध कब्जा किया गया है और उसी कब्जे को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर वहां पहुंच गया। अभिनव मात्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, कितनी देर बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है?
5: देखिए बिल्कुल हिमांशु, आपसे कुछ ही मिनट के अंदर ये पूरा बुलडोजर एक्शन शुरू होगा, लेकिन आप देख सकते हैं, देखिए सारे जो बुलडोजर हैं उनको फिलहाल यहाँ पर स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए सामने आपको तीन तीन बुलडोजर तस्वीरों में जो है खड़े हुए नजर आएंगे, जिसमें तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लाए गए हैं। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो देखिए आपको बुलडोजर नंबर 1, बुलडोजर नंबर 2 और बुलडोजर नंबर 3, इसी तरह से जो तीन तीन बुलडोजर है उनको लाया गया है। और उसके बाद अब ये जो पूरा इमामबाड़ा है उसको यहाँ पर जो है ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ आपको इससे पहले जो भी शटर है उनको हटाने का यहाँ पर काम किया गया है, तमाम अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो देखिए ये वो इमामबाड़े के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ आपको जो है सामान रखा हुआ नजर आएगा। और फिलहाल इसको यहाँ पर जो खाली कराने का जो पूरा काम है वो फिलहाल यहाँ पर जो किया जा रहा है। और इसी तरह से देखिए ठीक उसके बराबर में जो यहाँ पर देखिए मज़ार, यहाँ आप जो देखेंगे तो ये वो पूरी मज़ार है जिसको फिलहाल यहाँ पर हटाया जाना है और इस पूरी मज़ार को ध्वस्त किया जाएगा। तो इसी तरह से 312 वर्ग मीटर जगह में बना हुआ ये वो पूरा अवैध निर्माण है जिसको फिलहाल यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई करने के लिए पूरी टीम पहुंची है। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं। और देखिए आप यहाँ बुलडोजर यहाँ आपको जो है तस्वीरों में नजर आएगा, देखिए किस तरीके से अब से कुछ ही मिनट के अंदर पूरा एक्शन
1: नजर बनाए रखिएगा, नजर बनाए रखिएगा अभिनव, दोबारा हम आपके पास आएंगे जैसे ही बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। और अब 12 बजे रिपोर्टर में अगली जो बड़ी खबर है वो है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस में एक बड़ा फेरबदल हुआ, सतीश गोलचा को पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह अनुराग कुमार नए पुलिस कमिश्नर होंगे। 1994 बैच के आईपीएस अफसर अनुराग कुमार आईबी में स्पेशल डायरेक्टर थे। सतीश गोलचा का कार्यकाल अगले साल तक था, लेकिन इससे पहले ही उनकी छुट्टी कर दी गई वक्त से पहले।
6: दिल्ली को मिला है एक नया पुलिस कमिश्नर। 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार अब होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। दरअसल इससे पहले सतीश गोलचा, जो कि 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो इस पद पर कार्यरत थे। तभी कल शाम को गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि अनुराग कुमार, जो कि स्पेशल डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है और उन्हें एक बार फिर से जाकर के दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। लेकिन इसके बाद ही आज सुबह अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें यह बताया जाता है कि अनुराग कुमार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इसके पीछे एग्जैक्टली क्या वजह है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सतीश गोलचा जी को यह बोला गया है कि वो जल्दी से जल्दी एलजी ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर अपनी नई ड्यूटी का कार्यभार ले लें।
1: तो अनुराग कुमार नए पुलिस कमिश्नर दिल्ली को मिले और उन्होंने अब पदभार भी संभाल लिया है। 12 बजे रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट, पंजाब से हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन देश को मिल गई है और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। करीब 89 किलोमीटर का सफर ट्रेन 2 घंटे में तय करेगी। ट्रेन की खासियत बता रहे हैं आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा।
7: देश को आज मिलने जा रही है हाइड्रोजन ट्रेन। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी और इस ट्रेन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 10 डब्बे हैं, 8 ट्रेन कार हैं, 2 इंजन हैं और ये जो इंजन हैं वो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक मेम्ब्रेन के मिलने के बाद बनता है और इस केमिकल रिएक्शन से बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट किया गया है और इस ट्रेन में 2600 यात्री एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं।
1: तो पीएम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर हैं, लेकिन पीएम के इस दौरे को खास तौर पर पंजाब चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब के जालंधर से पीएम मोदी 5,470 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। पीएम का पंजाब में और क्या कार्यक्रम है बता रही है हमारी संवाददाता कमलजीत संधू।
8: प्रधानमंत्री का उत्तर भारत का दौरा और यहां पर चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जहां पे जींद से सोनीपत जाएगी। और आपको बता दें ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत, आपको बता दें क्लीन एनर्जी यहां पे, इसमें कोई ओवरहेड वायर्स नहीं है और चंद ही देश हैं जहां पे ये मुकाम हासिल कर पाए हैं, उनमें से जर्मनी है, यूके है, इटली, फ्रांस है, अमेरिका है और भारत ने ये उपलब्धि पाई है। लेकिन कार्यक्रम उनका हरियाणा तक ही नहीं है, आपको बता दें करोड़ों के हिसाब से ये प्रोजेक्ट्स हैं और चंडीगढ़ में भी पिगमर में नया जो एरिया है वो लाया गया है। इसके अलावा हम बात करें जलंधर में जहां पे रेनोवेटेड रेलवे स्टेशन है और खास तौर पे जो वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन है जो कि जलंधर से चलेगी वाराणसी तक और रविदासिया कम्युनिटी है उनको बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि अक्सर उनकी जन्म तिथि पे इस तरह की ट्रेनें स्पेशल ट्रेन चलती हैं लेकिन अब एक मॉडर्न और रेगुलर ट्रेन चलेगी। कई लोग उनके विजिट को देख रहे हैं पंजाब के विधानसभा चुनाव से लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे हरियाणा में हो पंजाब में हो एक बड़ा उत्साह है और एक बड़ी रैली के तहत यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
1: 12:12 रिपोर्टर में बात करते हैं राहुल गांधी के देहरादून में होने वाले कार्यक्रम की। छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान कल एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हो गई। कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाने का काम चल रहा था तभी लोहे का एक गाटर कांग्रेस कार्यकर्ता अमर मेहता के सिर पर गिर गया। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद निजी अस्पताल ले जाया गया, उन्हें भर्ती कराया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। आज पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
9: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आज उत्तराखंड दौरा है और देहरादून में आज शाम को छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों को और युवाओं को संबोधित करेंगे। पेपर लीक या फिर भर्ती घोटाले को लेकर आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि उत्तराखंड जो है पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुका है लेकिन तैयारियों से एक दिन पहले जिस तरह से जोर शोर से तैयारी चल रही थी वो अचानक पूरा माहौल जो है मातम में बदल गया और वजह थी कांग्रेस के कार्यकर्ता अमर मेहता की मौत। दरअसल अमर मेहता जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तैयारियों का जायजा लेने के लिए तो हैंगर से एक रॉड करीब 7:45 के आसपास उनके सर पर गिरी और वहां पर वो लहूलुहान हो गए, बेहोश हो गए और उन्हें सीधे अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और इस खबर के बाद पूरे कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी। हर कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी सीधे कार्यक्रम स्थल से सीएमआई अस्पताल जमा हो गए। उसके बाद शव को जो है घर ले जाया गया और आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं, क्या वो अमर मेहता के घर जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं या फिर छात्रों के गूंज कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उनको मेंशन करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनको जरूर एक शहीद के रूप में देख रही है।
1: और अब 12:12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो झारखंड से है। झारखंड की रांची में संघ मुख्यालय पर बमबारी के आरोपियों के घर पर एनआईए छापेमारी कर रही है। लोहरदगा में भी छापा मारा गया। लोहरदगा निवासी अमन अंसारी के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी लेकिन उसका घर अंदर से बंद था। घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया लेकिन बावजूद जब दरवाजा नहीं खोला गया तो एनआईए ने स्थानीय पुलिस की मदद से क्रेन मंगवाई और फिर क्रेन से घर के अंदर घुसी।
10: आरएसएस मुख्यालय जो रांची में स्थित है उस पर 16 जून को पेट्रोल बम फेंके गए थे और 3 अक्यूज्ड को पकड़ा गया था, अमन अंसारी, सैफ अंसारी और सायन सुजान। लगातार इसमें एनआईए की एक्शन तेज हो गई है और गुरुवार को 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई, एक पथलकुदवा में जो सायन सुजान का जो इलाका है वहां और इसके अलावा अमन और सैफ अंसारी के 5 ठिकानों पर छापेमारी लोहरदगा में की गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आरोपी था उसका घर बंद था, ऐसे में एनआईए को लिफ्ट मंगवाना पड़ा, क्रेन मंगवाना पड़ा। क्रेन के सहारे पुलिस जो है ऊपर चढ़ती है यानी टेरेस पे चढ़ती है, टेरेस से अंदर कूद के जाती है और वहां से जो सैल्यूट्स रहते हैं यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो मेंबर्स हैं वो घर में घुसते हैं। वहां इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है परिजनों का मोबाइल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट जो है उसको खंगाले जाते हैं और जांच के लिहाज से जो उसमें जो है इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स उस पर नजर रखी जा रही है लगातार। इसके अलावा जो आरोपी है उसके वकील के घर पे भी इसी तरह से जो है पूछताछ होती है, छापेमारी होती है, तो इस मामले में एक्शन तेज हो गया है।
1: और अब अगली रिपोर्ट है दिल्ली से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एनडीए नेताओं की बैठक चल रही है और खबर यह है कि मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर यह चर्चा हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं और भी एनडीए घटक दल के कई नेता मौजूद हैं।
11: से वो महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको सरकार और एनडीए शुरुआत के अंदर यानी कि मानसून सत्र की शुरुआत में लेके आएगी? कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिनमें दो तिहाई मेजोरिटी की जरूरत होगी? इन सब बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर एनडीए की एक बहुत अहम बैठक है। इस बैठक को चेयर कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। क्या वो आंकड़ा इस समय एनडीए के खेमे में है, और ऐसे कौन से बिल हैं, ऐसे कौन से क्लॉजेज हैं जिनके साथ विपक्ष के साथ बैठकर सलाह मशवरा करने की जरूरत है? इन सब अहम मुद्दों के ऊपर एक बहुत अहम बैठक है। किस तरीके से मानसून सत्र के अंदर कार्रवाई चालू होगी, और क्या एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करने की जरूरत है विपक्षी पार्टियों को, क्या विपक्षी पार्टियों को अपने खेमे में लेके आने की जरूरत है? इन सब चीजों के ऊपर बहुत अहम बैठक। मानसून सत्र की शुरुआत होगी मंडे से।
1: तो जब सरकार ने परिसीमन बिल को पास कराने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, दो तिहाई बहुमत नहीं होने की वजह से पिछले सत्र में यह विधेयक गिर गया था, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं, कई सांसदों ने पाला बदला है। इस बिल को लेकर क्या हलचल है, क्या समीकरण बन रहे हैं, बता रहे हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा।
12: सरकार की कोशिश है कि संसद के इस मानसून सत्र के दौरान जो है वो परिसीमन बिल को संसद के दोनों सत्रों से पास कराया जाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू हो जाए। इसके लिए सरकार जो है तमाम कोशिशें कर रही है, हर छोटे विपक्षी दलों से बातचीत कर रही है, और इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए तो सरकार की ये कोशिश है कि जो पिछली बार दो तिहाई बहुमत नहीं हो पाया था लोकसभा में, उसको इस बार पार पाया जाए। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो सरकार हर कदम उठा भी रही है, छोटी पार्टियों से बातचीत भी कर रही है, और सरकार की ये कोशिश है कि साम दाम दंड भेद की नीति के तहत भी इस बिल को संसद के इस सत्र से पास कराकर कानूनी अमली जामा पहना दिया जाए।
1: और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट में यूपी बीजेपी ने अंबेडकर को चुना है। पश्चिमी यूपी के दलित वोटर को लुभाने के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत पश्चिमी यूपी में अलग अलग बैठकें की जाएंगी।
13: उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, तो अब बीजेपी का संगठन पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकें करके अनुसूचित जाति यानी दलित वोट बैंक पर फोकस कर रहा है। इसी क्रम में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अलग अलग क्षेत्र में मुरादाबाद से लेकर बरेली तक ये बैठकें शुरू की, जिसमें अंबेडकर पर फोकस करने को कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की बात कही कि एक उनको उच्च स्थान बीजेपी ने दिया है, ये जन जन तक पहुंचाना है। यानी कि इस बार अब कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दलित वोट बैंक पर फोकस करती बीजेपी नजर आ रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
1: और आइए अब आपके लिए चलते हैं जींद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं।
14: धन्यवाद भाई, आप बढ़िया चित्र बना करके लाए हो, धन्यवाद आपका। उधर एक छोटी बच्ची भी कुछ लेकर के आई है, जरा कलेक्ट कर लीजिए। इधर भी दो सज्जन दिख रहे हैं। और फिर आराम से बैठ जाइए सब लोग। आपके प्यार के लिए, आपकी इस कला साधना के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जी। साथियों, जिंदगी इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं है, यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती है। शक्तिपीठ इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद इस शहर पर बना रहता है। और मेरे लिए तो जिंद आना पुरानी यादों का जरोखा खोलने जैसा है। मैं यहां बैठे बैठे कई चेहरे देख रहा था, पुराने सारे परिचित चेहरे, बहुत लोग होंगे जो क्लेम करते होंगे कि मैं उनके स्कूटर पर जींद में आया करता था। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था, फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। मुर्रा भैंस का दूध, दही और घी, जिंद का देसी बुरा और यहां का गेवर, ये वो यादें हैं जो जिंद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंदगी जिंद के तेवर बदल गए हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा, तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जींद और हरियाणा के लोगों की मैं एक और बात के लिए सराहना करूंगा। स्वच्छता से स्वागत पहल को आपने जिस गंभीरता से लिया है, जिस तरह मेरे आने से पहले यहां के लोग स्वच्छता अभियान में नए सिरे से नई ऊर्जा से जुटे हैं, वो दिल खुश कर देने वाला है। और मैं देख रहा था पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है उसकी भारी चर्चा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जींद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं जींद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सिफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जींद के लोग तय कर ले, हरियाणा के लोग तय कर ले कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जींद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कर लीजिए। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ये हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे, 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी, और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे, और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताना चाहता हूं। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है, इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी इस ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो बड़े बदलाव हुए इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है, और जिस समुद्री रास्ते से हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है, ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। आप सोचिए, भारतीय रेल के बिजलीकरण की शुरुआत, ये सुनकर के भी ये चौंक जाएंगे आप लोग, बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, यानी करीब 100 साल पहले। 1925 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था उसका सिर्फ 30% एक तिहाई से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 70% क्षेत्र डीजल से चलता था और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ, तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी, भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। साथियों, रेल हो, रोड हो, कनेक्टिविटी का ऐसा काम सुविधा भी देता है और विकास की गति भी कई गुना बढ़ा देता है। आज जिंद जो इतने सारे हाईवे से जुड़ रहा है, अभी इस मन से भी 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा वाले हिस्से का लोकार्पण हुआ है, जींद गोहाना नेशनल हाईवे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है, इसके अलावा अंबाला काला आम फोर लेन से भी हरियाणा और हिमाचल दोनों राज्यों के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, अब जींद देश का ऐसा जिला बन गया है जो 5-5 नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। ऐसी कनेक्टिविटी से यहां के किसानों और पशुपालकों की उपज को बड़ी मंडियों तक पहुंचाना आसान और सस्ता होगा। इससे उद्योगों को बल मिलेगा, पर्यटन को पंख लगेंगे और इससे बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से लौटा हूं। वहां भारत ने अनेक तरह के समझौते किए जिनकी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन एक विषय ऐसा है जिस पर उतनी बात नहीं हुई। ये विषय मेरे देश के और विशेषकर हरियाणा के युवाओं से जुड़ा हुआ है और वह विषय है खेलकूद, स्पोर्ट्स। साथियों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहां की सरकारों से स्पोर्ट्स को लेकर मेरी व्यापक चर्चा हुई है। इन दोनों देशों के साथ मिलकर आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग ऐसे अनेक मामलों में बहुत सारा काम साथ मिलकर करने वाले हैं। इससे हरियाणा के युवाओं को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, आज भारत में स्पोर्ट्स को फिटनेस और रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेलो भारत नीति भी बनाई है। खेलो इंडिया अभियान से लेकर टॉप स्कीम तक आज खिलाड़ियों को अभूतपूर्व सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें हजारों रुपयों की आर्थिक मदद दी जा रही है। यहां हरियाणा में भी भाजपा सरकार खेल और खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। साथियों, आज एक कार्यक्रम भले हाइड्रोजन ट्रेन का है, दूसरी विकास परियोजनाओं का है, लेकिन मैं आज यहां के नौजवानों से एक और बात भी कहने आया हूं। आप सभी जानते हैं, साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है, 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी। और जो 36 के ओलंपिक को देखना चाहते हैं, आज जो 5 से 12 15 की उम्र के बच्चे हैं ना, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और एक बात और भी बता दूं, आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होने वाली है, मैं हरियाणा के साथियों से कहूंगा कि आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे। साथियों, हरियाणा की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहां के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है, वो इतना आसान नहीं था, लेकिन ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। साथियों, यहां के किसानों का हित भी हमारी प्राथमिकता में है। जींद की मंडी तो हरियाणा की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। डबल इंजन की भाजपा सरकार के कारण हरियाणा के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से हरियाणा के किसानों को करीब 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें जिंद के हमारे किसानों को भी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, हमारा देश संस्कार और संस्कृति का देश है और ये क्षेत्र तो इस समृद्ध विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। ये जिंद की धरती है जहां महाराजा रणजीत सिंह का गौरव भी है और पांडवों की आस्था भी है। पांडु पिंडारा और रामराय जैसे पवित्र तीर्थ आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आस्था के केंद्र है। साथियों, आस्था और अध्यात्म की यही विरासत है जिसे आज का भारत सहजता भी है और अब अगली पीढ़ी तक पूरे मान के साथ पहुंचाता भी है। इसी भाव के साथ आज कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। हरियाणा का ये नया संग्रहालय भारत की महान गुरु परंपरा को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। साथियों, हरियाणा अब तेज विकास के पथ पर दौड़ रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, ये दो ऐसे पहिए हैं जो हरियाणा को सशक्त कर रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उनसे हरियाणा के विकास को और गति मिलेगी और हरियाणा का ये तेज विकास विकसित भारत के सफर को और ऊर्जावान करेगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: से पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। हाइड्रोजन ट्रेन की जो सौगात दी है उसकी शुभकामनाएं भी देशवासियों को दी है और ये भी बताया कि ये तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में और भी कई हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी, इनका विस्तार होगा और देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले जैसा होता तो सब ठप हो जाता, लेकिन अब देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के शामली। सीएम योगी अपनी बात रख रहे हैं
15: और शामली एक जंक्शन बनने जा रहा है महत्वपूर्ण, जो चारों ओर से जो एक्सप्रेस हाईवे के महत्वपूर्ण पड़ाव का केंद्र होगा। और इसीलिए आज यहां पे कुछ योजनाओं को हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं। ये योजनाएं जो शामली के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इन योजनाओं में यहां पर अभी हम लोगों ने पीएससी की बटालियन का काम तेजी के साथ किया है। शामली में यहां पर हम लोग पुलिस लाइन के निर्माण के कार्य को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सभी यहां पर कार्य किए जा रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमारा शामली एनसीआर का पार्ट हो गया है, यानी दिल्ली के अंदर जो विकास होगा अब शामली को कोई उससे वंचित नहीं कर सकता है। यहां पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों, 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज हम सब कार्य कर रहे हैं।

0: का शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां संपन्न हो रहा है। अन्य तमाम महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का भी सुदृढ़ीकरण यहां पे किया जा रहा है। केराना खुरगान सुनेहटी बरवावी मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का नगर पंचायत झिंझाना और नगर पंचायत एलम में यहां पर स्टडी सेंटर निर्माण के कार्य, नवीन कलेक्ट्रेट से सामली भैंसवाल मार्ग तक संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास।
1: तो उत्तर प्रदेश के शामली से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां कई सौगातें शामली की जनता को मिली। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: Sokudo.
7: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
8: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
7: ओ, अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
9: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
10: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
9: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfacion.
10: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
11: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
10: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
11: Remember, around here, we use the F word.
10: Never the S word.
9: The S word, available now on TuneIn,
12: wherever you get your podcasts,
9: and on the S word YouTube channel.
13: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
14: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
13: छक्का?
14: सब कैशलेस हो गया है।
13: हाँ बोले ला भाई मेरा बैट।
14: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
15: चार्ज हुआ यार।
16: बैट किसका है?
17: टाटा AIG है तो भरोसा है।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
18: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
19: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी।

0: हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
1: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
0: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
3: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
0: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल है।
1: पीएम मोदी ने हरियाणा को दिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली ट्रेन का तोहफा। कहा, तेल संकट के बावजूद रफ्तार में है भारत के विकास की गाड़ी, अब पंजाब को देंगे हजारों करोड़ का गिफ्ट। मॉनसून सत्र से पहले सियासी लामबंदी तेज, राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक, दो लंबित विधेयक और पांच अहम बिल ला सकती है सरकार, कांग्रेस कर चुकी है विरोध का ऐलान। पश्चिमी यूपी से सीएम योगी की ललकार, माफिया को जेल या जहन्नुम में भेजने का वादा पूरा किया, शामली कैराना आने पर ही दिखती है नए भारत नए उत्तर प्रदेश की झलक, कई परियोजनाओं को हरी झंडी। गुजरात से पकड़े गए जैश के पांच आतंकियों से हुआ बड़ा खुलासा, देश भर में थी धमाके की तैयारी, बम बनाकर कर चुके थे टेस्ट ब्लास्ट, मसूद अजहर के बहावलपुर हेडक्वार्टर से सीधा कनेक्शन। वक्त से पहले हटाए गए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, अनुराग सिंह बने नए सीपी, 1994 बैच के हैं आईपीएस, ऑर्डर आते ही संभाला चार्ज।

0: नमस्कार, मैं हूं अंशुली इस्तवाल। आज तक मैं आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है जींद में। सीधा वहीं का रुख करते हैं और आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जो दौरे पर हैं वो हरियाणा में और उसके बाद पंजाब भी जाएंगे। आज हरियाणा में जींद से उन्होंने एक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद अब उन्हें देख रहे हैं आप, इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया जहां उन्होंने कई मुद्दों पर लोगों को वहां पर संबोधित किया। उन्होंने बात की कि किस तरीके से नई रेल जो उन्होंने शुरू की है, नई ट्रेन हाइड्रोजन की जो शुरू की है, वो ऊर्जा संकट के बीच अहम हो जाती है। इसके अलावा ये तस्वीरें जो सीधी लेकर आ रहे हैं वो जींद की है जहां प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं और उन्हें देखने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोगों का हुजूम पहुंचा है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा और पंजाब, इन दो राज्यों के दौरे पर हैं और अलग अलग परियोजनाओं को वो समर्पित कर रहे हैं। लोगों को शिलान्यास हैं, कुछ लोकार्पण हैं जो किए जा रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम हुआ वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने हरी झंडी दिखाई एक ट्रेन को जो जींद से सोनीपत जाएगी। लेकिन अहम यह है कि ये क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ट्रेन है, यानी कि इसकी जो ऊर्जा है उसमें कोई एमिशन नहीं होगा, जीरो एमिशन की ये ट्रेन है। ये हाइड्रोजन से चलती है, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन से। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। पीयूष, तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की भी आ रही हैं, भारी भीड़ उमड़ी है उनका जो जो रास्ता जहां जहां से निकल रहा है। जाहिर तौर पर लोग उनको वहां देखने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद वो जाएंगे पंजाब भी। क्यों अहम हो जाता है उनका ये दौरा और साथ में उनके द्वारा ये जो परियोजनाएं घोषित की जा रही हैं वो किस लिए ये पूरा अगर देखा जाए अहम हो जाता है?
1: जी बिल्कुल, बहुत अहम ये दौरा है अब इन तीनों क्षेत्रों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त जींद से निकल रहे हैं और चंडीगढ़ पहुंचेंगे और जींद में उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ये डीजल ट्रेनों की तुलना में ये ट्रेन टेल पाइप उत्सर्जन को खत्म करती है और पोल्यूशन को खत्म करती है और बहुत महत्वपूर्ण है भारत की जो जो अचीवमेंट है उसके हिसाब से। अब जींद से निकलने के बाद प्रधानमंत्री हरियाणा में जो है उन्होंने लगभग 12,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इसी के साथ साथ राष्ट्र को इस आधारशिला को समर्पित भी कर दिया। अब क्या होगा कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो अब कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रॉक रेलवे ट्रैक है उसको वो देश को समर्पित करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जब वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे तो वहां पर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क, इन सभी सेक्टर से जुड़े लगभग 4700 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, साथ साथ आधारशिला भी पीएम रखने जा रहे हैं।
0: जी शुक्रिया पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए। और अब नॉन स्टॉप 100।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, 2 मेडिकल कॉलेजों समेत 8 प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। 10 कोच वाली ये ट्रेन जींद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशन के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया है। पीएम मोदी ने जनसभा को भी किया संबोधित। बोले, जब भी देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत का जिक्र होगा तब जींद सोनीपत और हरियाणा का नाम भी गर्व से लिया जाएगा। जींद दौरे के बाद चंडीगढ़ पीजीआई जाएंगे प्रधानमंत्री। 1250 करोड़ की हेल्थ केयर से जुड़ी अहम सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी चंडीगढ़ में भी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरो साइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। हरियाणा में सड़क रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास। जलंधर में आज बीजेपी की रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बोले, पंजाब को विकास और ईज ऑफ लिविंग का भरोसा। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। संत रविदास एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी का शामली, बिजनौर और गाजियाबाद दौरा। 2452 करोड़ से की गई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। जनसभा को भी किया संबोधित। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव और मनीष यादव की 7 दिन की कस्टडी मांगी। आदेश के बाद आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी शुरू। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एसएसएफ के 1155 पद हुए स्थायी। चढ़ावा चोरी के बाद हुआ फैसला। वेतनमान और भत्ते भी निर्धारित किए गए। संबल के मुकरबपुर गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध इमामबाड़े और मजार पर बुलडोजर एक्शन। 312 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बने अतिक्रमण हटाए गए। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान का अखिलेश यादव और योगी सरकार पर हमला। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगाए आरोप। कहा, मुसलमानों पर अत्याचार की शुरुआत 2013 मुजफ्फरनगर दंगों से हुई, अब अखिलेश हिंदुत्व की राह अपना रहे हैं। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज की। जिलों का दौरा और संगठन की समीक्षा। बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता पर जोर। बीजेपी संगठन ने अंबेडकर सम्मान और सामाजिक समीकरणों को बनाया चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा। पश्चिमी यूपी में दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति। बीएसपी ने 2027 चुनाव से पहले मायावती सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की कवायद शुरू की। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अभियान की शुरुआत। एसपी 2027 चुनाव में भाजपा के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को बनाएगी मुद्दा। पीडीए अत्याचार वाली किताब से करेगी प्रचार। बीजेपी नेता पूजा पाल ने अखिलेश यादव के तंज पर दिया जवाब। बीजेपी में जाने को बताया पाल समाज के लिए अवसरों की पार्टी। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जैश ए मोहम्मद नेटवर्क से जुड़े 5 और आरोपी गिरफ्तार। पहले पकड़े गए 8 आतंकियों से पूछताछ के बाद अलग अलग जिलों से हुई गिरफ्तारी। जैश मॉड्यूल का खुलासा। देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप। एटीएस के मुताबिक आरोपी पिछले 6 महीने से एक दूसरे के संपर्क में। बम बनाने और ट्रायल ब्लास्ट करने की बात आई सामने। गुजरात में ही किए गए परीक्षण। जांच में खुलासा, आरोपियों ने कई बार सुनसान इलाकों में विस्फोट की कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा। जैश के 3 संदिग्ध सीधे टॉप लीडरशिप से संपर्क में थे। जांच एजेंसियों के अनुसार तीनों बहावलपुर स्थित जैश हेडक्वार्टर से जुड़े थे। एटीएस जांच में सामने आया जैश का नए सिरे से नेटवर्क खड़ा करने का प्रयास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संगठन की गतिविधियों को लेकर एजेंसियां कर रही है कार्रवाई। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का आज देहरादून मार्च। छात्रों की गूंज रैली में होंगे शामिल। बोले, युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिले अरविंद केजरीवाल। वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की अपील। संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, युवाओं आंदोलन और सोनम वांगचुक की बात सुने वरना 3 साल बाद आपका वही हाल होगा जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव, सोनम वांगचुक से मिलकर किया आंदोलन का समर्थन। आज लगातार छठी रात भी जारी अमेरिकी कार्रवाई, ईरान पर नए हवाई हमलों की शुरुआत, सेंटकॉम ने किया दावा। ईरान के कई शहरों पर अमेरिकी हमले जारी, अहवाज शहर में धमाके से हड़कंप। रॉयटर्स के हवाले से खबर, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया। अमेरिकी हमले में बंदर खामीर का पुल भी निशाना बना, रॉयटर्स के हवाले से खबर। साथ ही ईरान अमेरिका कैदी अदला बदली के दावों को प्रेस टीवी ने किया खारिज, जासूसों की रिहाई से भी किया इनकार। व्हाइट हाउस का नया बयान, ईरान अब भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है, समझौता करना चाहता है। व्हाइट हाउस का दावा, ईरान डील की इच्छा रखता है लेकिन ईरान ने हॉर्मुज समझौते का किया उल्लंघन। कुवैत की सेना का दावा, 32 दुश्मन ड्रोन मार गिराए, ईरानी हमले में कई अहम ठिकाने बने निशाना। कुवैत के हवाई क्षेत्र में 32 ड्रोन इंटरसेप्ट होने से मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा, कोई जनहानि नहीं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच हॉर्मुज में शिपिंग गतिविधियां बेहद कम, सामान्य स्तर के मुकाबले सिर्फ 10% जहाजों की आवाजाही। गया में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला सुरक्षित। जामनगर नगर निगम फिर विवादों में, अधिकारी का टेबल पर पैर रखे वीडियो वायरल, जामनगर महानगर पालिका अधिकारी के आचरण पर नागरिकों ने मांगी जांच। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में 150 मीटर तक घसीटा गया यात्री, बेटी के लिए लेने गया था कोल्ड ड्रिंक। जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम, सरिये रस्सी से बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश की। मुंबई में बड़ा हादसा, एक सोसाइटी में 11वें फ्लोर से गिरी क्रेन, एक की मौत, 15 से अधिक गाड़ियां चकनाचूर। गुरुग्राम में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस के हाथे चढ़े 13 बांग्लादेशी नागरिक, उन्हें किया गया डिपोर्ट, चेकिंग अभियान जारी। मुजफ्फरपुर में 2000 रुपए के लिए भाई की हत्या, साथ बैठकर नशा करने के बाद फिर उतार दिया मौत के घाट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों की बड़ी मुश्किलें, नदियों में उफान के बाद प्रशासन अलर्ट, लोगों से भी नदी किनारे से दूर रहने की अपील। यूपी के हाथरस में खून की जांच कराने गई किशोरी से पैथोलॉजी में दुष्कर्म, किशोरी को बेहोश कर दिया गया और घटना को अंजाम दिया गया, आरोपी गिरफ्तार। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 18 सिम और 17 एटीएम कार्ड भी बरामद। भदोही में पत्नी की बेरहमी से हत्या, चार्जर केबल से गला घोटकर पति ने ली जान, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वारदात में शामिल उपकरण भी जब्त। राजस्थान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट ने एक्शन पर रोक वाली याचिका कर दी थी खारिज। लखनऊ के नर्सरी स्कूल में 5 साल के छात्र से मारपीट, क्लास मॉनिटर पर थप्पड़ घूंसे मारने का आरोप, शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपी छात्र को स्कूल से निकाला गया। लखनऊ के जीएमयू ट्रॉमा सेंटर में शरीर के आर पार घुसी 4 सरियों के साथ पहुंचे मजदूर का सफल ऑपरेशन, फेफड़े समेत कई अंगों की मरम्मत कर 8 घंटे चला ऑपरेशन। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक से कुचलकर 3 लोगों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने वाराणसी सोनभद्र मार्ग जाम कर किया प्रदर्शन। हरदोई में 8 माह के मासूम की एम्बुलेंस से लखनऊ ले जाते समय मौत, परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप, पिता का दावा ऑक्सीजन देने के तरीके से बिगड़ी हालत। गाजियाबाद में पुलिस बूथ के सामने शख्स की मौत मामले में 2 महिला पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, जांच जारी, वायरल वीडियो और सीसीटीवी जांच के बाद कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती से नाराज सैकड़ों लोगों का हंगामा, चौक पर जाम लगाकर नारेबाजी, कई दिनों से घंटों बिजली गुल होने से भड़के लोग। लखनऊ साइबर क्राइम सेल और क्राइम ब्रांच ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, छापेमारी में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की जांच शुरू की। बांदा में महिलाओं की दबंगई, घर से घसीट कर महिला की सड़क पर बेरहमी से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पीड़िता ने एसपी से शिकायत की, एफआईआर के आदेश। गोरखपुर तहसील में डंडा लेकर पहुंची महिला, सरकारी रास्ते की पैमाइश की मांग को लेकर किया हंगामा, एसडीएम ने समझाकर शांत कराया, घटना का वीडियो वायरल। सहारनपुर डीसी ऑफिस के परिसर में बने 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने के आदेश, बेदखली के साथ करीब 6 करोड़ रुपए जुर्माना वसूली के निर्देश। नूह के फिरोजपुर झिरका में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़, आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली। रावली डैम इलाके में हुई कार्रवाई के बाद घायल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में महिला ने खड़े खड़े दिया बच्चे को जन्म, लापरवाही का आरोप। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। नागपुर में फिल्मी डायलॉग पर रील बनाने का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने वायरल रील की जांच शुरू की, मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बड़ी चिंता, प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी, नदी के जल स्तर की लगातार निगरानी। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद यात्रा मार्ग बंद, आवाजाही प्रभावित, प्रशासन ने रास्ता खोलने के लिए काम शुरू किया, यात्रियों को सतर्क रहने की अपील। राजस्थान के बाड़मेर में मैथ की कॉपी नहीं लाने पर चौथी क्लास के छात्र के शिक्षक ने बुरी तरह पिटाई की, बेहोश होने के पर अस्पताल में करवाया भर्ती। धनबाद में नवोदय विद्यालय में रैगिंग जैसी वारदात, 10वीं के छात्र को सहपाठियों ने बांधकर पीटा, जांच के लिए कमेटी गठित कर कार्रवाई का आश्वासन। जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्विस राइफल छीनने की कोशिश के बाद गोलीबारी, एक की मौत और 4 जवान घायल, हालांकि पुलिस ने इस घटना के आतंकी घटना होने की पुष्टि नहीं की। इंटरनेट बंद करने के साथ एहतियात के तौर पर भद्रवाह में सीआरपीएफ और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं, तलाशी अभियान भी शुरू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित। प्रयागराज में यमुना में प्रेमी ने प्रेमिका संग हाथ पकड़कर लगाई छलांग, नए यमुना ब्रिज से कूदने का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चलती बस पर गिरा बड़ा पेड़, चालक की सूझबूझ से 40 यात्रियों की जान बची। हावड़ा में 16 साल की छात्रा की चाकू मारकर हत्या, पीछा कर रहे आरोपी ने बीच सड़क किया हमला, सीसीटीवी आया सामने। सूरत एयरपोर्ट के रनवे पर सांप दिखने का वीडियो वायरल, एयरपोर्ट डायरेक्टर बोले एआई जनरेटेड भी हो सकता है। अलवर में वकील के घर निकला 8 फीट लंबा कोबरा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के महाराजगंज में जुगाड़ से चल रही स्कूली वैन सीज, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर चालक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझा कर उतारा नीचे। सिलक्यारा टनल में फिर हादसा, सुरंग के अंदर शॉर्टक्रीट गिरने से 22 वर्षीय मजदूर की मौत। हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कें और रिहायशी इलाकों में भरा पानी, आवागमन के लिए नाव के सहारे हैं लोग। महाराष्ट्र के मालशेज घाट में अचानक चली तेज हवा, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। मालशेज घाट में तेज हवाओं के झोंके से कई बाइक सवारों ने वाहनों पर खोया नियंत्रण और एक एक कर सड़क पर गिरने लगे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तमिलनाडु में खरीफ सीजन की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कृष्णगिरी जलाशय परियोजना के बांध से 151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा वार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले सोने वाले लोग थे ये, याद कीजिए उन्होंने कहा कि ये सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तो तैयार होते थे। उनका कहना है कि 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी, ये दावा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। उनका दावा है कि अब यूपी बदल चुका है।
3: बदल रही है तो उसका कारण है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मेहनत करते हैं तो परिणाम आते हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थे, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है, अब यूपी प्रातः 4 बजे से लेकर के उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और जो चरेवेती चरेवेती की मंत्र के साथ निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली सरकार है और डबल इंजन सरकार का यही लाभ आज इस गति को बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर बहनों और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
2: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: टेक इट इजी विद सॉफ्ट हिट्स। सॉफ्ट हिट्स ब्रिंग्स टुगेदर रिलैक्सिंग पॉप फेवरेट्स फ्रॉम द 70s, 80s एंड 90s। फैमिलियर सॉन्ग्स, इजी मेलोडीज एंड अ साउंड दैट लेट्स यू स्लो डाउन, परफेक्ट फॉर स्टेपिंग बैक एंड कैचिंग योर ब्रेथ। एक्सप्लोर द न्यू स्टिंगरे म्यूजिक कलेक्शन विद स्टेशंस लाइक दिस। Just search Soft Hits to start listening now. Time after time.
2: Sawari.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
13: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
16: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
17: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
16: Vimal, bolo zubaan kesri.
18: Uttar Pradesh chunav ka shankhnaad. और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
19: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
18: हैट्रिक का दावा।
19: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
18: विश्वास पूरा।
19: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश इस संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
18: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट जारी। 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया क्वालिफाई। पंजाब और हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका मेडिकल के छात्रों को काफी इंतजार था। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11 लाख 21 हजार छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया। बात करें परीक्षा के टॉप स्कोरर्स में 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार परीक्षा दी थी। वहीं क्वालिफाई करने वाले कुल स्टूडेंट्स में 58% से ज्यादा छात्राएं और 55.1% छात्र हैं। पेपर लीक होने के बाद नीट परीक्षा को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया। वहीं अगले साल यानी 2027 से नीट यूजी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

पीएम मोदी ने हरियाणा को दिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली ट्रेन का तोहफा। कहा, तेल संकट के बावजूद रफ्तार में है भारत के विकास की गाड़ी। अब पंजाब को देंगे हजारों करोड़ का गिफ्ट। मानसून सत्र से पहले सियासी लामबंदी तेज। राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक। दो लंबित विधेयक और 5 अहम बिल ला सकती है सरकार। कांग्रेस कर चुकी है विरोध का ऐलान। अखिलेश पर योगी का वार। कहा, 2017 से पहले दोपहर 12 बजे तक जागती थी सरकार। दंगई लगाते थे दरबार। अब बदल गया यूपी। माफिया को जेल या जहन्नुम पहुंचाने का पूरा किया संकल्प। गुजरात से पकड़े गए जैश के 5 आतंकियों से हुआ बड़ा खुलासा। देश भर में थी धमाके की तैयारी। बम बनाकर कर चुके थे टेस्ट ब्लास्ट। मसूद अजहर के बहावलपुर हेडक्वार्टर से सीधा कनेक्शन। वक्त से पहले हटाए गए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा। अनुराग सिंह बने नए सीपी। 1994 बैच के हैं आईपीएस। ऑर्डर आते ही संभाला चार्ज।

बुलेटिन के इस हिस्से में बात देश में आतंकी नेटवर्क पर बड़े एक्शन की। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 5 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। खबर आ रही है कि जांच में सामने आया है कि ये सभी देश में बड़े पैमाने पर धमाके का प्लान बना रहे थे और इसके लिए कई बार ट्रायल भी कर चुके थे। ट्रायल ब्लास्ट इन लोगों ने किए थे सुनसान इलाकों में।

0: देश में दहशत फैलाने की बारूदी साजिश का बड़ा खुलासा। देश के कई शहरों में धमाकों का प्लान। बम बनाए, कई बार धमाकों का ट्रायल किया। गुजरात समेत कई राज्यों में रेकी की। आतंक वाली प्लानिंग को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बड़ी वारदात से ठीक पहले इन आतंकियों पर एटीएस का शिकंजा कस गया। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इसी मॉड्यूल से जुड़े 8 आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे और इसके लिए सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश ले रहे थे।
1: रिप्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी। इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। इस एक इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक FIR UAPA और BNS के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें कि लगभग 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई, तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
0: अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को ATS गिरफ्तार कर चुकी है और जांच के बीच इन आतंकियों को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आईं। गिरफ्त में आए 3 आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि ये तीनों आतंकी जैश मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे। बड़ी बात यह है कि ये 3 संदिग्ध आतंकी बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर के संपर्क में थे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जैश के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद जैश फिर से खुद को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी कोशिश के तहत अपने मॉड्यूल के नेटवर्क को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
2: गुजरात ATS ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। हालांकि गुजरात ATS लंबे समय से इस पूरे मॉड्यूल पर गुप्त नजर बनाए हुए थी और इसी कोशिशों के तहत संदिग्ध आतंकियों पर ये कार्रवाई की गई है। बड़ी बात ये भी सामने आई कि ATS की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल भी किया। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। अब तक जैश के इस मॉड्यूल के 13 संदिग्ध आतंकी गुजरात ATS की गिरफ्त में हैं। इनकी निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी भी हो रही है। ATS जैश के नेटवर्क पर शिकंजा कसकर इसे ध्वस्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और बात POK में जारी विरोध प्रदर्शन की, जिसने पाकिस्तान की सरकार की को बुरी तरह से डरा दिया है। विरोध को दबाने के लिए अब पाकिस्तान आर्मी वाले प्लान पर अमल करने जा रहा है।
4: कई सालों से पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म झेल रहे POK में बगावत की आग बुलंद है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। पूरा मुजफ्फराबाद कफन या वतन के नारों से गूंज उठा है। पाकिस्तानी खौफ के खिलाफ अब आर पार के जंग का ऐलान हो चुका है, लिहाजा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर डरे हुए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान खौफ में हैं। बंदूकों के जोर पर इस विरोध के शोर को शांत करने की कोशिश है। आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को अब पीओके के हाथ से जाने का डर सता रहा है।
3: पाकिस्तान के जुल्म और सितम के खिलाफ पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उठ खड़ा हुआ है। पीओके में एक बार फिर पाकिस्तान हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है और लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना लगातार इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन आवाम किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए आर्मी के जवानों की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है।
4: न मुनीर के जनरलों की चल सकी, न पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब हो सकी। पीओके के लोगों की बगावत के आगे पाकिस्तान की हर तरकीब पूरी तरह फेल हो गई। पूरे पीओके में सबसे बड़ी बगावत की ऐसी लहर उठी है कि मानो एक बार फिर से पाकिस्तान के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुजफ्फराबाद से उठी विरोध की आंधी से पाकिस्तान की सत्ता का तख्त डोल रहा है। यही वजह है कि अब इस विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान अपनी आर्मी के सहारे साजिश का प्लान बना रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान दमन के जरिए पीओके के लोगों की बुलंद आवाज को दबाने की कोशिश में जुट गया है। खबर है कि पाकिस्तान ने पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए 8,000 अतिरिक्त रेंजर्स को तैनात किया है। ये रेंजर्स भारी हथियारों से लैस है, जिनका इस्तेमाल जंग के समय दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। मुजफ्फराबाद में गुस्से की आग के बीच पहले ही हिंसा की शुरुआत हो चुकी है। अब तक पीओके में पुलिस फायरिंग में 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन इस जुल्म के बाद भी जब पीओके के लोगों के जुबान से आजादी की गूंज नहीं जा रही है, तो अब फिर से आवाम के खिलाफ हिंसा की तैयारी शुरू हो गई है। और इसी योजना के तहत बड़ी संख्या में यहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी रेंजर्स का डर मुजफ्फराबाद में धधकी इस आग को शांत कर पाएगा, या पाकिस्तान का ये दांव इस बार उल्टा पड़ जाएगा।
5: ये इस पर क्रियादादे मौजूद हैं और उन क्रियादादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है। लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है। ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी।
4: जब किसी आवाम का सब्र टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्त ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं। पाकिस्तान में इतिहास का सबसे बड़ा आजादी का आंदोलन अपने चरम पर है, अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का डर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पीओके में लोगों के इकट्ठा होने और रैली करने पर कानूनी प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही मीडिया पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रदर्शनों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके कई सदस्य हिरासत में हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रदर्शनकारी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए।
5: एक आता है कहता है फलां नहीं मार रहा, दूसरा आता है कहता है फलां नहीं मार रहा, हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत आवाम से है और रियासत आवाम से है और आवाम ही रियासत है। सुपीरियर रियासत आवाम है, आवाम ताकत है और आवाम मानी जाएगी और अपनी होगी, अवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी। इंतखाबात का कहां तक मामला है।
4: ये सारे कदम साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इन विरोध प्रदर्शन से कितना डरा हुआ है। पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विरोध की इस आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी है। शहबाज सरकार के होश उड़ाने के लिए भीड़ पीओके की सड़कों पर उतरी है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को खुली चुनौती है, जिसे लेकर पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था खौफजदा है, क्योंकि पीओके की आवाम ने अब आजादी की पूरी तैयारी कर ली है। आज तक देरो।
3: और रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी अब एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट। एसआईटी अब जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल करेगी। सोमवार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और खबर यह भी है कि एसआईटी ने राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, अब ये जो अंतरिम रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने जाएगी, तो मांगे हुए समय का क्या होगा और क्या रिपोर्ट तैयार है दाखिल करने के लिए?
6: बिल्कुल अंजलि, देखिए अभी तक ये इंतजार था कि राम मंदिर के पूरे मामले पर जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंपी जाएगी, और कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि एसएस होम के थ्रू चीफ मिनिस्टर तक जाएगी, लेकिन अब ये सीधा सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक उसी रिपोर्ट को फाइनल दर्ज देने के लिए समय कुछ अतिरिक्त भी मांगा गया है कि मंडे तक ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाए, जिससे कि जो भी इसमें दोषी हैं या जो भी रिपोर्ट्स में तैयार किया जाएगा वो सारी चीजें उठाकर अब सीधे कोर्ट को जाएंगी। तो ये तो साफ हो गया है कि जो इंटरिम रिपोर्ट है यानी कि जो बनाई है ये फाइनल रिपोर्ट बनेगी, वो अब सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तय करेगा। स्टेट गवर्नमेंट पहले इसको करने वाला था, एसएस होम के पास पहले गई थी इनिशियल रिपोर्ट, और जिसके बाद से ही कई गिरफ्तारी और कई मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन अब ये तो साफ हो गया है कि अब ये जो फाइनल रिपोर्ट है एक तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और मंडे को इसका समय भी लिया गया है एसआईटी के द्वारा, और एसआईटी इस मंडे को पूरी इसको जो पूरी रिपोर्ट है उसको सबमिट करेगी, जिसमें जिस पे भी चार्ज लगे हैं वो सारे एक एक डिटेल के साथ में। इसी के लिए जो समय है एसआईटी ने वो भी मांगा है कि मंडे तक इसको हमें सबमिट करना है, और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको प्रोसीड भी करा दिया है। यानी कि अब ये साफ हो गया है कि जो भी राम मंदिर के दोषी हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इसमें अनियमितताएं हुई हैं, उन सभी की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहीं से फैसला होगा। अंजलि, तो ये कई बड़ी खबर है, और इसी को लेकर क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि ये उत्तर प्रदेश के पास आएगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको खोलेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब ये सीधे टाइम लेने के बाद इसको अब आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। अंजलि
3: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और खबर पाकिस्तान की। पाकिस्तान की डरी सरकार पीओके के विरोध प्रदर्शन को हर हाल में दबाने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस, आर्मी, सबका सहारा लिया जा रहा है, लेकिन मुजफ्फराबाद में जिस तरह लोगों का गुस्सा दिखा है उससे साफ है कि इस बार हालात पर काबू पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा।
4: पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विरोध की आवाज उनकी नींद उड़ाने वाली है। शहबाज सरकार के होश उड़ाने के लिए भीड़ पीओजेके की सड़कों पर उतरी है। ये नारेबाजी पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को खुली चुनौती है। पीओजेके के लोगों में जबरदस्त रोष है, और वो पाकिस्तान के जुल्म को अब सहने वाले नहीं। जो हुआ सो हुआ, पीओजेके अब कह रहा है कि बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे पाकिस्तानी सेना की क्रूरता, नहीं बर्दाश्त करेंगे बेहिसाब जुल्म, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पीओजेके की माने इस्लामाबाद मान नहीं लेता। सवाल है कि आखिर कब तक, क्यों पीओजेके पर अवैध तरीके से कब्जा कर पाकिस्तान ऐसे जुल्म ढा रहा है? क्या अपना हक मांगना इनका गुनाह है? क्या अपनी आजादी की आवाज उठाना गुनाह है? क्या बेहतर जिंदगी की खातिर सड़कों पर उतरना गुनाह है? तमाम सवालों के साथ पूरा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर अपने हौसलों से नापाक हुकूमतें की चूलें हिला रहा है, चुनौती दे रहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी।
5: फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म। भाई होती है और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, एक वो दानिश जो स्कूल में है सब झूठ है, मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है, वो दानिश अक्सर कहता है मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है कि बारिश के मौसम में ज्यादा पहाड़ी इलाकों में गर्मी के मौसम में पहाड़ी मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और पहाड़ी इलाकों में सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है, उसके अलावा कोई सच नहीं है। असल सच आप पढ़ रहे हैं।
4: दरअसल पीओजेके के लोगों ने ऐलान किया है कि उनकी 38 सूत्री मांगे मानी जाए, अगर नहीं मानी गई तो पाकिस्तानी असेंबली से आजादी का ऐलान कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में इस आंदोलन को दबाने की हर संभव कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी सेना और सरकार अब जुल्म ज्यादती पर उतर आई है, लेकिन इस बार पीओके की अवाम ने आर पार की तैयारी की है, फैसले के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो 22 जुलाई से उनका मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च फिर शुरू हो जाएगा और ये पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ने वाला मौका होगा। आज तक देर।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारी आक्रोश है, स्थिति दिन ब दिन बेकाबू हो रही है। उधर बलूचिस्तान में भी स्थिति पाकिस्तान के हाथ से निकलती जा रही है। एक बार फिर बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है, जिसमें 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।
4: पाकिस्तान इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर तरफ से संकट उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक तरफ पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है, सेना की तैनाती के बाद भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोच आर्मी के हमले पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मस्तूंग जिले के खटकोचा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा हमला किया। संगठन के मुताबिक इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। बीएलए की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसकी फतेह स्क्वाड ने अंजाम दिया, जिसके निशाने पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही बसें, उनके सुरक्षा स्क्वाड और बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां थी। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हमले तेज कर रहा है। इससे पहले बीएलए की ओर से 1 से 14 जुलाई के बीच 48 हमलों का दावा किया गया था, जिसमें 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इन हमलों के बीच पाकिस्तान की मुश्किल ये भी है कि बलूचिस्तान में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण पानी का गंभीर संकट और लोगों की गुमशुदगी है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए सबसे संवेदनशील इलाकों में रहा है, लेकिन हाल के दिनों में हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस बीच बीएलए के बढ़ते हमले पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाले हैं।

राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे, 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पीएम मोदी ने हरियाणा को दिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली ट्रेन का तोहफा। कहा तेल संकट के बावजूद रफ्तार में है भारत के विकास की गाड़ी। अब पंजाब को देंगे हजारों करोड़ का गिफ्ट। सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट। सोमवार को सबसे बड़ी अदालत तक जाएंगे जांच के तथ्य। एजेंसी ने तफ्तीश के लिए सरकार से मांगा अतिरिक्त समय। अखिलेश पर योगी का वार। कहा 2017 से पहले दोपहर 12 बजे तक जागती थी सरकार। दंगाई लगाते थे दरबार। अब बदल गया यूपी। माफिया को जेल या जहन्नुम पहुंचाने का पूरा किया संकल्प। मानसून सत्र से पहले सियासी लामबंदी तेज। राजनाथ सिंह की आवाज पर एनडीए की बैठक। दो लंबित विधेयक और 5 अहम बिल ला सकती है सरकार। कांग्रेस कर चुकी है विरोध का ऐलान। वक्त से पहले हटाए गए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश कोलचा। अनुराग सिंह बने नए सीपी। 1994 बैच के हैं आईपीएस।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक बार फिर से 2 बजे हैं और न्यूज रूम लाइव में हम आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले जैसा कि होता है, हम आपको बताते हैं कि न्यूज रूम लाइव में कौन सी बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल एकदम सच चुका है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि शामली में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो हर वो बात उन्होंने अपने भाषण में कही जो चुनावी भाषण में होनी चाहिए, और बहुत तगड़ा संदेश अपराधियों को उन्होंने दिया। ये पहली खबर, इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे क्या कुछ कहा। दूसरी बड़ी खबर, वो भी हम आपको बता देते हैं, एयरपोर्ट मस्जिद पर नो नमाज, ये सरकार की तरफ से कहा गया था, लेकिन मौलाना माने नहीं, वहां पर पहुंच गए, क्या हुआ वहां पर, ये भी हम आपको बताएंगे। कोलकाता की बात की जा रही है। जो तीसरी हमारी बड़ी खबर होने वाली है, वो भी हम आपको बता देते हैं। मिशन 2/3, दिल्ली में पॉलिटिक्स हाई। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मानसून सत्र की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी तैयारी कर रही है, राजनाथ सिंह की बैठक हुई, और विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। और ठीक 2:30 बजे, यानी आधे घंटे बाद हम बात करेंगे ट्रैक पर हाईटेक हाइड्रोजन की। दोपहर 2:30 बजे बताएंगे पीएम मोदी ने क्या गिफ्ट दिया, जो जीन से सोनीपत चल रहा है और आगे भी अब चलेगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में चंडीगढ़ पहुंचने वाले, और वहां भी हजारों करोड़ की सौगात दी जाएगी। पंजाब में चुनाव है, मिशन पंजाब एकदम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंप चुके हैं। जीन से शुरुआत सोनीपत तक पहुंचेगी, कुल 89 किलोमीटर का सफर होगा, 2 घंटे में तय किया जाएगा, कई स्टॉपेज हैं, 5 से 25 रुपए तक टिकट का किराया। और दूसरी बात, पीएम मोदी कमीशन पंजाब, जब पंजाब पहुंचेंगे तो बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन के जो सपना है, जो पूरा हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीन से हरी झंडी दिखाते हैं और हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती है सोनीपत की ओर, और इस दौरान वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना था जो वहां पर देखा जा रहा था, और अब ये सपना यहां पर पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, और उसकी जब हरी झंडी दिखाई जा रही थी, वो तस्वीरें इस वक्त हमने आपको यहां पर दिखाई, और इसके साथ ही ये 89 किलोमीटर का सफर है। फिर हम आपको बता दें, 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का इसका टिकट रखा गया है, और पीएम ने कहा है ये तो शुरुआत है, आगे तो ये और ज्यादा रफ्तार मिलेगी हाइड्रोजन ट्रेन को।
1: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
0: तो ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, इससे जुड़ी फुल रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे अब से कुछ देर बाद, यानी दोपहर 2:30 बजे A to Z रिपोर्ट होगी। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, मानसून सत्र है और उसको लेकर तैयारियां इस वक्त जोर शोर पर चल रही है, सत्ता पक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवाज पर एक बैठक होती है, जिसको अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं, और एनडीए के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक होती है जो करीब 1 घंटे से ज्यादा चली। अब इस बैठक की अध्यक्षता तो खुद राजनाथ सिंह ने की, जैसा आपको बताया। अब इसमें शामिल कौन था, इसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू थे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जेडीयू के ललन सिंह, टीडीपी के राम मोहन नायडू, और भी कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र, सरकार की रणनीति, विपक्ष के हमलों का कैसे जवाब देना है, अहम विधेयकों को लेकर क्या करना है, इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। तो देखिए तैयारियां हर तरफ से चल रही है। तो हमने आपको बताया कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या तैयारी की जा रही थी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उनकी आवास पर बैठक होती है, बड़े नेता आते हैं। लेकिन तैयारी विपक्ष की तरफ से भी चल रही है। जी हाँ, विपक्ष की तरफ से कल बैठक हुई थी। अब राजनाथ सिंह के घर पर आज मीटिंग हुई, कल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। संसद में सरकार को घेरने की तैयारी बनाई गई थी कि परिसीमन से लेकर महिला बिल को लेकर कैसे घेरना है। और जयराम रमेश ने तो कल कह दिया था कि बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, सरकार पास नहीं करा पाएगी। अब कल होनी है सर्वदलीय बैठक। अब विपक्ष को क्या सरकार मना लेगी, क्या उम्मीद की जा रही है, कुल मिलाकर इन तीनों तस्वीरों से यह बहुत स्पष्ट है कि यह मानसून सत्र इस बार का तूफानी रहने वाला है। तो राजनाथ सिंह के यहां पर आज बैठक हुई थी, एक घंटे बैठक चली, सभी बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। इस पर बात करते हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा ये बताइए कि इस बैठक के अंदर से क्या जानकारी आपके पास आ पाई है, क्या रणनीति यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से बनाई गई है, क्योंकि कल जयराम रमेश ने कह दिया था कि हम तो तैयार हैं।
2: देखिए बिल्कुल सर, विपक्ष ने कह दिया कि हम तैयार हैं, सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन सरकार के जो रणनीतिकार हैं उनको ये लगता है कि सरकार के पास जो है दो तिहाई का बहुमत हो सकता है। पिछले कुछ दिनों के जिस तरीके से अगर आप देखें तो हालात बदले हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के टीएमसी के 20 बागी सांसद जो है वो समर्थन दे सकते हैं, और 298 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिले थे जब परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को लेकर आई थी सरकार। हाँ, उस वक्त पास नहीं करवा पाए थे क्योंकि 360 नंबर चाहिए। तो ऐसे में अगर ये 20 जोड़ते हैं तो 318 नंबर होते हैं, और डीएमके का अगर सपोर्ट मिलता है भारतीय एनडीए को इस बिल पर तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है 340 पहुंचेगा। उसके बाद अगर देखें तो एनसीपी के जो सुप्रिया सुले है उनका भी बयान है कि सरकार वो इस पर विचार कर रहे हैं कि ये जो बिल है परिसीमन बिल इसका समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को ये लगता है कि 360 का आंकड़ा जो है वो पार पाया जा सकता है। कहीं छोटे दलों से और बातचीत चल रही है, और आज जो मंत्रालय बैठक हुई है उसमें कई मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है छोटे छोटे दलों के साथ बातचीत करने के लिए, विपक्षी दलों से बातचीत करने के लिए वो आए और इस पे समर्थन दे। पिछली बार विपक्ष की एक मांग थी कि सभी राज्यों में जो है 50% जो सीटें हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए, ये बिल के अंदर आनी चाहिए। तब गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा था कि हम एक घंटे के अंदर इसके अंदर जो है संविधान संशोधन में अमेंडमेंट लेकर आते हैं अगर आप तैयार हैं, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। इस बार लगता है कि विपक्षी दल भी तैयार हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये बहुत तय है कि 20 तारीख से जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है ना, उसको लेकर तैयारियां दोनों तरफ से, ये तो आप समझ गए होंगे इन तस्वीरों को देखकर। जहां सरकार के सामने एक अलग चुनौती है कि उसको अपने बिल पास कराने हैं परिसीमन से लेकर महिला बिल तक लेकर, तो दूसरी तरफ विपक्ष वो भी तैयारी कर चुका है। नीट का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। यानी तूफानी होने वाला है ये मानसून सत्र।
3: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में रणनीति का दौर तेज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनडीए के मंत्रियों की बैठक, फिर 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक, और 20 जुलाई से संसद का रण। मतलब साफ है, संसद में संग्राम से पहले मुद्दों की तरकश में तीर जुटाए जा चुके हैं। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फॉर्मूला, और वो संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटाना। राज्यसभा में तस्वीर पहले से ज्यादा आसान मानी जा रही है, लेकिन लोकसभा में अब भी जरूरी संख्या तक पहुंचने के लिए सहयोगियों और नए समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए मानसून सत्र में पहले सियासी जोड़तोड़, दल बदल और नए समीकरणों की चर्चा केंद्र में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी में रणनीति बन चुकी है। जयराम रमेश ने साफ कहा, कांग्रेस परिसीमन बिल का विरोध करेगी, महिला आरक्षण का समर्थन तभी होगा जब वो मौजूदा लोकसभा में लागू किया जाए। साथ ही चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, विदेश नीति, E20, महंगाई और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा।
4: लोकसभा में इनको दो तिहाई बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा।
3: दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार दक्षिण भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए लोकसभा सीटों में सभी राज्यों के लिए करीब 50% बढ़ोतरी का फॉर्मूला तैयार कर रही है ताकि परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की नाराजगी कम हो, लेकिन कांग्रेस, डीएमके और कई विपक्षी दल अब भी संशय में हैं।
4: महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया, पूरे एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया।
3: बीजेपी का दावा है विपक्ष पहले ही बिखर चुका है, कांग्रेस को अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं और मोदी सरकार विकास के एजेंडे के साथ संसद जाएगी। 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र सिर्फ विधेयकों का नहीं बल्कि संख्या बल, रणनीति और राजनीतिक भरोसे की भी सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। एक तरफ सरकार का मिशन दो तिहाई, दूसरी तरफ विपक्ष का मिशन रोक दो। देखना होगा संसद में जीत कानूनों की होती है या फिर राजनीति की। राहुल गौतम, ऐश्वर्या पालीवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: तो देखिए, सरकार की परीक्षा है तो विपक्ष की है अग्नि परीक्षा। अब यहां पर यह भी समझिए कि जो एक विपक्ष में ही कहा जाता है कि शरद पवार एनसीपी, अब उनके नेता मिल रहे हैं किससे? एकनाथ शिंदे से। देवेंद्र फडणवीस से पहले मुलाकात हुई थी, अब एकनाथ शिंदे से मुलाकात हो रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दो बड़े नेता जिनमें किनका नाम सामने आता है, जयंत पाटिल का नाम सामने आता है, जितेंद्र अवहड़ का नाम सामने आता है। मुंबई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास नंदनवन में उनसे मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार रात जयंत पाटिल के साथ दोनों एनसीपी के वरिष्ठ नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। अटकलें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं कि शरद पवार की एनसीपी एसपी यानी शरद कुमार पवार तेजी से एनडीए में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। शरद चंद्र पवार की

0: तो आइए महाराष्ट्र से अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और फिर जोरदार प्रहार करते हैं विपक्ष पर। जी हां, विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। अपने चित परिचित अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां एक और माफिया राज पर पुरानी सरकार माफिया राज को बढ़ावा दे रही थी, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अटैक का जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है।
1: जिन्ना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब 2020-21 में जब मैं आया था यहां, पहले मैं 2017-18 में आया था, फिर 20-21 में मैं आया था, मैं केराना में उस परिवार से भी मिला था जिस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम केराना के बाजार में कर दी गई थी। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया, कहां दिया? शामली में दिया। और शामली कहां आता है? शामली आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और यहां पर जो कांवड़िया होते हैं उनका बहुत ज्यादा जोर रहता है। तो ऐसे में यहां पर शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के सहारे पूर्व की सरकार पर निशाना साधा।
1: बहन और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: और उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा गर्जा है, और इमामबाड़ा और मजार जो अवैध तरीके से बनाई गई थी वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इससे पहले भी संभल में हम देख चुके हैं कि कई जगह पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, इस बार इमामबाड़ा और जो अवैध मजार बनाई गई थी उस पर बुलडोजर चला। 312 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, लेकिन बुलडोजर एक्शन में सब ध्वस्त कर दिया गया। भारी पुलिस बल इस दौरान वहां तैनात रहा कि कहीं कोई अराजक तत्व आकर गड़बड़ी ना फैलाए, माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। पर्याप्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया था, और फिर उसके बाद चला प्रशासन का बुलडोजर।
2: संभल के मुकर्रबपुर गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मजार पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बुलडोजर के जरिए देखिए जो पूरी मजार है जो कि बंजर भूमि पर कब्जा करके यहां पर ये पूरी मजार बनाई गई थी, अब उस पूरी मजार को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल आपको यह तस्वीरों में देखा जा सकता है, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है वो यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मौके पर पहुंचते ही ये पूरी कार्रवाई यहां जो है शुरू हुई है, और फिलहाल आप यहां देख सकते हैं, देखिए इसी तरह से जहां एक बुलडोजर पूरी इस मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है, उसके ठीक बराबर में ये देखिए दोनों जो यहां पर बुलडोजर है वो पूरे इमामबाड़े को यहां पर ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई जो शुरू कर चुके हैं, और इसी तरह से जो भी पूरा अवैध निर्माण है वो फिलहाल यहां पर ध्वस्त किया जाना शुरू हो चुका है। यानी अब से कुछ ही देर बाद यानी 24 घंटे बाद ठीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल जिले में होंगे, जबकि वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जो भी अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। और
0: शामली में मजार बनाई गई थी अवैध तरीके से कब्जा करके, तो उसको हटाया गया। तो वहीं कोलकाता में क्या हुआ, कोलकाता में एयरपोर्ट परिसर के अंदर एक मस्जिद थी, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, सुरक्षा को खतरा था और वो भी एयर स्ट्रिप के बिल्कुल पास में, तो वहां पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। अब आज शुक्रवार जब जुमे की नमाज थी तो इस दौरान वहां पर मौलाना अड़ गए। जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख सदीकुल्ला, कहा था उन्होंने कि वो नमाज पढ़ के रहेंगे, लेकिन उनको बैरंग लौटना पड़ा। उनकी जो नमाज पढ़ने की जिद थी एयरपोर्ट मस्जिद पर, वो डेली पड़ गई। जुमे पर आज उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया था, जिसे बंगाल सरकार ने बंद कर दिया सुरक्षा का हवाला देते हुए, क्योंकि एयरपोर्ट परिसर के अंदर में ये मस्जिद बनी हुई है और जो एयर स्ट्रिप है जहां पर प्लेन टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, उससे मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में इसको स्थानांतरित करने की तैयारी है सरकार की। और अब यहां पर सदीकुल्लाह चौधरी जिद पर थे कि नमाज यहां पर पढ़ी जाएगी, शुक्रवार का दिन था, लेकिन उनकी ये जिद ढीली पड़ गई और उनको बैरंग लौटना पड़ा। अब ये तस्वीरें आप देखिए, जमीयत का विरोध अब खत्म हो गया है, सिद्दीकुल्लाह अब वापस लौट चुके हैं बांकुरा। 136 साल पार एयरपोर्ट की मस्जिद पर ये जो विवाद है अब उसके खात्मे की बात कही जा रही है। शुभेंदु सरकार यहां पर सख्त है, उन्होंने नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है, बहुत स्पष्ट।
3: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की। और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया। आज के बाद कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते हैं, और डिपार्टमेंटल खतूत बंगाल के लोग देंगे हम क्या करना चाहते हैं। सड़क पर ना हमने किया है ना क्या करेंगे, पुलिस के कान कच्चा है, कान साफ करें। उनके जो लोग हैं उन्होंने भी गलत सलत बनाए किया। आज के बाद ये बाकड़ा एयरपोर्ट मस्जिद फ्यूचर जो है वो भविष्य बताएगा। आप लोग खामोश रहें और धीरे धीरे चले जाएं। अगर बिरयानी खाएंगे पकना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
0: तो सरकार की सख्ती का असर सिद्दीकुल्लाह चौधरी पर बहुत स्पष्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी तापस सेठ गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तापस, जरा बताइए आज हुआ क्या वहां पर और अब क्या हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है?
4: जी देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है नियंत्रण में है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के महिला जवान है उन्हें रखा गया है। हालांकि ज्यादातर जो फोर्स था वो हटा लिया गया है। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने साफ कह दिया कि उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पर आकर कोई बवाल करे वो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इशारा कहीं ना कहीं विभाजन की राजनीति पर किया। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा को जिस तरीके से मान्यता मिला, शहर के अलग अलग रास्तों से रथ यात्रा कल निकाला गया था, ठीक उसी तरह वो भी चाहते थे कि मुसलमान धर्म के लोगों को शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने के लिए अनुमति दी जाए। उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने इशारा किया कि आगे जाकर वो चिट्ठी के द्वारा अनुमति लेंगे या फिर जरूरत पड़ा तो अदालत का दरवाजा भी वो खटखटाएंगे। यानी ये साफ है कि ये जो विवादित मस्जिद है इसे लेकर जो तूल पकड़ चुका है, एक तरफ जमाते उलमाए हिंद और दूसरी छोर पर प्रशासन, ये आने वाले समय में और बड़ा होता दिख रहा है। लेकिन सिद्दीकुल्ला चौधरी ने साफ ये बोल दिया है कि उनका उद्देश्य कभी भी शांति भंग करना नहीं था, इस वजह से वो आज यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया।
0: सरकार की शक्ति का यहाँ पर असर दिखा है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: चोगन परफ्यूम्स,
7: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
11: French edition for him and her.
12: Papa.
13: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
14: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
13: छक्का
14: सब कैशलेस हो गया है
13: हाँ ला भाई मेरा बैट वो अभी तो ठीक हुआ तू
15: चार्ज हुआ यार
16: बैट किसका है
17: टाटा AIG है तो भरोसा है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
7: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
8: वाह वाह वाह वाह।
7: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
9: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
10: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
11: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
12: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: पीएम मोदी ने हरियाणा को दिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली ट्रेन का तोहफा। कहा तेल संकट के बावजूद रफ्तार में है भारत की विकास की गाड़ी। अब पंजाब को देंगे हजारों करोड़ का गिफ्ट। सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट। सोमवार को सबसे बड़ी अदालत तक जाएंगे जांच के तथ्य। एजेंसी ने तफ्तीश के लिए सरकार से मांगा अतिरिक्त समय। फुल चुनावी बोर्ड में आए योगी। कहा कांग्रेस समाजवादी जिन्ना के उपासक। 2017 से पहले दंगाई लगाते थे सरकार के साथ दरबार। माफिया को जेल या जहन्नम पहुंचाने का पूरा किया संकल्प। मानसून सत्र से पहले सियासी लामबंदी तेज। राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक। दो लंबित विधेयक और 5 अहम बिल ला सकती है सरकार। कांग्रेस कर चुकी है विरोध का ऐलान। वक्त से पहले हटाए गए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा। अनुराग सिंह बने नए सीपी। 1994 बैच के आईपीएस। ऑर्डर आते ही संभाला चार्ज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो चोगन पर।
0: और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं।
2: हाईटेक बनाने के लिए ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपये इस मिशन में खर्च हुए हैं। आज भी यहां हेल्थ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं। मैं इनके लिए सभी चंडीगढ़ वासियों को बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मैं हरियाणा के जींद में था और यहां से इसके बाद मुझे पंजाब के विकास कार्यों के लिए जालंधर जाना है। इन दोनों कार्यक्रमों के बीच आज चंडीगढ़ का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारा चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है। चंडीगढ़ के विकास से चंडीगढ़ के लोगों का जीवन तो बदलता ही है, साथ ही हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे बहुत लाभ होता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए तो चंडीगढ़ इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा हब है। साथियों, जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो मुझे कई बार पीजीआई जाना होता था, और कारण क्या, तो कोई न कोई हमारे साथी या उनका परिवार, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, हरियाणा का हो, कोई न कोई बीमार यहां आते थे, तो मेरा मिलने जाना बड़ा स्वाभाविक रहता था। और इसलिए मुझे पता है कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये आरोग्य की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। साथियों, आज यहां चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है। यहां एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट्स लाखों लोगों को इलाज के और बेहतर सुविधा देंगे। मुझे याद है 2015 में मैं चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में आया था, और मुझे खुशी है कि आज मुझे वर्चुअली भी वहां के सब पुराने साथियों से मिलने का अवसर मिल रहा है। तब से अब तक इस दशक में पीजीआई की क्षमताओं में बड़ा विस्तार हुआ है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ के मैनेजमेंट की, यहां के प्रोफेसर्स और युवा डॉक्टर्स की सराहना करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसमें स्वच्छता की कितनी बड़ी भूमिका है। और जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है और चंडीगढ़ इसमें बेहतर प्रदर्शन का प्रयास भी करता रहता है। साथियों, मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान ब्रूम वॉरियर की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलग जगाई है, लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है और मुझे खुशी है कि स्वच्छता को आज के इस कार्यक्रम से भी जोड़ा गया।
0: और अब बात यहां पर की जाएगी हाइड्रोजन ट्रेन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद से हरी झंडी दिखाई, सोनीपत तक के लिए इसको हरी झंडी दिखाई गई है, यानी क्लीन एनर्जी की ट्रेन अब भारत में भी चलने लगेगी। और ये जो हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात की जाती है, अभी तो 89 किलोमीटर का सफर तय कर रही है, लेकिन ये ट्रेन बहुत ज्यादा दमदार है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। 10 बोगियों वाली ट्रेन इस वक्त हरियाणा में शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद इसका विस्तार भी किया जाएगा।
2: दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
3: देश को मिल गई है पहली हाइड्रोजन ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित है। इसमें ना धुआं निकलता है, ना कोयला जलता है और ना ही किसी तरह का प्रदूषण होता है।
2: ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है।
3: इस ट्रेन को बाहर से ना तो बिजली चाहिए और ना ही डीजल, बस ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही हवा से बात करने लगती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चल पड़ी है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 3200 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन, दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन, सबसे ज्यादा यात्री क्षमता। चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका के क्लब में शामिल हुआ हिंदुस्तान। इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, तकनीक ऐसी कि कहीं कुछ लीकेज हो तो सिस्टम खुद ही अलर्ट कर देता है। हाइड्रोजन ट्रेन के पटरी पर आते ही देश की मोबिलिटी में नया अध्याय जुड़ गया।
4: We are feel very excited here. Thank you, मोदी जी, आपने हमारे जींद शहर को चुना हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए।
5: इस बार मोदी जी ने प्रूफ कर दिया कि इंडिया किसी से कम नहीं है, इंडिया सबको डिफीट कर सकता है और सबसे आगे निकल सकता है।
6: आप लोगों ने और भी अलग अलग ट्रेनों में ट्रैवल किया, इस ट्रेन में ट्रैवल करके कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
6: अच्छा लग रहा है
7: तो इसका बहुत फायदा है अपने आने वाले समय में। हम चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में सभी हाइड्रोजन ट्रेन बने।
8: क्लीन ग्रीन इंडिया के लिए बहुत अच्छा कदम मोदी जी की तरफ से, हमारे शहरवासी जीन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
9: जो तेल पे डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके और हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसी इंडिपेंडेंस से की ओर एक नया कदम है।
10: ये बहुत अच्छी है जी, पोल्यूशन रहित, शोर भी नहीं है, बड़े आराम से जा सकते हैं, जल्दी पहुंचेंगे।
11: ये विकसित भारत का एक विजन है मोदी जी का, जिसे हम देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। हमारे जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि जींद से सोनीपत के लिए जीरो पोल्यूशन पर इन्होंने जो ट्रेन चलाई है।
3: इस ट्रेन का सफर कैसा होगा, ये ट्रेन बाकी रेलगाड़ियों से कैसे अलग है, जींद सोनीपत रूट के बाद अगली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से शुरू होगी, सारी बातें विस्तार से समझेंगे, साथ ही आपको ले चलेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के इस सुहाने सफर पर।
12: भारत की बात करें तो ज्यादातर जो यहाँ ट्रेन है वो बिजली से चलती हैं और भारत में इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क बहुत ज्यादा है, 99% जो ट्रेनें हैं वो बिजली से चलने वाली है, लेकिन अब हाइड्रोजन की भी एंट्री हो गई है।
13: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
3: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब चलने के लिए तैयार है। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से चलकर छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए सोनीपत तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए रवाना हो गई। यह भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रेन है। ये ट्रेन डीजल या कोयले से नहीं चलती और इसे लगातार ओवरहेड बिजली लाइन से भी ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं होती। ट्रेन में लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाते हैं। इस ट्रेन को ग्रीन ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संचालन के दौरान धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इससे मुख्य रूप से जल वाष्प और गर्मी निकलती है। हाइड्रोजन इसका ईंधन है और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन बिजली बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन सोनीपत की ओर रवाना हो गई।
2: आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा।
3: इस ट्रेन का डिजाइन पारंपरिक ट्रेनों से काफी अलग है। इसका बाहरी रूप और आगे का हिस्सा सामान्य डीजल या इलेक्ट्रिक इंजनों से अलग दिखाई देता है।
14: ट्रेन जो है वो सबसे शक्तिशाली फ्यूल यानी हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली ट्रेन है। अंदर ये जो इसका इंजन है उसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर अंदर जो लोको पायलट हैं वो तो बैठ चुके हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और ये देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन है। यहाँ पर साफ लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन, नो स्मोकिंग, नो ओपन फ्लेम्स यहाँ पर है और साथ साथ वार्निंग भी दी गई है क्योंकि पूरी ट्रेन में जो है हाइड्रोजन भरा हुआ है। इस ट्रेन का नाम है तो ये ट्रेन हाइड्रोजन पर चलने वाली, लेकिन इस ट्रेन का नाम है नमो ग्रीन रेल, यानी कि दुनिया की पहली नमो ग्रीन रेल जो जींद से लेकर सोनीपत तक चलने वाली है। और इसके ठीक बाहर यहाँ पर लिखा भी हुआ है H2 जीरो एमिशन, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी जो हानिकारक पदार्थ है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है उसके बारे में कुछ भी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्रेन है, जो इंजन है ये हाइड्रोजन पावर्ड है।
3: ये एक मेमो टाइप ट्रेन सेट है। इसमें यात्रियों के लिए बैठने और खड़े होकर यात्रा करने दोनों की व्यवस्था है। यात्री सीट पर बैठकर सफर कर सकते हैं और भीड़ होने पर खड़े होकर भी यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल इसे जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाया जा रहा है। आगे चलकर हाइड्रोजन तकनीक के विस्तार की योजना भी है।
14: जो ट्रेन है वो आप देखिए कि कैसे इसके अंदर का जो है नजारा है। दरअसल फिलहाल ये पैसेंजर ट्रेन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं। ये ट्रेन एकदम नई कोच, नई नवीली कोच जो है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी है, फायर सिलेंडर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ साथ जो अलग अलग कोनों से, हरियाणा के अलग अलग कोनों से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और अलग अलग कलाकार हरियाणा के वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो महत्वपूर्ण दिन है कई लोगों के लिए इस ट्रेन की अगर हम बात करें, और लगातार यहाँ पर कुछ बच्चे भी आइए उनसे हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और इनके अंदर भी काफी उत्साह है। क्या नाम हुआ मैम आपका?
15: सर मेरा नाम श्रीमती सुनीता रानोली है
14: जी।
15: मैं हाइड्रोजन ट्रेन में पहली बार सफर कर रही हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और भारत देश ऐसा देश है जो कई देशों को पीछे छोड़कर पहली हाइड्रोजन ट्रेन बिना कार्बन छोड़े, बिना किसी पोल्यूशन के चल रही है। तो मैं इस चीज को लेकर बहुत खुश हूँ और मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं।
14: अच्छा, बच्चे भी आए हुए हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है इस ट्रेन में चढ़ती?
16: हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में ये ट्रेन चल रही है।
3: ट्रेन में सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। इसमें फायर अलार्म, आपातकालीन अग्निशमन व्यवस्था और हाइड्रोजन गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। अगर हाइड्रोजन रिसाव होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और सुरक्षा उपाय सक्रिय हो जाते हैं। ये ट्रेन रोज सुबह 7:40 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी। रास्ते में ये जींद सिटी, पांडु पिंडारा जंक्शन, ललितखेड़ा हॉल्ट, भामभेवा, ईसापुर खेड़ी हॉल्ट, बुटाना हॉल्ट, खंडराई हॉल्ट, गोहाना जंक्शन, रबड़ा हॉल्ट, लाट हॉल्ट, मोहाना और बरवासनी हॉल्ट पर रुकेगी। ट्रेन सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा होगा। सोनीपत से ट्रेन सुबह 10:40 पर वापस जींद के लिए रवाना होगी।
17: नया अनुभव प्राप्त होगा क्योंकि एशिया की सबसे पहली ट्रायल ट्रेन है बेसिकली, जिसके ट्रायल भी हुए हैं और सक्सेसफुली भी है। क्योंकि ट्रायल तो कई कंट्रियां कर रही है लेकिन सक्सेसफुली दो चार टोटल, आज ये पांचवी वर्ल्ड की पांचवी कंट्री है जो सक्सेसफुली मूव करेगी।
3: हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन रेल तकनीक का उपयोग हो रहा है। जर्मनी, चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका और इटली जैसे देशों में भी हाइड्रोजन ट्रेन परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें जर्मनी में इसका व्यावसायिक उपयोग सबसे पहले शुरू हुआ था। घोड़े से खींचे जाने वाली रेलगाड़ियों से शुरू हुआ भारतीय रेलवे का सफर भाप इंजन, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से होता हुआ हाइड्रोजन तकनीक तक पहुंच गया है। शुरुआत भले ही एक छोटे से रूट से हुई है लेकिन भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेनें स्वच्छ रेल परिवहन का बड़ा विकल्प बन सकती हैं। पीयूष मिश्रा, जींद आज तक।
12: और देखिए ये जो ट्रेन है ये पूरी तरह से स्वदेशी आप कह सकते हैं, 100% मेक इन इंडिया। और बहुत कम देश है जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है, बहुत से तो अभी ट्रायल में ही है लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इसे हासिल कर लिया है। अब हाइड्रोजन ट्रेन की बात की जा रही तो इसकी कई खासियत भी है, इसकी ताकत, इसकी पावर, 3200 हॉर्स पावर की शक्ति, क्या क्या खासियत है वो आपको बताते हैं।
18: भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की तो इसे घोड़ों से खींचा जाता था लेकिन जब भाप इंजन आया तो ट्रेनों ने रफ्तार भरना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ ही डीजल इंजन का दौर आया, इलेक्ट्रिक इंजन आया और अब हाइड्रोजन ट्रेन का दौर है।
2: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है।
18: ना डीजल, ना कोयला, ना बाहर से कोई बिजली, इस ट्रेन को चलाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से बिजली बना देता है वैसे ही ये ट्रेन हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और वाष्प को हवा में ही छोड़ देगी।
17: दुनिया की सबसे पहली H2O को चलने वाले सक्सेसफुली इतने लोड को सक्शन पावर को खींचने वाली ये पहली ट्रेन है जिसको चलाने और खड़े होने से ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है। बेसिकली ये पानी से ही चलेगी और हवा में पानी ही छोड़ेगी, इसीलिए इसका नाम नमो ग्रीन रखा गया है। इसमें H2O वर्किंग करेगा जो H2 चल के इसकी बैटरी चार्ज करेगा, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी जो बाहर निकल जाएगी, तो हम हवा से ही पानी ले रहे हैं और हवा में छोड़ रहे हैं, तो हम तो कुछ यूज ही नहीं कर रहे।
18: भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन कई मामलों में खास है। इसकी पहली खासियत यह है कि डीजल इंजन की तरह इससे धुआं नहीं निकलता और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के बाद सिर्फ जल वाष्प और गर्मी निकलती है।
2: ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
18: ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन यात्री ट्रेन है। जहां कई देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें 2 से 4 कोच की हैं, वहीं भारत ने शुरुआत ही 10 कोच और करीब 2600 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन से की है। इसका 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन सिस्टम इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट में भी शामिल करता है। सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड तारों से बिजली लेती हैं, लेकिन ये ट्रेन अपने साथ मौजूद हाइड्रोजन से खुद बिजली तैयार करती है। इसलिए जिन रेल मार्गों पर ओवरहेड बिजली नहीं है वहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।
2: हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, ये हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, और साथियों आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेंगी।
18: इस ट्रेन को भारत में ही डिजाइन, इंजीनियर और इंटीग्रेट किया गया है, यानी भविष्य की रेलवे तकनीक में भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ट्रेन के अंदर मल्टी लेयर सुरक्षा, हाइड्रोजन गैस लीकेज, आग, धुआं और तापमान पर 2400 घंटे नजर रखने वाले सेंसर लगाए गए हैं। किसी भी असामान्य स्थिति में हाइड्रोजन की सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक पूरी तकनीक की शुरुआत है। जींद में हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी तैयार की गई है। यानी भारत ने सिर्फ ट्रेन नहीं बनाई बल्कि हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की नींव भी रख दी है। आज ये शुरुआत जींद से सोनीपत

0: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करेंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा, ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

एजेंसी ने तफ्तीश के लिए सरकार से मांगा अतिरिक्त समय। फुल चुनावी मोड में आए योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिन्ना के उपासक, 2017 से पहले दंगाई लगाते थे सरकार के साथ।

जहन्नुम पहुंचाने का पूरा किया संकल्प। मॉनसून सत्र से पहले सियासी लामबंदी तेज, राजनाथ सिंह की आवाज पर एनडीए की बैठक, दो लंबित विधेयक और 5 अहम बिल ला सकती है सरकार, कांग्रेस कर चुकी है विरोध का ऐलान। वक्त से पहले हटाए गए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश कोलचा, अनुराग सिंह बने नए सीपी, 1994 बैच के हैं आईपीएस, ऑर्डर आते ही संभाला चार्ज।

0: नमस्कार, 3 बजे के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त अमृतसर से आ रही एक बड़ी खबर को लेकर। दरअसल अमृतसर के एक होटल में आज भीषण आग लग गई है। ये होटल अमृतसर पुलिस कमिश्नर के घर के पास स्थित है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर के इस होटल में आग लग गई और पुलिस कमिश्नर के घर के ठीक पास ये होटल मौजूद है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि होटल के एक हिस्से में आग बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। ये पुलिस कमिश्नर के घर के ठीक पास ये होटल मौजूद है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, 2 मेडिकल कॉलेजों समेत 8 प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। 10 कोच वाली यह ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 रुपए से 25 रुपए के बीच रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और बोले, जब भी देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत का जिक्र होगा तब जिंद सोनीपत और हरियाणा का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा। जिंद दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। 1250 करोड़ रुपए की हेल्थ केयर से जुड़ी अहम सुविधाओं का उद्घाटन किया है। जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास से पड़ोसी राज्यों को भी फायदा होता है। चिकित्सा क्षेत्र में तो चंडीगढ़ दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ की तारीफ करते हुए कहा कि चंडीगढ़ एक शहर नहीं, यह भारत के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा है। हरियाणा में सड़क रेल परियोजनाओं के देंगे सौगात। कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का भी शिलान्यास किया। जालंधर में आज बीजेपी की रैली को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। बोले, पंजाब को विकास और ईज ऑफ लिविंग का भरोसा है। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ है इसका पूर्ण विकास। संत रविदास पर एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी का शामली, बिजनौर और गाजियाबाद का दौरा। 2452 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। शामली में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा कि माफिया को जहन्नम या जेल भेजने का संकल्प हुआ है पूरा। कांवड़ियों से अपील, होटल ना करें, यात्रियों की यात्रा की गरिमा बनाए रखें। शामली में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिन्ना के उपासक है। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज। 2017 से पहले 12 बजे उठने वालों के पास जनता के लिए समय नहीं था। बोले, अब यूपी की सुबह 4 बजे से विकास की रफ्तार चलना शुरू हो जाती है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का एसपी पर हमला। जाति और मजहब के मकर जाल में यूपी को पीछे धकेला है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर हमला। चुनाव आते ही अंबेडकर और संविधान की याद आती है। बोले, बीजेपी संविधान और आरक्षण को लेकर सिर्फ चुनावी राजनीति करती है। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान का अखिलेश यादव और योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार की शुरुआत 2013 मुजफ्फरनगर दंगों से हुई थी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर पुलिस ने आरोपी राम शंकर यादव और मनीष यादव को 7 दिन की कस्टडी मांगी। आदेश के बाद आरोपियों से पुलिस पूछताछ करनी शुरू करेगी। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एसएसएफ के 1155 पद हुए स्थायी। चढ़ावा चोरी के बाद हुआ है फैसला। वेतनमान और भत्ते की निर्धारित कर दी गई है। संभल के मुकबरापुर गांव में सरकारी जमीन पर अब बने अवैध इमामबाड़े और मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 312 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज कर दी है। जिलों का दौरा और संगठन की समीक्षा। बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ताओं और सक्रियता और माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी संगठन ने अंबेडकर सम्मान सामाजिक समीकरण को बज बनाया। चुनावी रणनीति के अहम हिस्सा पश्चिमी यूपी में दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति है। बीएसपी ने 2027 चुनावों से पहले मायावती सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की कवायद शुरू करी है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अभियान की शुरुआत कर दी गई। एसपी 2027 चुनावों में भाजपा के 10 साल बनाम सपा के 5 सालों को चुनावी मुद्दा बनाएगी। पीडीए अत्याचार वाली किताब से भी करेगी प्रचार। बीजेपी नेता पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए जवाब दिया है कि बीजेपी में जाने को बताया। पाल समाज के लिए अफसरों की पार्टी, कहा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बनने की संभावना है। देहरादून में अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से की है बातचीत। बोले, उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सैनिकों और उसके परिवार वालों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज ही देहरादून में राहुल गांधी भी करेंगे छात्रों के साथ संवाद। इससे पहले सीएम धामी ने अग्निवीर योजना पर बात करते हुए कहा था कि राज्य सरकार लगातार उनके बेहतरीन के लिए तत्पर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश कोचा को रिटायरमेंट से पहले हटाया गया है। अब अनुराग कुमार को मिली है जिम्मेदारी, आते ही संभाला अपना मोर्चा। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा 27 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सूत्रों के अनुसार चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सौंप सकती है। एसआईटी ने अंतरिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा है। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद नेटवर्क से जुड़े 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। पहले पकड़े गए 8 आतंकियों में से पूछताछ के बाद अलग अलग जिलों में हुई है गिरफ्तारी। जैश मॉड्यूल का खुलासा हुआ, देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप है। एटीएस के मुताबिक आरोपी पिछले 6 महीने से एक दूसरे से संपर्क में थे। बम बनाने, ट्रायल ब्लास्ट करने की बताई बात भी सामने आई है। गुजरात में की गई है परीक्षण, जांच में खुलासा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ है कि जैश के 3 संदिग्ध सीधे टॉप लीडरशिप के संपर्क में थे। जांच एजेंसियों के अनुसार तीनों भावलपुर स्थित जैश हेडक्वार्टर में जुड़े हुए थे। एटीएस जांच में सामने आया कि जैश नए सिरे से नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संगठन की गतिविधियों को लेकर एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। आज लगातार 6 रात भी जारी अमेरिकी कार्रवाई, ईरान पर हुए नए ताजा हमले, इसमें अमेरिकी सिटकॉम ने इसका दावा किया है। ईरान के कई शहरों पर अमेरिकी हमले जारी हैं। अहवाज शहर पर धमाके की आवाज से हड़कंप मचा हुआ है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिकी हमले में बंदर खामीर में भी पुल को निशाना बनाया गया, रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आई है। साथ ही ईरान और अमेरिकी कैदी अदला बदली के दावों में प्रेस टीवी ने किया है खारिज, जासूसी की रिहाई से भी इनकार किया गया है। व्हाइट हाउस का नया और बड़ा बयान, ईरान अब भी अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और समझौता करना चाहता है। व्हाइट हाउस का दावा कि ईरान डील की इच्छा रखता है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज समझौते का किया है उल्लंघन। कुवैत की सेना का दावा, 32 दुश्मन ड्रोन को मार गिराया गया। ईरानी हमलों के कई अहम ठिकाने निशाने बनाए गए। कुवैत के हवाई क्षेत्र में 32 ड्रोन इंटरसेप्ट होते उनका मलबा रिहायशी इलाकों में भी गिरा है, कोई जनहानि नहीं हुई है। ईरान अमेरिकी तनाव के बीच हॉर्मुज में शिपिंग गतिविधियां बेहद कम हो गई। सामान्य स्तर पर मुकाबले सिर्फ 10% जहाजों की आवाजाही हो रही है। गया में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला सुरक्षित। जामनगर नगर निगम फिर विवादों में आ गया, अधिकारी का टेबल पर पैर रखे वीडियो हुआ वायरल। जामनगर महानगर पालिका अधिकारियों के आचरण पर नागरिकों ने माफी मांगी है। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में 150 मीटर तक घिसटता रहा यात्री, बेटी के लिए लेने गया था कोल्ड ड्रिंक। जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम कर दी गई है, सरिये और रस्सी के बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई में बड़ा हादसा, एक सोसाइटी में 10वें फ्लोर से गिरी क्रेन, एक की मौत, 15 से अधिक गाड़ियां चकनाचूर हो गए। गुरुग्राम में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने हत्या चढ़े 13 बांग्लादेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट, चेकिंग अभियान जारी रखा गया है। मुजफ्फरपुर में 2000 रुपए के लिए भाई की हत्या कर दी गई, साथ बैठकर नशा करने के बाद फिर उतारा मौत के घाट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी है मुश्किलें। नदियों में उफान के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया, लोगों से भी नदी किनारे से दूर रहने की अपील की गई है। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, नदी में हाथ पैर धोने गए 12 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने जिंदा निगल लिया, पूरी घटना वीडियो में देखकर लोग कांप उठे। यूपी के हथरस में खून की जांच कराने गई किशोरी के साथ पैथोलॉजी में हुआ दुष्कर्म, किशोरी को बेहोश कर घटना को अंजाम दिया गया। देवघर पुलिस में बड़ी सफलता मिली है, 7 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, अपराधियों के पास 9 मोबाइल फोन और 18 सिम कार्ड और 17 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। भदोही में पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, चार्जर केबल से गला घोटकर पति ने ली है जान, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, बॉर्डर में लगे 50 किलोमीटर के दायरे में मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर एक्शन जारी है, हाईकोर्ट ने एक्शन पर रोक लगाने वाले जगह को खारिज कर दिया। लखनऊ में नर्सरी स्कूल में 5 साल के छात्र से मारपीट की गई, क्लास मॉनिटर पर थप्पड़ घूसे मारने का आरोप है, शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के जीएमयू ट्रॉमा सेंटर में शरीर के आर पार घुसी 4 सरियों के साथ पहुंचे मजदूर पर सफल ऑपरेशन कर दिया गया, फेफड़ों समेत कई अंगों की मरम्मत कर 8 घंटे चलाई ऑपरेशन। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक से कुचलकर 3 लोगों की मौत हो गई है, गुस्साए ग्रामीणों ने वाराणसी सोनभद्र मार्ग पर जाम और प्रदर्शन भी किया। हरदोई में 8 माह के मासूम की एम्बुलेंस से लखनऊ आते समय हुई मौत, परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गाजियाबाद में पुलिस बूथ के सामने शख्स ने मौत मामले में 2 महिला पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दी गई है, जांच जारी है, वायरल वीडियो और सीसीटीवी की जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती में नाराज सैकड़ों लोगों का हंगामा, चौक पर जाम लगाकर किनारेबाजी, कई दिनों से घंटों बिजली गुल होने से भड़के हैं लोग। लखनऊ साइबर क्राइम सेल और क्राइम ब्रांच ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, छापेमारी में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। बांदा में महिलाओं की दबंगे घर में घसीटकर महिला की सड़क पर बेरहमी से पिटाई की गई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। गोरखपुर तहसील में अंडा लेकर हुई पहुंची महिला, सरकारी रास्ते की पैमाइश की मांग को लेकर हंगामा किया, एसडीएम ने समझाकर शांत कराया पूरा मामला। सहारनपुर डीसी ऑफिस में परिसर में बने 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने के आदेश, बेदखली के साथ 6.41 करोड़ रुपए के जुर्माना वसूली के भी निर्देश दिए गए। नू के फिरोजपुर में सिरका में पुलिस ने पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ है, आरोपी के दोनों पैरों में लगी है गोली, रावली डैम इलाके में हुई कार्रवाई। तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में महिला ने खड़े खड़े दिया बच्चे को जन्म, लापरवाही का आरोप, घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। नागपुर में फिल्मी डायलॉग पर रील बनाने का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, पुलिस ने वायरल रील की जांच शुरू कर दिया, मामले की आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी पर जलस्तर बढ़ने पर कई इलाकों में बढ़ी है चिंता, प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद यात्रा मार्ग बंद कर दिया गया, आवाजाही प्रभावित हुई है, प्रशासन ने रास्ता खोलने के लिए काम शुरू कर दिया है। राजस्थान के बाड़मेर में मैथ की कॉपी नहीं लाने पर चौथी क्लास के छात्र के शिक्षक ने की बुरी तरीके से पिटाई, बेहोश होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद में नवोदय विद्यालय में रैगिंग जैसी वारदात, 10वीं के छात्र को सहपाठियों ने बंधक बनाकर पीटा, जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्विस राइफल छीनने के बाद कोशिश के बाद गोलीबारी, 1 की मौत, 4 जवान घायल हो गए। इंटरनेट बंद करने के साथ ही एहतियात के तौर पर भद्रवाह और में सीआरपीएफ और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया, तलाशी अभियान भी शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है, कई जगहों पर जल भराव के भी कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रयागराज में यमुना में प्रेमी ने प्रेमिका के संग हाथ पकड़कर लगाई छलांग, नए यमुना ब्रिज से कूदने का वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चलती बस पर गिरा बड़ा पेड़, चालक की सूझबूझ से 40 यात्रियों की जान बची है। हावड़ा में 16 साल की छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पीछा कर रहे आरोपी ने भी सड़क पर हमला किया, सीसीटीवी आया सामने। सूरत एयरपोर्ट रनवे पर सांप दिखने का वीडियो हुआ वायरल, एयरपोर्ट डायरेक्टर बोले हैं कि एआई जनरेटेड भी हो सकता है वीडियो। अलवर में वकील के घर निकला 8 फीट लंबा कोबरा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के महराजगंज में जुगाड़ से चल रही स्कूली वैन सीज कर दी गई। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर चालक के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। सिलकयारा टनल में फिर हादसा, सुरंग के अंदर शॉर्टक्रीट गिरने से 22 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर रिहायशी इलाकों में भी भरा है पानी। महाराष्ट्र के मालशेज घाट पर अचानक चली तेज हवा, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किल है। मालशेज घाट पर तेज हवाओं के झोंके के कई बाइक सवारों ने वाहनों को खोया अपना नियंत्रण, एक बार एक एक कर सड़कों के गिरने लगे। तमिलनाडु में खरीफ सीजन की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कृष्णगिरी जलाशय परियोजना के बांध में 151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आज दूसरा दिन है, भगवान का रथ खींचने उमड़े लाखों श्रद्धालु। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए भी मानवता की बड़ी मिसाल, एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाने के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई है। आसार उल्लास के बीच थूथुकुड़ी में आदि का उत्सव की भव्य शुरुआत, पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच खोले गए मंदिर के कपट। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान को 11,000 किलो आम का भोग किया गया अर्पित। भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ निकाली रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए, भगवान की आस्था में रमे नजर आए आशीष सूद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक बड़ी खबर आ रही है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले बड़ी खबर मिल रही है कि वंदे मातरम बिल राज्यसभा में पहले पेश होगा और फिर गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे राज्यसभा में। आपको बता दें कि यह बड़ी खबर आ रही है कि जो संसद के मॉनसून सत्र में वंदे मातरम बिल राज्यसभा में पहले पेश होगा और इसे गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बाद देश में आतंक के नेटवर्क पर बड़े एक्शन की करते हैं। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 5 और संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये सभी देश में बड़े पैमाने पर धमाके का प्लान बना रहे थे और इसके लिए कई बार इन्होंने रेकी भी की थी। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उन शख्स की है जिन्हें इन आरोप में गिरफ्तार किया गया और कई संदिग्धों को इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और गुजरात में ही बम बनाकर इसका ट्रायल भी किया गया था।

0: देश में दहशत फैलाने की बारूदी साजिश का बड़ा खुलासा। देश के कई शहरों में धमाकों का प्लान, बम बनाए, कई बार धमाकों का ट्रायल किया। गुजरात समेत कई राज्यों में रेकी की, आतंक वाली प्लानिंग को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बड़ी वारदात से ठीक पहले इन आतंकियों पर एटीएस का शिकंजा कस गया। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इसी मॉड्यूल से जुड़े 8 आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे और इसके लिए सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश ले रहे थे।
1: रिप्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी। इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। इस एक इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक FIR UAP और BNS के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें कि लगभग 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई, तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
0: अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को ATS गिरफ्तार कर चुकी है और जांच के बीच इन आतंकियों को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। गिरफ्त में आए 3 आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि ये तीनों आतंकी जैश मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे। यह है कि ये 3 संदिग्ध आतंकी बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर के संपर्क में थे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जैश के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद जैश फिर से खुद को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी कोशिश के तहत अपने मॉड्यूल के नेटवर्क को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
2: गुजरात ATS ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
3: चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: चोगन परफ्यूम्स।
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: मोदी ने हरियाणा को दिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली ट्रेन का तोहफा। कहा, तेल संकट के बावजूद रफ्तार में है भारत के विकास की गाड़ी। अब पंजाब को देंगे हजारों करोड़ का गिफ्ट। सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट। सोमवार को सबसे बड़ी अदालत तक जाएंगे जांच के तथ्य। एजेंसी ने जांच के लिए सरकार से मांगा अतिरिक्त समय। फुल चुनावी मोड में आए योगी। कहा, कांग्रेस समाजवादी जिन्ना के उपासक। 2017 से पहले दंगाई लगाते थे सरकार के साथ दरबार। माफिया को जेल या जहन्नुम पहुंचाने का पूरा किया संकल्प। मॉनसून सत्र से पहले राजनीतिक लामबंदी तेज। राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की बैठक। राज्यसभा में सबसे पहले पेश वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। समय से पहले हटाए गए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा। अनुराग सिंह बने नए सीपी। 1994 बैच के आईपीएस अफसर ने संभाला चार्ज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा और दान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और ये बड़ा मामला है। इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो राजेंद्र सिंह चौहान जो कि मंदिर के एक अधिकारी थे पहले, वो अब इस समय मंदिर में नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र सिंह इनका नाम है। एसआई की टीम ने राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है और एसआईटी को अपनी जांच के दौरान राजेंद्र सिंह की संलिप्तता इस मामले में पाई गई। चढ़ावा चोरी में 30 जून को रिटायर हो चुके थे राजेंद्र सिंह चौहान, लेकिन उसके बाद भी इन्हें गिरफ्तार किया गया है और एसआईटी ने राजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। मंदिर में चोरी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने इस पूर्व मंदिर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अंकित शर्मा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बताइए इस मामले में आगे और क्या जानकारी है?
2: देखिए सही, जिस तरह से पहले प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था, सस्पेंशन भी हुआ था और एफआईआर भी दर्ज हुई, और क्योंकि इस मामले में तीन तीन जो एसआईटी पैनल्स हैं वो जांच कर रहे हैं, चाहे वो गढ़वाल कमिश्नर के अंडर में हो या फिर बीकेटीसी की टीम जांच कर रही हो या फिर पुलिस की एसआईटी जांच कर रही हो। लगातार जो सबूत सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अभी 18 पेज की जो एक रिपोर्ट भी बनाई है उसमें कई लोगों की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, जिसमें कि पुराने जो सीसीटीवी थे, जो 1 जुलाई से पहले या 2 जुलाई से पहले के भी जो सीसीटीवी थे उनको खंगाला जा रहा था। हालांकि राजेंद्र चौहान जिनको अभी गिरफ्तार करने की खबर सामने आई है, राजेंद्र चौहान 30 जून को रिटायर हो गए थे, लेकिन उससे पहले के भी सीसीटीवी की जांच की जा रही है और जितना पीछे जा रहे हैं उतने ही नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जो कि विरोधाभास भी दिख रहे हैं और इसमें कई एविडेंस भी सामने नजर आए हैं जिसमें और लोगों को पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। सही,
0: बहुत धन्यवाद अंकित। अंकित शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर इस समय की यह है कि एक पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर एक और आ रही है। जांच के लिए बनी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी जांच रिपोर्ट सीधे अब सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल करेगी। ये रिपोर्ट किसी और को नहीं दी जाएगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सोमवार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। खबर यह भी है कि एसआईटी ने राज्य सरकार से अतिरिक्त समय भी मांगा है, थोड़ा सा समय और मांगा है, लेकिन अब ये रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं जाएगी, ये रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। पहले यह था कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट बहुत जल्द सौंपने वाली है, लेकिन अब यह खबर आ गई है कि सोमवार को एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से इस समय हमारे साथ हैं। आशीष, ये निर्णय क्यों कि सीधे रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अंतरिम रिपोर्ट है वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट को जाएगी और इसमें क्योंकि जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई थी और माना जा रहा था कि इसी को फाइनल रिपोर्ट करके आगे बढ़ाया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ करेगी, लेकिन अभी जो इंतरिम रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दी जाएगी, ये निर्णय ले लिया गया। और दूसरा जो है फाइनल रिपोर्ट अभी बननी है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसके लिए सोमवार तक का समय भी मांगा है SIT ने, जिससे कि SIT इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करेगी, वो फाइनल रिपोर्ट होगी। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट थी, जो पहले दी गई थी, इंतरिम रिपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो बहुत सारी चीज़ें थी जो रिपोर्ट की, वो जरूर सुप्रीम कोर्ट को जा रही है। लेकिन अभी भी हालांकि जो फाइनल रिपोर्ट होगी, जो कि सोमवार तक टाइम लिया है SIT ने, वो सौंपेगी, वो बाद में सौंपेगी, लेकिन शुरुआत अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रिपोर्ट जाएगी इंटरिम, और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट का समय है उसके लिए समय लिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं जो साक्ष्य है राम मंदिर से जुड़े हुए, जो फाइनेंशियल लैप्सेस दिखाए गए हैं, इसके साथ साथ जो दोषी लोग हैं।
0: बहुत धन्यवाद आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से अखिलेश सरकार को घेरा। शामली में योगी आदित्यनाथ ने जहां एक ओर माफिया राज पर पुरानी सरकार पर हमले की बौछार की, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर भी जमकर अटैक का जवाब दिया।
4: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब 2020-21 में जब मैं आया था यहां, पहले मैं 2017-18 में आया था, फिर 2021 में मैं आया था, मैं केराना में उस परिवार से भी मिला था जिस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम केराना के बाजार में कर दी गई थी। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी बोले कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा को रोक नहीं सकता।
4: बहन और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा का उल्लेख कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो इस पर राजनीति गरमा गई। जवाब आया समाजवादी पार्टी की तरफ से।
5: मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कांवड़ जो है हुड़दंगई करते हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडई करते हैं। मैं इस बात से डिफर कर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि भगवान शिव जी के मानने वाले लोग जो उसमें जाते हैं 99%, वो कभी भी हुड़दंगई, बदमाशी, गुंडई कर ही नहीं सकते। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो उसमें डाले जाते हैं, जिससे तनाव पैदा हो। आपने देखा है कि आज नहीं, सैकड़ों साल से जब ये यात्राएं निकलती हैं तो मुसलमान फूलों से उनका वेलकम करता है। ये हमारा कल्चर है उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब भाजपा गुंडे उसमें जब घुस जाते हैं तो उस कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाता है। शिव जी के जो भक्त हैं, शिव जी के लोग जो हिंदू भाई हैं, वो ना हुड़दंगी करने वाले लोग हैं ना बदमाशी करने। मुख्यमंत्री जी को अपने इस भाषा को विड्रॉ करना चाहिए।
0: और इस समय एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही शिवसेना के दोनों गुटों के विलय की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उद्धव गुट से अलग हुए 6 लोकसभा के सांसदों के शिंदे गुट में विलय की अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसके अलावा NCPCI में शामिल हुए तृणमूल के बाकी सांसदों की पार्टी को भी मान्यता दी जा सकती है और ऐसा होने पर NCPCI को सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। जो मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है तो जल्द ही यह अधिसूचना जैसे ही जारी होती है तो शिवसेना शिंदे में जो उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूट कर आए हैं उन्हें शामिल करके इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मतलब उन्हें शिवसेना शिंदे गुट का मान लिया जाएगा। मानसून सत्र से पहले यह तय हो जाएगा ताकि उससे पहले जो मानसून सत्र शुरू होने से पहले, हालांकि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो रहा है, सर्वदलीय बैठक में भी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। और सबसे बड़ा झटका यहाँ उद्धव ठाकरे को लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जो बाकी हुए हैं, अलग हुए 6 सांसद, अब वो सीधे सीधे शिंदे गुट से जुड़ जाएंगे, शिंदे गुट के होंगे और उप मुख्यमंत्री शिंदे की शिवसेना के वो कहलाएंगे, उद्धव ठाकरे के नहीं। बिल्कुल इसी तरह से उधर शरद पवार की पार्टी के साथ भी यही हुआ है। उनके जो सांसद टूट कर आए हैं, मतलब ये हुआ कि दोनों अब NDA के साथ होंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, अधिसूचना आने वाली है, कैसे समझें इसे?
6: देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से जरूर कोशिश है कि जो परिसीमन बिल जब अप्रैल के अंदर लाया गया था स्पेशल सेशन के दौरान, तो 2/3 सरकार के पास बहुमत नहीं था, लेकिन पिछले कुछ समय में सही अगर हम देखें तो एक तरीके से अंगणित जो है वो बदला है। आज जो अगर आप देखें तो लोकसभा की टोटल सीट जो है वो 540 है, 2/3 के लिए 360 आपको नंबर चाहिए। सरकार के पास 298 का आंकड़ा है। अगर उसमें 20 TMC के बागी सांसद जोड़ दें और DMK के 22 सांसद अगर सपोर्ट करते हैं इस बिल का, क्योंकि सरकार से DMK की ये मांग थी कि 50% जो सांसद हैं उनकी संख्या हर राज्य में बढ़ा दी जाए, तो अगर ऐसे में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है और सरकार बिल के अंदर ये अमेंड करके लेकर आती है कि सभी राज्यों में 50% जो है लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो DMK भी उनके साथ आ सकती है। NCP शरद पवार की जो पार्टी है, सुप्रिया सुले का कल बयान आ चुका है कि हम इस बिल को समर्थन दें या ना दें, इस पर चर्चा चल रही है। तो सरकार को लगता है कि चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा, वो इस बिल का समर्थन कर सकते हैं। विपक्ष में और सरकार की यह रणनीति है कि अलग अलग मंत्री अलग अलग जो है राज्यों राजनीतिक पार्टियों के साथ जो है वो बातचीत करें।
0: बहुत धन्यवाद हिमांशु। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता। और यहां पर सीधे तौर पर अब NDA 360 यानी कि 2/3 के नजदीक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर भूमि के नाम से दर्ज 312 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और उसके साथ ही मजार बना ली गई थी। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध इमामबाड़ा हटा दिया गया, अवैध मजार को ढहा दिया गया और जबरदस्त सुरक्षा के बीच ये दोनों कार्रवाई की गई, लेकिन किसी तरह का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ है। और संभल से हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
7: संभल के मुकर्रपुर गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मजार पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बुलडोजर के जरिए देखिए जो पूरी मजार है जो कि बंजर भूमि पर कब्जा करके यहां पर ये पूरी मजार बनाई गई थी, अब उस पूरी मजार को यहां पर फिलहाल आपको यह तस्वीरों में देखा जा सकता है। देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है वो यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। DM अंकित खंडेलवाल और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई के मौके पर पहुँचते ही ये पूरी कार्रवाई यहाँ जो है शुरू हुई है और फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसी तरह से जहाँ एक बुलडोजर पूरी इस मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है, उसके ठीक बराबर में ये देखिए दोनों जो यहाँ पर बुलडोजर है वो पूरे इमामबाड़े को यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई जो शुरू कर चुके हैं और इसी तरह से जो भी पूरा अवैध निर्माण है वो फिलहाल यहाँ पर ध्वस्त किया जाना शुरू हो चुका है। यानी अब से कुछ ही देर बाद यानी 24 घंटे बाद ठीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल जिले में होंगे, जबकि वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जो भी अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। और
0: आखिर अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन का अब क्या इस्तेमाल होगा, यह हम संभल के वरिष्ठ अधिकारियों से समझने का प्रयास करते हैं।
8: जनपद संभल में जो लैंड बैंक बनाए जाने का कंसेप्ट है, उसको मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अभी तक कई सौ हेक्टेयर जमीन है उसको मुक्त करवाया जा चुका है। उसी मुहिम के तहत ये सवा चार साढ़े चार बीघे जमीन है जो कि 1.25 करोड़ रुपए की मालियत की सरकारी जमीन है, उस पर कब्जा करके यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उनको डिमोलिश करवाया जा रहा है। चार थानों की फोर्स और पीएससी और आरआरएफ की मौजूदगी में ये कार्रवाई संपन्न करवाई जा रही है। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि प्रत्येक गांव के शहर के विकास के लिए जब तक के लिए सरकार के पास लैंड बैंक नहीं होगा, जमीन नहीं होगी, तब किसी भी प्रकार की कोई भी स्कीम है उसको लागू नहीं कर सकते हैं। जनपद संभल में इस तरीके की तमाम जितनी सरकारी ज़मीनें थी उन पर कब्जे करके जिन जिन लोगों के द्वारा इस तरीके से अतिक्रमण किया गया है उन सबको डिमोलिशन करवाया जा रहा है।
9: देखिए ग्राम मुकर्रबपुर है जिसमें लगभग 3,500 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है, बंजर की जमीन थी जिस पर कब्जा करके इमामबाड़ा और बाकी सिविल स्ट्रक्चर बनाए जा रहे थे। तहसीलदार कोर्ट से सुनवाई के बाद इसमें दुरुस्तीकरण का आदेश पारित हुआ है और आज उसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। जमीन चूँकि आबादी के बीच है और जैसा कि प्रशासन ने जानकारी की है इस जमीन में काफ़ी संख्या में भूमिहीन परिवार भी हैं, तो शासन की मंशा के अनुरूप हमारा प्रयास रहेगा कि गांव के ही भूमिहीन लोगों को इस ज़मीन पर बसाया जाए, उनको पट्टा दिया जाए, जिससे वो ना केवल सरकारी ज़मीन की सुरक्षा हो पाए बल्कि वो भी अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
0: उधर कोलकाता में जमात हिंद ने प्रतिबंधित मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर धमकी देकर प्रशासन को सांसद में डाल दिया। जमीयत के ऐलान को देखते हुए भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया, लेकिन संतोष की बात यह रही कि जमीयत ने नमाज पढ़ने की जिद छोड़ दी और स्थिति बिगड़ने से बच गई।
10: नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे।
11: कोलकाता एयरपोर्ट पर आज सुबह से सुरक्षा का भारी जमावड़ा था। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा इंतजाम की वजह एक भारी भरकम चेतावनी थी, वो क्या थी ये बताएं इससे पहले एक बार इस सुरक्षा चक्र को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमारे संवाददाता तापस सिंह गुप्ता लगातार मौके पर मौजूद थे और हालात पर नजर रखे हुए थे।
12: यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी भारी मात्रा में जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया है, क्योंकि अगर कोई स्थिति बेकाबू हो तो उसे निपटने के लिए पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। फिलहाल यहाँ पर धारा 163 BNSS का लागू किया गया है, 4 से अधिक लोगों का जमावड़ा यहाँ पर गैरकानूनी बताया गया है, तो इस वजह से इस इलाके को खाली रखा गया है। भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया।
11: तो सुबह से आज यहाँ जबरदस्त गहमा गहमी थी और इस गहमा गहमी की वजह थी जमीयत उलमा हिंद की एक चेतावनी। इस चेतावनी में साफ कहा गया था कि बंगाल के मुसलमान कोलकाता एयरपोर्ट पर स्थित बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक के आदेश को कतई नहीं मानेंगे।
10: आप नमाज पहन के जा सकते हैं, अब सिर्फ ये लगा के जाए जगह जिसका
13: ठीक
10: ना कोई विरोध होगा ना जलसा होगा कोई क्या होगा नहीं होगा।
11: 136 साल पुरानी इस मस्जिद पर पहली बार सत्ता में आई शुभेंदु सरकार ने यह कहकर पाबंदी लगा दी कि एयरपोर्ट के भीतर होने से इस मस्जिद से सुरक्षा को खतरा है।
14: जातीय सुरक्षा रंगी विमानबंदर निरापत्ता आगे देखते हैं, यही विमानबंदर लोकेशन खूब गुरुत्वपूर्ण निरापत्तार क्षेत्र, चीन बांग्लादेश सब काछे आंतर्जातिक विमानबंदर এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না, বাকি ঠিক আছে। আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি, ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না, তা বকরিত করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই।
11: लेकिन सिद्दीकुल्ला जैसे मुस्लिम धार्मिक नेताओं का कहना है कि ये मस्जिद 136 साल पुरानी है, एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे थे, इसे आस्था का सवाल बता रहे थे, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी,
10: मुसलमान नमाज पढ़ने जाएंगे दुर्बल नहीं होता है, रास्ता पर नहीं उतरेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, माइके नहीं करेंगे, सिंपल नमाज पढ़ने जाएंगे, इसको पहन करके, इसमें परेशानी क्या है? ये धार्मिक मसला, हम चाहते हैं यहाँ पर अथॉरिटी खत लिख कर पोस्टनेस करे, हम भी जाने को तैयार है।
11: सिद्दीकुल्ला के ऐलान और अंदाज को देखते हुए प्रशासन ने उनकी धमकी को गंभीरता से लिया और हवाई अड्डे के बाहर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल बैठा दिए। सिद्दीकुल्ला की धमकी को देखते हुए लगा था कि आज कहीं हालात बिगड़ न जाएं, लेकिन मुस्लिम जमात ने समझदारी दिखाई और जुमे की नमाज खत्म होने तक यहां किसी किस्म की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।
12: आज भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था बांकड़ा मोड़ और इसी एयरपोर्ट के पास, ताकि किसी भी सूरत में यहां पर भारी जमावड़ा ना हो लोगों का, जिस वजह से धारा 163 BNSS का लागू किया गया था। आखिरकार सिद्दीकुल्ला चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनका उद्देश्य नहीं था कि यहां पर कोई हिंसक घटना हो, इस वजह से वो आगे इस विरोध प्रदर्शन का जो फैसला उन्होंने लिया था वो उससे वो पीछे हट गए और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आने वाले दिनों में जरूरत पड़ा तो अदालत का दरवाजा वो खटखटाएंगे और वहां से अनुमति लेकर वो अंदर प्रवेश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अर्गो घोष के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, कोलकाता।
0: और आज के इस पूरे घटनाक्रम पर जमीयत के बंगाल प्रमुख ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
10: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया। आज के बाद कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते हैं, और डिपार्टमेंटल खुतूत

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Nothing feels better on a hot summer day than coming home to a nice air-conditioned house. If your AC is on the fritz, don't sweat it. Call the pros at the Waterworks Heating and Cooling. We service all makes and models and can provide great savings on a Lennox home comfort system that delivers that perfect feeling. The Waterworks Heating and Cooling Services. Call us at 614-232-2222 and schedule fast service today. The Waterworks. Better care, better value, better results.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुट अपने सियासी वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ शरद पवार की चुप्पी के बावजूद उनके करीबी सहयोगी जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंगलवार रात गुपचुप मुलाकात की, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई। इसी के साथ सुनेत्रा पवार की एनसीपी के दो वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने भी सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। अब खबर है कि सुनेत्रा पवार इस बात से नाराज हैं कि दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया।
3: छोटा पार्टी में किसी तरह का रिफ्ट है क्या मैम?

0: रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी कुछ लेटर्स शेयर हो रहे हैं।
1: मैम मैम क्लेरिफिकेशन कर दीजिए,
0: जस्ट क्लेरिफिकेशन मैम, एक छोटा सा अगर।
2: इस बीच सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के आधे सांसद और विधायक चुपके से सत्ताधारी एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा सके। इस समय शरद पवार के एनसीपी के पास 8 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 10 विधायक और 3 एमएलसी हैं। इसके साथ ही सत्ताधारी एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट भी नेतृत्व को लेकर अंदरूनी कलह का सामना कर रहा है। आलाकमान ने यह भी फैसला किया है कि वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाले अपने राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देगी। इस मामले में सुनील तटकरे ने कहा कि वो नोटिस की कानूनी वैधता की जांच करेंगे। ऐसी चर्चा है कि अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार के सक्रिय सियासत में आने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। हालांकि एनसीपी के दोनों गुट के मौजूदा समीकरण को देखते हुए लग रहा है कि दोनों धड़ों का विलय होकर रहेगा। जयंत पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि अजीत पवार के समय विलय की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई थी, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद विलय की बात वहीं रुक गई थी।
3: सही है ना, दादा की इच्छा थी कि हम साथ में आकर काम करें। अचानक दादा की दुर्दैवी मृत्यु होने के बाद उसको पूर्ण विराम मिल गया है।
4: दूसरा सवाल ये कि लवासा में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, खासकर जो काफी चर्चा में मिला,
3: देश की न्याय संस्था ने खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ।
2: ऐसी भी अटकलें हैं कि शरद पवार ने अपनी पार्टी में टूट रोकने के लिए एनडीए के साथ जाने के संकेत दिए हैं। पवार सत्ताधारी एनसीपी की कला का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस हालात में अगर पवार ने एनडीए का दामन थामा तो मोदी सरकार में वो मंत्री पद को लेकर बेहतर मोल भाव करने की स्थिति में रहेंगे।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मानसून सत्र से पहले बड़ा हो सकता है एनडीए का कुनबा। उद्धव के बागी 6 सांसदों को शिंदे गुट में शामिल करने की जारी हो सकती है अधिसूचना। ममता के बागी सांसदों के एनसीपीसीआई में विलय को मिल सकती है मान्यता।

0: रफ्तार में है भारत के विकास की गाड़ी, अब पंजाब को देंगे हजारों करोड़ का गिफ्ट। सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी चढ़ावा चोरी की एसआईटी की रिपोर्ट। सोमवार को सबसे बड़ी अदालत तक जाएंगे जांच के तथ्य। एजेंसी ने तफ्तीश के लिए सरकार से मांगा अतिरिक्त समय। यूपी के फिरोजाबाद में दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर, इटावा एसओजी के दो सिपाही भी घायल, मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: अमेरिका का बार ईरान का पलटवार। सीरिया से कुवैत तक बारूदी बौछार, न अमेरिका रुका न ईरान झुका। सुबह हो या रात सिर्फ बमों की बरसात। पुल और पावर प्लांट सब होंगे शांत। खाड़ी देश पे हाहाकार, महायुद्ध को तैयार। हुर्मुज हुआ बंद, तबाही का महाट्रेंड। खाड़ी में छिड़ी लड़ाई पूर्ण तबाही पर आए।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। इस वक्त मिडल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। महायुद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। अमेरिका रुकने को तैयार नहीं और ईरान झुकने को तैयार नहीं। छह रातों से जारी अमेरिकी बमबारी का बदला लेते हुए ईरान ने आज सुबह वो कर दिया जिससे पूरी दुनिया कांप उठी है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और से लेकर सीधे सीरिया तक मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर विनाशकारी पलटवार किया। सीरिया के अल तनफ में अमेरिकी स्पेशल कमांडर के सेंटर पर ईरान ने सीधे निशाना बना दिया है। कतर की राजधानी दोहा तक भी मिसाइलों का मलबा गिर रहा है और मासूम बच्चे भी इसमें घायल हुए हैं। उधर अमेरिकी हमलों में ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप को हिला कर रख दिया है। पांच बड़े पुल और रेलवे स्टेशन मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हो चुका है। तेल की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है और अब ईरान ने रेड सी को भी बंद करने की धमकी दी है। यानी अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। पुल, पावर प्लांट, सड़कें, यहां तक कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक दूसरे के निशाने पर हैं। लेकिन इन सब के बीच बुलेटिन की सबसे चौंकाने वाली खबर सीरिया से आ रही है। 28 फरवरी से छिड़े महायुद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ईरान ने सीरिया पर सीधे हमला किया है। उस सीरिया पर जहां मिसाइल हमला किया गया है उसका अब तक इस जंग में कोई लेना देना नहीं था। ईरान की अर्थ सरकारी इमरजेंसी या सरकार की जो समाचार एजेंसी है तस्नीम न्यूज ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने सीरिया के अल तनफ में सैन्य ठिकानों पर बने स्पेशल ऑपरेशन कमांडो कमांड सेंटर को निशाना बनाया और यह हमला एकाएक किया गया। IRGC के आधिकारिक बयान में कहा गया कि हमला ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में बमबारी को लेकर सेना की कार्रवाई है और अमेरिकी मिसाइल हमलों का सीधा बदला भी। उस अमेरिकी हमले में ईरान की 388वीं ईरान शहर ब्रिगेड के 7 ईरानी सैनिक मारे गए थे और अब ईरान ने दावा किया है कि उसने भी अमेरिका सेना के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को सीधे निशाना बनाया। यहां मौजूद एक महत्वपूर्ण रडार सिस्टम्स को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। अमेरिकी विशेष अभियानों के इस्तेमाल होने वाले कई हेलीकॉप्टरों को भी मलबे में तब्दील कर दिया गया। ईरान का दावा है कि इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक हताहत और घायल भी हुए। इस खबर का एक चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की थी कि फरवरी 2026 में ही अमेरिका ने अल तनफ बेस में अपने सैनिकों को पूरी तरीके से वापस बुला लिया था और अब इस बेस पर नियंत्रण सीरिया की अधिकारियों को सौंप दिया गया था। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और वर्तमान सीरिया सरकार ने इस हमले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी या बयान नहीं दिया है।

अब सवाल यह है कि जब जंग करीब 5 महीने से चल रही है, तब ईरान ने इतने दिनों बाद सीरिया पर हमला क्यों किया और उसने हमले के लिए सीरिया को इस इलाके को ही क्यों चुना? सबसे पहले मैं आपको बड़ी वॉल पर दिखाता हूं कि आखिरकार ईरान से इस बेस की दूरी कहां पर और आखिरकार इस बेस को टारगेट करने के पीछे का मकसद क्या है। दरअसल यह है ईरान, और अगर आप देखें यहां पर यानी इराक बीच में और फिर सीरिया का इलाका आता है, इराक और सीरिया, और अगर आप देखें तो यह है इसराइल का इलाका। दरअसल ये इसराइल के इलाके के पास यानी जो साउथ ऑफ सीरिया पड़ता है उसी के बेहद करीब ये इलाका है अल-तनफ। इसका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि अगर आप देखें जो अल बेका या फिर आप कह सकते हैं कि जो बेका वैली का इलाका है सीरिया का, वो वहां से अमेरिका इसको मॉनिटर करता था और यहां पर अमेरिका की मौजूदगी हमेशा से रही। हालांकि अमेरिका ने यह भी दावा किया कि जब साउथ सीरिया के इलाकों में इसराइल की फोर्सेस आ गई तब उसने इस बेसिस पे से अपनी डेवलपमेंट अपनी डिप्लॉयमेंट को बहुत हद तक कम कर दिया था। लेकिन अब ईरान ने करीबन इतनी दूर जाकर यहां से सीधे सीरिया के इस बेस पर अटैक किया है। इससे पहले इरबिल पर भी अटैक किया गया था, और आप माने तो ये वो रूट था जिसका इस्तेमाल अक्सर हिजबुल्ला को आर्म्स एंड एम्युनिशंस की सप्लाई करने के लिए भी किया जाता था। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि सिस्तान में अमेरिकी हमले का बदला लिया गया है और ईरान ने इस इलाके को टारगेट किया। ईरान के दावों पर पेंटागन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन हाँ सीरिया का यह हमला बताता है कि अगर ईरान ने हमला किया है तो इसके पीछे यही वजह रही होगी कि यहां पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी या फिर अमेरिका यहां से इराक के इलाकों को या फिर इन इलाकों को ईरान के मॉनिटर कर रहा होगा। इसी वजह से ईरान ने इस इलाके को चुना। इससे पहले भी इरबिल में भी कई जगहों पर इस तरीके के अटैक हमने देखे जहां पर ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी में वहां पर अटैक किए। यानी आप मान के चलिए कि अब पूरी तरीके से इस इलाकों को टारगेट किया जा रहा है ताकि कम से कम ईरान अब ये बता सके कि वो पीछे नहीं हटा है। और इस बात से ईरान बौखला गया है क्योंकि वो लेबनन में इसराइल से लड़ रहे हिजबुल्ला के लिए हथियारों की खेप लगातार भेजने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब तक ईरान से इराक होते हुए सीरिया के रास्ते हिजबुल्ला को ये आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई की जाती थी। आपको याद होगा कि साउथ सीरिया के कई इलाकों पर इजरायली फोर्सेस आकर बैठ गई थी और उसके पीछे का मकसद भी ये था कि वो उस रसद की लाइनों को, उस लॉजिस्टिक लाइनों को काटना चाहती है जो हिजबुल्ला के लिए ईरान, इराक और सीरिया के माध्यम से लेबनन में पहुंचा रहा था। और इसी वजह से इस जगहों पर अटैक किए गए, खाली तेल टैंकरों में छिपाए गए ड्रोन मिसाइल, और इन हमलों को लेकर भी इसराइल की फोर्सेस पहले भी अलर्ट जारी कर चुकी और कहती रही है कि इन रूट्स का इस्तेमाल ईरान सीधे तौर पर अपने हथियारों की खेप हिजबुल्ला तक पहुंचाने के लिए करता रहा है। और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसमें तेल टैंकरों के अंदर मौजूद हथियार, ड्रोन, मिसाइल जो हिजबुल्ला तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। और इसको लेकर ईरान भी अब काउंटर स्ट्रेटजीज पर आ गया। ईरान ने चाहता है कि जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस हो सीरिया के अंदर, साउथ सीरिया में, जहां से वो इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हो, वहां पर अटैक कर अब एक बड़ा चैलेंज अमेरिका और इसराइल को दिया जा सके। और देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। इराक के कुर्दिस क्षेत्र में स्थित इरबिल में भी आ रही है जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सबसे आधुनिक और बेहद महंगे एंटी मिसाइल सिस्टम्स, डिफेंस सिस्टम्स पेट्रियट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया और लगातार वॉर मॉनिटरिंग को हैंडल्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये सिस्टम एक हमले में नष्ट हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इरबिल के पास हुए सैन्य ठिकानों पर बड़े नुकसान की बात सामने आई है। सैटेलाइट डेटा के विश्लेषण में एक विशेष स्पॉट को हाईलाइट किया गया जहां पर 14 जुलाई को पेट्रियट सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट उसके स्ट्रक्चर को नजर आता है, लेकिन 16 जुलाई की तस्वीर वहां दिखाती है कि वहां पर कैसे भारी डैमेजेस हुए, हैवी डैमेजेस, और ढांचा पूरी तरीके से गायब नजर आता है। दरअसल मैं जैसा आपको पहले भी बता रहा था कि सीरिया के साथ साथ इरबिल पर भी अटैक करने के पीछे का मकसद ईरान का स्पष्ट था कि यहां पर अमेरिका के मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि यहां पर अगर यहीं से लगातार अमेरिका जो है अपने कई एयर स्ट्राइक्स को, अपने एयर ऑपरेशंस को मॉनिटर भी कर रहा है।

0: और अब बात भारत के लिए भी गंभीरता वाली है। दरअसल जो खबर है वो भारत के लिए चिंता पैदा करती है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के शाहबाद पोर्ट पर हमला किया है, जहां भारत के मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंचने के लिए अच्छा खासा निवेश, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया था। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी पूर्वी शहर चाबहार में सामरिक बंदरगाह पर आज सुबह हमला किया। ये हमला सुबह लगभग 4:30 बजे किया गया था, जिसमें बंदरगाह के निगरानी टावरों को निशाना बनाया गया। ये हमला अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने किया। एकदम तड़के सुबह 3 बड़े हमले लगातार किए गए। अमेरिका ने यहाँ के वॉच टावर को भी हमला किया और 3 बार इस पर मिसाइल दागी गई। उन 3 ताकतवर मिसाइलों में हमले के बाद वहां की तस्वीर ऐसी थी कि ब्लॉक टावर या फिर उनका जो सर्वेलेंस टावर था पूरी तरीके से तबाह हो गया, निगरानी टावर ढह गया। इन टावरों की मदद से ही ईरान समुद्री यातायात पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता था और उसका दावा था कि निगरानी की मदद से ही वो समुद्र में मौजूद मछुआरों और जहाजों को मदद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में ये वॉच टावर उसके लिए बहुत मददगार था। दूसरी तरफ अमेरिका ने मान्यता है कि इसकी मदद से ईरान हॉर्मुज में गुजर रहे जहाजों को निशाना बना रहा था और यही वजह है कि बीती रात अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर मौजूद इस वॉच टावर को सीधे तौर पर निशाना बनाया। आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चाबहार अब से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था कि चाबहार को इस तरीके से अटैक किया गया, लेकिन इन 5-6 दिनों के हमलों के अंदर चाबहार को भी अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर अटैक करने और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज प्रांत में हुए अमेरिकी हमलों के कथित तौर पर 5 पुलों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही है। अमेरिका ने अपने हवाई हमलों के अभियान को बढ़ाते हुए पुलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये ट्रंप की उन धमकियों का हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करता तो वो अब आगे के तौर पर पावर के साथ साथ उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करेंगे। ईरान की सरकारी और अन्य मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रात भर अमेरिकी हमलों में लोग काफी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बल्कि कई आम नागरिक भी इसमें मारे गए, जिसमें एक हवाई अड्डा और एक अहम पुल भी शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों पर नए मिसाइलों से हमले किए और चेतावनी दी है कि हमले और तेज होंगे अगर अमेरिका नहीं रुका। और इन ताजा खबर में ये भी खबर आ रही है कि ईरान पर रात भर हुए अमेरिकी हमलों में मारे जाने वालों की संख्या लगातार 8 हो गई। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने का बताया है कि रात भर हुए अमेरिकी हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या अब 8 हो गई है। एजेंसी ने आगे ये भी दावा किया है कि गुरुवार देर रात और आज तड़के कई प्रांतों में एक बार फिर से अमेरिकी सेना द्वारा हमले किए गए। हमलों में 20 से ज्यादा अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2 दिन पहले ईरान को यह धमकी दी थी कि अब वो सच हो गई है, क्योंकि सुनिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे थे कि अगर ईरान नहीं रुका तो फिर अब अमेरिका उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करेगा, निस्तनाबूद कर देगा।
1: Power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: दरअसल अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में ईरान के 5 ऐसे महत्वपूर्ण पुलों को टारगेट किया, बर्बाद कर दिया है, जो ईरान की आप कह सकते हैं बहुत बड़ी लाइफलाइन के तौर पर जाना जाता था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से पुल है जिनको टारगेट किया है। सबसे पहले ये देखिए, ये है वो इलाका यानी सदर्न इलाका, यानी करीबन 2450 किलोमीटर की वो सीमा यानी समुद्री सीमा, कोस्टल एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक फोकस करके ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया। अब अगर आप देखें 5 पुल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से पुल हैं, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। बंदर खामिर यानी मारो गांव का पुल, सबसे पहले आप देखिए ये है वो बंदर अब्बास यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ठीक पहले, यहां पर इसमें बंदर खामिर जिले के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहां से आगे जो नेशनल हाईवे पड़ते हैं उनको ये ज्वाइन करता था, इसको टारगेट कर दिया गया। अब दूसरा अगर आप बात करें कि केवार रेस्तान पुल, यानी ये केवार बंदर खामिर बंदर अब्बास को जोड़ता है, यानी एक तरीके का ट्राई जंक्शन था जो यहां से यहां और यहां से यहां इसको जोड़ता था, इसको भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद अगर आप देखें कि वो है गिरवेह पुल जो बंदर अब्बास, बंदर खामीर और लार को जोड़ता था, यानी वो यहां से इस पूरे इलाके को जोड़कर आगे की तरफ बढ़ाता था, इस पुल को भी टारगेट किया गया है। और अगर आप देखें इसके बाद बंदर अब्बास और खमीर लार रूट को भी टारगेट किया गया, यानी यहां का ये रूट। और ये पांचों पुल वो थे जिनको सीधे तौर पर अमेरिका ने टारगेट कर दरअसल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो इनका सर्विलेंस है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर तेहरान से रसद आनी हो, यानी तेहरान से नॉर्थ के इलाकों से साउथ के इलाकों को जोड़ना हो, क्योंकि यहां से एक नेशनल हाईवे भी जाता है जो सीधे तौर पर नॉर्थ से साउथ को जोड़ता है, तो ऐसे रूट्स को काटा गया है जहां से नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। और ना सिर्फ रसद बल्कि सर्विलेंस को भी, मोबिलाइजेशन को भी इससे नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अगर ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट हुई तो ईरान, अमेरिका को सबसे पहले ये काम करना होगा कि वो ईरान की फोर्सेस को आने से रोके, और शायद इसी वजह से इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब ईरानी सेना ने बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी बड़ा ड्रोन हमला किया। दरअसल ईरानी सेना के अनुसार बहरीन के अल्क एयरबेस पर मुख्य निशाना बनाया गया। इस बेस को अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर और P-8 ड्रोन भी तैनात किए गए थे। हमले को अंजाम देने के लिए ईरान ने अपने आधुनिक आराश सुसाइड विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ईरान ने बयान जारी कर कहा है कि यह हमला अमेरिका की ओर से ईरान में पुलों और बंदर अब्बास में पावर प्लांट और पावर स्टेशनों पर और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने के एवज में लिया गया है। और उसने ये भी कहा कि निर्दोष लोगों का बदला ईरान ने इसी हमले के साथ लिया है। इस हमले के बाद पूरे बहरीन में हवाई हमले के सायरन गूंज उठे। अमेरिका पिछले 6 दिनों से लगातार ईरान पर भारी हमले कर रहा है ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को पर मंडराते हुए ईरानी खतरे को कम किया जा सके, और इसके वज में ईरान भी अब मिडल ईस्ट के अलग देशों पर, उन तमाम देशों पर हमले कर रहा है जहां पर अमेरिकी बेसिस या अमेरिका की मौजूदगी है। और देखिए बहरीन ही नहीं, यूएई भी अब लगातार ईरान के टारगेट पर है। ईरान ने एक बार फिर से यूएई पर बहुत बड़े हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार IRGC ने दावा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अल धाफरा हवाई अड्डे पर सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर यह दिखाया गया जिसमें अमेरिकी सेना के 4 हैंगर्स को नष्ट कर दिया गया। ईरान का दावा है कि ये विनाश उसके द्वारा किए गए सफल मिसाइल हमलों के द्वारा किया गया है। ईरान ने यह भी दावा किया गया है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में अल दाफरा बेस पर अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली और उनके एयर कॉम्बैट सेंटर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। दावों के मुताबिक हवाई हमलों में बेस के भीतर कम से कम 4 प्रमुख हैंगर और उनके जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उनको भी नुकसान पहुंचा है। आपने ये तो देख लिया कि ईरान के कौन कौन से इलाकों में अटैक हुए। अब ईरान ने पलटवार करते हुए कौन कौन से खाड़ी देशों पर अमेरिका के बेसिस पर अटैक किए, ये भी आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है। अब ये अटैक ईरान के इसराइल पर नहीं हो रहे हैं, ये अमेरिका पर डायरेक्टली नहीं हो रहे, अब ये ईरान वर्सेस मिडल ईस्ट में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में इस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। अगर आप देखें कि ईरान पर अमेरिकी हमलों में कहां कहां पर अटैक किए गए, सबसे पहले ये आपको बता दें, दरअसल आप देखें केशम द्वीप, ये वो इलाका है। इसके अलावा अगर आप देखें कि बंदर अब्बास IRGC का नेवल हेडक्वार्टर भी बताया जाता है, और कहा जाता है कि यहां पर सिस्तान और बलूचिस्तान के 388वीं मैकेनाइज इन्फेंट्री ब्रिगेड पर अटैक किए गए, और ये इलाके वो हैं जो आप मानिए कि कोस्टल इलाकों के साथ साथ, क्योंकि यहां पर इस पूरे कोस्टल इलाकों में ईरान के करीबन 8 से 9 बड़े बंदरगाह मौजूद हैं, और इन्हीं बंदरगाहों को सपोर्ट करने के लिए IRGC की मौजूदगी रहती है। अब जब से जंग की शुरुआत हुई तो पूरा फोकस इधर साउथ के इन इलाकों में पहुंच चुका है, जो करीबन 1000 किलोमीटर के ये इलाका है, जो यहां तक आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ज्यादा तैनाती की गई, और इसी वजह से जो टारगेट किए जा रहे हैं स्पेसिफिक, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बंदर अब्बास के इन्हीं इलाकों पर यहां पर अटैक किए जा रहे हैं। मानिए कि अब अमेरिका ये चाहता है कि वो पूरी तरीके से ईरान की IRGC को, उनकी फोर्सेस की मौजूदगी यहां से निष्क्रिय कर दे, ताकि कम से कम जहाजों की आवाजाही को वो आगे बढ़ा सके और अपनी फ्लीट को, यानी अपने अपने हथियारों को, अपने शिप्स को की मूवमेंट वो आगे कर सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिकी वॉर और ईरानी पलटवार के खाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के बादल और गहरा गए। शुक्रवार तड़के कुवैत पर भी ईरान की ओर से बड़े मिसाइल और ड्रोनों से हमले किए गए और ईरान ने कुवैत पर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले किए। कुवैती रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि आधिकारिक तौर पर मेजर जनरल साउद ने ये बताया कि सुबह होने से पहले कुवैती हवाई क्षेत्र में 32 लड़ाकू ड्रोन का पता चला था। इनको इंटरसेप्ट किया गया था जिसे वायुसेना ने इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। कुवैत सेना ने कहा कि ईरानी अटैक में देश के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया था। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट किए जाने के बाद उनका मलबा कई रिहायशी इलाकों में भी जाकर गिर गया। इसमें भारी नुकसान भी हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की और जान माल के नुकसान की कोई खबर इस समय वहां से नहीं आई। इस हमले के बाद ईरान ने खातम अल आम्बिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम ने एक बेहद आक्रामक बयान भी जारी किया और कहा कि अमेरिका ने ईरान के पुल और पावर प्लांट उड़ाया तो ईरान ने भी पूरे क्षेत्र में सभी बुनियादी ढांचों पर अब तक का सबसे भीषण और व्यापक हमला शुरू कर दिया।
2: The criminal United States continues its reckless conduct and its attempts to destabilize the region. First, we reiterate in the clearest possible terms, under no circumstances and by no means will we permit the United States, a country from outside the region, to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran's inviolable red line. If the recent threats by the President of the United States to target the infrastructure of the Islamic Republic of Iran are carried out, then everything that has thus far remained untouched solely because of Iran's restraint, that is, every piece of infrastructure throughout the region, will be destroyed by the powerful armed forces of the Islamic Republic of Iran. They will be
0: मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वही उसके लिए बिजली और पानी सप्लाई करते हैं। समुद्र में बैठे ये देश लगातार अगर पानी सप्लाई पर अटैक होता है तो निश्चित तौर पर वो पैरालाइज हो जाते हैं। और ईरान ने जो धमकी दी थी उसकी हकीकत की जमीन ये है कि कुवैत में अब लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं कि ईरान के हमलों में पानी को खारेपन को मुक्त करने वाले पावर प्लांट और डिस्टिलरीज पर बड़ा नुकसान पहुंचा। कुवैत के बिजली पानी और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का कहना है कि हालिया हमलों में ईरान ने उसके बिजली उत्पादन और पानी के खारेपन को मुक्त करने वाले प्लांट से एक को निशाना बनाया था जिससे वहां आग भी लग गई और प्लांट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कुवैत का लगभग 90% पानी पीने का पानी लगातार यहीं से आता है। इसी तरीके से यूएई में भी पानी का लगभग 42% पानी इस डिस्टिलेशन प्लांट से आता है। ओमान में भी 86% और सऊदी अरब में 70% पानी इन्हीं प्लांट से आता है, जहां पर कहा जा सकता है कि इस पूरे अटैक से वहां की अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहां के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। कहा गया कि टेक्निकल टीम लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी इन देशों को अब इनके ऑयल रिफाइनरी के बाद अब उनके बेसिक और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी महायुद्ध की आंच अब कतर तक पहुंच चुकी है। कतर की राजधानी दोहा में आसमान में आज तड़के भीषण हवाई झड़पे और मिसाइल इंटरसेप्ट भी देखे गए। कतर के अतिरिक्त यानी आंतरिक मंत्रालय ने पुष्टि की है कि आसमान में गिरे मिसाइलों के मलबे की चपेट में आने से एक बच्चा भी घायल हो गया जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया पड़ा। चलिए वक्त अब छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: चोगन परफ्यूम्स द प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae
5: exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip hop
7: exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
8: छक्का
9: सब कैशलेस हो गया है
8: हाँ
10: ला भाई मेरा बैट
8: वो अभी तो ठीक हुआ तू
10: चार्ज हुआ यार
11: बैट किसका है
12: टाटा AIG है तो भरोसा है
13: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया
14: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे
15: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं
13: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम
0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR
16: ये रिश्ता लंबा चलेगा
17: YouTube पे आप देखिए आज तक वर्टिकल अरे भाई फिर घुमा क्यों रहे हो छोड़ दीजिए घुमाने की आदत अब देखिए आज तक वर्टिकल
18: पाकिस्तान इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर तरफ से संकट उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है एक तरफ पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है सेना की तैनाती के बाद भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोच आर्मी के हमले पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं BLA लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है BLA ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मस्तुंग जिले के खटकोचा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा हमला किया संगठन के मुताबिक इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं जबकि कई घायल हुए हैं BLA की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसकी फतेह स्क्वाड ने अंजाम दिया जिसके निशाने पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही बसें उनके सुरक्षा स्क्वाड और बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां थी बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हमले तेज कर रहा है इससे पहले BLA की ओर से 1 से 14 जुलाई के बीच 48 हमलों का दावा किया गया था जिसमें 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे इन हमलों के बीच पाकिस्तान की मुश्किल ये भी है कि बलूचिस्तान में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सबसे बड़ा कारण पानी का गंभीर संकट और लोगों की गुमशुदगी है जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए सबसे संवेदनशील इलाकों में रहा है लेकिन हाल के दिनों में हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस बीच BLA के बढ़ते हमले पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाले हैं आज तक ब्यूरो

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

पहले बड़ा हो सकता है एनडीए का कुनबा। उद्धव के बागी 6 सांसदों को शिंदे गुट में शामिल करने की जारी हो सकती है अधिसूचना। ममता के बागी बगावती सांसदों के एनसीपीसीआई में विलय को मिल सकती है मान्यता। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज। राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक। राज्यसभा में सबसे पहले पेश वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी ने हरियाणा को दिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा। कहा तेल संकट के बावजूद रफ्तार में है भारत के विकास की गाड़ी। अब पंजाब को देंगे हजारों करोड़ का गिफ्ट।

तफ्तीश के लिए सरकार से मांगा अतिरिक्त समय। यूपी के फिरोजाबाद में दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर, इटावा एसओजी ने दो सिपाही भी घायल हुए, मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी।

हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा आतंकिस्तान। गुजरात में जैश के नेटवर्क का काम तमाम। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 45 सैनिकों की गई जान। ब्रिटेन में प्रदर्शनकारियों के गुस्से में घिरा पाकिस्तान। अमेरिका ईरान के बीच शांति दूत बनने के टूटे अरमान। और कितना जलील होगा पाकिस्तान। हद होती है बेशर्मी की, हद होती है अपने पाप छिपाने की, हद होती है अपनों पर जुल्म ठाने की। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, ना अपनी गलतियां मानता है, ना अपनों के साथ हो रहे जुल्म। इसीलिए पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तानी आर्मी अपनों पर ही गोलियां चला रही है। इसका नतीजा ये है कि गांव-गांव, शहर-शहर उसके खिलाफ बगावत की आग भड़क रही है।

0: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। हर मोर्चे पर पाकिस्तान, जिसकी दुनिया भर में पहचान आतंकिस्तान के तौर पर है, वो अब बेनकाब हो रहा है। उसकी सबसे ताजा साजिश जिसका पर्दाफाश गुजरात से हुआ है, ये पर्दाफाश करने वाली साजिश आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक के बाद एक आतंकी इस नेटवर्क से जुड़ते जा रहे थे और जैशे मोहम्मद के नापाक निर्देशों पर चलते हुए सीरियल ब्लास्ट की तैयारियां कर रहे थे। कई तरह के बम बनाने का काम भी पिछले 2 सालों से चल रहा था और कई जगहों पर इसका ट्रायल ब्लास्ट भी किया गया। खैर, गुजरात एटीएस ने इस पूरी साजिश को पर्दाफाश कर दिया है और इन आतंकियों को जैशे मोहम्मद से संबंधों को खुलासा भी कर दिया है। उधर पाकिस्तानी फौज अपने घर में ही घिरती भी जा रही और आसिफ मुनीर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक उसके जुल्म के खिलाफ बगावत तेज होती जा रही। लोग परेशान हैं और जगह जगह पर नारेबाजी और पाकिस्तानी फौज और सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रहे हैं। प्रदर्शन पीओके में भी हो रहे हैं और ब्रिटेन में भी हो रहे हैं। हर जगह पर पाकिस्तान की फौज की करतूतों का पर्दाफाश किया जा रहा है। एक तरफ उसे गृहयुद्ध जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बनने के उसके सारे अरमानों पर पानी भी फिर गया है। उसकी तमाम चालें बेनकाब होती जा रही हैं। और इसी बीच कच्छ से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कच्छ के सर क्रीक में एक बार फिर से पाकिस्तान नाव पकड़ी गई है। बीएसएफ की गश्त के दौरान ये नाव पकड़ी गई है। इसके बाद कच्छ के समुद्री इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान नाव के मामले में जांच शुरू कर दी है। ये भी पता लगा है कि कोशिश की जा रही है पता लगाने की कि नाव का इस्तेमाल किस मकसद के साथ किया जा रहा था और नाव में कोई संदिग्ध सामान या व्यक्ति शामिल है या नहीं। इस बारे में भी लगातार जांच की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के एक बार फिर से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी नापाक साजिश आगे बढ़ा दी। गिलगित बलतिस्तान में विधानसभा में इलाके को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने की प्रस्ताव पेश किया गया। ये कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब पाकिस्तान बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा और खैबर पख्तूनवा में उभरते विद्रोह जैसे गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, उसका सामना कर रहा है। माना जा रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आंतरिक संकट से ध्यान हटाने और कब्जे वाले इलाकों पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। आखिरकार जैश ए मोहम्मद का पूरा प्लान क्या था? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहता था? आखिर किस मकसद से वो गुजरात और आसपास के राज्यों में टेरर नेटवर्क बना रहा था? आखिर किस मकसद के साथ बम बनाने और उसके ट्रायल की ट्रेनिंग दी जा रही थी? क्या आतंकियों को पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग भी दी गई? इन सब के लिए फंड कौन अरेंज कर रहा था और इसके पीछे वो शख्स कौन था? इसमें से कुछ सवालों के जवाब तो गुजरात एटीएस से मिल चुके हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अब भी ढूंढने बाकी है और इसी को लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। पकड़ गए 13 आतंकियों की निशानदेही पर छापेमारी की जा रही, पूछताछ की जा रही। आतंकी हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए इस पूरे मामले पर हमारी खास रिपोर्ट।
1: 8 आतंकियों को पहले दबोचा, 5 और आतंकी गिरफ्तार, 6 बार किया था ट्रायल ब्लास्ट, 3 आतंकी जैश हेडक्वार्टर के संपर्क में थे, पाकिस्तान की बारूदी साजिश का पर्दाफाश। गुजरात एटीएस की पकड़ में आए इन आतंकियों की साजिश पूरे देश को दहलाने की थी। देश के अलग अलग हिस्सों में दहशत फैलाने की इनकी साजिश का अब पर्दाफाश हो गया है। पूछताछ के दौरान एक एक करके इनके जो नापाक इरादे सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इनका देश के कई शहरों में धमाके करने का प्लान था। अपनी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बम बनाए और कई बार धमाकों का ट्रायल तक किया। पूरे देश को दहलाने की साजिश रचने के दौरान इन आतंकियों ने कई राज्यों की रेकी की थी, जिनमें गुजरात भी शामिल था। पहले गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 आतंकियों को पकड़ा था, उनसे पूछताछ हुई और फिर पूरे नेटवर्क को नाकाम करने का अभियान चलाया गया। इसी अभियान के दौरान जांच एजेंसियों को पता चला कि पूरे देश में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची जा रही है और एक के बाद एक होने वाले इन धमाकों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बमों के ट्रायल तक किए जा चुके हैं। इतनी बड़ी साजिश सरहद पार के नापाक इरादों के बिना रची जानी मुमकिन ही नहीं थी। आखिरकार पता चला कि आतंकियों को एक एक निर्देश पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से दिया जा रहा था।
2: उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। इस एक इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक FIR UAPA और BNS के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें कि लगभग 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई, तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
1: जिस खुफिया जानकारी ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ाई वो ये थी कि 3 आतंकी सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थे। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर के जरिए इन्हें साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का हर आदेश दिया जा रहा था। आतंकियों को नेटवर्क मजबूत करने के लिए शहरों और भीड़भाड़ से दूर गांवों में काम करने को कहा गया था, ताकि किसी को शक न हो सके। इन आतंकियों ने गुजरात में ही रहते हुए बम बनाए और कई जगहों पर उनका ट्रायल ब्लास्ट भी किया।
0: गुजरात ATS ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे।
1: जैश ए मोहम्मद को करीब साल भर पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी नुकसान हुआ था। भारतीय सेनाओं के हमले में उसके हेडक्वार्टर के एक बड़े हिस्से के परखच्चे उड़ने की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी थी। कई महीनों बाद जैश फिर से अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश में जुट गया। भारत में सीरियल ब्लास्ट उसकी इसी साजिश का एक हिस्सा है।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
1: कई जगहों से मिली खुफिया जानकारी महीनों तक इस नेटवर्क से जुड़े लोगों पर नजर रखने, धरपकड़ करने और पूछताछ करने के बाद इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो पाया है। जांच एजेंसियां अभी कई पहलुओं पर जांच कर रही हैं। आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन मिलने के बाद ये भी जांच हो रही है कि क्या किसी तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए ये आतंकी पाकिस्तान भी गए थे और आर्थिक तौर पर इनकी मदद किसी तरह से की जा रही थी। अरविंद ओझा और ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और चलिए अब आपको बताते हैं कि गुजरात ATS को आखिरकार इन आतंकियों से क्या क्या मिला है और इनके मदरसों से क्या कनेक्शन है। दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं आतंकियों का मदरसा कनेक्शन किस तरीके का। दरअसल दारुल उलूम गुजरात बनाकर लोगों को जोड़ रहे थे ये आतंकी, लगातार अपने एक बड़ा संगठन क्रिएट कर रहे थे और मदरसों से इन सभी लोगों को यानी बाकी लोगों को रेडिकलाइज करने का काम भी ये लगातार कर रहे थे। अब आगे क्या था अब आपको बताएं कि अहमदाबाद से लेकर सिद्धपुर तक और मध्य प्रदेश तक फैला था इनका ये नेटवर्क। और अगर आप देखें कि ये लगातार जो दूसरे राज्य थे उनको इन्वॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। मदरसों में छिप कर रह रहे थे कई आरोपी और ये कोशिश करते हैं कि लगातार ऐसे हाइड आउट बनाए जो मदरसों के अंदर हो और वहां पर आसानी से छुप कर वहां से मूवमेंट भी कर सके। और मौलाना मसूद अजहर के भाषण भी साझा किए जा रहे थे, उसके भाषण हो, उसके पढ़ने की, उसके जो बुकलेट्स हो, ऐसी कई सामग्री लगातार वहां के यूथ में, वहां के युवाओं में साझा करने की भी इन पर आरोप है। इनके ऊपर लगातार इसके लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 सालों से हो रहा था ब्लास्ट का ट्रायल, यानी ना सिर्फ ये लगातार उस सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे बल्कि उसका ट्रायल भी कर रहे थे। कई जगहों पर इन्होंने ब्लास्ट कर देखा कि आखिरकार जब सामग्री को असेंबल किया जाएगा उसका इस्तेमाल कैसे करना है। भीड़ से बचकर छोटे शहरों या गांवों में छिपे रहते थे, लगातार शहरों से दूर ग्रामीण इलाकों में या फिर उन इलाकों में जहां पर अक्सर बहुत से लोगों की कनेक्टिविटी दूर होती है, ऐसे इलाकों में छिपते थे और भीड़ से बचकर छोटे शहरों में ही अपना हाइड आउट एस्टेब्लिश करते थे। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार गुजरात ATS को इनसे क्या क्या मिला है। दरअसल जैश ए मोहम्मद के झंडे, लगातार उनके जो प्रोपेगेंडा सामग्री है वो इनके पास से मिली है। उनके झंडे हो, उनकी किताबें हो, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इनके पास से बरामद किए गए। झंडों के अलावा जैश से जुड़ा उर्दू साहित्य भी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इनके पास से अक्सर रेडिकलाइज करने के लिए नए युवाओं को ऐसी सामग्री मिलती है जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाई जा सके और उनके पास से डिजिटल सामग्री भी बरामद की गई, यानी इनके मोबाइल फोन में, इनके लैपटॉप में कई ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं जिनसे पता लगाया गया कि आखिरकार ये इसको आगे कैसे सर्कुलेट कर रहे थे। गन पाउडर का इस्तेमाल भी इनके पास से मिला है और ये कहा जा रहा है कि इस पाउडर का इस्तेमाल वो लगातार आईडी बनाने के लिए कर रहे थे और कई जगहों पर एक्सप्लोजिव क्रिएट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल ये कर रहे थे। यानी आप मानिए कि ये बड़ी उपलब्धि है गुजरात के लिए या फिर हमारी सुरक्षा एजेंसीज के लिए, लेकिन किस तरीके से रेडिकलाइज होकर ये बड़े नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर रहे थे इसका पर्दाफाश किया गया। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ उठ रही आवाजों की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ ना सिर्फ स्थानीय लोग बगावत पर उतर आए हैं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफत की गूंज अब ब्रिटेन तक सुनाई दे रही। ब्रैडफोर्ड में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन में पीओके में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया। ये प्रदर्शन जैक यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीओके में हो रहे जुल्मों पर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शन में शामिल लोगों में पीओके में हो रहे खून खराबे को रोकने की मांग भी की गई। उनके हाथ में पोस्टर थे, बैनर थे और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि पीओके में हो रहे अत्याचारों को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई देशों में इस तरीके के प्रदर्शन सामने आ रहे हैं और खास तौर पे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि कैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी फौज और वहां के हुक्मरान लगातार वहां के लोगों पर ज़ातियां कर रहे हैं।
3: सैकड़ों लोगों को शहीद किया जा चुका है, हजारों नौजवानों को अगवा कर रखा है और इस वक्त जो शहदा की लाशें हैं वो भी पाकिस्तान की फोर्सेस हमें वापस नहीं कर रही है। इससे ज्यादा जुल्म की इंतहा क्या हो सकती है? पाकिस्तान की फोर्सेस आजाद कश्मीर के अंदर लूट मार वो भी कर रही है, घरों पर उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेस गोलियां क्यों चला रही हैं? क्यों गोलियां चला रहे हैं? क्यों कश्मीरियों को शहीद कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के जुल्म और जबर के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये जो किलर फोर्सेस है
0: और ब्रिटेन में प्रदर्शन करने वाले कश्मीरियों के अपने साथियों के साथ और दुनिया भर के लोगों के साथ दरअसल कई मांगों को लेकर सामने आए हैं। आइए आपको बताते हैं किस तरीके के पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं और किस तरीके से वो अपील कर रहे हैं। दरअसल पीआईए से यात्रा ना करें, यानी पाकिस्तान एयरलाइन से यात्रा ना करें, ये वो मांग कर रहे हैं कि वो इसी तरीके से पाकिस्तान को ना सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि आर्थिक तौर पर भी आइसोलेट कर सकेंगे। पाकिस्तान में पैसा ना भेजें, यानी वहां पर किसी भी तरीके का अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, वहां पर पैसा भेजना बंद कर दे। पाकिस्तान के टूरिज्म का बहिष्कार करें, यानी उसको पूरी तरीके से उसको बैकआउट, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखें, यानी इंटरनेशनल फोरम्स पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। ये बताएं कि पाकिस्तान पीओके के अंदर कैसे लोगों के ऊपर जातियां कर रहा है। और दरअसल उधर बलूचिस्तान में भी मुनीर की सेना फंस गई है। एक तरफ वो पूरी सेना को वहां तैनात कर देना चाहते हैं तो दूसरी तरफ बीएलए की बगावत उस पर हावी पड़ती जा रही है। बीएलए का तो दावा यह भी है कि उसने ताजा तौर पर पाकिस्तान के 45 सैनिकों की जान ले ली है और उन पर बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं।
4: बलूचिस्तान में फंस गया पाकिस्तान, पीएलए का हमला, 45 पाक सैनिकों की गई जान, पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ बढ़ रहा घमासान।
5: पाकिस्तान इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर तरफ से संकट उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक तरफ पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है, सेना की तैनाती के बाद भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोच आर्मी के हमले पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मस्तूंग जिले के खटकोचा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा हमला किया। संगठन के मुताबिक इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं जबकि कई घायल हुए हैं। बीएलए की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसकी फतेह स्क्वाड ने अंजाम दिया, जिसके निशाने पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही बसें, उनके सुरक्षा स्क्वाड और बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां थी। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हमले तेज कर रहा है। इससे पहले बीएलए की ओर से 1 से 14 जुलाई के बीच 48 हमलों का दावा किया गया था, जिसमें 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इन हमलों के बीच पाकिस्तान की मुश्किल ये भी है कि बलूचिस्तान में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण पानी का गंभीर संकट और लोगों की गुमशुदगी है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए सबसे संवेदनशील इलाकों में रहा है, लेकिन हाल के दिनों में हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस बीच बीएलए के बढ़ते हमले पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाले हैं। आज तक देरो।
0: चले रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ
8: लिटिल एवरीडे फ्रस्ट्रेशंस एडिंग अप इलीट चेकिंग फ्रॉम नासा फेडरल कैन हेल्प गेट योर पेचेक अप टू 2 डेज अर्ली Enjoy cell phone protection, roadside assistance, and identity theft aid for peace of mind. Even earn dividends on your balance. If your checking account isn't working hard for you, switch to Elite Checking from NASA Federal at nasafcu.com/elite. NASA Federal Credit Union. Smart. NASA Smart. Federally insured by NCUA.
9: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach Chogan Perfumes The French Edition for Him and Her

ना मुनीर के जनरलों की चल सके, ना पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब हो सकी। पीओके के लोगों की बगावत के आगे पाकिस्तान की हर तरकीब पूरी तरह फेल हो गई। पूरे पीओके में सबसे बड़ी बगावत की ऐसी लहर उठी है कि मानो एक बार फिर से पाकिस्तान के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुजफ्फराबाद से उठी विरोध की आंधी से पाकिस्तान की सत्ता का तख्त डोल रहा है। यही वजह है कि अब इस विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान अपनी आर्मी के सहारे साजिश का प्लान बना रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान दमन के जरिए पीओके के लोगों की बुलंद आवाज को दबाने की कोशिश में जुट गया है। खबर है कि पाकिस्तान ने पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए 8,000 अतिरिक्त रेंजर्स को तैनात किया है। ये रेंजर्स भारी हथियारों से लैस हैं, जिनका इस्तेमाल जंग के समय दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। मुजफ्फराबाद में गुस्से की आग के बीच पहले ही हिंसा की शुरुआत हो चुकी है। अब तक पीओके में पुलिस फायरिंग में 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा घायल है। लेकिन इस जुल्म के बाद भी जब पीओके के लोगों के जुबान से आजादी की गूंज नहीं जा रही है, तो अब फिर से आवाम के खिलाफ हिंसा की तैयारी शुरू हो गई है। और इसी योजना के तहत बड़ी संख्या में यहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी रेंजर्स का डर मुजफ्फराबाद में धधकी इस आग को शांत कर पाएगा, या पाकिस्तान का ये दांव इस बार उल्टा पड़ जाएगा। जब किसी आवाम का सब्र टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्त ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं। पाकिस्तान में इतिहास का सबसे बड़ा आजादी का आंदोलन अपने चरम पर है। अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का डर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पीओके में लोगों के इकट्ठा होने और रैली करने पर कानूनी प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही मीडिया पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रदर्शनों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके कई सदस्य हिरासत में हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रदर्शनकारी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए। ये सारे कदम साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इन विरोध प्रदर्शन से कितना डरा हुआ है। पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विरोध की इस आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी है। शहबाज सरकार के होश उड़ाने के लिए भीड़ पीओके की सड़कों पर उतरी है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को खुली चुनौती है, जिसे लेकर पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था खौफजदा है, क्योंकि पीओके की आवाम ने अब आजादी की पूरी तैयारी कर ली है। आज तक तेरो।

मानसून सत्र से पहले बढ़ सकता है एनडीए का कुंबा। उद्धव के 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में शामिल करने की जारी हो सकती है अधिसूचना। ममता के बगावती सांसदों के लिए एनसीपीआई में विलय को मिल सकती है मान्यता।

0: आवास पर एनडीए की बैठक, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी ने हरियाणा को दिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा, कहा तेल संकट के बावजूद रफ्तार में है भारत के विकास की गाड़ी। जालंधर में वंदे भारत स्लीपर रेल को दिखाई हरी झंडी। सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट, सोमवार को सबसे बड़ी अदालत तक जाएंगे जांच के तथ्य, एजेंसी ने सरकार से मांगा अतिरिक्त समय। यूपी के फिरोजाबाद में दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर, दो सिपाही भी घायल, मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सोमवार को यह सत्र शुरू होगा। मंगलवार को पीएम मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। अब एनडीए की बैठक को मंगल मिलन कहा जाएगा। बुधवार से संसद में कैसी सियासत देखने को मिलेगी, उसका ट्रेलर कांग्रेस पार्टी दो दिनों से पेश कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल जवाब होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं, परिसीमन बिल, चढ़ावा चोरी और पेपर लीक। और इन तीनों में पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस संसद के पहले ही दिन जोर शोर से उठाना चाहती है। नीट पेपर लीक कांड के बाद से ही राहुल गांधी लगातार सक्रिय है। कोचिंग हब कोटा से शुरू हुआ उनका गूंज कार्यक्रम अब देहरादून पहुंच चुका है। इस वक्त राहुल गांधी देहरादून में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के कार्यक्रम में मौजूद है। उधर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी इसी मसले पर चल रही है, जो 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर चुके हैं। इन सबकी सबसे बड़ी मांग, शिक्षा परीक्षा भर्ती में धांधली की जवाबदेही तय करना और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। उधर सरकार की प्राथमिकता 2/3 ताकत जुटाने में लग चुकी है, क्योंकि सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक ऐसे बिल है जो विपक्षी एकजुटता के लिए एक चैलेंज साबित होने वाले हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में जो संभावित विधेयकों पर चर्चा की बात कही गई है, उसमें न तो परिसीमन बिल का जिक्र किया गया है और न ही 30 दिन की जेल पर पीएमसीएम की बर्खास्तगी वाले बिल का जिक्र। हालांकि जेपीसी की रिपोर्ट इस मामले में आ चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार लिखकर कुछ और देती है और सत्र में कुछ और ही करती है। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आने वाले मानसून सत्र क्या सरकार और विपक्ष के अपने अपने मुद्दों की खींचतान की भेंट तो नहीं चढ़ जाएंगे, क्या सरकार जरूरी विधेयक पारित कराने में कामयाब होगी, या फिर दरकते इंडिया की कमान संभाल रही कांग्रेस को एक बार फिर वही गीत गाना पड़ेगा, होंगे कामयाब एक दिन। तो सवाल तमाम है, लेकिन उन पर चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारी ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर लिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मानसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं, और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा जो तीन बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, तीन बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन तीन बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है क्योंकि राहुल के आंदोलन के साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक अनशन चल रहा है जिनमें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल वाले मंच पर बारी बारी से विपक्षी नेता हाजिरी लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल तो समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव, आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल तो सीपीएम की ओर से सुभाष मियाली, उद्धव ठाकरे की ओर से अरविंद सावंत तो टीएमसी की ओर से कीर्ति झा सोनम वांगचुक से मिलकर आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: संसद के बजट सेशन में एसआईआर को लेकर विपक्ष सड़क पर उतर आया था और उसी को लेकर पार्लियामेंट के बाहर भी काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि डिलिमिटेशन बिल का सफल न होना यह सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ था। इस बार सरकार इस बात को लेकर फूक फूक कर कदम रख रही है लेकिन दूसरी तरफ नए मुद्दों के साथ विपक्ष भी तैयार है। तो कैसे होगी चर्चा इस बार के मानसून सेशन में, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे, सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा, क्या मानसून सत्र में मंगल मिलन के बाद सरकार सारे बिल पास करा लेगी क्योंकि अब एनडीए की मीटिंग को मंगल मिलन कहा जाएगा जो मंगलवार को होना है। दूसरा सवाल, क्या चढ़ावा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर पाएगा। तीसरा सवाल, क्या संसद के मानसून सत्र में गतिरोध बने रहने की आशंका बढ़ती जा रही है क्योंकि मुद्दे भी ऐसे हैं, खास करके पेपर लीक का मुद्दा, और विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ये उनके एजेंडे पर है और 20 तारीख को इस बात को लेकर संसद पर मोर्चा भी ले जाने वाले हैं। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी इस पर आक्षेप जरूर लेगी लेकिन खबर तो है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि परिसीमन बिल को लेकर सरकार को सभी दलों के समर्थन का भरोसा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़कर बाकी इंडिया अलायंस के घटक दल भी परिसीमन बिल पर सरकार का समर्थन करेंगे, ऐसा भरोसा सरकार को हो चुका है। हमने कल चर्चा की थी इस बारे में कि एनसीपीएसपी की भूमिका इस बात को लेकर क्या होगी, हालांकि डीएमके ने कहा है कि जब बिल का ड्राफ्ट आएगा उसके बाद वो अपनी भूमिका रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पीयूष, अब तक कई दल ये कह रहे हैं, आज सुप्रिया सुले भी वहां पर जंतर मंतर गई थी, उनका ये कहना था कि जब तक बिल नहीं देखेंगे हमारी भूमिका हम साफ नहीं करेंगे, डीएमके भी इस बात को लेकर आमादा है कि हमें पहले बिल देखना है, क्या उसमें कुछ बदलाव किए गए, ऐसे में बीजेपी किस आधार पर ये दावा कर रही है, सूत्रों के हवाले से क्यों ना हो लेकिन ये दावा किस आधार पर कर रही है कि सभी लोग समर्थन करेंगे?
3: साहिब, मैं आपको बता दूं कि सरकारी सूत्रों ने हमें बताया है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार कुछ राजनीतिक दलों से सरकार के जो लोग हैं वो लगातार बातचीत करते रहे और जिस तरह से बातचीत हुई है उससे ये चीज साफ हो गई है कि अगर सरकार को दो तिहाई बहुमत किसी बिल पे चाहिए तो वो इस वक्त उनके पास है। नंबर गेम की बात करें तो 293 एनडीए के पास है, पिछली बार 5 का समर्थन था, 298 वोट जो है वो डिलिमिटेशन के टाइम पर सरकार को मिले थे लेकिन अब ये बढ़कर 246 तक तो पहुंच ही गया है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है कि डीएमके वो पार्टी है जो कांग्रेस कार्यकाल का विरोध करेगी इसलिए वो सरकार के साथ रहेगी और सरकार सरकार को कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराना होगा डीएमके की रजामंदी से तो उसको पास कराने को डीएमके का समर्थन मिल जाएगा।
0: लेकिन पीयूष एक बात नहीं समझ में आ रही है और इसको लेकर सरकार के सूत्र क्या कह रहे हैं वो भी जरा बता दीजिएगा क्योंकि जो बिजनेस के लिस्ट आई है जिसमें बिलों का जिक्र किया गया है उसमें तीन बिल तो मुझे साफ दिखाई देते हैं कि इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल उसमें दिखा गया है जो लिस्ट यहां पर दिख रही है, राष्ट्रीय गान का अपमान करेंगे तो दंडनीय अपराध बनाएंगे वो वाला एक बिल है और लेजिस्लेशन है जिसको जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनकी संख्या को लेकर, लेकिन कहीं भी अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो परिसीमन का बिल का जिक्र इसमें क्यों नहीं किया गया?
3: देखिए ये बात बिल्कुल सही है और इसको लेकर हमने चर्चा की थी अपने सूत्रों से, तब हमें ये जानकारी मिली कि ये वो बिल है परिसीमन का बिल जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, और इसको लेकर सरकार को कुछ घंटों पहले या कुछ दिनों पहले ही जानकारी देनी होगी और उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस सरकार हो जाएगी कि हाँ इतना नंबर हमारे पास है तो सरकार इस बिल को लेकर आएगी, ये भी हमें सूत्रों ने बताया है। अब ये बात और निकल के सामने आ रही है कि अभी की जो स्थिति है संसद के अंदर उसमें समाजवादी पार्टी इसे समर्थन नहीं करेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आना चाहती। वही कांग्रेस एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है इसे वो समर्थन नहीं करेगी। इसके अलावा लगभग सभी दल इस बात को लेकर मान गए कि परिसीमन का बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है।
0: यही तो मुद्दा है जयराम रमेश जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत शुक्रिया पीयूष, क्योंकि अब नए नए अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 130th अमेंडमेंट बिल को लेकर जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, तो हो सकता है कि इस बार वो बिल इंट्रोड्यूस किए जाए जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सत्ता से बाहर करने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि 30 दिन अगर वो जेल में रहते तो वो बिल शायद लाया जाए, लेकिन हालांकि वो भी इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शहजाद यही तो जयराम रमेश कहते हैं कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, यानी बिल के लिस्ट आप कुछ और दे रहे हैं लेकिन हो सकता है कि सूत्र आपके बता रहे हैं कि हमारे पास तो 360 तैयार हो गए, आराम से हम जीत जाएंगे, तो वो बिल आएगा कि नहीं आएगा?
4: देखिए जहां तक कहते कुछ है और करते कुछ है का सवाल है, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का है। 2018 में इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट में हम प्राइस हाइक की चर्चा चाहते हैं, फिर रफाल लेकर बैठ गए, हाउस को डिसरप्ट किया। 2020-21 में इन्होंने कहा कि पेगेसस को लेकर चर्चा चाहिए, हाउस को डिसरप्ट किया। 2021-22 के बाद कोविड को लेकर चर्चा की मांग की, हमने बोला चर्चा कीजिए कोविड पर, तो उस समय पर दूसरी रिपोर्ट लेकर, विदेशी रिपोर्ट लेकर बैठ गए, कभी हिंडनबर्ग के नाम पर, कभी कोविड वैक्सीन पे OCCRP के सोरोस की रिपोर्ट के नाम पर, और जो रिपोर्ट उन्हीं के साथ ही शरद पवार जी ने खारिज की, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। तो आज तक तो ट्रैक रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कॉन्सेंसस बोलकर कॉन्फ्रंटेशन करने का, डिस्कशन बोल के डिसरप्शन करने का, ये तो कांग्रेस का रहा है। अच्छा आपने बोला देखिए सब कुछ मंगल मंगल होगा, हमारे यहाँ तो मंगल मंगल मंगल मिलन है, पर वहाँ पर तो जंगल और वहाँ पर जिस प्रकार से जलन है उसका एक तो आपको उदाहरण हर रोज देखने मिलता है समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का। भाई देखिए राहुल गांधी के पास जनमत नहीं, 99 चुनाव हारे, ये समझ में आता है। उसके बाद उनके पास जो है जनपद भी नहीं बचा क्योंकि पंजाब में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, केरलम में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, मीनाक्षी नटराजन को हटा दिया, हर जगह कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है, परंतु अब संगत भी नहीं बचा। संगत में देखिए ना, पिछले महीने मैंने आपकी एक डिबेट दिखी थी, जून में आपने डिबेट कराई थी कि इंडी अलायंस ने अब तय कर लिया है कि हम लोग हर महीने 2 महीने में मिलेंगे, एजेंडा तय करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एनडीए की आज मीटिंग हो गई, कहां पर है इंडी अलायंस की मीटिंग? पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, कोई अता पता नहीं। अच्छा दूसरी बात पूछिए इनसे कि ये कितने मुद्दों पर एकमत है, कोई अता पता नहीं। अच्छा कांग्रेस ने भी तो सबको धोखा दिया है, जहां पर भी पड़े कांग्रेस के कदम वहां पर उस पार्टी का निकला दम। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है, अब TMC वो तो कांग्रेस के साथ क्या रहेगी, खुद ही TMC अपने साथ नहीं है, DMK कांग्रेस के साथ बैठना नहीं चाहती है, NCP शरद पवार जी की पार्टी
0: होती है। जवाब नहीं दिया, सदन की कार्यवाही चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये तो आपको आप मानेंगे। रूल ऑफ द बिजनेस क्या होगा ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार आपको पता है कि हर बार लोकसभा सेक्रेटरिएट से एक पूरी लिस्ट आती है कि ये इन इन बिलों पर चर्चा करेंगे ताकि विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ उतर सके सदन के भीतर। अब ऐसे में मैं आपको यही पूछ रहा हूं, लिस्ट ऑफ बिजनेस में जिस बिल का नाम नहीं है परिसीमन बिल का, DMK कह रही है कि हमारे पास तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, NCP SP कह रही है कि हम जब ड्राफ्ट देखेंगे उसके बाद तय करेंगे, तो परिसीमन का बिल, क्योंकि आपके कदम तो 360 के तरफ बढ़ रहे हैं, तो परिसीमन का बिल आएगा या नहीं आएगा या अचानक आएगा लास्ट वीक?
4: देखिए ऐसा है साहिल जी, मेरी भविष्यवाणी करने की कला राहुल गांधी जी जैसी अद्भुत नहीं है। राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी 24 में और 19 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अर्थव्यवस्था डेड है कि उन्होंने घोषणा की थी, फिर मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुका है ये भी भविष्यवाणी की थी। अभी मेरे सामने गवर्नमेंट की तरफ से किया गया 5 बिल का एक लिस्ट है, वो बिल्स है इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर मतलब वंदे मातरम को सम्मान देना, और MSME का बिल, और ऑल पार्टी मीटिंग तो अभी होगी ना साहिल जी। ऑल पार्टी मीटिंग में यदि विपक्ष को लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे चर्चा अनिवार्य है उसको लेकर आए, और भविष्य के गर्भ में क्या रखा है वो तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पर हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं, चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि विमेंस, उसके लिए तो हम कमिटेड ही है विमेंस रिजर्वेशन के लिए, क्या रागिनी नायक विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ है? रागिनी
0: को फाइनली मौका मिलेगा पार्लियामेंट में, विमेंस रिजर्वेशन तो पास हो चुका है,
4: उसका क्रियान्वयन भी तो होना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि साहिल जी,
0: ऐसा तो नहीं होगा कि पेपर पहले दिन से हम संसद के भीतर गतिरोध देखना शुरू ना कर दे, क्योंकि आपने साफ कर दिया है कि पेपर लीक आपका सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और पहले दिन तो सरकार चाहती है, जो अभी हेडलाइन हमारे यहां चल रही थी, कि अमित शाह इंट्रोड्यूस करेंगे वंदे मातरम के सम्मान का बिल पेश करेंगे सदन के भीतर, तो ऐसे में कहीं इस बार पेपर लीक को लेकर आपका पूरा लामबंदी तो नहीं होगी। और दूसरी तरफ ये जरा परिसीमन पर भी बता दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर बाकी सभी लोग उनके पास हो गए हैं अभी इस पूरे मामले में।
5: देखिए साहिल, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रवक्ताओं को सिखाना चाहिए कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, जवाब देना पड़ता है, और जब सवाल आपसे पूछा जाए तो अपनी करनी के ऊपर आपको जवाब देना होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर परिसीमन विधेयक के ऊपर 2/3 बहुमत होता भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के पास, तो ये सूत्रों के हवाले से सुरंग नहीं छोड़ा जाता, ये हवा में तीर नहीं मारा जाता, संसद में जाकर वोटिंग करवाकर सीधा 2/3 बहुमत सिद्ध किया जाता। तो ये इस तरीके की भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना, कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें करना, ये सब इनके पहले पुराने आजमाए हुए हथकंडे हैं। लेकिन मैं पहले तो यही कह दूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और मैं याद दिला दूं 17 अप्रैल, और उसके लिए ये भी कहना चाहती हूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मोदी सरकार के अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब बुलडोजर राजनीति आपकी नहीं चलेगी, तो मोदी जी को लगता है कि अपने प्रदेश सरकारों में तो चलवा नहीं सकते, तो विपक्ष की आवाज को संसद में बुलडोज कर दो। लेकिन किसी भी तरह से भारत के संघीय ढांचे पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर प्रहार करने वाला कोई भी विधेयक आएगा तो वो कैसे औंधे मुंह गिरेगा, ये 17 अप्रैल की तारीख ने सिद्ध कर दिया। वो ऐतिहासिक तारीख थी, विपक्ष की एकता का भी स्वाद चख लिया मोदी सरकार ने। और ये भी मैं कह देती हूँ कि निकलना खुल्द से आदिम का सुना था, लेकिन बहुत बेआबरू होके संसद से निकले, तो साहिल ये ना करें।
0: वो तारीख अब इतिहास हो चुकी है रागिनी जी, वो तारीख अब इतिहास हो चुकी है, अब मामला आगे बढ़ चुका है। अब हम जरा आज भविष्य की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन वर्तमान में देखिए क्या हो रहा है, भूमिकाएं बदल रही है धीरे धीरे।
5: देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही, इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है साहिल क्योंकि इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास गायब नहीं हो जाता है। पर आपने ठीक कहा, आज वर्तमान की बात हम कर लेते हैं। 298 मत मिले थे इन्हें, 20 टीएमसी के विधायक इनके पास आ गए, 6 और आ गए, कितने हुए आप खुद अंक गणित कर सकते हैं। मोदी जी से करवा लीजिए, वो तो आजकल बहुत अच्छा करते हैं, 1 और 1 मिलकर 2 होता है, या 1 और 1 मिलकर 11 होता है, या 1 और 7 मिलकर 8 होता है, या 2 और 6 मिलकर 8 होता है, उनसे ही करवा लीजिएगा। बात यह है कि विवाद के जरिए सारे विधेयक पास क्यों करने हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। जब भी संसद का सत्र आता है साहिल, तो देश की जनता बहुत ही आशा के साथ देखती है सरकार की तरफ और सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा विधेयक जो देश हित के हैं वो एक आम सहमति बनकर पास किए जाए, विवाद से नहीं, संवाद से और सार्थक चर्चा से किए जाए। लेकिन मेरी मुर्गी की डेढ़ टांग तो डेढ़ टांग, माई वे और द हाईवे, ये तो नहीं चलेगा ना। योगी और मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, उसके नाक के नीचे कौन सा ऐसा चौकीदार था जिसकी दाढ़ी में तिनकम थे, जो बचाना चाह रहे चोरों को, कि राम के नाम पर लूट हो गई और सरकार कंबल ओढ़े सोती रही, ये तो इस पर सवाल पूछा जाएगा। आज देहरादून में राहुल गांधी जी कोटा के बाद, छात्रों की गूंज और उनकी हुंकार आज वहां सुनाई दे रही है, 10 साल में 90 पेपर लीक हो गए साहिब, 48 बड़े पेपर जो है वो दोबारा लेने पड़े, 22 बड़े एग्जाम कैंसिल हुए हैं, 6.5 करोड़ छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। जिस एनटीए के बैन करने की बात की गई और मांगी एनटीए बैन करने की बात की गई, उसी एनटीए की सिफारिश पर टेलीग्राम को बैन करके लीपापोती कर दी। धर्मेंद्र प्रधान की जगह अब सीबीएसई के कुछ लोगों का तबादला कर देंगे और सोचेंगे कि हो गया, नहीं हो पाएगा। इस पर चर्चा आपको करनी
0: पड़ेगी। गतिरोध कैसे रुकेगा फिर रागिनी? आप बताइए कि ये गतिरोध कैसे रुकेगा, क्योंकि विपक्ष जब सदन की कार्यवाही के लिए जा रहा है तो इस मुद्दे के साथ जा रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम सदन ही नहीं चलने देंगे, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे
4: साहिल जी।
0: तो जब तक तो ये कैसे होगा?
5: मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा, मैं आपको बताती हूँ। एक तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च से नहीं होगा कि आप 19 जुलाई को कहें कि सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन उस बैठक में सुन जरूर लें पर करें सिर्फ अपने मन की, केवल अपने मन की बात से नहीं चलता है। जन गण मन, पहले जन आता है फिर गण आता है फिर मन आता है। मोदी जी
4: उल्टी
0: मन की बात से नहीं होगा, थोड़ी विपक्ष की बात भी सुननी होगी।
4: हाँ हाँ साहिल जी सुनिए ना,
0: एक लाइन, चलिए एक लाइन सुन लेते हैं और शहजाद एक लाइन उनको बोल दीजिए।
4: उनका काफी लंबा हो गया भाई, हमको भी तो मौका दीजिए, ऐसा थोड़ी है।
0: अरे कुछ नहीं, आप पट्टी लेकर मत बैठिएगा, इंच से कुछ नहीं होगा, आपको भी बहुत लंबा लंबा समय मिलता है। शहजाद
4: बैठा हूँ, घड़ी तो ऐसे भी इनके साथ नहीं,
0: मैं यहाँ पर स्पीकर की पोजीशन में तो हूँ नहीं। चलिए रागिनी एक लाइन,
5: इनको ये भी समझना चाहिए, ये भी भाजपा को अपने प्रवक्ताओं को सिखाना चाहिए कि दो कान और एक जुबान दिए, थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखें। रूल ऑफ बिजनेस, लिस्ट ऑफ बिजनेस, दोनों पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है। अगर अमित शाह जाकर भाषणों में कहते हैं कि 50% सारे प्रदेशों की सीट बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद जब विधेयक आता है तो उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण के राज्यों के हक को मार लिया जाता है, हिस्सा चोरी होती है, तो वो कैसे बर्दाश्त होगा ना? आपके तो मुंह में राम बगल में छुरी है।
4: अब मैंने आपके आग्रह पे
0: पूछ रही है वो, चलिए
4: उनके आपके आग्रह पे उनकी पूरी बात सुनी बिना कुछ बोले तो मुझे भी ये संरक्षण दीजिए। साहिल जी सबसे पहले तो बात बिल्कुल सही है।
0: Of course.
4: देखिए हम तो गणित के आंकड़े करते हैं ठीक से, परंतु इनके पास तो एक ही आंकड़ा है, शून्य। दिल्ली में तो मैडम का रोल भी रहा है शून्य लाने में। एनीवे मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए हमारे प्रवक्ताओं को क्या सीखना चाहिए साहिल जी?
0: संरक्षण,
4: गरीब पसमानदा मुसलमान को संरक्षण दे दीजिए जोशी जी, थैंक यू। ऐसा है साहिल जी, हाँ ऐसा है साहिल जी, अभी मैं साहिल जी देखिए ऐसे डिबेट नहीं होते साहिल जी, दिस इज नॉट द वे। साहिल जी मैंने पूरी बात सुनी, आप तय कर लीजिए।
0: सुन रही है वो आपकी बात,
4: वो बीच में लगातार डिस्टर्ब कर रही है और दो विंडो में रखा है तो मेरी बात आधी कट
0: नहीं, नहीं नहीं
4: मैं खुद भी एंकर था।
0: कौन डिस्टर्ब कर सकता है?
4: नहीं नहीं डिस्टर्ब
0: अगर आप शुरू कर रहे उल्टे तरफ से तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा। साहिल जी
4: देश
0: कौन हिम्मत करेगा आपको डिस्टर्ब करने की?
4: साहिल जी देश
0: नागरी प्लीज ऐसे मत करिए, आपकी बात पूरी सुन ली ना उन्होंने, ऐसे मत करिए
4: साहिल जी। देश के डिस्टर्बिंग एलिमेंट को तो देश ने ही उनको ही निपटाने का काम किया है, 3 बार निपटा, 99 चुनाव में निपटा। अब मैं अपनी बात एक एक करके रखता हूँ। हमारे प्रवक्ताओं को क्या सीखना चाहिए, उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश क्या बोलते वो सीख कर आए। जयराम रमेश ने बोला कैटेगोरिकली, भाई देखिए डिलिमिटेशन आ रहा है, कैटेगोरिकली एफसीआरए का बिल आ रहा है। और रागिनी नायक बोल रही है कि अभी लिस्ट ऑफ बिजनेस, रिवाइज बिजनेस, फलाना बिजनेस, जब लिस्ट आया ही नहीं है आपके हिसाब से, तो ये जयराम रमेश ने कहां से प्रिडिक्शन कर लिया कि ये सारी चीजें आने वाली है? और अगर आने वाली, ये एक्चुअली डिलिमिटेशन नहीं साहिल जी, लिमिटेशन का मामला है, राहुल गांधी की लिमिटेशन है, जनमत नहीं संगत नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा संघीय ढांचे पे हमला है डिलिमिटेशन का, तो इसका मतलब अभी मराठी में बोला था सुप्रिया ताई ने 2 दिन पहले कि अगर ये 50% वाला फॉर्मूला जो अमित शाह जी ने बोला है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे साउथ के स्टेट्स की पहले 129 सीट थी, 23% था, वो 195 होगी, 24% होगा, तो क्या सुप्रिया ताई झूठ बोल रही है और संघीय ढांचे पर हमला चाहती है? या दूसरे वो मुस्कुराते हमारे आनंद जी बैठे, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उसका समर्थन किया है, बोला है कि मुझे प्रिंसिपली कोई अपोजिशन नहीं है, तो क्या प्रियंका चतुर्वेदी? और एक बात बता दूं साहिल जी, केवल उनकी प्रियंका नहीं, मैं तो एक और प्रियंका को जानता हूं जो चाहती है कि आ जाए विमेन रिजर्वेशन, मैं तो एक डिंपल को भी जानता हूं जो चाहती है कि आ जाए रिजर्वेशन, मैं तो जानता हूं कि बहुत सारी कनी मोजी भी है जो चाहती है कि आ जाए विमेन रिजर्वेशन। तो हो सकता है जो ये डिलिमिटेशन, अपनी लिमिटेशन देख लो, कांग्रेस के साथ आज कोई नहीं खड़ा, एक समाजवादी पार्टी खड़ी है, उसको भी आए दिन इमरान मसूद गालियां देते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए हमारे साथ कोई नहीं, हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। अरे आप अपने अलाय पार्टनर को नहीं समझा पाए। अच्छा दूसरी बात जो चिंता ये करती है ना रागिनी नायक, वायनाड में इतनी बड़ी त्रासदी है, 2 सांसद है ना इनके, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल, राहुल एंड प्रियंका किधर थे 21 दिन से? एक बार गए वायनाड में? न पार्टनर की चिंता, न पार्टी की चिंता, पंजाब में टूट रही है, न पीपल की चिंता, और फिर पार्लियामेंट में आके ड्रामा करना है और फिर परिवार को ऊपर रखना है और हमें गाली देना है।
0: लेकिन अगर पेपर लीक का मामला निकलता है शहजाद, अगर पेपर लीक के मामले पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इनकी मांग बड़ी साफ है और 20 तारीख को मोर्चा भी होने वाला है, जंतर मंतर से भी निकलेगा, विपक्ष के कई सांसद उनको जाकर मिल रहे हैं, नेता भी मिल रहे हैं, जिसमें बड़ी लिस्ट है, उसमें समाजवादी पार्टी भी के लोग भी जाकर मिलकर आ गए हैं, एनसीपी एसपी आज सुप्रिया सुले भी वहां पर जंतर मंतर जाकर आई है, अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर आए हैं, पवन खेड़ा आज जाकर मिलकर आए, तो पूरा अपोजिशन वहां पर जाकर मिल रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, डिलिमिटेशन का जो होगा वो होगा, लेकिन पेपर लीक पर, मंदिर चोरी पर, उस पे तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, ये तो बड़ी चुनौती हो जाएगी।
4: देखिए, एक तो मैं कह दूं कि मेरे लिए आज एक बहुत ही, मैं कह सकता हूं, संतुष्टि की बात है कि जो लोग और जिनके नेता रोम रोम करते थे वो राम राम करने लगे, राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले, जो राम जी का मंदिर लटकाया भटकाया अटकाया 70 वर्षों तक, कपिल सिब्बल को भेजा कि मंदिर का कार्य रोक दिया जाए, और ये स्वयं इस प्रवक्ता ने कहा है कि राम इमाम हिंद, मतलब राम मुसलमान है,
0: जो लोग नमाज पढ़ाते थे,
4: राम जी को इलीगल ऑक्यूपेंट बताते थे, वो राम जी की बात कर रहे, भाई सुप्रीम कोर्ट
0: से कोई चिंता नहीं है।
4: साहिल जी, मैं मेरे बीच में आप क्या बोल रहे, मुझे पूरा तो कंप्लीट करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक गए,
0: मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सवाल को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे,
4: मैं अपना जवाब तो अपने तरीके से दूंगा, मैं तो कह रहा हूं कि किस विषय,
0: सवाल का तो जवाब दीजिए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं ऑरेंज पर, आप बात कर रहे हैं कहीं और इस पर, ऐसे तो नहीं होगा ना,
4: आपने राम जी
0: एप्पल ऑरेंज तो नहीं होगा ना,
4: आपने राम जी के विषय को उठाया,
0: तो मैंने कहा, मैंने ये पूछा कि इन मुद्दों पर तो विपक्ष साथ में है, मैं एक बार दोहराता हूँ, सवाल दोहराता हूँ एक बार फिर, मैं सवाल दोहराता हूँ, मैंने पूछा कि इन मुद्दों पर तो विपक्ष साथ में नजर आ रहा है, पेपर लीक का मुद्दा हो या मंदिर चोरी का मुद्दा हो, सिर्फ डिलिमिटेशन के मुद्दों को लेकर आपको कॉन्फिडेंस है, बाकी इस पर तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है।
4: ऐसा है साहिल जी, जहां तक सवाल है उनकी एकता की, तो मैं तो बोल रहा हूं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज ही बोल दे कि कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड है कि आधी सीटें उत्तर प्रदेश में लड़नी है, पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी को, आज आपने बिठाया नहीं है, कितनी एका है वो समझ में आ जाता, यही एका पार्लियामेंट में पहले भी कहने की कोशिश की थी, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि हमारे मुद्दे अलग है, कांग्रेस के मुद्दे अलग है, हिंडनबर्ग और अडानी के मुद्दे पर कोई कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा रहा, तो इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो तो देखिए, जिस कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि इमाम वो कम से कम बात ना करे प्रभु श्री राम की,
0: ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग बिल विपक्ष के सामने खड़ा है, उस मुद्दे पर तो विपक्ष में अलग अलग गुट साफ नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग आवाज में बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पर तो विपक्ष साथ में नजर आ रहा है, तो ये एकजुटता कैसे रहेगी?
5: साहिल, सबसे पहले तो मुझे ये भी कहना ही पड़ेगा कि भाजपा को अपने प्रवक्ताओं की कंफ्यूजन को दूर कर भी भेजना चाहिए, आज प्रवक्ता बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। जयराम रमेश जी ने जरूर कहा कि डिलिमिटेशन को लाया जाएगा, चोरी चुपके से लाया जाएगा, वही हो रहा है, आप लिस्ट ऑफ बिजनेस में डालेंगे नहीं और सूत्रों के हवाले से सुर्रे छोड़ेंगे कि हमारे पास बहुमत है, अरे बहुमत है तो डालिए ना लिस्ट ऑफ बिजनेस में और संसद में पहले ही दिन लाइए, वोटिंग करवाइए, पता चल जाएगा आपके ऊपर कितना बहुमत है, तो झूठ मत बोलिए और झूठ बोलकर मुस्कुराइए मत। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि कहीं किसी के दिमाग में ये भ्रम है या आप फैला सकते हैं कि परिसीमन महिला आरक्षण जो है वो एक ही बात है, बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने आज की कल की मीटिंग में भी ये बात कही, बार बार कही कि आप पहला बिल लेकर आइए और बोलिए 543 सीटों पर आरक्षण दे रहे हैं, 181 महिलाओं को लोकसभा में पहुंचा रहे, कांग्रेस भी आपके साथ है। अच्छा। लेकिन महिला आरक्षण बिल को और आर बनाकर ऐसा परिसीमन जिससे कि आप जातिगत जनगणना को रोक सके, आप राज्यों की हिस्सेदारी कम कर सके, नहीं करने देंगे। सुप्रिया सुले ने चिट्ठी लिखकर ये बोला कि 50% सीट बढ़ाइए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात, राम मंदिर पे और बोल दूं, इन्होंने कहा था, सुनिए, कान खोलकर सुनिए, भाजपा प्रवक्ता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो कपटी हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, उन्हें ना प्रभु राम मिलते हैं ना जनता जनार्दन। मोदी जी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा संसद में की, मोदी जी के पीएमओ ने चुन चुन कर ट्रस्ट में लोगों को रखा, मोदी जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी ने ध्वजारोहण किया, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, मोदी जी की जिम्मेदारी है, मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, मोदी जी कन्नी काट कर बच नहीं सकते, मुंह में राम बगल में छुरी दबाकर।
0: जरा आनंद दुबे का जिक्र हुआ है, ठीक है, शहजाद ने आनंद दुबे का जिक्र किया है, तो जरा उनके पास चलेंगे क्योंकि आनंद दुबे से मुझे यह जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी कि पेपर लीक के मामले पर आनंद दुबे की पार्टी बात किसी और की कर रही है, यानी सोनम वांगचुक के समर्थन की बात कर रही है, लेकिन क्यों नहीं उन्हें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं जो कोटा जा रहे हैं और आज देहरादून में बैठे हुए हैं? यह विपक्षी एकता सदन के पहले कैसे हमें दिखाई देगी? आनंद दुबे,
6: साहिल भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भारतीय जनता पार्टी हमारे कुनबे में करा के दंगल, अपने यहाँ चाहती है मंगल, तो ऐसा मंगल कब बन जाता है अमंगल उनको पता ही नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनके पास जनता ने 293 का मैंडेट दिया था 2024 में। आज बड़े बड़े टेलीविजन चैनल पर लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि एनडीए ने जुटा लिया है 354। ये जो बाकी आए हैं ये कहाँ से आए हैं? लूटपाट से आए हैं, डकैती से आए हैं, चोरी करके आए हैं, सहमति से आए हैं, गन पॉइंट पर आए हैं, प्रेम मोहब्बत से आए हैं, ये सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मानसून सत्र में, जब मानसून सत्र इसका नाम है, तो यहाँ
0: किस वजह से आए आनंद दुबे? कुछ आपका लोग क्या एनालिसिस है?
6: कुछ डूबेंगे, कुछ मैं वही कह रहा हूं,
0: एक प्रेम भावना भी हो सकती है ना उनके मन में,
6: खोले नहीं है वो, तो अटकलों में है। देखिए, ऐसा उनके मन में तो काल नेमी वाली प्रेम भावना है हमारे लिए कि मुंह में राम बगल में छुरी, और उनकी जो मनोकामना है वो है अभी अधूरी। उनको तो देखना है विपक्ष मुक्त भारत, जिनके दिमाग में हमेशा छुपी होती है शरारत। तो इनकी मनसा और इनकी
0: नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का एक बार फिर जवाब नहीं दिया आनंद दुबे, क्योंकि बार बार
6: आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं, उसी
0: पक्ष की जब मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की बैठक में, आपको कारण बताता हूं ना, इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उस बैठक में पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, आपके नेता उसमें कह रहे थे कि ये तो विपक्ष की हार है कि किसी एक कॉकरोच जनता पार्टी या फिर सोनम वांगचुक जो सड़क पर उतरे उनको ज्यादा समर्थन मिल रहा है इस मुद्दे पर, और पेपर लीक का मुद्दा आप यहां पर सदन में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे ने यह बात कही थी, तो ये कैसे होगा? ये
6: साहिल भाई आपकी बात सर आंखों पर। हमारी पार्टी 1966 में बनी थी, जिसका नाम है शिवसेना, उनके नेता है उद्धव ठाकरे साहब। तो हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, हमारी पार्टी को लग रहा है कि नीट पेपर के लीक का विषय सबसे बड़ा है, बच्चों की आत्महत्या से जुड़ा है, हमारे नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा है, हम उठाएंगे। राहुल गांधी को लगता है कि उनकी पार्टी को भी उठाना चाहिए, वो कोटा में उठा रहे हैं, सुन रहा हूं बिहार जाने वाले हैं, वो उठाएं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना चाहिए नीट पेपर वाला मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए राम मंदिर भगवान के दान पात्र में चोरी का मामला। अगर बीजेपी उठाती है तो बीजेपी के साथ सहयोग करने में क्या तकलीफ है साहिल भाई, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों से दूर
0: बना तो परिसीमन पे सहयोग हो जाएगा बीजेपी के साथ।
6: बीजेपी
0: विपक्ष को सबसे बड़ा डर इस बात का होना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति में इस सदन में अगर कुछ बड़ा होने वाला है तो वो परिसीमन का विधेयक लाकर पास कराना, यही सबसे बड़ी बात होने वाली है। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा, आपको क्या लगता है कि क्या पेपर लीक के मामले पर विपक्षी एकता इस बार के सत्र में आपको दिखाई देगी? सत्यप्रकाश मिश्रा,
7: देखिए, पेपर लीक का एक मामला गंभीर मामला था, सरकार ने उस पर कार्रवाई की, फिर से परीक्षा कराई, उसमें एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती थी और सरकार ने उसका निर्वहन किया। ठीक है, वो लीक हुआ, वो ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था, वो किसी के हित में नहीं था। सरकार ने लेकिन मुस्तैदी से यदि दोबारा परीक्षा नहीं कराया होता और फिर लीक हो गया होता तो बड़ी भूल होती, बहुत समझ लीजिए महापाप कह लीजिए आप इसको। सरकार उसमें पूरी तरह ये है, अब उसको चाहते हैं इस्तीफा। कांग्रेस विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जौहर साहब ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया था तहलका.com के मसले पर, इस्तीफा वापस हुआ, पूरे सदन की कार्रवाई में जौहर साहब मंत्री थे, इन्होंने मंत्री स्वीकार नहीं किया। किस दिन किया? शायद आप साहिल जोशी जी पत्रकार रहे होंगे, जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस आई उस दिन जौहर साहब को सुनना स्वीकार किया इसी कांग्रेस ने। तो यह दोहरा चरित्र है कांग्रेस का कि शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा तो मांगती है, उसका मुद्दा उठा करके जाती तो है उपराज्यपाल के पास, फिर उसी अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में कूद जाती है। ये क्या है दोहरा रवैया? तो ये सब जनता समझती है, जनार्दन समझती है। जहां तक विपक्ष की एकता का सवाल है, देखिए उनके दावे बड़े हैं लेकिन विपक्ष फेंकता है, कोई नहीं एकता है। दूसरा एक सवाल उन्होंने उठाया है कि राम मंदिर की चोरी की, देखिए वो बहुत कुकृत्य
0: है। क्या कहा आपने? विपक्ष के दावे फेंकता है,
7: वो बस फेंकता है, वो जो दावे हैं उसके एकता का वो बस फेंकता है, कोई एकता नहीं है उनमें। अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए ना, इंडिया अलायंस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ता है, बढ़िया है, फेंकते रहो। अब है कि चाल बकुल की वो चलत है, अबहुरी का हावे संत, महिला का अधिकार रोकने वाले शायरी गा रहे हैं, वाह कितना दम्ब है कि महिलाओं को उस दिन अगर पास हो जाता विधेयक, इस देश की तमाम महिलाएं संसद की तरफ उम्मीद से देख रही थी, बढ़ी हुई सीट में उनको 21वीं सदी में
0: कुछ और है ना सत्यप्रकाश जी, उसमें
7: नहीं हिस्सेदारी मिलती उनको,
0: उसमें डर तो कुछ और ही है ना।
7: 33 साल से साहिल जोशी जी प्लीज, 33 साल से तरह तरह के बहाने, तरह तरह के फसाने लगा करके, तरह तरह के पेच, महिलाओं का अधिकार को रोका गया। अगर उस दिन कांग्रेस ठान लेती कि नहीं इस देश की महिलाओं को इस सदन में आने का हक है, और प्रधानमंत्री महोदय ने आगे बढ़कर कहा था ले जाओ पास कराओ क्रेडिट ले जाओ, नहीं विपक्ष को रोकना था, रोकिए भाई, महिला इस देश की देखती है, समझती है, समझदार है।
0: रागिनी नायक आप जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे
7: हैं। साहिल जी आपकी आवाज मुझ तक पहुंची,
0: अच्छा आखिरी लाइन, आखिरी लाइन
7: दी है मुझे, आखिरी
0: आखिरी लाइन सत्यप्रकाश जी, आखिरी लाइन बोलिए, एक मिनट आनंद दुबे जी, एक मिनट,
7: मेरी उन्हें आखिरी लाइन बोलिए बोलिए। मेरी आदरणीय प्रवक्ता महोदय जो है यहाँ बैठी हुई रागिनी नायक जी, वो कहती है सिखाना चाहिए भाजपा को, भाजपा का प्रवक्ता बहुत कंफ्यूज है। महोदया भाजपा राहुल जी को भी सिखाना चाहती है, भेजिएगा सिखाएंगे, और बढ़िया से सिखा के भेजेंगे, आपके विपक्ष के नेता अच्छा काम करेंगे।
5: तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, अब तो मुझे ही बोलना पड़ेगा।
0: एक मिनट रागी दीजिए, एक मिनट पहले आनंद दुबे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा।
6: 10 सेकंड
0: आनंद दुबे जी।
6: साहिल भाई वैसे तो हमारे बड़े भाई सत्यप्रकाश जी बहुत समझदार हैं, विद्वान हैं, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ एक कहावत है सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 नहीं, अब 72 का दुगुना होता है 144 छेद है
7: महाराज,
6: 144 छेद है। अरे प्रभु आप नैतिकता की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं, अल्टी पल्टी की बात करते हैं, तो लोग हंसते हैं और चोरी चोरी हंसने के साथ साथ रोते भी होंगे। अरे प्रभु कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे चरित्र हमारे सामने लाए हो,
7: तो
6: सत्यप्रकाश जी आप कम से कम नैतिकता पर मत बोलिए, आप ये बोलिए कि मानसून सत्र में कितनी बिजली गिराने वाले हो, मानसून सत्र में कितनी बरसात करवाने वाले हो, और मानसून सत्र में कौन भीगेगा और कौन डूबेगा और कौन तैरेगा।
0: आप जवाब देंगे उसके बाद शहजाद के पास चलेंगे। चलिए रागिनी
5: देखिए, सवाल भाजपा से पूछा जाए, मोदी जी से पूछा जाए, आरएसएस से पूछा जाए, जवाब में राहुल गांधी जी को ले आते हैं, इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी जी ने इनकी दुखती रग दबा रखी है। मैं बोल दूं कि न राहुल गिरे, न राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग उन्हें गिराने में मिश्रा जी खुद 100 बार गिरे, और अब मिश्रा जी ने ना बोलते बोलते ये भी कह दिया कि हम लोगों को जनता ने वोट दिया है, तो अब ये हम लोग कह रहे हैं तो ये राजनीतिक विशेषज्ञ लिखना तो बड़ा ही अजीब लगता है। तो
7: मैं कह दूं नीतीश कुमार का प्रचंड समर्थक हूं,
5: एक मिनट बीच मत बोलिए भाई साहब,
7: नीतीश विचारों का मैं समर्थक हूँ,
0: ठीक है ठीक है, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, चलिए वो नीतीश कुमार के समर्थक है, उन्होंने बोल दिया, ठीक है अपनी पोजीशन क्लियर हो गई उनकी। रागिनी जी
5: आगे बढ़िए, उनकी पोजीशन ऐसे कितनी आसानी से क्लियर नहीं होगी, उन्होंने कहा विपक्ष फेंकता है काहे की एकता है, तो मैं कहूंगी भाजपा का भजन गाते हैं फिर भी राजनीतिक विशेषज्ञ कहलाते हैं, आप सुन लीजिए अच्छे से,
7: हम देश का भजन गाते
5: हैं, सुन लीजिए, सुनने का साहिल इनको चुप कराइए, इनके बीच में
0: सत्यप्रकाश जी प्लीज सुन लीजिए,
5: चुप रहिए सुन लीजिए,
0: ठीक है ठीक है। रागिनी जी बोलिए,
5: दोनों शर्तें जो महिला आरक्षण बिल के साथ लगी हैं वो किसने लगाई, मोदी जी ने लगाई, हम कहते हैं आज उनसे मुक्त कर दीजिए, डिलिमिटेशन गणना जनगणना से मुक्त करिए, इस वक्त मानसून सेशन में 543 सीटों में, फिर से कह रही हूँ, 181 महिलाओं को अगली लोकसभा चुनाव में संसद में भेजने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी अगर लाएगी तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। असली महिला विरोधी जो है उसने शर्तों में महिला आरक्षण को बांधा, और वो मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है, और केवल इसलिए बांधा कि मुखौटा पहनाएंगे महिला आरक्षण का, और पीछे
0: लेकिन 50% अगर ऐड होगा जो कई लोगों की मांग है रागिनी, तो उसका समर्थन क्यों नहीं होगा, आपको डिलिमिटेशन से डर क्यों है, इतना डर क्यों है डिलिमिटेशन,
7: कोई डर नहीं, पेंच फंसा
5: साहिल, अगर 50% सभी प्रदेशों को मिल रहा होता, पहले मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा पॉपुलेशन के आधार पर सीट बढ़ेगी, 50% कैसे देंगे उसके ऊपर एक बार चर्चा तो करें, ड्राफ्ट में तो लेकर आए, आप चुनावी रैलियों में बोल देंगे और हम उसे मान लेंगे, आपके पास ड्राफ्ट बिल नहीं है अभी तक, दोनों
4: साहिल जी,
5: शुरू हो रहा है किसी भी संसद के
4: साहिल जी, अब मैं अपनी बात रख लूं, साहिल जी प्लीज कृपया रोकिए, समय समाप्त होता जा रहा है शो का, मेरी बात बीच में कटे नहीं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ संरक्षण की फिर से। साहिल जी 543 पर जो ये आइडिया दे रहे थे, 2008-09 में तो बीजेपी ने राज्यसभा में कांग्रेस को सपोर्ट किया तो पारित हुआ, उसके बाद 4-5 साल इनकी सरकार थी यूपीए की, तो क्यों नहीं पास करवा दिया? समय समाजवादी पार्टी साथ में थी, इनके पास आंकड़े थे, 543 पर अगर लागू होने का इतना ही पॉसिबल और प्रैक्टिकल था तो कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के लिए बोली लड़की हूं लड़ सकती हूं उस समय पर 5 वर्ष तक क्यों नहीं? हमारा तो सपोर्ट राज्यसभा में था। साहिल जी प्लीज बीच में संरक्षण दीजिए, क्योंकि हर बार मेरी बारी में डिस्टर्बेंस होता है, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात साहिल जी दूसरी बात मैं अपनी बताना चाहता हूं कि देखिए अब अज्यूम भी करते हैं डिलिमिटेशन का एक मिनट के लिए, हालांकि ये बच्चा पैदा हुआ नहीं तो उसका मुंडन कराना व्यर्थ है, परंतु अज्यूम करते हैं अमित शाह जी ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस, प्लीज साहिल जी ये रनिंग कमेंट्री ठीक नहीं है। साहिल जी देखिए हम लोग अनुशासन का पालन करते हैं, ये ठीक बात नहीं है,
8: अनुशासन का ही पालन होना चाहिए। चलिए
4: साहिल जी अज्यूम करते हैं क्योंकि अभी तो ये बच्चा पैदा हुआ नहीं, इसका मुंडन करवाना है रागिनी जी करवाती रहे, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जो फॉर्मूला अमित शाह जी ने कहा है उस फॉर्मूले के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 80-120 सीट होगी, रागिनी समाजवादी पार्टी खिलाफ है ना, उस फॉर्मूले में 60 सीट हो जाएगी बिहार की 40 से, रागिनी खिलाफ है ना उसके, और किसी सेट का हक नहीं मारा जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बेसिस पे है नहीं, सबका प्रोरेटा 50% बढ़ रहा है। शायद ये लोग पढ़ लिख के आते नहीं या राहुल गांधी के आईक्यू के लेवल के हो गए सारे प्रवक्ता, तो बुद्धि कितनी है वो दिखाना जरूरी हो जाता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं 10 सेकंड आनंद दुबे जी की बात पर, साहिल जी प्लीज रोकिए। आनंद जी ने कहा मुस्कुराते मुस्कुराते चले जाते प्यार से बुलाते, आनंद जी बताइए 1991 में छगन भुजबल जब 17 ML तोड़कर कांग्रेस के खेमे में चले गए थे तो कांग्रेस ने डराया था, कांग्रेस ने धमकाया था, कांग्रेस ने क्या किया था? और अगर कांग्रेस ने आपकी पार्टी तोड़ी थी तो कांग्रेस के साथ आज भी आप क्यों हो? उसके बाद बताइए,
8: रागिनी जवाब देगी उसके बाद आपके पास आएगी,
4: 10 सेकंड और लूंगा,
8: आपको बोलने का मौका मिलेगा ना, अभी है समय आपके पास, आपके पास समय आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन शहजाद मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, एक सवाल का जवाब
4: बात नहीं आई है आनंद जी,
8: मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए,
4: मुझे अपना बात कंप्लीट
8: करनी है, मुझे आपसे पूछना है, सवाल तो मैं पूछूंगा ना, आप मेरे मेरे मेरे रोल में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं,
4: आपके रोल में कोई नहीं जाना है ना, मुझे कोई दिलचस्पी,
8: सवाल तो मैं पूछूंगा ना,
4: रोल आप ही कर सकते हैं,
8: आपने कहा कि आप एंकर थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सवाल आप पूछेंगे,
4: अरे पर वो डिस्टर्ब करे और आप बीच में आ जाए ये भी तो ठीक नहीं है ना डिबेट,
8: वो तो रोक दिया ना उनको,
4: मुझे भी रोक रहे हैं,
8: मैं सवाल पूछना है, मैंने कहा कि मुझे आपसे सवाल पूछना है,
4: अब पूछे फिर मौका
8: दीजिए, आपसे सवाल पूछना है, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए,
4: ठीक है
8: हाँ चलिए, मैं लेकिन जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहता हूं इसमें कि आज की स्थिति में अगर ये डिलिमिटेशन का बिल आता है तो क्या आपके पास 360 लोग है, क्योंकि बात तो आप ही लोग कर रहे हैं ना कि 360 हमारे पास जुड़ रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं, इतने लोग तो एक महीने में जिस तरीके से 30 सांसद जो एनडीए के खेमे में चले गए, तो इसी के वजह से लोगों को लग रहा है कि भले लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है लेकिन आएगा जरूर, इसी के वजह से
4: अपना जवाब,
8: ये बात सही है कि गलत है?
4: अब मैं अपना जवाब दूंगा, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, 30 सेकंड सिर्फ लूंगा, दू ना जवाब, आप 360 की बात कर रहे हो,
8: दीजिए दीजिए जल्दी,
4: आप 360 की बात कर रहे हो, हमारे पास 360 से ज्यादा है, मैं आपको बताऊं कैसे, हमारे साथ 140 करोड़ है, 140 करोड़ जनता विमेन रिजर्वेशन के साथ है साहिल, थोड़ा मूड को समझिए इस बात को, बंगाल में जिसने गतिरोध पैदा किया वो समाप्त हो गए, और साहिल जी आखिरी बात देखिए, आनंद
8: पार्लियामेंट में आकर वोट नहीं डाल सकते,
4: आपने डिस्टर्ब किया, अभी बात कंप्लीट करने नहीं दे रहे, आपने अभी प्रॉमिस किया,
8: पूछ रहा हूं आपसे,
9: मुझे मत करिए,
4: दिस इज नॉट फेयर साहिल, आप रागिनी को ऐसे सुनते जैसे कि वो राग मलार सुना रही है, और हमारी बात
8: ठीक है, अरे महिला रिजर्वेशन की आप बात करें और बोल रहे हैं कि चार यहाँ पर चार लोग बैठे हुए उसमें एक रागिनी है, तो उनको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ना कभी कभी,
4: क्यों भाई
8: महिला रिजर्वेशन की बात चल रही है इसमें,
4: अच्छा तो उनकी पार्टी में आप उनकी पार्टी में उनका रिजर्वेशन कराओ ना, अब सुन लीजिए मेरी पूरी बात हो जानी
8: चाहिए, ठीक है जवाब दीजिए, आनंद दुबे एक मिनट रागिनी एक मिनट उनको जवाब पूरा करने दीजिए,
4: आनंद दुबे जी ने
8: रागिनी को शांत रहिए प्लीज, रागिनी को शांत करिए प्लीज, शहजाद आपकी बात खत्म करिए,
4: देखिए ऐसा है रागिनी जी की जो फ्रस्ट्रेशन और समस्या उसका भी निदान हमारे थ्रू ही होगा, सांसद बनेगी किसी दिन होपफुली जब रिजर्वेशन आ जाएगा महिलाओं के लिए, अब पूरी बात करने दीजिए, आनंद दुबे जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए ये तोड़ के प्यार से ले जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या छगन भुजबल प्यार से गए थे कांग्रेस में 17 ML लेके, आज जो AIDMK के लोग तोड़े जा रहे हैं टीवी के कांग्रेस के द्वारा वो प्यार से तोड़े जा रहे हैं, जहां पे हम कुछ नहीं कर रहे वहां पे हम गुनेगार, और जहां पर इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं वहां पर इनका मौन,
8: 30 सेकंड आपके पास,
5: 30 सेकंड आपके पास, सुनिए शहजाद भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, बहुत गर्मी पड़ रही है और थोड़ा राग मल्हार में गा रही हूँ, तो सुन लो शहजाद, अभी तो बारिश की बहुत जरूरत है और वैसे भी मानसून सत्र आने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात पर आते हैं, अब सुनो, अब दूसरी बात पर आते हैं। अब अगर आईक्यू की बात की तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मोदी जी के आईक्यू के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाली की गैस पर पकौड़े तलने पड़ेंगे, बादलों में होने पर रडार नहीं हुआ पकड़ा जाएगा, उनके हिसाब से एक और एक दो होता है कि चार होता है हमें मालूम नहीं। अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्री धारक के आईक्यू के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
4: लेकिन
5: जो किसान कहता है ना कि मिट्टी से स्वर्ण मांग लिया मैंने, आप उसको उंगली दे रहे हैं,
4: राहुल गांधी को मार दिया,
5: आप उसको उंगली दे रहे हैं जो किसान कहते हैं कि मिट्टी से सोना उगाना चाहिए।
8: कुल मिलाकर यही स्थिति हमें सदन के भीतर भी दिखने को मिलने वाली है, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, अलग अलग मुद्दों के साथ में अपने तीर चलाने के लिए तैयार है, और सरकार भी अलग अलग बिल्स की लिस्ट लेकर तैयार है। हालांकि उसमें परिसीमन का बिल आएगा या नहीं आएगा ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।
9: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
10: आगे आगे
11: करेक्ट
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: वी आर ओवर जिमी।
14: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: In association with Hind, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
8: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
2: हैट्रिक का दावा।
8: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
2: विश्वास पूरा।
8: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
2: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: मॉनसून सत्र से पहले बढ़ सकता है एनडीए का कुनबा। उद्धव के 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में शामिल करने की जारी हो सकती है अधिसूचना। बंगाल से राज्यसभा के लिए बीजेपी के 3 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज। राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक। पंजाब दौरे पर पीएम मोदी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा केंद्र के काम पर पंजाब सरकार अपना स्टिकर चिपका रही है। दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। गाजियाबाद की रैली में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना। कहा 10 साल पहले गुंडागर्दी और गैंग वॉर थी यहां की पहचान। न नीति थी न नियत। बद्रीनाथ में चढ़ावा गड़बड़ी मामले में मंदिर कमेटी के पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान जोशीमठ में गिरफ्तार। एसआईटी टीम का एक्शन। अब तक 2 गिरफ्तारियां।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach Chogan Perfumes The French Edition for Him and Her

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 2027 के लिए लखनऊ की दौड़ फिर शुरू हो गई है, लेकिन एक बार फिर रास्ता अयोध्या से होकर जाता हुआ दिख रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, अगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस को प्रभु राम को लेकर बीजेपी पर हमलावर होने का मौका दे गया तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इतिहास का पन्ना खोलकर पलटवार करने में पीछे नहीं। विपक्ष के चढ़ावा चोरी मामले के जवाब में योगी आदित्यनाथ के पास राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों का आईना है। पंचायत आज तक के मंच से योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन कर मंदिर आंदोलन में खड़ी की गई बाधाओं को लेकर अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस को घेरा था। योगी आदित्यनाथ एसआईटी की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होने का भरोसा दे चुके हैं। सूत्रों के अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। उधर फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी ने योगी आदित्यनाथ सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। सवाल है कि क्या 2027 के यूपी चुनाव में चढ़ावा चोरी सबसे बड़ा और निर्णायक मसला बनने जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ के होते हुए विपक्ष की राम धुन वोटर को स्वीकार होगी? क्या राम पर राष्ट्रवाद वाली बीजेपी के सामने अखिलेश का सनातनी समाजवाद हिंदू वोटरों को बांटेगा? योगी है तैयार चढ़ावे पर गोली वाला पलटवार, यही है आज का हल्ला बोल। लेकिन बहस से पहले देखिए पंचायत आज तक में योगी आदित्य

0: आदित्यनाथ ने क्या कहा था।
1: जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने SIT का गठन भी किया। वह एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उसके SIT गठित की। SIT की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 इस्तीफे और हुए। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है? जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें।
0: तो क्या SIT के गठन और प्रशासनिक कार्रवाई से इस पूरे मामले में पूर्ण विराम लग जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की छवि पर छेद हुआ है? क्या विपक्ष जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, 2027 तक ये एक निर्णायक रण क्षेत्र बन गया है? हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और मलूक नागर, महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु जी, आपसे सवाल मेरा कि क्या योगी आदित्यनाथ अगर विपक्ष पर इतिहास के पन्नों को पलटकर वार करते हैं तो क्या वर्तमान में जो कुछ हुआ है वो इससे धुल जाता है, उसके कोई मायने नहीं रह जाते?
2: देखिए श्वेता जी, पहली बात, यहां पर विषय सिर्फ इतिहास नहीं है, मैं वर्तमान की बात करता हूं। बताइए 4 मई से पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही थी कि नहीं, बोलिए हां या ना। कोई चू बोला था, सब मौन समर्थन दे रहे थे बाबरी मस्जिद को, और उस बाबरी मस्जिद को अयोध्या से रिलेट करके बताया जा रहा था। बनाने वालों से पूछा जा रहा था कि भाई ये तथा कथित बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में थी, तुम मुर्शिदाबाद में क्यों बना रहे हो? तो उनका क्या जवाब था, अयोध्या में हमारी मेजोरिटी नहीं है, मुर्शिदाबाद में हमारी मेजोरिटी है। ये तो हाल के इतिहास की बात है, 2 महीना पहले की बात। यानी तब तक जो लोग उनके पक्ष में खड़े थे वो आकर आज इस विषय के ऊपर चिंतित करें, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं श्वेता जी, बहुत से लोगों को यह पक्ष नहीं पता होगा कि इस मुकदमे में एक मुद्दई श्री रामलला विराजमान थे स्वयं, और जिनके नेता कपिल सिब्बल जो कानून मंत्री थे, वकील का चोला ओढ़कर अदालत में खड़े हुए तो किसके खिलाफ खड़े हुए? श्री राम लला विराजमान के खिलाफ, मंदिर छोड़िए भगवान के खिलाफ खड़े हुए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में, यानी विदेशी हमलावर बाबर की तरफ से। और यह मैं बोल रहा हूं दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो एफिडेविट दिया उसमें लिखा है कि वी आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज वी कंसीडर्ड दैट दिस मॉस्क वॉज बिल्ट बाई फॉरेन इन्वेडर बाबर। अब आप आइए, जफर याब जिलानी समाजवादी पार्टी की सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी सरकारी वकील, और उसी समय श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील। अब उसके अलावा छोड़िए, ये तो वो थे जो कहते थे अयोध्या यहां थी ही नहीं, ये वो थे जो कहते थे कि राम हुए ही नहीं, ये वो थे जो कहते थे कि राजा दशरथ के तो इतने कमरे थे वो फला जगह हुए थे कि डिमा जगह, ये साबित करो। यानी जिन लोगों ने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया, वो कहें कि आज हम चिंतित हैं, तो श्वेता जी सबको समझ में आता वो चिंतित नहीं आनंदित हैं, क्योंकि उनका तो लक्ष्य इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म है। या हाल की हिस्ट्री की बात है, हिंदू धर्म का समूल नाश, 2022 में रामचरितमानस फाड़ रहे थे, अनाप शनाप बातें बोल रहे थे, सपा के कार्यालय के बाहर रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थी। वो तो स्थिति यह हुई है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक जो राष्ट्रवाद की धारा बही है और जनमानस के विचार में बदलाव आया है, उसकी वजह से इनकी स्थिति यह हुई है। मैं जो बात कह चुका हूं पुनः रिपीट कर देता हूं, हम लोग बच्चे थे और जब राम मंदिर का आंदोलन चला था तो एक नारा लगा था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। मगर आज जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने सरयू को नहला दिया, जिन्होंने राम मंदिर को अपमानित किया, जो श्री राम लला विराजमान के खिलाफ खड़े हुए, वो आकर जब ये भक्ति दिखाते हैं तो मुझे लगता है आज की डेट में मुझे कहावत नजर आती है कि अब तो पक्का कच्चा सबे राम का, झूठा सच्चा सबे राम का। चाहे लगन से बोला चाहे जलन से बोला, हर नेता हुआ भगत राम का, मगर इस देश को पंचतंत्र और धर्मशास्त्रों में भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर भली भांति पता है। तो योगी जी ने कहा है हम लोग भगत हैं भगवान के और ये लोग बगुला भगत हैं। और एक पॉइंट में और क्लियर कर दूं श्वेता जी, चढ़ावे की कोई चोरी नहीं हुई है, चढ़ावा चोरी शब्द गलत है, चढ़ावा गर्भगृह में चढ़ाया जाता है, चढ़ावा चोरी तब माना जाए जब आपने चढ़ाया और वहीं किसी ने हटा लिया। यह बात ना किसी पुजारी ने उठाया ना किसी ने उठाया, यह जब जाकर गणना होनी शुरू हुई है तो यह गणना की त्रुटि हुई है, वहां पर गड़बड़ी हुई है, चढ़ावे में कोई गड़बड़ नहीं हुई। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, आज नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है तो बच्चे को मार्क्स सही मिले हैं, मार्क्स में कैलकुलेट भी सही किया गया है, जब टेबुलेशन सीट के द्वारा उसकी एंट्री होनी थी उस टेबुलेशन में गड़बड़ हुई, तो आप ये नहीं कहेंगे कि कापी जचने में बेईमानी हुई।
0: पर सुधांशु जी, टर्मिनोलॉजी का फर्क हो जाता है ना, बात है कि आस्था पर तो प्रहार उतना ही बड़ा हो जाता है। लेकिन खैर, मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से एक एक करके ये सवाल जानना चाहती हूं। सुप्रिया श्रीनेत जी, पहले आपसे कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन फौरन हुआ, छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, दो लोगों का इस्तीफा हो गया, आगे और कार्रवाई अभी जारी है, तो फिर क्या आपत्ति क्यों और किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है या फिर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? अगर बचाने की कोशिश हो रही है तो किसको? और सुधांशु जी का जो आरोप है कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास नैतिक आधार नहीं है, मैं इन दोनों सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। सुप्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले सुनील साजन जी से पहले हम ले लेते हैं प्रतिक्रिया, या नहीं आ गई आवाज? जी बोले।
3: आपको, आपके फेलो पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। भक्तों के पैसे खा गए बीजेपी के चोर, रामलला को लूट लिया, ये है इनका दौर। देखिए, साढ़े चार पौने पांच मिनट बीजेपी के प्रवक्ता बोले, आपने उनसे बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछा था, डायरेक्ट सवाल का जवाब देने के बजाय इधर उधर चले गए। मैं तो सवाल पूछती हूं, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि ये लूट कैसे हुई, उसका जवाब नहीं है। मैं कीजिए, हम सब लोग राजनीति पे चर्चा ना करें। अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में श्री राम का मंदिर है, श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, लोगों ने जो अपने छोटे मोटे आभूषण भेंट किए, जिंदगी भर की कमाई भेंट की, वो चोरी हो गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। अब आप बताइए पिछले 4-5 साल में कितनी चोरी हुई होगी, गजनवी से ज्यादा तो इन्होंने लूट डाला, पहली बात। दूसरी बात, जब योगी आदित्यनाथ जी ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि वो ना सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो मठाधीश है, और उस मठ के मठाधीश है जहां पर हमारी, एटलीस्ट मेरी, बड़ी आस्था है। हम पंथ संप्रदाय के लोग हैं, गोरक्षनाथ पीठ के वो मठाधीश है, और जब वो सर्टिफिकेट बांटते हैं तो उनसे मैं पूछूंगी, आप तो हर महीने अयोध्या जाते थे, प्रधानमंत्री ने तो सारा श्रेय लिया भाई, राम जन्मभूमि का निर्माण का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास, शिलान्यास के बाद उद्घाटन, उद्घाटन के बाद प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, अकेले बैठकर किया, हमारे धर्म के शिरोमणि शंकराचार्यों को बाहर निकालकर किया। लेकिन जब इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी चोरी की बात आई तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, और योगी आदित्यनाथ जी सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं धर्म के। आप जाइए गांव देहातों और छोटे कस्बों में और सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। लोगों को लगता है ये चोरी नहीं है, सिंपल सी, मैं मानती हूं ये चढ़ावा चोरी नहीं है, ये चंदा चोरी नहीं है, असल में हिंदू धर्म पे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार इतिहास में हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है, और उसको करने का काम उन लोगों ने बदकिस्मती से किया जिनके ऊपर संचालन की जिम्मेदारी थी। इस ट्रस्ट में कौन कौन था श्वेता जी? इस ट्रस्ट में तो गिन गिन कर, चुन चुन कर नरेंद्र मोदी जी ने लोग भरे थे। 2020 में उन्होंने इस ट्रस्ट का अनाउंसमेंट किया था और उसमें सारे आरएसएस, सारे विश्व हिंदू परिषद, सारे बीजेपी से समर्थित लोग भरे गए थे, उनके शिरोमणि भरे गए थे। उस ट्रस्ट की देखा रेखी में, उस ट्रस्ट की देख रेख में चंदा चोरी होती है, चढ़ावा चोरी होती है, तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं तो आज यहां पर कुछ खुलासे और करना चाहती हूं, और उन खुलासों में मैं पूछना चाहती हूं कि एसआईटी गठित हुई, एसआईटी के जो हेड थे वो विजय विश्वास जी थे, जिनके ऊपर खुद पर दो धाराएं 420 और 465 के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज है। आपने चंपत राय बंसल का इस्तीफा लिया, उनकी जगह बागरा जी लाए गए, जो नालको के सीएमडी पद से इसलिए हटे क्योंकि सीवीसी ने उनको क्लियरेंस नहीं दे पाई, उनके खिलाफ धोखाधड़ी और घोटाले के मामले दर्ज थे। आपको पूरे हिंदू समुदाय में, मैं तो भारतीयों की भी बात नहीं कर रही हूं 140 करोड़, मैं तो आपसे हिंदू समुदाय की बात कर रही हूं, आपको पूरे हिंदू समुदाय में एक सम्मानजनक, साफ सुथरा, बिल्कुल सही छवि वाला व्यक्ति नहीं मिला। और अंतिम बात मैं कहकर यहां पर अपनी बात खत्म करती हूं, बिकॉज मुझे लगता है लंबा ज्ञान देने के लिए मैं यहां पर नहीं आई हूं। पहला वो जगह, पहला वो मंदिर जहां पर आरएसएस की एंट्री हुई और वहां पर इतनी बड़ी चोरी हुई, बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में शामिल थे। आज मैं पूछना चाहती हूं, वो ट्रस्ट आरटीआई से बाहर है, सरकार की जवाबदेही से बाहर है, उस ट्रस्ट को क्यों रखा गया है, उस ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूं कि जब अर्जुन देव नाम का आदमी जो 17 साल तक अयोध्या में पोस्टेड रहा, जो रेडियो और सीसीटीवी प्रभारी था, उसको एसआईटी गठित करने के बाद तुरंत ट्रांसफर क्यों कर दिया गया, उसको बचाने की कोशिश क्यों करी गई? नरेंद्र सिंह जो गाजीपुर के हैं, आरएसएस के बड़े प्रचारक हैं, वो उनकी ड्यूटी फिल्टरिंग उन सब में होती है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? महिपाल जिसने पहली बार आकर बताया कि यहां पर चोरी हो रही है, जिसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको एसआईटी बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? मैं बहुत सारे सवाल यहां पर उठाना चाहती हूं। चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, लेकिन बाकी बड़ी मछलियों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? और इस्तीफा भी इसीलिए हुआ ना क्योंकि उनको बचाना था। मैं पुनः ये बात कहूंगी कि ये असल में चढ़ावा चोरी सिर्फ नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था पर एक बड़ा हमला और बड़ा प्रहार है।
0: सुप्रिया जी, चंपत राय की जगह डॉक्टर कृष्ण मोहन
3: का अधिकार है फलाने का नहीं है
0: जी, चंपत राय की जगह डॉक्टर कृष्ण मोहन
3: बात और कहना चाहती हूं। हाँ, उनको उनको महासचिव बनाया गया, लेकिन उस ट्रस्ट में बागरा जी लाए गए, एसआईटी की जिम्मेदारी विजय विश्वास जी को दी गई, ये सब संदिग्ध भूमिका वाले लोग हैं,
0: ठीक है,
3: इन सब पर धोखाधड़ी, जालसाजी की एफआईआर है। आपको हिंदू धर्म में कोई मिले? और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे श्वेता जी और कहना चाहती हूँ, जिसको कहना जरूरी है, भगवान राम ना इस देश की आस्था के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक है, इस देश के कणकण में राम व्याप्त है, तो यहां पर बैठकर कोई सर्टिफिकेट न बांटे कि कौन हिंदू राम मंदिर पर बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। हमारे शंकराचार्यों की अनदेखी कर जब शिलान्यास से लेकर ध्वजरोहण का काम नरेंद्र मोदी करते हैं तो अब नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठ सकते हैं। विदेश घूम घूम कर फर्जी अवार्ड नहीं इकट्ठा कर सकते, उनको उस देश को संबोधित करना चाहिए। यह महापाप हुआ है और इस महापाप के लिए माफी मांगनी चाहिए।
0: ठीक है सुनील जी, आपके आपके पास आऊं, उससे पहले सुधांशु जी आप इस पर क्या कहेंगे, वो खासकर SIT के सदस्यों के ऊपर जो बात सुप्रिया जी ने कही है। जी
2: मैं बिल्कुल टेक्निकल बात कहता हूं। राम मंदिर एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का एक्ट यह कहता है कि ट्रस्ट के ऊपर सरकार कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती। यह ट्रस्ट और इनसिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे बना हुआ ट्रस्ट है। और मैं सुप्रिया जी को चुनौती देके कहता हूं, एक प्रावधान, लीगल प्रावधान बताएं जिसके द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को सरकार सीधे हटा सकती हो। और मैं याद दिलाना चाहता हूं इन लोगों को, यही 2 महीना पहले ये लोग वो थे, वो एनजीओ और ट्रस्ट जो धर्मांतरण और नक्सल एक्टिविटीज कर रहे थे, केवल FCRA का नोटिस दिया था सरकार ने, यानी विदेश से जो पैसा आ रहा है उसका डिटेल जो उन्हें नियमानुसार देना चाहिए। अरे ये लोग उछल उछल के उनके बचाव में आ गए। अरे ट्रस्ट है, सरकार कैसे पूछ सकती है, सरकार को तो अधिकार ही नहीं है, वो तो प्राइवेट ट्रस्ट है, सरकार को तो पूछना ही नहीं चाहिए कि पैसा आया कहां से और गया कहां से। और यहां पर जबकि सरकार ने SIT गठित कर दी तो रिपोर्ट आने से पहले कहते हैं अमुक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ढिमा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा जी का जो इस्तीफा हुआ, ट्रस्ट का लॉ यह कहता है कि ट्रस्ट के किसी भी आजीवन सदस्य का इस्तीफा ट्रस्ट की बैठक में ही हो सकता है, ट्रस्ट के 2/3 बहुमत के द्वारा ही हो सकता है, इसके अलावा कोई प्रावधान हो तो बताएं। अब आइए अगला पॉइंट कि ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को क्यों बुलाई गई, इसलिए कि जो SIT की पहली डेट थी वो 15 जून से 30 जून थी, यानी 30 जून को कार्रवाई खत्म होती तो 2 या 3 जुलाई को उनकी रिपोर्ट आती, तो इसलिए 6 जुलाई की रिपोर्ट लाई गई थी कि ताकि तब तक और भी जानकारी आ जाए तो जो भी तथ्यात्मक विषय हो उस पर कार्रवाई हो। जैसे जैसे तथ्यात्मक तो FIR हुई और जिन जिन लोगों के बारे में यह भी लगा कि लापरवाही भी थी तो उन पर कार्रवाई हुई। तो मैं इसलिए पुनः यह पूछना चाहता हूं कि अब लीगल प्रावधान बता के जाइए कि सरकार कैसे ट्रस्ट में कर सकती है। और चुनौती से पूछता हूं, ये मंदिर के ऊपर SIT हुई है, एक कोई दूसरा धर्म बताइएगा जहां SIT गठित हुई। और नैतिक आधार की बात मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा, जरा फोकस करिए इसके ऊपर। ये देखिए, मैं कोई नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया को कोट कर रहा हूं, 3 नवंबर 1990 का अखबार है, 3 नवंबर 1990 का अखबार है। ये क्या कह रहा है, अयोध्या में राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए। आज अखबार 3 नवंबर 1990 आगे क्या लिख रहा है, जलियांवाला बाग से ज्यादा बड़ा कांड, अयोध्या में राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मरे। अरे शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उन लोगों को मारकर और उनपे जश्न मनाया। ये तो श्वेता जी ऐसा ही लगता है जैसे जनरल डायर आके बाद में कहे कि नेशनल हेराल्ड केस में जो गड़बड़ हुआ है वो तो मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति इतनी पीड़ा है कि मैंने चुन चुन के गोली मरवाई थी। और मुलायम सिंह ने ऐलानिया कहा कि मैंने मरवाया, और भी मर जाते तो गम नहीं था। तो याद करिए राम गोपाल जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है,
0: सुनील जी
2: हमें वोट दे, ये मुल्ला मुलायम कहो या मौलाना
0: सुप्रिया जी, मैं इसके फौरन बाद आप तक आऊंगी, क्योंकि जो गोलियों की बात उन्होंने कही है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़ी,
2: इसका क्या नैतिक आधार है समझ में आ जाता
0: है। अच्छा ठीक है, आप छोटे में, बहुत छोटे में अगर सुप्रिया जी आप रिएक्ट करें, बाद में आप लंबा रिएक्शन अपना दे दीजिएगा,
2: क्योंकि
0: जी ये सवाल एग्जैक्टली इसीलिए मैं सुनील जी के पास जाना चाह रही थी। सुप्रिया जी अपनी बात खत्म कीजिए फिर मैं
3: छोटा सा।
0: जी जी
3: नहीं बिल्कुल, आप सुनील जी के पास जाइएगा और उनसे लंबी बात करिएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुधांशु जी टेक्निकलिटीज में उलझाएंगे मुझे, ये कौन सी टेक्निकलिटी थी जिससे शिलान्यास भी उन्होंने किया, भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी ने किया, उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया, प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी ने की, ध्वजारोहण भी नरेंद्र मोदी ने किया, और अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हे राम जी, अब जगत बना ही नहीं, अब मैं उस पर बोलूंगा ही नहीं, मैं आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर बैठ जाऊंगा। ये जो लॉजिक है ना, ये उन तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं को दीजिएगा, उस महिला को दीजिएगा जिसने अपना मंगलसूत्र मंदिर में दान किया और पता ही नहीं है वो आभूषण कहाँ गायब हो गया।
0: ठीक है,
3: इस गरीब औरत को दीजिएगा जिसने अपनी 1 बीघा जमीन बेचकर राम मंदिर में दान कर दी। ये टेक्निकलिटी उन करोड़ों श्रद्धालुओं को समझाइएगा जो जानते हैं कि मंदिर में चोरी हुई, और चोरी बीजेपी और RSS के रहते हुए हुई, जो जीवन में कभी नहीं हुई थी, जो गजनबी ने नहीं किया वो आप लोगों ने लूट डाला।
0: ठीक है सुनील जी, सुनील जी पहले ये बताइए कि हम जब भी ये कहते हैं कि इतना पीछे पलट के मत देखो, तो कम से कम 90 उतना पीछे भी नहीं है कि लोगों के स्मरण में न रहे। आप लोग जो बातें कर रहे हैं और जो सनातन ही समाजवाद है का एक नया नारा गढ़ा गया है, उस सब में आपको लगता है कि जो जनता है वो भूल चुकी है तब जब उसको लेकर किसी तरह की बात या स्पष्टीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी दी नहीं गई है? आप क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ के उस आरोप पर जब वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई अधिकार नहीं कि वो बोले?
4: देखिए श्वेता जी, मैं बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम में इस बात को कह सकता हूं कि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, देवी को मानते हैं, ये कैसे पूजा पाठ करते हैं इसका सर्टिफिकेट हमको भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से नहीं चाहिए। ये लोग उनके ठेकेदार नहीं हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, तो सरकार ने सुनियोजित ढंग से उसी दिन, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने यह तय कर लिया कि हमको भगवान राम के नाम पर लूट करनी है। उस ट्रस्ट में आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग रख दिए जाते हैं। कोई शंकराचार्य नहीं, कोई महंत नहीं, कोई संत नहीं, जिन लोगों को भी रखा है उनको कोई अधिकार नहीं। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि उस सुबह सुबह क्या खा पी लेते हैं कि दिन भर केवल झूठ बोलते हैं। अभी वो प्रचार कर रहे थे कि हनुमानगढ़ी में समाजवादी पार्टी ने नमाज पढ़ा दी। हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास जी के द्वारा वो आयोजन किया गया था। और अब तो इनके नेता, अभी मैं सुन रहा था, इनके नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है और इनको जाके देख के आना चाहिए, खुद योगी जी जाएं, सुधांशु जी जाएं, हनुमानगढ़ी एक मुस्लिम ने बनवाई थी। दरअसल ये देश जो गंगा जमुना संस्कृति का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे का है, इस देश के खिलाफ बीजेपी आज से है। ये नैतिकता की बात करते हैं कि हम धर्म की बात नहीं कर सकते, तो अगर हम धर्म की बात नहीं कर सकते तो आप राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं? आपके तो पुरखे आजादी के खिलाफ थे, इसी राष्ट्र के खिलाफ थे, आप संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? आपके पुरखे तो संविधान चाहते नहीं थे, आपके पुरखे तो तिरंगा नहीं चाहते थे, आपके पुरखे तो पिछड़े और दलितों को आरक्षण देना नहीं चाहते थे। आप नैतिकता की बात करेंगे, आप इस तरीके की बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहेंगे गुंडागर्दी, आप तय कर लीजिए। मानिए अखिलेश यादव जी एक तरफ हमारे नेता और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, किस पर है? दंगे के मुकदमे किस पर थे? गुंडई के मुकदमे किस पर थे? आपराधिक मुकदमे किस पर थे? आप मुख्यमंत्री बन गए, खुद मुकदमे वापस ले लिए, आप ही जज हो गए, आप ही हाई कोर्ट, आप ही सुप्रीम कोर्ट हो गए, और आप कहेंगे कि गुंडई, समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास की लकीर खींची है वो योगी जी आप छू नहीं पाएंगे। ये लोग झूठ बात करते हैं। अच्छा ये क्या है, ये अभी भी चंपत राय बंसल को संत कहेंगे, अनिल मिश्रा को संत कहेंगे, ये गोपाल राव को संत कहेंगे और जितने लुटेरे हैं, हम तो आज तक के कार्यक्रम में कहेंगे सुधांशु जी एक मंदिर बना लीजिए, वहां चंपत राय, अनिल मिश्रा जितने भी लुटेरे हैं उनकी मूर्ति लगा लीजिए। अब भगवान राम के दर्शन मत करिए, आप लोग इन्हीं के दर्शन करिए, यही आपके वैचारिक गुरु हैं, यही आपके वैचारिक भगवान हैं। और ये सुधांशु जी, हनुमान जी को आप नचा देंगे अपने कार्यक्रम में, फिर बताएंगे ये अंगद जी हैं, ये गाय को भी अलग अलग तरीके से बताते हैं, ये अद्भुत हिंदू हैं, मछली खाने को कभी अच्छा बता देंगे, कभी गाय को कुछ बता देंगे, कभी हनुमान जी को नचाने के बाद उनको अंगद बता देंगे, भगवान राम का मंदिर लूट लेंगे और दूसरे से कहेंगे कि आप लूट पर बात करने की आपकी नैतिकता नहीं है। बहुत टेक्निकल बात कर रहे थे, तो आप बताइए कि टेक्निकल ये आरोपियों को कब तक आप पकड़ेंगे? और एसआईटी जो सुप्रिया जी ने कहा है उन किसी भी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी मंशा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी लगातार इस प्रयास में हैं कि असली लुटेरे ना पकड़े जाएं, क्योंकि श्वेता जी अगर एसआईटी की सही रिपोर्ट आ गई या सही जांच हो गई तो यह जांच बीजेपी मुख्यालय तक जाएगी, आरएसएस मुख्यालय तक जाएगी,
5: अब तो कोर्ट
4: हिंदू परिषद के
5: मुख्यालय, अब तो कोर्ट को रिपोर्ट देनी है ना।
4: बड़े बड़े वैचारिक नेता हैं, ये सब जेल जाएंगे।
5: नहीं, कोर्ट को रिपोर्ट देनी है, आपको लगता है कोर्ट से तो आपको सही न्याय मिल जाएगा ना?
4: नहीं, ठीक बात।
5: हाँ तो अच्छा, नहीं मलूक नागर जी, ये बताइए कि एक सहयोगी होने के नाते आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इस पर कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से एसआईटी है, अब आगे जो जांच हो रही है, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो सही दिशा में जा रही है, आप लोग आश्वस्त हैं इस बात से?
6: देखिए श्वेता जी, जांच जब शुरू हुई थी तो हम आपके टेलीविजन पे आके बिल्कुल साफ और स्पष्ट बोलते थे, जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे वो दुष्ट और पापी होंगे, और जो जांच में आए, एफआईआर हुई, जेल में डाला, आगे जांच जारी है, जो भी कहीं इंक्वायरी में आएगा उसे भी सजा दी जाएगी। और पूरी डिबेट में जो मैं देख रहा हूँ, हमारे तीनों साथी घूम फिर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, आप भी एक बार पहुंची हैं। अभी जांच जो चल रही है उसकी रिपोर्ट एसआईटी की सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये ट्रस्ट बना था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पे इनको विश्वास है तो अब तो इनका मुद्दा पूरा हो जाना चाहिए, और अगर इनको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है तो क्या ये संविधान को नहीं मानते? एक बात मैं और कह रहा हूँ, सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक बात कही कि पूरा अधिकार है सबको, मैं कह रहा हूँ 147 करोड़ लोगों को, हर किसी को अधिकार है वहाँ के बारे में सोचने का, चिंता करने का, और जो चंदा में चोरी हुई है उसको जानने का, और वो सब जानने के सब अधिकारी हैं और सबको जानना चाहिए। पर एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुँचा, सबको जानने की बात है, सब सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं, तो जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बना है, उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कांग्रेस के कई बार के सांसद और कई बार के मंत्री कपिल सिब्बल साहब ने जो बया जो वहां एफिडेविट कांग्रेस का गया और उसमें राम भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था, तो क्या आज चर्चा में सार्वजनिक रूप से उनकी माफी मांगेंगे? और जो उनके साथी पार्टी है समाजवादी, क्या अपने गोली चलाने से लेकर के और अभी जो वहां राम को काल्पनिक माना उसको लेकर के, और आज अगर चोरी जो हुई है उनको अगर सजा दी जा रही है, जो पहले आप अलग एक दिशा में खड़े थे, जो चाहते ही नहीं थे मंदिर बने, काल्पनिक बता रहे थे, तो आज आपको जो हमदर्दी उठी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट जाएगी, तो अब सहमत हो या नहीं हो, या आज आप सही हो तो क्या पहले गलत थे उस समय की माफी मांगोगे? अगर उस समय आप सही थे तो आज आप, जब कांग्रेस 3 साल खाली रहती है, 3 साल के बाद उनका अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष बनते ही वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, कुंभ का मेला सनातन धर्म से सबसे बड़ा पर्व होता है, डुबकी लगाए से क्या मिल जाएगा? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की एक पार्टी जो साउथ से स्टालिन साहब सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, यूपी बिहार के लोगों से नाली साफ कराने सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, आपने उसको साथ लगा के रखा, तो क्या उसकी माफी मांगेंगे? अपने आप में ही इतने कंफ्यूज हैं ये लोग, इनको पता नहीं है कब खिलाफत करनी है, कब फेवर करना है, कब चुनावी हिंदू बनना है, जनेऊ ऊपर पहनना है कपड़े के नीचे पहनना है, कब क्या मुद्दा उठाना है, कब क्या मुद्दा नहीं उठाना, जो सब जो जब जरूरत पड़ने में शूट करे उसी तरह कर दो। ये देश की जनता सब देखती है, सब जानती है, सब समझती है, और सब चीजों को आंख करके भांप करके आने वाले समय में सही माकूल जवाब देगी। लोकतंत्र प्रजातंत्र में वोट के रूप का जो हथियार है उसे सही तरीके से पूरा अपना करके देगी, और दूध का दूध और पानी का पानी, जैसे जांच हो रहा है,
5: पब्लिक भी आने वाले। सुधांशु जी, लेकिन मामला जब आपराधिक है तो इसमें नैतिक अधिकार किसके पास है, किसके पास नहीं है कि सवाल पूछ सके या आरोप लगा सके, ये कहां से बनता है? दूसरा, क्या मतलब ये मान लिया कि ट्रस्ट जो है वो स्वायत्त है, स्वतंत्र है, उसमें दखल अंदाजी नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर ये मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में शामिल रहा, उसके प्रण में आप कहेंगे आपकी नीति नियत में शामिल रहा, अगर मुख्यमंत्री पर्सनल तौर पर पूरा निरीक्षण करते हैं जब निर्माण वहां पर चल रहा है, बाकी अयोध्या सिटी कैसे आगे बढ़ रही है वो सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ से लेकर उद्घाटन तक, शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक उसमें रहते हैं, शिखर पर जब ध्वजारोहण होता है उस समय भी जाते हैं, तब क्या ये अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं हो जाती है, अंतिम जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि पवित्रता चढ़ावे की, लोगों की आस्था की बनी रहे, ये सरकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी अंतिम जिम्मेदारी नहीं हो जाती है?
2: बिल्कुल, देखिए पहली बात जो टेक्निकलिटी की बात जिसे सुप्रिया जी ने कहने का प्रयास किया कि टेक्निकलिटी से बचाओ, नहीं साहब, मलूक नागर जी ने जो बहुत साफ कहा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, तो एक एक टेक्निकल प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है ताकि वो विषय सुप्रीम कोर्ट तक ना कटे। कल के दिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सरकार ने ट्रस्ट के अध्यक्ष को हटा दिया और पता चला कोर्ट में जाके वो धड़ाम से नीचे गिर गया कि सरकार को अधिकार ही नहीं था। तो जो टेक्निकल प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप पूरी की जा रही है ताकि हम जिसके विरुद्ध कार्रवाई करें पुख्ता सबूतों के आधार पर करें, पुख्ता कानूनी आधार पर करें, ताकि जो भी दोषी है वो सुप्रीम कोर्ट तक बचने न पाए, इसलिए वो टेक्निकलिटी की आवश्यकता थी। अब आइए, आपने कहा कि मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने किस कैपेसिटी में किया, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 1991 में फायरिंग के बाद जब हमारी सरकार बनी थी तो यूपी की पहली सरकार थी जब कल्याण सिंह जी पूरी कैबिनेट के साथ गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए, तो क्यों गए थे, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया था वो भगवान राम के प्रति जो उन्होंने आदर व्यक्त किया था उसके प्रतिनिधि के रूप में गए तब कल्याण सिंह जी, उसके प्रतिनिधि के रूप में शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण तक मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि ये भारत के जागरण का प्रतीक था, ये कोई एक मंदिर और इमारत नहीं थी। और दूसरा मैं कहूंगा, मुझे दुख हुआ कि हम सुनील जी और सुप्रिया जी दोनों कहने लगे गजरवी ने लूटा था, अरे भाई क्यों ये वामपंथी झूठ परोस रहे हो, गजनी गौरी और औरंगजेब लूटने नहीं आए थे मंदिरों को, तोड़ने आए थे, मंदिरों को तोड़ने आए थे, मूर्तियों को खंडित करने आए थे, मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने आए थे। और महमूद गजनी ने के साथ आए हुए खुद इतिहासकार मिनाजुस सिराज ने तबाकते नासरी में लिखा है कि जब सोमनाथ पे कैप्चर हो गया और वो मूर्ति को खंडित करने लगा तो वहां के पुजारी और राजाओं ने और लोगों ने कहा हम इकट्ठा करके आपको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देंगे, उनके लोगों ने कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लेनी चाहिए, क्या धरा है इस पत्थर में, मगर क्या जवाब दिया गजनी ने, गजनी ने कहा ना मुझे पैसा नहीं चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कयामत के दिन मैं बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, यानी मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले गरीब इंसान के रूप में, इसीलिए वर्ड बुत शिकन होता है, बुतों का लुटेरा नहीं होता है। इसलिए जो ये वामपंथी बकवास है कि लूटने की बात करते हैं, इसको आप मंदिरों के तोड़ने वाले विध्वंसक आक्राताओं के ऊपर ढकने का प्रयास मत करिए। अब दलित साहब की बात कही थी सुनील साहब ने, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भाई साहब, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989, तब तक कोई जाति वाला एंगल राजनीति में नहीं होता था, जो 4 मूर्तियां रखी गई बाकायदा धार्मिक धर्मग्रंथ की प्रक्रिया से, धर्मग्रंथ होता है शिलान्यास का सम्रांगण सूत्रधार, उसके अनुसार 4 ईंटें रखी जाती है नंदा भद्रा जयापूर्णा, उससे पहले 5वीं ईंट किससे रखवाई गई, कामेश्वर चौपाल जी से जो दलित समाज के थे बिहार के, अभी उनकी मृत्यु हुई है 2 साल पहले। आज कृष्ण मोहन जी जो आए हैं चंपत राय जी की जगह या दलित समाज से है, और मैं चैलेंज करके पूछता हूं मेरे भाई बताओ कोई मस्जिद जिसमें गद्दी घोसी अंसारी बहना हलालखोर हो बताओ वहां का चीफ, चैलेंज बताइए कोई ईसाइयों में हो, बताइए जामा मस्जिद में है, बताइएगा कौन सी मस्जिद में है, हजरतबल में है। इसलिए दलित समाज हो अथवा समाज का कोई भी वर्ग हो, अब इन्होंने कहा गाय के बारे में, सुनील साहब गाय के साथ हिंदू समाज का बहुत भावनात्मक संबंध है, और हिंदू समाज में भी अगर सर्वाधिक रागात्मक संबंध है तो वह यादव समाज का है। और जब अखिलेश यादव जी कहते थे कि इनको गाय में बदबू आती है गौशाला इसलिए खोलते हैं, तो इस बात को लेकर बहुत कष्ट होता है। तो एक एक चीज जनता के सामने है, टेक्निकल हो या मॉरल हो या पॉलिटिकल हो, मुझे लगता है बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं लास्ट में एक पंक्ति और कह देना चाहता हूं श्वेता जी, एक नारा लगता था गोली चलने के बाद कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हम कहना चाहते जो हुआ है कष्ट हमको भी हुआ है, राम भक्त कार सेवक के रूप में हमको भी हुआ है, हमने भी बालक के रूप में 84, 87, 91 सब जगह गए थे, 89 में शिला पूजन किया था। तो मैं कहना चाहता हूं आज हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी है। मगर जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्त का स्वांग रचाते, ये भक्त नहीं शैतानी है।
5: सुप्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब पूरा मामला, निगरानी रहेगी उनकी, अगर एसआईटी की रिपोर्ट वहां पर जाती है, अब आप लोगों को क्या भरोसा है कि इसमें न्याय होगा, इंसाफ होगा, या फिर 2027 को देखते हुए यह मुद्दा केवल राजनीतिक रूप में जीवित रखा जाएगा?
3: चार मिनट तक सुधांशु जी बोले, मैं उनके क्रमवार चीजों का जवाब दे देती हूं और बिल्कुल आपके सवाल का सीधा जवाब दूंगी
5: जी।
3: दलितों की बात कौन कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस का एक भी प्रमुख अपने 100 वर्ष की हिस्ट्री में आप एक दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं बना पाए। 20 जगह सरकारें हैं, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं। आप दलितों की बात करिएगा, शिलान्यास हुआ इस देश के राष्ट्रपति तब दलित थे, उनको नहीं बुलाया गया। उद्घाटन हुआ आदिवासी समाज की महिला, हमारे देश की उच्चतम फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति है, उनको नहीं बुलाया गया। आप बात करेंगे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की, शर्म कीजिए कुछ, उस एंगल पर मत जाइए, उस एंगल पर औंधे मुंह गिर पड़िएगा। जिस दिन आरएसएस सरसंचालक दलित बनेगा उस दिन बात करिएगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूं, मंदिरों की खंडित करने की बात आप कर करिएगा। 300 से 350 मंदिर काशी विश्वनाथ के तोड़ दिए गए, खंडित कर दिए गए, वहां पर कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। अभी भी अहिल्याबाई का मंदिर तोड़ा गया, आज भी देखा गया कैसे मंदिर की गुंबद टूट के गिरी। और ये बात करेंगे मंदिर तोड़ने की, आपको कॉरिडोर बनाना, इसलिए आप प्राचीन सभ्यताओं और हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। वहां पर कितना विरोध था आपको अंदाजा है इस बात का, लोगों ने क्या कहा? खैर छोड़िए उस बात को, तभी 7-7 राउंड मोदी जी हारे थे। अब बात करते हैं अस्तित्व की, अस्तित्व की बड़ी बात करते हैं। जिस मां सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, उस मां सीता के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आपका सांस्कृतिक मंत्रालय, आपकी सरकार। सीतामढ़ी ये तो फेथ की बात है, सीता वहां की थी कि नहीं ये आपने कहा, संसद में कहा। और अब बात करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होने में। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल सच आना चाहिए। सच कैसे आएगा जब एसआईटी सही लोगों से पूछताछ करेगी? मैं पूछना चाहती हूं, ये टिन्नू पिन्नू कोई कौशल मिश्रा ने मिलकर इतनी बड़ी चोरी कर ली? वो जो 7-8 प्यादे गिरफ्तार हुए हैं, आप गोपाल राव के नाम के एक आदमी को जानते हैं? वो आरएसएस के प्रचारक है कर्नाटक से। उन्होंने ऐसी जमीन की खरीद फरोख्त करी कि संदीप पाटिल एक आरटीआई के एक्टिविस्ट है, उन्होंने पूरा निकाला कि कैसे गोपाल राव और उनके साथियों ने जमीन की खरीद कर एम्पायर बनाई। आप बात करना चाहते हैं दूध का दूध और पानी के पानी की? अर्जुन देव का 17 साल बाद ट्रांसफर क्यों किया, उससे पूछताछ क्यों नहीं गई? नरेंद्र सिंह जो आरएसएस के प्रचारक और वहां पर फिल्टर करते ऑडियंस को, उनकी पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? के तिवारी का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? असलियत यह है कि जब सही लोगों से पूछताछ ही नहीं होगी, जब बड़े मगरमच्छों और मछलियों को छोड़ दिया जाएगा, का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं अंत में दो बातें कहना, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, भगवान का नाम लिए बिना, पूजा की नहीं बिना अन्न नहीं ग्रहण करती हूं, तो मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब आप हनुमान की प्रति बनाकर एक आदमी को अपने रोड शो में नचाते हैं। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब भगवान राम को छोटा दिखाकर, नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाकर भगवान राम की उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ उंगली में थामते हैं। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब उद्घाटन के दौरान अयोध्या में भगवान राम से बड़ा कटआउट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगता है। मेरी आस्था को ठेस जरूर पहुंचती है जब बंगाल में मछली खाने की होड़ लग जाती है कैमरे पर, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, बीजेपी का कौन नेता जो कैमरे पर मछली खाने के लिए उतावला नहीं था और इलेक्शन के बाद बच्चों की प्लेट से अंडा गायब कर देते हैं, ये असलियत है इनकी। अरे अभी 57 करोड़ की चोरी इन्होंने राजस्थान में करी, मरी हुई गायों के ऊपर वहां पर उनका घोटाला कर। और मैं एक बात योगी आदित्यनाथ जी तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं, उत्सुक है, पूछना चाहती हूं, मेरे मठ के मठाधीश है। 1984 में बाबा अवैद्यनाथ ने राम मंदिर एक समिति का गठन किया था, नाम राम मंदिर निर्माण समिति का। अगर आज वो जिंदा होते तो जो चोरी हुई, जो सुधांशु जी ने स्वीकारा कि हां गड़बड़ हुई है और उसी के दूध का दूध और पानी के पानी करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इधर उधर की बातें करते? वो फलाना ढिमकाना इतिहास में जाते? या वो जवाब मांगते हैं, वो कहते हैं कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी मंदिर के संचालन की, मंदिर के पूजा पाठ की, उन्होंने हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा कैसे किया, दिन दहाड़े हमारी आस्था का कत्ल करने की जरूरत कैसे करी, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा।
5: ये
3: सतीश महाना आपके बड़े नेता है, सतीश महाना कहते हैं उन्हीं का चंदा चोरी हुआ जिन्होंने श्रद्धा से नहीं दिया, गरीब आदमी ने जो पैसा चढ़ाया वो चोरी हो गया, और आप इस धृष्टता से बात करते हैं, शर्मानी चाहिए आपको।
5: ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, हम ये फुल फ्रेम भी ये तस्वीरें दिखा देते हैं, ये राम मंदिर में शुद्धिकरण के लिए ये पूजा पाठ का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या में 10 दिनों का ये शुद्धिकरण के लिए पूजा का

0: सुनील सिंह जी, आप अपनी बात पहले रखिए, क्योंकि जिस तरीके से अब तक ये पूरा मामला बढ़ा है, आप देखिए शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर पूजा पाठ ट्रस्ट की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच जो शुद्धिकरण उस दूध का दूध और पानी के साथ होगा, इंसाफ के साथ, इंतजार तो सबको असल में उसी का है।
1: देखिए श्वेता जी, शुद्धिकरण हो रहा है इसका मतलब ट्रस्ट ने मान लिया है कि वहां कुछ ऐसे काम है जो अशुद्ध थे, और जो काम किए हैं वही शुद्धिकरण करा रहे हैं, या वो लोग वही हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई है? चंपत राय पर कार्रवाई कब होगी, अनिल मिश्रा पे कार्रवाई कब होगी? इस्तीफा कोई कार्रवाई नहीं है। एक और भाई, सुधांशु जी एक अच्छी बात कह रहे थे कि महमूद गजनी के बारे में कि वो तोड़ने आया था। हम लोग व्याक्रांता ही तो मानते हैं, लेकिन आप उनसे बड़े अक्रांता निकले। उसने कितने मंदिर तोड़े थे, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के बनारस में कितने मंदिर तोड़े। आपने मंदिर भी तोड़े हैं, आपने मंदिर भी लूटा है, तो खतरनाक ज्यादा कौन, वो अक्रांता या जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं कि ये अक्रांता जेल जाए, ये कौन खतरनाक है? आप गाय की बात कर रहे थे, आप लोग दुष्प्रचार करते हैं हमारे नेता को लेकर के, और आपने आधा दुष्प्रचार किया और आधा स्वीकार किया कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, आज हमारे घर की पहली रोटी आज भी गाय को ही जाती है, दूसरी हम लोगों को मिलती है या बच्चों को मिलती है, तो हमारी आस्था है गाय पर। हम गाय को आप कहने के लिए माता बोलते हैं, हम तो मानते हैं मां, और उसी गाय को आप के बीजेपी की सरकार में कटवाया जाता है। बीफ पर प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वो हो गए हैं, तो आप लोगों की नैतिकता कहां है? आंख में कुछ शर्म वाला पानी बचा है आप लोगों में, या बिल्कुल धर्म को धंधा बना दिया है? ये धर्म को धंधा मत बनाइए, धर्म को आस्था रहने दीजिए। आप देश को तो वैसे भी लूट रहे हैं, कुछ आपके अपने लोग मिलके लूट रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। श्वेता जी, कोई एक्सप्रेस, कोई सड़क इन लोगों ने ऐसी नहीं बनाई जो उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद न धस जाए। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे? ये भगवान राम का मंदिर भी लूटते हैं और शिक्षा का मंदिर भी बंद करते हैं। योगी जी की क्या उपलब्धि है? उत्तर प्रदेश में कितने हजार प्राइमरी स्कूल आपने बंद किए, बताएंगे आज तक पर? और कितने नए ठेके खोले हैं, ये भी बता दीजिए, तो लोग समझ जाएं कि आप किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं, किस तरीके के हिंदू हैं, किस तरीके के सनातनी हैं, किस तरीके के लोग हैं आप। मतलब केवल आप लोग आते हैं, हमको तो ये लग गया है, अब ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चलाते हैं, मुझे लगता है उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने जोड़ लिया है, वो भी उसी से बोलते रहते हैं। केवल झूठ बोलना, अगर आपको सच में तुलना करनी है श्वेता जी उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के, तो हम तो खुले मन से कह रहे हैं, आप माननीय अखिलेश यादव जी से तुलना कर लीजिए, क्या जनेश्वर पार्क से बेहतर पार्क आप बना पाए? जो समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बना उससे बेहतर एक्सप्रेसवे बना पाए आप? क्या 19 लाख लैपटॉप बांट पाए? आप कर क्या पाए हैं? क्या लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट बना पाए? JPNIC आपने सड़ा दिया, सबसे अच्छी बिल्डिंग आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों के मन में कुछ बनाने का है ही नहीं, इनसे बिगड़वा लो, ध्वस्त करा लो, विध्वंस करा लो, जहर उगला लो, भाई भाई से झगड़ा करा दो और हिंदू मुसलमान से करा दो, अगड़े पिछड़े में करा दो, ये इनको बेहतर आता है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। हमारी आपकी तो राजनीति चल सकती है, क्या करोगे ऐसी राजनीति का सुधांशु जी, जहां नफरत फैल जाए?
0: ठीक है सुधांशु जी,
1: एक दूसरे पर भरोसा ना रह जाए
0: जी,
1: जहां केवल भ्रष्टाचार हो।
0: किया क्या है आपने, और हर जगह भ्रष्टाचार के बीच राम मंदिर का भ्रष्टाचार, ये सारे जवाब के साथ हम कंक्लूड करेंगे जी।
2: अब मैं संक्षेप में मैं क्विकली बताना चाहता हूं सुनील जी को, भाई साहब आपको दिखाई नहीं पड़ता है, उत्तर प्रदेश की जो GDP थी वो 3 गुनी हो गई, प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई। जब आपकी सरकार थी केवल 2 प्रैक्टिकल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी, आज 17 एयरपोर्ट हैं और 3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। सबसे ज्यादा हाईवेज वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में, 3.25 करोड़ लोगों को एमएसएमई के थ्रू रोजगार के अवसर मिले। आज दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में, भारत का सबसे विकसित एयरपोर्ट नोएडा में है। और फिर इतना ही नहीं, आपके जमाने में तो कट्टे बनते थे, अपहरण फिरौती उद्योग चलता था, अब अपहरण नहीं दिखाई पड़ता है, न कोई कट्टे बनते दिखाई पड़ते। अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिंग मिसाइल लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बनकर एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर भी आपको यह बात नहीं समझ में आती। तो याद दिलाना चाहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसको जापानी बुखार कहते थे, वो इंसेफ्लाइटिस वाला मच्छर भी खत्म हो गया और माफिया भी खत्म हो गए। मगर मैं फिर भी याद दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, जुलाई 2005 में राम मंदिर पर टेररिस्ट अटैक हुआ था और जो हथगोला था वो उस टीले के नीचे तक गया था। वो तो राम का प्रताप था कि वो हथगोला फटा नहीं, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। मगर सुप्रिया जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही क्योंकि आस्था को ठेस पहुंचती थी, मगर तब आस्था को ठेठ नहीं पहुंचती थी जब श्री रामलला विराजमान टाट में थे, माफिया सब ठाट में थे और वो टाट फट जाता था, सरकार रिपेयर नहीं कराती थी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, तब नया टाट का छप्पर लगता था। और आस्था को चोट तब नहीं लगी जब राम मंदिर में बुलाया गया, और बुलाने पे नहीं जाना एक बात होती श्वेता जी, आपके घर में बेटे बेटी की शादी हो, कोई इनविटेशन दे, शादी तक में कोई ना जाए अलग बात, पर अगर लिख के दे दे कि मैं नहीं आऊंगा, इसका मतलब सीधे आपका अपमान कर रहा है। आपने राम जन्मभूमि न्यास को लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे, आस्था को ठेस नहीं पहुंची, मगर 3-3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे बगैर बुलाए गई, 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह, तब आस्था को ठेस नहीं पहुंची। इसीलिए मैंने कहा है भगत और बगुला भगत का अंतर पूरे देश को बहुत अच्छी तरह से सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। और जो योगी जी ने बोला था, कालनेमी शब्द प्रयोग किया था, मैं कहना चाहता हूं भगवान राम के भी शक्ति लगी थी, भगवान राम भी मूर्छित हुए थे युद्ध में, और आज भगवान राम की आस्था को आघात लगा है। मगर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो एक रावण का दूत कालनेमी भगवान का भक्त का स्वांग करके,
0: समय इतना ही है, देखिए ये पूरा मामला है जो सभी लोगों के सामने है। पार्टियों का तर्क अपनी जगह रहता है, लेकिन आखिरकार भक्तों के मन में क्या चल रहा है, क्या स्वीकार कर रहे हैं, कितना इंसाफ से संतुष्ट हैं और कौन अभी पूर्ण इंसाफ का इंतजार कर रहा है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
2: अर्ज किया है,
1: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
9: पापा,
10: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ,
12: ओला ला भाई मेरा बैट।
13: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
12: वो तो चार्ज हुआ यार।
14: ओला बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
16: वी आर ओवर जिमी।
17: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
18: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
19: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है। परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
14: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर। आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
15: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
13: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
16: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymedia.in।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: तो भरोसा है।
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
11: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
12: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
13: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
11: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
15: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
16: YouTube pe ab dekhiye aaj tak vertical. Aray bhai, phir ghuma rahe hain, chhod dijiye, ghumane ki aadat chhod dijiyega. Ab dekhiye aaj tak vertical.
17: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें।
18: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा, ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।

0: अल्लाबुल में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए 7 बजे की खबरें मारिया शकील के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब दौरे पर पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा केंद्र के नाम पर आम आदमी पार्टी सरकार अपना स्टिकर चिपका रही है। दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। मॉनसून सत्र से पहले बढ़ सकता है एनडीए का कुंभा, उद्धव के 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में शामिल करने की जारी हो सकती है अधिसूचना। संसद सत्र के लिए मोर्चा बंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक। गाजियाबाद की रैली में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, कहा 10 साल पहले गुंडागर्दी और गैंग वॉर थी यहां की पहचान, ना नीति थी और ना नियत। यूसीसी पर फिर बोले सीएम मोहन यादव, जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार होगा, हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों। शो की शुरुआत मॉनसून सत्र को लेकर जारी तैयारियों के साथ, जहां नंबर गेम को लेकर मंथन का दौर जारी है। सरकार कई अहम बिल इस मॉनसून सत्र में पास कराने का मन बना चुकी है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे, जिसमें अपमान करने पर कड़ी सजा का कानून होगा। वहीं बाकी बिल को भी पास कराने को लेकर सरकार 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर रही है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में आ रही एनडीए के नेताओं की ये गाड़ियां मॉनसून सत्र की रणनीति तय करने पहुंच रही हैं। एक घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जेडीयू के ललन सिंह, टीडीपी से राम मोहन नायडू और अन्य नेता शामिल हुए, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर मंथन हुआ। सूत्रों के अनुसार सरकार को पूरा भरोसा है कि जब भी जरूरत होगी तो दो तिहाई बहुमत वाले बिल के लिए भी सरकार के पास सदन में जरूरी संख्या बल मौजूद है। सरकार का मानना है कि एसपी और कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल परिसीमन बिल को अपना समर्थन दे सकते हैं। उधर 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर लिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई और किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे, जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक सबसे बड़े मुद्दे होंगे।
1: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
0: ऐसे में 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में जोरदार हंगामे के आसार हैं, जिसे लेकर रणनीति पर लगातार मंथन चल रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात यूपी की सियासत की, जहां 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की खामियां गिना रहे हैं, तो वहीं अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की तैयारी कर रहे हैं।
3: यूपी के चुनाव में अब जंग योगी का कार्यकाल बनाम अखिलेश का कार्यकाल की हो गई है। जहां योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज पर सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश राज की याद दिलाना नहीं भूल रहे।
4: जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे।
3: राम मंदिर से लेकर माफिया तक योगी आदित्यनाथ की रैलियों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले जारी है।
4: ये लोग जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
3: उधर बीजेपी के हमलों के बीच अब समाजवादी पार्टी ने 27 के चुनाव को लेकर नया प्लान तैयार किया है। समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों के घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। वहीं बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है। पार्टी ये भी बताएगी कि 2012 से 2017 की सरकार में यूपी में किसानों, नौजवानों, महिला सुरक्षा से लेकर नौकरी रोजगार तक के लिए क्या क्या काम हुए। समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक के मुद्दे को भी चुनाव में जोर शोर से उठाने का फैसला किया है।
5: आज ये उत्तर प्रदेश की जनता ये 10 साल भूलना चाहती है, जिस राम के नाम पे आए उसी को लूट के चले गए, और लगातार जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम पर है, सपा के समय लैपटॉप दिया जाता था, नौकरियां दी जाती थी, एचसीएल और सैमसंग को लाया जाता था, मेट्रो चलाई जाती थी, और आज क्या हो रहा है, बेरोजगारी होती है, पेपर लीक होते हैं, एग्जामिनेशन लीक होते हैं, और इनकाउंटर किया जा रहा है, पीडीए को देख के इनकाउंटर किया जा रहा है।
6: दशक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने जाति और मजहब के मकड़ जाल में उत्तर प्रदेश को ऐसा उलझा रखा था कि उत्तर प्रदेश दशकों पीछे हो गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक दशक में आज दशकों के पिछड़े हुए कामों को आज संवारने का काम किया है।
3: 2027 चुनाव की सियासी पिच तैयार हो चुकी है, जहां लड़ाई मेरा विकास बनाम तेरा विकास की है। आज तक देरो।
2: उधर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज यूपी में थमने का नाम ही नहीं ले रही। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया।
7: संभल के मुकर्रबपुर गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मजार पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बुलडोजर के जरिए देखिए जो पूरी मजार है जो कि बंजर भूमि पर कब्जा करके यहां पर ये पूरी मजार बनाई गई थी, अब उस पूरी मजार को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल आपको यहाँ तस्वीरों में देखा जा सकता है, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है वो यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मौके पर पहुँचते ही ये पूरी कार्रवाई यहाँ जो है शुरू हुई है। और फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसी तरह से जहाँ एक बुलडोजर पूरी इस मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है, उसके ठीक बराबर में ये देखिए दोनों जो यहाँ पर बुलडोजर हैं वो पूरे इमामबाड़े को यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई जो शुरू कर चुके हैं। और इसी तरह से जो भी पूरा अवैध निर्माण है वो फिलहाल यहाँ पर ध्वस्त किया जाना शुरू हो चुका है। यानी अब से कुछ ही देर बाद यानी 24 घंटे बाद ठीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल जिले में होंगे, जबकि वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जो भी अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। और
2: अब बात चढ़ावा चोरी की, जहां अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक हो रहे खुलासे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान के पैसों का है, जिस पर अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक एक्शन जारी है। बद्रीनाथ मंदिर चोरी मामले में पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। राजेंद्र चौहान को सीसीटीवी फुटेज में 22, 25 और 29 जून को गणना कक्ष से नकदी चुराते हुए देखा गया था। एसआईटी ने 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया। 30 जून को राजेंद्र चौहान रिटायर हुआ था। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में आज भी एसआईटी ने कई लोगों से लंबी पूछताछ की। जेपी कंपनी के एक कर्मचारी से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जो कि बद्रीनाथ में अलकनंदा के जल स्तर की माप के लिए तैनात था। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये शख्स बद्रीनाथ में निशुल्क सेवा के नाम पर मौजूद रहता था, चढ़ावे के सिक्कों और सोना चांदी के सिक्कों की गिनती करता था। इस बीच बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर मंदिर समिति की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी 18 पन्नों की जांच रिपोर्ट बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और एसआईटी को सौंप दी है। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में ये भी पता चला है कि टिन्नू यादव एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा था। जांच टीम टिन्नू यादव से पूछताछ करेगी तो वहीं उसके भतीजे से भी सवाल जवाब किए जाएंगे।
8: अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चढ़ावा चोरी के आरोपियों की बैंक डिटेल खंगाली तो उसमें टिन्नू यादव के बैंक खाते में एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी से पैसा आता हुआ पकड़ में आया। पड़ताल की गई तो पता चला यह निजी कंपनी अयोध्या के पीडब्ल्यूडी में साल 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी और यह कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी टिन्नू यादव की पत्नी के नाम पर हुआ था। इतना ही नहीं, जिस साल रजिस्ट्रेशन 2023 में हुआ उसी साल इस कंपनी को पीडब्ल्यूडी व अन्य विभागों से लगभग 45 लाख का ठेका भी मिला।
0: सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। एसआईटी ने अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। बहरहाल जांच के बीच अब दोनों ही जगहों में पूरे सिस्टम में बदलाव पर काम किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: उधर पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर सियासत तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
3: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमियत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
9: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग 55,000 मस्जिद 22 अजला से रिकॉर्ड तो उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
3: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
10: जातीय सुरक्षा रंगी विमानबंदर निरापत्ता आगे देखकर এই বিমানবন্দরে লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চীন বাংলাদেশ সব কাছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
3: ये मस्जिद 136 साल पुरानी है। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थायी रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
2: अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे की, जहां उन्होंने कई रेल और सड़क योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। वहीं नशे और अपराध के मुद्दे पर आम आदमी सरकार को कटघरे में भी उन्होंने खड़ा किया।
11: यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घुसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग ना हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नियत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है।
2: गुजरात में एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि ये आतंकी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो पाकिस्तान के लगातार संपर्क में भी थे।
3: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
12: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई, तो इसके अंदर हमें जैश मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे, वो सब मिले।
3: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
13: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था, उसी की बात से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
3: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
2: अब बात बाजार की, कैसा है शेयर बाजार का हाल और क्या रहा सोना चांदी का भाव, आज देखते हैं।
14: कारोबार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 965 अंक मजबूत होकर 78,151 और निफ्टी 262 अंक चढ़कर 24,334 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में जोरदार तेजी, आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी, कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों और मजबूत घरेलू निवेशक धारणा के चलते देखने को मिली। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए में भी आज बढ़त देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 96.28 के स्तर पर पहुंच गया। डॉलर में नरमी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों से रुपए को सहारा मिला। वहीं सर्राफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और सोना 415 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 141,264 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 797 रुपए टूटकर 216,637 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शेयर बाजार में तेजी और मुनाफा वसूली के चलते सोने चांदी पर दबाव देखने को मिला।
2: अब बात क्रिकेट की, कल इंग्लैंड ने दूसरा वनडे मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दिया, लेकिन इस मुकाबले में रोहित की बल्लेबाजी पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड के दौरे पर संन्यास का ऐलान कर सकते हैं।
15: क्या लॉर्ड्स में करियर का आखिरी वनडे खेलेंगे रोहित शर्मा? रविवार को इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह देंगे रोहित शर्मा? इंग्लैंड में वनडे सीरीज की ये निराश कर देने वाली तस्वीरें एक बार फिर रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलों को हवा दे रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई की भविष्य की योजनाओं में रोहित शर्मा शामिल नहीं है और रविवार को लॉर्ड्स में होने वाली सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है। इन अटकलों के बीच रोहित शर्मा के माता पिता भी लंदन पहुंच गए हैं, जिससे ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि लॉर्ड्स वनडे में कुछ तो खास होने जा रहा है। वैसे विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा भी अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन रोहित का बल्ला ज्यादातर मौकों पर खामोश ही रहा है। इंग्लैंड में चल रही वनडे सीरीज के दो मैचों में उन्होंने 18.50 की औसत से 37 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट है 54.41 का। वैसे पिछले दो साल में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने कामयाबी के कई शिखर को छुआ है। 2024 में पहले T20 का वर्ल्ड चैंपियन बना, फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने खिताब जीता। इस सीजन में फिटनेस के मोर्चे पर रोहित शर्मा ने चमत्कार करके दिखाया है, लेकिन फॉर्म के मोर्चे पर चुनौतियां लगातार हावी हो रही आज तक।
2: अब बात दुनिया की, जहां पीओके में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की डरी सरकार पीओके में विरोध प्रदर्शन को हर हाल में दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस आर्मी का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन मुजफ्फराबाद में जिस तरह लोगों का गुस्सा दिख रहा है, उससे साफ हो गया है कि इस बार हालात पर काबू पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा।
16: पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विरोध की आवाज उनकी नींद उड़ाने वाली है। शहबाज सरकार के होश उड़ाने के लिए भीड़ पीओजेके की सड़कों पर उतरी है।
17: देखे, देखे, देखे, देखे, देखे, देखे, देखे, देखे, देखे,
16: नारेबाजी पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को खुली चुनौती है। पीओजेके के लोगों में जबरदस्त रोष है और वो पाकिस्तान के जुल्म को अब सहने वाले नहीं। जो हुआ सो हुआ, पीओजेके अब कह रहा है कि बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे पाकिस्तानी सेना की क्रूरता, नहीं बर्दाश्त करेंगे बेहिसाब जुल्म, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पीओजेके की माने इस्लामाबाद मान नहीं लेता। सवाल है कि आखिर कब तक, क्यों पीओजेके पर अवैध तरीके से कब्जा कर पाकिस्तान ऐसे जुल्म ढा रहा है? क्या अपना हक मांगना ही इनका गुनाह है? क्या अपनी आजादी की आवाज उठाना गुनाह है? क्या बेहतर जिंदगी की खातिर सड़कों पर उतरना गुनाह है? तमाम सवालों के साथ पूरा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर अपने हौसलों से नापाक हुकूमतें की चूलें हिला रहा है, चुनौती दे रहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी।
17: फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म नहीं होगी। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, एक वो दस है जो स्कूल में है सब झूठ है, मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है, वो दानिश अक्सर कहता है मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है कि बारिश के मौसम में ज्यादा पहाड़ी इलाकों में गर्मी के मौसम में पहाड़ी मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और पहाड़ी इलाकों में सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है। उसके अलावा कोई सच नहीं है, असल सच, असल सच आप पढ़ रहे हैं।
16: दरअसल पीओजेके के लोगों ने ऐलान किया है कि उनकी 38 सूत्री मांगे मानी जाए, अगर नहीं मानी गई तो पाकिस्तानी असेंबली से आजादी का ऐलान कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में इस आंदोलन को दबाने की हर संभव कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी सेना और सरकार अब जुल्म ज्यादती पर उतर आई है, लेकिन इस बार पीओके की अवाम ने आर पार की तैयारी की है, फैसले के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो 22 जुलाई से उनका मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च फिर शुरू हो जाएगा और ये पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ने वाला मौका होगा। आज तक ब्यूरो।
2: इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूसीसी को लेकर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान आया है। सीएम ने कहा है कि एक शादी जो करेगा उसी को कानूनन मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। सुनते हैं क्या कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने।
18: अब एक साथी जो करेगा उसी को कानून प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा, ये यूसीसी कानून लगाने हमारा इंतजार करता जा रहा।
2: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
20: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
21: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
22: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
23: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
24: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
25: आगे आगे,
26: अरे उधर उधर,
25: करेक्ट करेक्ट,
27: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले।
0: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
6: गहरी सफाई।
7: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
6: गहरी खुशबू
7: और प्यार भरी भी।
6: कैसे?
7: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
8: इसीलिए लेना।
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
5: पाकिस्तान में एक बार फिर रोटी के लिए संकट, इस्लामाबाद में गेहूं की सप्लाई रोकी गई। आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर इस्लामाबाद तक किल्लत के आसार। 45 आटा मिलों के पास गेहूं खत्म होने की कगार पर। पाकिस्तान में एक बार फिर आटे को लेकर जंग छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। वहीं शहबाज और मुनीर की जोड़ी को कोई सुझाव भी नहीं सूझ रहा है। इस्लामाबाद के लिए गेहूं की सप्लाई बाधित होने के चलते 45 आटा मिलों के पास अब कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, जिसको लेकर आटा मिल मालिकों ने सरकार को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो आटे की मारामारी मच जाएगी। आटे की कमी की आशंका के चलते शहबाज सरकार की नींद उड़ गई है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं परिवहन परमिट को सस्पेंड कर दिया है, वहीं आटा मिल मालिकों की धमकी से शहबाज सरकार डर गई है।
6: जुड़वा शहरों के शहरी तैयार हो जाएं आटे के बहरान के लिए। इस्लामाबाद फ्लोर मिल एसोसिएशन का एक इंतबा जारी किया गया, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे जो परमिट हैं वो महकमा खुराक पंजाब की जानिब से मुअत्तल कर दिए गए हैं, कि पंजाब से आने वाली गंदम पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी जो है निसार कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में से फसल नहीं होती, जो भी चीजें हैं सप्लाई है वो दूसरे सुबह से होती। वज़ीर आला मरियम नवाज से जो है अपील करते हुए दिखाई दे रहे और कहा है कि फौरी जो है इसमें मुदाखलत की जाए और ये मसला फिलफौर हल किया जाए, वरना ना सिर्फ इस्लामाबाद की बल्कि रावलपिंडी की जो 5 मिल्स हैं आटे की वो भी बंद हो जाएंगी।
5: महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तानियों में अब आटा का डर सताने लगा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में गहराया ये संकट कब दूर होगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: पंजाब दौरे पर पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा केंद्र के काम पर आम आदमी पार्टी सरकार अपना स्टिकर चिपका रही है। दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। मानसून सत्र से पहले बढ़ सकता है एनडीए का कुंभा। उद्धव के 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में शामिल करने की जारी हो सकती है अधिसूचना। संसद सत्र के लिए मोर्चा बंदी तेज। राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक। यूसीसी पर फिर बोले सीएम मोहन यादव, जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार होगा। हिंदू और मुस्लिम का कानून अलग क्यों? एंडी बर्नहम होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। भारतीय रेलवे ने आज एक ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की है। भारत आज उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चला सकते हैं। आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद से लॉन्च हुई है। इस फ्यूल की अपनी खासियत है तो चुनौतियां भी हैं। सवाल है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भारत जैसे बड़े देश में के विशाल रेलवे नेटवर्क के लिए कितनी कारगर साबित होगी।

0: करती है, बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है।
1: ये तस्वीरें हैं उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसे भारत ने आज हासिल कर लिया। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा के जींद से सोनीपत तक एक ट्रेन लॉन्च की। इसकी खासियत यह है कि ये एक हाइड्रोजन ट्रेन है। ट्रेन हाइड्रोजन से कैसे चलती है, किन किन देशों में ये ट्रेन चल रही है, हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने के क्या फायदे हैं, क्या हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, क्या ये बिजली से सस्ता पड़ता है, क्या भविष्य में ट्रेनें हाइड्रोजन ईंधन पर ही चलेंगी, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये दावा क्यों किया जा रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलाने में भारत ने आज मील का पत्थर स्थापित कर दिया। हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का पांचवां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और चीन में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। सबसे पहले 2018 में हाइड्रोजन से ट्रेन जर्मनी ने चलाई थी। अमेरिका में हाइड्रोजन फ्यूल से सितंबर 2025 से कमर्शियल ट्रेन चल रही है। चीन में भी मई 2025 में पहली हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन चली थी। जापान 2027 में अपनी पहली हाइड्रोजन हाइब्रिड ट्रेन चलाएगा। फ्रांस में भी 2027 में हाइड्रोजन फ्यूल से कमर्शियल ट्रेन चलेगी। लेकिन भारत इन तमाम देशों से इसलिए आगे चला गया है क्योंकि इन देशों में अभी हाइड्रोजन ट्रेन के सिर्फ 2 या 3 कोच हैं, जबकि भारत ने आज जो पहली ट्रेन चलाई है उसमें ही सीधे 10 कोच हैं।
0: जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है वहां बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा। दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है।
1: स्कूल में सबने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एक गैस होती है, पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, यानी आसान शब्दों में पानी से ईंधन बन रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं है। अब सवाल है कि हाइड्रोजन फ्यूल नॉर्मल फ्यूल से कैसे अलग होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सामान्य ईंधन, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से काफी अलग तरीके से काम करता है। इसमें हाइड्रोजन गैस को सीधे जलाकर इंजन नहीं चलाया जाता, बल्कि फ्यूल सेल नाम की तकनीक इस्तेमाल होती है। ये सिस्टम हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाता है, फिर यही बिजली कार या ट्रेन की मोटर को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाय प्रोडक्ट हैं एनर्जी और पानी की भाप। न धुआं, न कार्बन, न कोई प्रदूषण। यही वजह है कि इसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है।
2: हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझे, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहाँ जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे।
1: ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल से सिर्फ ट्रेन ही चल रही है, इससे कार, बस या ट्रक भी चल सकता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसीलिए अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन इसके फायदे तो सीधे तौर पर दिख रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन कारों में फ्यूल भरने में भी बहुत कम समय लगता है। जहां इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने में घंटों लग सकते हैं, वहीं हाइड्रोजन कार कुछ ही मिनटों में फुल हो सकती है। इसके साथ ही इसकी ड्राइविंग रेंज भी ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में ट्रक, बस और लंबी दूरी वाली गाड़ियों में हाइड्रोजन ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है।
3: प्रैक्टिकली ये पानी से ही चलेगी और हवा में पानी ही छोड़ेगी, इसीलिए इसका नाम नमो ग्रीन रखा गया है। इसमें H2O वर्किंग करेगा, जो H2 चल के इसकी बैटरी चार्ज करेगा, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी जो बाहर निकल जाएगी। तो हम हवा से ही पानी ले रहे हैं और हवा में ही छोड़ रहे हैं, तो हम तो कुछ यूज ही नहीं कर रहे।
4: हवा से ही पानी ले रहे हैं और हवा में ही छोड़ रहे हैं।
3: H2O क्या है? हवा है
4: जी।
3: इसमें H2 हमने यूज कर लिया, ऑक्सीजन बाहर गया
4: जी,
3: तो पॉल्यूशन तो है ही नहीं,
4: कोई पोल्यूशन नहीं है।
3: पॉल्यूशन
4: तो इसमें फिर वो कैसे बनता है, बिजली कैसे बनती है?
3: सर इसकी बैटरी चार्ज होती है ना, H2O से बैटरियां चार्ज होंगी, बैटरी से गाड़ी चलेगी। जैसे आजकल EV चल रही है
4: जी जी,
3: तो बैटरी चार्ज करते हो आप, ऐसे इसकी बैटरियां चार्ज होगी और गाड़ी चलेगी।
4: सर इसमें इंजन की अगर हम बात करें, इंजन के अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन सिलेंडर के अलावा और क्या क्या चीजें?
3: बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ जलने का जो साधन है वो हमने H2O लिया है, बाकी टेक्नोलॉजी जो वंदे भारत की है, बाकी ट्रेनों की है, फ्यूल वही चलता है।
1: लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह हाइड्रोजन फ्यूल सस्ता पड़ता हो। दूसरे फ्यूल की तुलना में हाइड्रोजन फ्यूल को तैयार करना अभी महंगा है। हाइड्रोजन फ्यूल दूसरे ईंधनों से महंगा है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाइड्रोजन तैयार करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफी महंगा पड़ता है। इसके लिए बड़े प्लांट, हाई प्रेशर टैंक और खास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसी वजह से आज के समय में हाइड्रोजन फ्यूल CNG से महंगा माना जाता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे तकनीक बेहतर होगी और बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होगा, इसकी कीमत कम हो सकती है।
0: भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है, इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा।
1: पीयूष मिश्रा, जींद, आज तक।
5: ये बात सही है कि इस हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन जीरो एमिशन करती है, लेकिन जिन देशों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो अब किनारा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि ये बहुत महंगा है। तो आने वाले वक्त में भारत किन किन रूट्स में इस ट्रेन को चलाएगा और अपने नेटवर्क कितना कवर करेगा?
1: हाइड्रोजन भले ही भविष्य का ईंधन कहा जा रहा हो, लेकिन ये इतना महंगा पड़ता है कि बहुत से देश इससे किनारा भी कर रहे हैं। ये बात सही है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन इसे बनाना, स्टोर करना और ढोना बहुत बड़ी चुनौती है। जर्मनी ने हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन 2018 में चलानी शुरू की थी, लेकिन अभी उसने अपने बहुत से रूट से ये ट्रेनें हटा दी हैं, क्योंकि इनका संचालन महंगा पड़ रहा है। जर्मनी इन ट्रेनों की जगह बैटरी ट्रेनों को अहमियत दे रहा है, क्योंकि ये सस्ती पड़ रही है। जापान ने भी 2022 में टेस्टिंग शुरू की थी, लेकिन वो अभी तक इन्हें जमीन पर नहीं उतार सका। चीन और अमेरिका में बहुत छोटी दूरी के लिए ये ट्रेनें चल रही हैं, और ऐसे में आज से ये भारत में भी शुरू हो गई। तो सवाल है कि आने वाले वक्त में क्या भारत और दूसरे रूट्स पर भी इन ट्रेनों को चलाएगा? भारत में हाइड्रोजन ट्रेन पर 2020-21 में काम शुरू हुआ था। भारतीय रेलवे ने पूरे देश में हेरिटेज वाले या सुंदर दिखने वाले रूट्स के लिए 35 हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई है। इनमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे और कालका शिमला रूट प्रस्तावित है। अगर जींद सोनीपत रूट पर यह प्रयोग कामयाब रहा तो फिर रेलवे दूसरे रूट्स पर भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर ये सफल नहीं रहा, महंगा पड़ा, तो क्या भारत इससे दूरी बनाएगा? ये सवाल भी जरूर उठेगा।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: अभी तो फिलहाल ये दावा है कि ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसमें रोजाना 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत है, जबकि 440 किलो हाइड्रोजन स्टोरेज की क्षमता है। इसमें अभी कुल 682 सीटें हैं, कुल 10 कोच हैं, जिनमें 2600 यात्री एक बार में यात्रा कर सकते हैं। एक बार फ्यूल भरने पर ये ट्रेन 356 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है।
6: ग्रीन रेल यानी कि दुनिया की पहली नमो ग्रीन रेल जो जींद से लेकर सोनीपत तक चलने वाली है और इसके ठीक बाहर यहाँ पर लिखा भी हुआ है H2 जीरो एमिशन, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी जो हानिकारक पदार्थ है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है उसके बारे में कुछ भी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्रेन है, जो इंजन है ये हाइड्रोजन पावर्ड है। जो ट्रेन है वो आप देखिए कि कैसे इसके अंदर का जो है नजारा है। दरअसल फिलहाल ये पैसेंजर ट्रेन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, ये ट्रेन एकदम नई कोच, नई नवीली कोच जो है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी है, फायर सिलेंडर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ साथ जो अलग अलग कोनों से, हरियाणा के अलग अलग कोनों से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं।
1: जिस तरह से ईरान और अमेरिका के युद्ध में हॉर्मुज का संकट पैदा हुआ, हॉर्मुज से आने वाले पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई रुकी रही, इससे ये तो साफ है कि भारत जैसे देशों को ऊर्जा के दूसरे विकल्प खोजने होंगे। पहले तो भारत का रेल नेटवर्क भी डीजल पर ही चलता था। मोदी का दावा है कि उन्होंने 2014 में आने के बाद से रेलवे के पूरे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, यानी 99% रूट पर अब ट्रेनें बिजली से चलती हैं।
0: आप सोचिए, भारतीय रेल के बिजलीकरण की शुरुआत, ये सुनकर के भी ये चौंक जाएंगे आप लोग, बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, यानी करीब 100 साल पहले। 1925 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था उसका सिर्फ 30% एक तिहाई से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 70% क्षेत्र डीजल से चलता था और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है।
1: पीयूष मिश्रा, जींद, आज तक।
5: इस वक्त की बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के नए मदर प्रधानमंत्री होंगे। बर्नहैम को लेबर पार्टी ने अपना नेता चुन लिया है। खबर है कि सोमवार को बर्नहैम प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद अब एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर सोमवार को शपथ लेंगे।

0: वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will
0: from the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
8: क्या श्री कृष्ण मुस्लिम थे?
9: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
8: क्या श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे?
7: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
8: क्या श्री कृष्ण दीन का प्रचार करते थे? मिलिए मौलाना जर्जिश अंसारी से। इस मौलाना के नाम में जर्जिश जुड़ा है, लेकिन इसकी जुबान में जहर भरा है। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। तब जबकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती दिख रही है, इस मौलाना ने फिर अपना चरित्र दिखाया है। इसकी बातें सुनकर आपका सिर चकराने लगेगा, इसकी दलील सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कुनबा बनाने की इसकी कोशिश की मिसाल देखिए। इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे, और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है ये सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने की इसकी कोशिश देखिए। श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को ये उल्टी दिशा में मोड़ने लगा है। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। ये पहला मौका नहीं है जब इस मौलाना ने विवाद भड़का कर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और इससे ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है। मौलाना जर्जिश अंसारी जैसे चेहरे फिर तेजी से दिखने लगे हैं। ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा? इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है, और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पंजाब दौरे पर पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर। दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। मॉनसून सत्र से पहले बढ़ सकता है एनडीए का कुंबा। उद्धव के 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में शामिल करने की जारी हो सकती है अधिसूचना। बंगाल से राज्यसभा के लिए बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की जीत। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज। राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले ने कहा पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव की 2 टूक, कहा जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का होगा अधिकार। हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों।

0: यूके के नए प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी ने चुना अपना नेता, सोमवार को ले सकते हैं पद की शपथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मौके का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने के लिए किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा उठाकर चढ़ावा चोरी पर जवाब दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जो जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल, 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देख

0: हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
1: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
1: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
0: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
1: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
0: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
1: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
2: योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिन्ना के अनुयायी बताया। वहीं रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई की तरफ बढ़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी घेराबंदी पुख्ता करने की कोशिश की, जहां इस बार योगी 2017 जैसी प्रचंड जीत चाहते हैं।

0: यूपी विधानसभा की 200 सीटों को लेकर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी बहुत अहम है, जहां पर उसे मिलने वाली बढ़त विरोधियों का काम खराब करती रही है। यही वजह है कि 2027 के महासमर की पहली और सबसे मजबूत लकीर पश्चिमी यूपी की धरती पर ही खींची जा रही है।
1: क्या 2017 के पहले भी बिजनौर की स्थिति थी? याद करना, मुझे कई बार बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन 2017 के पहले मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, बोलते थे मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन है। अब मैं कहता हूं वे स्वयं ही अपशकुन थे, जिसके लिए बिजनौर उनको स्वीकार नहीं करता था। अरे जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा।
0: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि लखनऊ की गद्दी का रास्ता पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है। इसके पीछे यहाँ का विशाल सीटों का गणित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा और दिल्ली से सटे NCR जिलों, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत जैसे जिलों के कुल 110 से अधिक सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में किसान आंदोलन ने समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। मुरादाबाद, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिलों में मुस्लिम, जाट और यादव समीकरण के चलते बीजेपी को अपनी कई पारंपरिक सीट गंवानी पड़ी थी। इसके बावजूद बीजेपी ने आगरा, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरी और शहरीकृत इलाकों में एक तरफा जीत कर अपनी सत्ता बचाई थी। इस बार इस प्रदर्शन को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ बार बार पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं और अपनी हर रैली में सुरक्षा और औद्योगिक निवेश का हवाला देकर याद दिला रहे हैं कि कैसे 2017 से पहले कभी यह क्षेत्र अपनी खराब कानून व्यवस्था और रंगदारी के लिए मशहूर था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इसे माफिया मुक्त किया बल्कि दंगा मुक्त भी कर दिया।
1: उन्होंने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ, आज लगता है सार्थक हुआ है।
0: अखिलेश यादव के PDA पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जातिगत कार्ड का मुकाबला करने के लिए CM योगी आदित्यनाथ विकास, सोशल इंजीनियरिंग और छोटी पार्टियों को एकजुट कर मैदान में उतर रहे हैं, ताकि 2017 की तरह पश्चिमी यूपी और NCR की सीटों पर प्रचंड बढ़त दोबारा हासिल की जा सके। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात हम संभल की करते हैं। योगी भले ही कल संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर कार्रवाई की गई।
3: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
4: आप यहां देखेंगे तो देखिए, लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है, जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का, वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
3: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
2: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट भी अच्छा खासा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह महागठबंधन मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुआ, उसके बाद योगी ने भी सक्रिय होकर दलितों को अखिलेश से खबरदार किया है।
1: जब दलितों का उत्पीड़न होता है उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है, और जब जाति के नाम पर हिंदू हिंदू को लड़ाना होता है तब वह दलित को जाट के साथ, दलित को ब्राह्मण के साथ, दलित को गुर्जर के साथ, दलित को क्षत्रियों के साथ, दलित को वैश्यों के साथ लड़ा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति से जो देश को विभाजित कर रही है, कमजोर कर रही है, उसे सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। अराजकता और गुंडागिरी के बल पर गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं।
2: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया है। बीजेपी की कोशिश जहां दलित वोटों को साधने की है, वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है। इसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर जोर रहेगा।
5: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
0: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
6: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया पॉजिटिव किया उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया। निगेटिविटी कितना किया है, पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सब साथ थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लोग। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
0: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
7: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
8: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो ये है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
0: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर है। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
9: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
0: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
0: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
10: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
0: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
11: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थाई रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थाई रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
2: लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब एक शादी जो करेगा उसी को कानूनन मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह बड़ा बयान आया है, जहां पर वो कहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, एक ही शादी और जो एक शादी करेगा वही मध्य प्रदेश में रहेगा, 3 बार तलाक कहने वाले जेल जाएंगे। अब खबर राहुल गांधी की, जो पेपर लीक के खिलाफ छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देहरादून पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला।
12: अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना, अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हैं। अब 99.9% लोग हमारे जो स्टूडेंट्स है वो ईमानदार है, वो इस रास्ते में नहीं चलते, मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ते का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे हैं, 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 8 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय। ये सच कि एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं।
2: दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी सियासत देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस 2 दिनों से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3।
0: दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
13: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
0: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर दिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
13: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
0: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
13: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा, जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
0: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात नीट यूजी परीक्षा के नतीजों की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न कामयाब हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन 2 बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया?
0: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
14: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसका तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ, हाँ उन निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया, कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
0: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे, 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे, 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे, 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे, 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
14: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। वैसे दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे वो इसके गलत हो गए, और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा कि इनकी हार्ड लग रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
9: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
15: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ तो उससे पेपर हार्ड हुआ कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे होगी ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
16: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
9: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे, लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था, वहाँ अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
17: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में, और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है। जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है, जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, 3 मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था, उसके बाद में रीनीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले ली।
9: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है, इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
2: राजस्थान में दूर दराज के जिलों में जगह जगह स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे टीचर नहीं होने की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप पड़ी है, लेकिन ये टीचर गए कहां? आज तक को पता चला कि रसूख वाले टीचर बड़े शहरों के आसपास ऐसे गांव में पोस्टिंग लेकर बैठे हैं जहां न बच्चे हैं न स्कूल में क्लासरूम। हैरानी की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें पता है कुछ करेंगे।
9: राजस्थान में शिक्षा का अजब हाल, 2 कमरे में पढ़ा रहे हैं 5 टीचर।
18: इसी 2 कमरे में 5 टीचर पढ़ा
19: वैसे ही करते मैंने।
9: कहीं जर्जर इमारत में चल रहा नया स्कूल,
18: कमरा खुला है बाकी सब कमरे क्षतिग्रस्त हैं जिसकी वजह से बंद है यहाँ पर।
9: तो आज तक को एक स्कूल में 1 से 5वीं तक मिले सिर्फ 4 बच्चे।
18: कितने बच्चे हैं?
20: 5 बच्चे हैं सर मेरे पास।
18: 5 बच्चे हैं। किससे कितने से कितने क्लास तक की है स्कूल?
20: 5th तक।
9: राजस्थान का गुजरात से सटे सिरोही और जालौर जिला हो या पाकिस्तान बॉर्डर से सटा बाड़मेर का इलाका, हजारों की संख्या में 15 से ज्यादा स्कूलों में ये बच्चे स्कूल में तालाबंदी कर आंदोलन कर रहे हैं। बच्चों की मांग है कि उनको पढ़ाने के लिए कम से कम 2 टीचर तो सरकार दे दे।
21: सर के बिना हमें कोई पढ़ाने वाला है नहीं और न स्कूल में कोई दूसरा सर है।
22: सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे।
9: अब सवाल यह है कि आखिर राजस्थान में टीचर कहाँ है? ये सवाल आज तक संवाददाता शरद कुमार को जयपुर जिले के मेंदवास ले गया।
0: जहां इस सरकारी स्कूल में 5 बच्चों में 2 टीचर हैं।
18: जयपुर जिले के मेंदवास का ये स्कूल है जहां पर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ाए जाते हैं। कुल मिलाकर एक कमरा खुला है, बाकी सब कमरे क्षतिग्रस्त हैं जिसकी वजह से बंद है। यहाँ पर ये भवन भी काफी क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी बच्चा मौजूद नहीं है। मैडम मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
4: नीतू यादव सर।
18: नीतू जी, बच्चा कोई नहीं है?
4: नहीं, बच्चे सर अभी निकले ही हैं, जस्ट बच्चे, तो छोटे बच्चे आते हैं पहले।
18: कितने बच्चे हैं?
4: 5 बच्चे हैं सर मेरे पास।
18: 5 बच्चे हैं?
4: हाँ सर।
18: कितने से कितने क्लास तक की है स्कूल?
4: स्कूल 5th तक है।
18: 1 से 5वीं तक के 5 बच्चे।
0: तो राजस्थान में एक तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, वहीं राजधानी के पास के स्कूल में टीचर हैं, लेकिन छात्र नहीं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जयपुर जिले के ही कोरिया गांव में चल रहा ये स्कूल देगा, जहां 2 टीचर तैनात हैं। एक आता है, दूसरा घर रहता है। मैडम को पता चल गया कि आज तक की टीम आई है, तो कुल जमा 7 में से 4 बच्चे जल्दी से बुलवाकर चित्रकला पढ़ाने लगी। लेकिन जिस बच्चे को पड़ोस से लेकर आई है, वो ये नहीं बता पाया कि वो किस क्लास में पढ़ता है।
18: जयपुर जिले का ये प्राथमिक विद्यालय केरिया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर कक्षा बना हुआ है, और यहां पर 2 टीचर हैं, मगर बच्चों के नाम पर आपको कोई यहां पर दिखाई देगा नहीं। 3 बच्चे यहां पर 1 से लेकर 5वीं तक के ये क्लासरूम में मैडम ने 4 बच्चे बैठा रखे हैं जो यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। 1 से लेकर 5वीं तक के ये सारे बच्चे यही हैं, एक टीचर है नहीं, दूसरे टीचर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने तक क्लास है?
4: 5 तक।
18: तो ये बच्चे आते नहीं है?
4: 7 का ही नामांकन है, नामांकन कम है स्कूल में।
18: 7 बच्चे में 2 टीचर हैं।
4: हाँ।
0: जयपुर जिले के पाचाल पहुंचे तो पता चला कि यहाँ 4 स्कूल हैं और 20 टीचर हैं। शरद कुमार एक स्कूल में पहुंचे जहां 2 कमरे में 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई चल रही थी। कुल 6 टीचर हैं, 5 तैनात हैं। दोनों ने कहा कि एक साथ एक कमरे में 3-3 क्लास एक साथ पढ़ा लेते हैं।
18: जयपुर जिले के बागरियों की ढाणी पचाला गांव के स्कूल में हम आए हैं। ये 2 क्लासरूम हैं, पहली से लेकर 8वीं तक के, यानी कि दोनों कक्षाओं में 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहां पर शिक्षकों के 6 पद हैं, 4 मौजूद हैं मौके पर, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये 2 कमरे हैं, कितने टीचर हैं, कैसे पढ़ाते हो आप?
19: जी सर, ये जो है कक्षा 1 से 8वीं तक का जो स्कूल चल रहा है, उसमें 5 का स्टाफ है अभी, और एक वैकेंट है, जो HM की पोस्ट है वो वैकेंट है, और जो बिल्डिंग नहीं होने के कारण बच्चे ज्यादा है लेकिन बिल्डिंग नहीं है, इस वजह से 1 से 4 तक इसमें है और 5 से 8 तक इसमें है, 2 रूम में पढ़ाते हैं।
18: तो 5 टीचर आप लोग करते हो, एक समय तो 2 ही पढ़ाता होगा?
19: नहीं सर, वो एक ही रूम में 2 बैठते हैं ना, फिर 2 टीचर करते हैं, एक रूम में 2 टीचर बैठते हैं और एक रूम में 2 टीचर बैठते हैं, एक ऑफिस के लिए काम देखता है।
18: तो एक छोटे से कमरे में दोनों की आवाज नहीं मिलती है?
19: मिलती है सर, लेकिन वो तो एडजस्ट तो करना ही होता है ना।
18: तो इसी 2 कमरे में 5 टीचर पढ़ा
20: सर? ऐसे ही करते हैं मैनेज, ऐसे मैनेज करते हैं, बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं, 2 बच्चे 2 क्लास इधर।
18: तो अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो 5 टीचर हैं वो किस कमरे में पढ़ाते हैं। आप ये देखिए, ये विद्यार्थी बैठे हैं, अब इसमें किस तरह से ये 5 जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाते होंगे।
0: तो आपने देखा कैसे जयपुर के कई स्कूलों में कागजों पर फर्जी नामांकन दिखाकर टीचर तैनात हैं। ये वही VIP टीचर होते हैं जो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर जैसे जिला मुख्यालय पर जुगाड़ से ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसके लिए फर्जी स्कूल खोलकर फर्जी नामांकन दिखा देते हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, पता है मुझे, मैं कोई रास्ता निकाल रहा हूँ।
23: ये सच है कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे नहीं, लेकिन बच्चे कम है। ऐसे विद्यालयों के बारे में हम सूची बना रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, विचार करके क्या किया जा सकता है जो छात्रों के हित में होगा वो हम करेंगे।
0: कांग्रेस की सरकार हो या BJP की सरकार हो, दोनों ही सरकारें इस सिस्टम को बनाए रखना चाहती है। जिसकी भी सरकार आती है, अपने चहेतों को ऐसे ही पद पर बैठाकर खुश रखती है। जालौर से नरेश और बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: अब आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों की खराब हालत से खबरदार करते हैं। दिल्ली सरकार ने 108 स्कूलों की इमारत की जांच करवाई है, जिसमें से 7 ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उन्हें गिराने के अलावा कोई चारा नहीं है। खबरदार करता सवाल यह है कि खतरनाक घोषित हो चुकी इन इमारतों में बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा था। इससे भी बड़ा सवाल ये कि कई स्कूल 10 साल से भी कम वक्त में खंडहर जैसे क्यों हो गए।

0: पहली नजर में लगेगा कि ये जर्जर स्कूल देश के किसी दूरदराज इलाके के हैं, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ये हाल है। जहां स्कूल की हर दरो दीवार इमारत के हाल से खबरदार कर रही है, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने स्कूलों के स्ट्रक्चर ऑडिट का आदेश दिया, जिसमें 7 ऐसे स्कूल हैं जिनकी खस्ता हालत को देखते हुए उन्हें अब गिराना पड़ेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि बुरी हालत में दिख रही स्कूल की इमारत 8 साल पहले बनी, लेकिन इतने कम वक्त में दिल्ली के सागरपुर में बने सर्वोदय कन्या विद्यालय की हालत खस्ता हो गई है।
1: ये तस्वीर है दिल्ली के सरकारी स्कूल की, जो कि सागरपुर के अंदर आता है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से महज 2017 के आसपास इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण जो है वो किया गया था, और महज 10 साल भी नहीं हुए होंगे और इस बिल्डिंग की हालत जर्जर में तब्दील होती हुई आपको साफ तौर पर नजर आएगी। जो ये पूरी तरीके से बीम है उसमें दरारें आपको नजर आएंगी, मलबा झड़ता हुआ नजर आएगा, जो छतों की सीलिंग है उस पर भी आपको जो है वो मलबा झड़ता हुआ नजर आएगा। दीवारों की अगर बात करें तो दीवारों पर जो टाइल थी वो भी आपको यहाँ पर आपको हटती हुई नजर आएंगी। ये पिछली सरकार 2017 के दौरान का स्कूल बना हुआ है, यानी लगभग 9 साल पहले स्कूल बना था। आप देख सकते हैं कि ये दीवारें हैं, दीवारों में किस तरीके के क्रैक्स आपको यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आएंगे। ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों में अगर आप जहां जहां तक देखेंगे वहां आपको बड़े बड़े क्रैक जो हैं वो इस वक्त आपको नजर आएंगे।
0: तो चाहे सीढ़ी हो या फिर क्लास की दीवार और खिड़की, सब कुछ असुरक्षित है।
1: आप ये देखिए कि ये दीवार है, मटेरियल किस तरीके से झड़ रहा है आपको यहाँ पर नजर आएगा, और पूरे जो जो ईंटे हैं, मलबा है, वो सब यहाँ से गायब हो चुका है। इस तरीके का मटेरियल, और आप सब सोचिए कि महज 7 से 8 सालों के अंदर सरकारी विभाग की जो बिल्डिंग होती है, जिसमें बनाने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग का भी होता है और मेंटेनेंस का काम किसी दूसरे विभाग का होता है, इसका डेमोलेशन का जो विभाग है वो अगर कहा जाए तो उसकी पावर जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के पास होती है, लेकिन किस तरीके से इन स्कूलों का निर्माण किया गया वो अब जाँच के दायरे में भी आने की जरूरत है।
0: आज तक की टीम को इससे भी बदतर हालत में एक स्कूल जसोला में मिला, जहां बाकायदा असुरक्षित इमारत का बोर्ड लगा दिया गया है।
1: हम इस वक्त मौजूद हैं जसोला के गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और आप हालत देख सकते हैं कि ये जो स्कूल है इसका स्ट्रक्चर लगभग 2008 के अंदर ये बना था, और किस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर दरारें आपको नजर आएंगी, जो जो दीवारों के अंदर अगर आप देखेंगे मलबा झड़ता हुआ नजर आएगा। इस पूरे स्कूल के अंदर तकरीबन 21 क्लासरूम हैं, और कमोवेश हर क्लासरूम की स्थिति जो है अगर आप देखेंगे तो वो इसी तरीके की स्थिति है जब यहाँ बच्चे पढ़ते थे, उनको किस तरीके से जो खतरा था वो यहाँ पर लगातार मंडरा रहा था। जो सीलिंग थी उसमें भी आपको यहाँ पर दरारें जो है वो नजर आएंगी।
0: ये इमारत साल 2008 में बनी थी, जिसमें 21 कमरे 17 क्लासरूम बनाए गए, लेकिन अब नौबत ये आ चुकी है कि इसमें पढ़ने वाले बच्चों को बाटला हाउस के स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा है।
1: मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो अनसेफ बिल्डिंग का बोर्ड आपको यहाँ पर जो है वो नजर आएगा। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से डेंजर जो है वो घोषित की गई है, इसका डेमोलेशन होगा। 2008 और 9 के अंदर ये बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी, लेकिन अब इसकी हालत बेहद खस्ता है, और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बाटला हाउस स्कूल के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया है। हालांकि इस स्कूल के अंदर अभी भी जो एक स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर सीधे हाथ पर अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो आपको यहाँ पर एक नई बिल्डिंग जो है वो नजर आएगी। ये बिल्डिंग 2017-18 के अंदर बनाई गई थी, लेकिन इस बिल्डिंग की भी हालत जो है वो ज्यादा अच्छी जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं।
0: जसोला के इसी स्कूल में साल 2017 में एक दूसरी इमारत बनाई गई, जिसका भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है।
1: इन तमाम क्लासरूम्स को जो है वो बंद कर दिया गया, बच्चों को यहाँ से हटा दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया दूसरे स्कूलों में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी सीलिंग है, जो सरिये थे, उन सब पर दरारें, और उसके अंदर जो है वो आपको जंग लगा हुआ नजर आएगा। दीवारों पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये स्कूल थे काफी ज्यादा पुराने हो चुके थे, लेकिन फिलहाल अब जो स्थिति है इन स्कूलों को जो है वो फिलहाल बंद किया गया है।
0: दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की इमारतों की 3D स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ का ऑडिट करवाया, जिसमें स्कूलों में कमियों की तस्वीर विभाग के पास एक क्लिक के साथ ही उपलब्ध होगा, ताकि स्कूलों की हालत सुधारी जा सके और स्कूलों में बच्चे हादसे का शिकार ना हो।
2: ने ऐसा देखा है आम आदमी पार्टी के समय में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अभी भी 700-800 कमरे एक विभाग के पास बने हुए हैं, जितना पैसा दिया गया था वो खर्च हो गया। उसका भी अवलोकन मैं आप लोगों को और के माध्यम से दिल्ली की जनता को बहुत जल्द कराऊंगा। मगर हमारी पहली चिंता ये है जिसमें भी सरकार का पैसा लगा वो वापस आ जाए, जनता के उपयोग में आए। मगर जो पिछले दिनों में प्रचार ज्यादा और एक शिक्षा मॉडल का ढोल पीटा जाता था, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट ने खोल दिया। इसमें बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं, बिल्डिंगों का बनाने का काम, रखरखाव का काम पीडब्ल्यूडी का है, तोड़ने के लिए एलजी साहब की अनुमति चाहिए, मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति चाहिए, तो इन सब चीजों को प्रशासनिक स्तर पर स्ट्रीमलाइन करने का काम भी हमने किया है।
0: आज तक की खबरदार करती ये रिपोर्ट इस ओर इशारा भी करती है कि देश की राजधानी में भी बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ने को मजबूर थे। दिल्ली सरकार की इस कदम से उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली के बच्चों को स्कूल में सुरक्षित माहौल मिलेगा। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
3: पीओजेके में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की डरी हुई सरकार पीओजेके के विरुद्ध प्रदर्शन को हर हाल में दबाने की कोशिश में लगी है। पुलिस, सेना, सबका सहारा लिया जा रहा है, लेकिन मुजफ्फराबाद में जिस तरह लोगों का गुस्सा दिख रहा है, उससे साफ है कि इस बार हालात पर काबू पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा।
4: पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विरोध की आवाज उनकी नींद उड़ाने वाली है। शहबाज सरकार के होश उड़ाने के लिए भीड़ पीओजेके की सड़कों पर उतरी है। ये नारेबाजी पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को खुली चुनौती है। पीओजेके के लोगों में जबरदस्त रोष है और वो पाकिस्तान के जुल्म को अब सहने वाले नहीं। जो हुआ सो हुआ, पीओजेके अब कह रहा है कि बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे पाकिस्तानी सेना की क्रूरता, नहीं बर्दाश्त करेंगे बेहिसाब जुल्म, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पीओजेके की माने इस्लामाबाद मान नहीं लेता। सवाल है कि आखिर कब तक, क्यों पीओजेके पर अवैध तरीके से कब्जा कर पाकिस्तान ऐसे जुल्म ढा रहा है? क्या अपना हक मांगना इनका गुनाह है? क्या अपनी आजादी की आवाज उठाना गुनाह है? क्या बेहतर जिंदगी की खातिर सड़कों पर उतरना गुनाह है? तमाम सवालों के साथ पूरा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर अपने हौसलों से नापाक हुकूमतें की चूल्हे हिला रहा है, चुनौती दे रहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी।
5: फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म नहीं होगी। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, एक वो दस है जो स्कूल में है सब झूठ है, मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है, वो दानिश अक्सर कहता है मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है कि बारिश के मौसम में ज्यादा पहाड़ी इलाकों में गर्मी के मौसम में पहाड़ी मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और पहाड़ी इलाकों में सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है, उसके अलावा कोई सच नहीं है। असल सच आप पढ़ रहे हैं।
4: दरअसल पीओजेके के लोगों ने ऐलान किया है कि उनकी 38 सूत्री मांगे मानी जाए, अगर नहीं मानी गई तो पाकिस्तानी असेंबली से आजादी का ऐलान कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में इस आंदोलन को दबाने की हर संभव कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी सेना और सरकार अब जुल्म ज्यादती पर उतर आई है, लेकिन इस बार पीओके की अवाम ने आर पार की तैयारी की है, फैसले के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो 22 जुलाई से उनका मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च फिर शुरू हो जाएगा और ये पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ने वाला मौका होगा। आज तक ब्यूरो
3: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match from today's hits
9: Somebody save me
8: to timeless favorites
9: and life is like a song
8: and new discoveries
9: so much more than a history.
8: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
4: वाह वाह वाह वाह।
3: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
5: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
6: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
9: Ye pillar kabhi nahi tootega. Roongta Steel TMT se bana.
10: Roongta nahi to ghar strong nahi. Roongta Steel TMT bar ekdam solid.
11: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
12: EU सोच बदलो और बैंक भी।
13: पापा
14: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
15: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
14: छक्का?
15: सब कैशलेस हो गया है।
14: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
13: चार्ज हुआ यार।
14: बैट किसका है?
16: टाटा AIG है तो भरोसा है।
17: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
19: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
10: गहरी सफाई,
11: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
10: गहरी खुशबू
11: और प्यार भरी भी।
10: कैसे?
11: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
12: इसीलिए फेना ही लेना।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: वी आर ओवर जिमी।
16: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: आगे आगे करेक्ट करेक्ट।
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि धर्म के आधार पर बनने वाले पाकिस्तान के लोग अब आजादी क्यों मांग रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आज पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की मांग करने वाले वहां के अल्पसंख्यक नहीं बल्कि मुसलमान हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो या फिर पीओजे के। एक तरफ पाकिस्तान जहां चार हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ वहां की जनता आटे के लिए तरस रही है। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ईरान में पुल, पावर ग्रिड, रेल की पटरी को निशाना क्यों बना रहे हैं। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने यूक्रेन के पावर ग्रिड और नागरिक ढांचों पर रूसी हमलों को अंतरराष्ट्रीय नियमों का घोर उल्लंघन बताया था। यहां तक कि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ। जो अमेरिका दूसरों को ज्ञान दे रहा था, अब वही पिछले 5 दिनों से ईरान के पावर ग्रिड, पुल और ऊर्जा ढांचों पर लगातार बम बरसा रहा है। जो नियम दुनिया के लिए है, क्या वो अमेरिका पर लागू नहीं होता। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारत में ग्रीन इकोनॉमी को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। कार तक के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन खुद बना चुका है। जर्मनी की 742 करोड़ की ट्रेन के मुकाबले भारत ने केवल 112 करोड़ रुपए में ये स्वदेशी ट्रेन तैयार कर ली है और आज पीएम मोदी ने इसे हरी झंडी दिखा दी। आखिर में आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट के बारे में बताएंगे जिसने खेल का पूरा समीकरण बदल दिया है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या ज्यादा कमाई और भारत पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा मैच कराने के लिए आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदला। लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक तारीख से करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गवाही किताबें नहीं तारीखें देती। ये तारीख 23 मार्च 1940 जब लाहौर के मिंटो पार्क में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया था। इसी अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ जिसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया। पहली बार टू नेशन थ्योरी को लोगों के सामने रखा गया जिसका उद्देश्य था भारत की भूमि को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करना, और साल 1947 में ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तारीख को हम आज क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जिस पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ और जिस विभाजन को तब यह कहकर पेश किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग देश ही स्थायी समाधान है, आज लगभग 8 दशक बाद उसी पाकिस्तान में विभाजन की मांगे उठ रही हैं। और ये विभाजन मांगने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं हैं, इनमें बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, इनमें खैबर पख्तूनवा के मुसलमान हैं और इनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब उस संकट में जाता हुआ दिख रहा है जिसकी भविष्यवाणी कुछ सालों पहले हो गई थी। यह भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका का एक ग्लोबल थिंक टैंक था जिसका नाम है कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 4 हिस्सों में बंट सकता है। इनमें पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है, वहां पख्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान का ये प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए या पश्तूनिस्तान नाम का एक अलग देश बन जाए। पिछले 1 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनिस्तान देश बनाने की मांग को लेकर कई हमले किए और यहां पाकिस्तान की सेना अब भी बहुत बड़े संघर्ष का सामना कर रही है। दूसरा है बलूचिस्तान प्रांत, जहां कई दशकों से आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है और बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है जिसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। तीसरा है सिंध प्रांत, जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं और सिंध का को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग होती रहती है, इसीलिए पाकिस्तान का ये प्रांत भी विभाजित हो सकता है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई नहीं जानता

0: कि सिंध भी कल को भारत में शामिल हो जाए। चौथा है पंजाब प्रांत, और ऐसा संभव है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सीमित रह जाए। और ऐसा क्यों हो सकता है, उसके लिए आज आपको ये आंकड़े देखने होंगे। आज पाकिस्तान की आबादी 53% आबादी अकेले इसी पंजाब प्रांत में रहती है, जबकि 23% आबादी सिंध प्रांत में रहती है, 17% आबादी खैबर पख्तूनवा में रहती है, और केवल 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। सोचिए, आधा पाकिस्तान केवल पंजाब में रह रहा है, और यही कारण है कि पंजाब प्रांत का हमेशा से खास ख्याल रखा जाता है, और जो बाकी प्रांत हैं उनकी अनदेखी होती है। इन प्रांतों में आजादी के लिए विद्रोह किया जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा विद्रोह बलूचिस्तान में होता है, जिसकी पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में 44% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में लगभग आधा रह जाएगा। अब भी बलूच नेता मीर यार बलूच का दावा है कि उनके प्रांत के 85% इलाकों पर पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो गया है, और उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है तो क्षेत्रफल के मामले में यह जर्मनी से भी बड़ा देश होगा। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की 40% गैस, कोयले और बिजली का उत्पादन अकेले इसी प्रांत में होता है। इसी बलूचिस्तान में चीन का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है, और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 साल की लीज पर दे दिया है। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बलूचिस्तान की 909 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है, और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व स्थापित करने और दुर्लभ खनिजों को निकालने की जो डील की है, उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व और दुर्लभ खनिज बलूचिस्तान में ही हो सकते हैं। ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकला तो ये इस सदी का सबसे बड़ा विभाजन माना जाएगा, ऐसा विभाजन जिसमें शायद बलूचिस्तान को आजादी के बाद भी मान्यता न मिले, लेकिन पाकिस्तान से वो अलग हो जाए। बलूचिस्तान के बाद दूसरा संकट पीओजेके और गिलगित बल्टिस्तान में है। पीओजेके में अब भी सस्ती बिजली, सस्ते अनाज और नौकरियों को लेकर जन विद्रोह भड़का हुआ है। वहां के मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए बस। स्थिति यह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 8,000 अतिरिक्त जवानों को पीओजेके में तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ गिलगित बल्टिस्तान की विधानसभा ने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पाकिस्तान की सरकार से यह मांग हुई है कि गिलगित बल्टिस्तान को एक प्रांत का दर्जा दिया जाए, और यह सब कुछ घबराहट में हो रहा है। कारण इतना ही है कि पाकिस्तान के अंदर पड़ती दरारें उसे तोड़ रही है, और इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि जो पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर बना, अब उसी इस्लाम धर्म के लोग इसी पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में उसे आजादी मांग रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि 23 मार्च 1940 को, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे को स्थायी समस्या का समाधान बताया, वो सही नहीं था, और पाकिस्तान के ये हालात इस पर मुहर लगाते हैं।
1: ये सारे लोग दहशत गर्द नहीं है, ये इस धरती के वारस हैं।
2: कश्मीर के वारस है, ये वतन, ये वतन, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत।
0: पाकिस्तान में आज आजादी के साथ आटे का सवाल भी गूंजा। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के पंजाब राज्य के खाद्य विभाग ने बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं की आपूर्ति और ट्रांसपोर्ट परमिट को ब्लॉक कर दिया था, और इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि अब पाकिस्तान में लगभग 45 बड़ी आटा मिलें पूरी तरह बंद होने के कगार पर आ गई हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गेहूं की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और कोटली जैसे इलाकों में आटे की भारी किल्लत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार नहीं होगा। पाकिस्तान में यह परंपरा बन गई है कि वहां हर 6 महीने में आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और गेहूं का ऐसा संकट भी तब पैदा होता है जब पाकिस्तान में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होती है। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान में गेहूं का इतना उत्पादन होता है तो पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों को तरसना क्यों पड़ता है। इसके पीछे एक विचित्र सा कारण है। विचित्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस आटे से अक्सर भ्रष्टाचार की रोटियां सेकी जाती हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी जिसके पास वहां आटे की मिल न हो। नवाज शरीफ, अभी जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री, वहां आटे की मिलों पर इन सब ने कब्जा किया हुआ है और आरोप लगता है कि यही राजनीतिक परिवार आटे का एक संकट पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल संकट, ताकि इस संकट में वो मुनाफा कमा सके। और दूसरा, वहां सरकार आटे की जरूरी खरीद कभी पूरी ही नहीं कर पाती, जिसके कारण बड़े बड़े दुकानदार और प्रभावशाली लोग आटे की जमाखोरी कर लेते हैं। और जब आटे की किल्लत पैदा होती है तो यही आटा काला बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। और कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर आटे का संकट पैदा करती है। अंग्रेजी में इस सिद्धांत को मैन्युफैक्चर्ड स्कैसिटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी को जानबूझकर बनाए रखना या उसका प्रबंधन इस तरह करना कि लोग लगातार उसी समस्या में उलझे रहें। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि रोजमर्रा की जरूरतों में लोग इस कदर उलझ जाएं कि बाकी बड़े मुद्दों पर सवाल न पूछें। यह तरकीब कई देशों में अपनाई जाती है लेकिन पाकिस्तान इसमें अव्वल रहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के लोग फिर से पूछ रहे हैं, आटा कहां मिलेगा।
3: आटा डीलर्स के मुताबिक होलसेल मार्केट में 20 किलोग्राम फाइन आटे का थैला 3,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
4: इसमें पूरे मुल्क में जो रोटी 14 रुपए में मिलती थी वो 20 से 25 रुपए में मिल रही है और जो नान थे वो 30 से 35 रुपए में लोगों को मिल रही है।
5: अटक में मिलता है 1100 से 1200 रुपए और दूसरी तरफ क्यों दरिया सिंध क्रॉस करो 1500 हो जाता है।
6: कराची में 20 किलो आटा तकरीबन 1800 रुपए में मिलता था, इस वक्त वो तकरीबन 2900 रुपए में मिल रहा है।
0: अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना क्यों बना रहा है। साल 2022 याद करिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने यूक्रेन के पावर ग्रिड, बांधों, पुलों और ऊर्जा ढांचों पर हमले करने के लिए रूस की सेना की आलोचना की थी। अमेरिका ने शब्दशः कहा था, रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। इसी युद्ध के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन अब 2022 से 4 साल आगे 2026 में आइए, जो अमेरिका यूक्रेन के नागरिक ढांचों पर रूसी हमले को अपराध बता रहा था, वही अमेरिका पिछले 5 दिनों से लगातार ईरान के पावर ग्रिड्स, पुल और ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। जिन कानूनों का पालन अमेरिका पूरी दुनिया से कराना चाहता है, उन्हीं कानून का पालन वो खुद क्यों नहीं करता। आरोप है कि कल रात अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज़गन प्रांत में 5 पुलों पर हमले किए जिनमें कुल 8 लोग मारे गए। इस युद्ध में इतनी मौतें अप्रैल महीने के बाद हुई हैं और इसके बाद इस युद्ध ने और भी खतरनाक रूप ले लिया है।

तो अगर अमेरिका का लक्ष्य ईरानी सेना और उसकी मिसाइल क्षमता को कमजोर करना है तो फिर पुल, रेलवे, पानी की फैक्ट्री, पावर ग्रिड और दूसरी नागरिक सुविधाओं को निशाना क्यों बनाया रहा है? इसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा तर्क यह है कि इन जगहों का इस्तेमाल डुअल यूज होता है। डुअल यूज यानी कि जो पुल, सड़कें, पावर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी ईरान में है, वहां उसकी सेना छिपी हुई है। और इसीलिए छिपी हुई है क्योंकि किसी भी युद्ध में नागरिक ढांचों को बहुत आसानी से निशाना नहीं बनाया जाता। इसी कारण ये नागरिक ढांचे सुरक्षित माने जाते हैं और कई बार वहां युद्ध लड़ने वाली सेनाएं शरण ले लेती हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की सेना भी यही कर रही है और वो इसके पीछे दक्षिणी ईरान का उदाहरण देता है। दक्षिणी ईरान का मतलब उस इलाके से है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं इलाकों से ईरान हॉर्मुज को नियंत्रित करता है और इस नियंत्रण को कमजोर करने के लिए वो सैन्य ठिकानों में बदले इन सभी नागरिक ठिकानों को नष्ट कर रहा है। अब ये दलील अमेरिका की है जिससे ईरान साफ इनकार करता है। ईरान कहता है कि अमेरिका उस पर बातचीत का दबाव बनाने के लिए इन नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी कही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसी हफ्ते कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले करेगा। और ईरान का आरोप है कि यही हो रहा है अभी। इन हमलों के पीछे एक थ्योरी और चल रही है जिसका जिक्र अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में किया। इसमें कहा गया कि अमेरिका ऐसी उम्मीद कर रहा है कि अगर नागरिक ढांचों पर हमला होने से ईरान में आर्थिक परेशानी बढ़ेगी तो वहां के लोग रोजमर्रा के संकट में सरकार के खिलाफ बागी हो जाएंगे। जनता में असंतोष बढ़ेगा, जनता युद्ध को रोक कर बातचीत करने के लिए ईरान की सरकार पर दबाव बनाएगी। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, ऐसा होगा या नहीं कोई नहीं कह सकता। इस पूरी खबर में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, अगर नागरिक ढांचों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है तो अमेरिका इन्हें क्यों नहीं मानता? दूसरा, अगर अमेरिका के मुताबिक ईरान की सेना इन नागरिक ढांचों को अपनी ढाल बना रही है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होना चाहिए? यह सवाल पिछले साल इसराइल ने भी पूछा था जब गाजा की मस्जिदों और अस्पतालों में हमास के आतंकी छिपे थे और इसराइल ने जब उन पर कार्रवाई की थी तो उस पर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। गाजा ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर मिसाइलें दागी तब वहां भी आतंकियों ने मस्जिद बनाई हुई थी और मस्जिद को अपनी ढाल बनाया था। इससे यही सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किया जाए? हालांकि यहां हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नागरिक ढांचों को ईरान की सेना द्वारा ढाल बनाने के आरोप अमेरिका के हैं और ईरान ने इन्हें गलत और बेबुनियाद बताया है। ईरान यही कह रहा है कि अमेरिका अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठे दावे गढ़ रहा है। इस युद्ध के बीच दो और ऐसी खबरें आई जो अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चिंतित करेंगी। इनमें पहली खबर यह है कि दुनिया के बड़े देश अब अमेरिका से ज्यादा चीन पर भरोसा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट अमेरिका के ही मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने प्रकाशित की है और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को वजह बताया है। इसके मुताबिक दुनिया के 20 प्रमुख देश 2023 में चीन के मुकाबले अमेरिका के प्रति ज्यादा सकारात्मक रुख रखते थे। 2023 में अमेरिका को 58% और चीन को 32% लोगों ने सकारात्मक माना था, लेकिन अब यह कहानी पूरी तरह पलट गई। अब इन 20 देशों में 36% लोग अमेरिका के लिए सकारात्मक राय रखते हैं जबकि चीन के लिए यही आंकड़ा 46% है। हालांकि इसमें भी एक कैच है, दुनिया के ज्यादा देशों में चीन के मुकाबले अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है लेकिन भारत अब भी चीन के मुकाबले अमेरिका को ही विश्वसनीय मानता है। भारत में 45% लोगों ने अमेरिका के प्रति विश्वास जताया जबकि चीन के समर्थन में सिर्फ 23% लोग ही नजर आए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो भारत में 39% लोग उनका समर्थन करते हैं जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग में विश्वास दिखाने वाले 25% लोग हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आजकल पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 83% लोग शी जिनपिंग को विश्वसनीय मानते हैं, ट्रंप का समर्थन केवल 12% लोग वहां पर करते हैं। इसे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नापसंद करने वाले ज्यादा हैं और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान युद्ध के बाद दुनिया की मुस्लिम आबादी में ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटी है।
अब ये तो हुई पहली खबर जो ट्रंप को थोड़ा परेशान कर सकती है। दूसरी खबर ऐसी है कि आपके लिए भी शायद उस पर यकीन करना मुश्किल हो। ट्रंप के लंबे समय से टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर रहे गैब्रियल पेरेज विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि उन्होंने ट्रंप के कई भाषणों की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन प्रिडिक्शन मार्केट पर जुआ खेला और इससे $1,00,000 से ज्यादा की कमाई की। यानी राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जो टेलीप्रॉम्प्टर मशीन में देखकर जो भाषण पढ़ते हैं वो मशीन इनके द्वारा चलाई जाती थी और इसके कारण गैब्रियल पेरेज को पता होता था कि ट्रंप आज क्या कहने वाले हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने ऑनलाइन प्रिडिक्शन मार्केट में जुआ खेला और ये दांव लगाया कि आज ट्रंप क्या कहेंगे, और इस जुए के सहारे उन्होंने भारतीय रुपयों में लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लिए। इन आरोपों के बाद गैब्रियल पेरेज को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन यहां यह भी सोचिए अमेरिका में यह हो क्या रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी बताते हैं। कहानी इसलिए क्योंकि अगर हमने आपको यह बताया कि भारत को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है तो शायद आप ये नहीं जान पाएंगे कि भारत ने इसे असल में हासिल क्या किया। इसे समझने के लिए आपको 5 दशक पीछे चलना होगा, जब संजय गांधी ने सपना देखा था कि भारत के आम लोगों के लिए एक सस्ती पीपल्स कार बनाई जाए। इसके लिए 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई और बाद में इसके लाइसेंस और जमीन आवंटन को लेकर खूब विवाद हुए। नतीजा यह निकला कि साल बीतते गए, भारत खुद से अपनी पहली पीपल्स कार नहीं बना पाया। इसके लिए हमें जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को अपना साझेदार चुनना पड़ा और इसके बाद विदेशी तकनीक और सहयोग से 1983 में मारुति 800 कार लॉन्च की गई। ये कहानी उस दौर की थी जब हमारे लिए खुद कोई चीज बनाना आसान नहीं था और हम विदेशी तकनीक और सहयोग पर निर्भर रहते थे। अब साल 1983 से आज के भारत में लौटते हैं और इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं। जब भारत ने पहली बार यह तय किया कि हमारे देश में भी हाइड्रोजन ट्रेन होनी चाहिए, तब हर बार की तरह पहला विकल्प यही था कि हम इस ट्रेन को दूसरे देशों से खरीद लें। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। सिर्फ 10 साल पहले 2016 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की को एक प्रदर्शनी में पेश किया गया। 2 साल बाद 2018 में जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया और डीजल ट्रेनों को का इन्हें विकल्प बनाया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान में पायलट प्रोजेक्ट या सीमित स्तर पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई गई और ये क्लब केवल इन्हीं देशों तक सीमित रहा। अब भारत अगर पुराने तरीकों से सोचता तो हम अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इनमें से किसी देश के पास जाते और इनसे हाइड्रोजन ट्रेन को खरीदने का करार करते। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने तय किया कि हम ये ट्रेन खुद बनाएंगे। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम के तहत इस परियोजना की शुरुआत की। 2022-23 में पहली बार घोषणा की गई कि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर हाइड्रोजन ट्रेन को विकसित करेगा ताकि भविष्य में रेल नेटवर्क का कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, सिर्फ 4 साल पहले ही भारत ने ऐसी ट्रेन को बनाने की योजना तैयार की थी और आज 4 सालों में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सेट तैयार हो चुका है। और जानते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है। 8 साल पहले जर्मनी ने जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई वो 742 करोड़ रुपए की थी। अगर हम उस ट्रेन को खरीदने जाते तो शायद उसमें काफी वक्त लग जाता और पैसा भी खूब खर्च होता। लेकिन भारत ने खुद से प्रयास किया और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 112 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली। यानी जर्मनी के मुकाबले हमने 630 करोड़ रुपए कम खर्च किए और न सिर्फ बचत की हमने बल्कि इस ट्रेन को अपने लोगों के हिसाब से बनाया। दुनिया के ज्यादातर देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें केवल 2 से 4 कोच की हैं और सीमित यात्रियों के लिए बनाई गई हैं, जबकि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10 कोच की होगी और इसमें लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यानी भारत ने सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन नहीं बनाई बल्कि इसे अपने लोगों के हिसाब से कस्टमाइज किया, और कोई भी देश ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वो हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच
89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है और इससे हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे।

0: ये पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी। और इस ट्रेन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 10 डब्बे हैं, 8 ट्रेल कार हैं, 2 इंजन हैं, और ये जो इंजन है वो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक मेम्ब्रेन के मिलने के बाद बनता है, और इस केमिकल रिएक्शन से बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट किया गया है, और इस ट्रेन में 2600 यात्री एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो सबसे क्लीन फ्यूल पर चलने वाली है, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें निकलती हैं, अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात करें वो है वाटर, वेपर और हीट। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन इस ट्रेन से नहीं होता है, और क्लीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रेन शुमार हो जाती है।
1: अब यहाँ इस बदलाव को भी देखिए कि भारत अब कच्चे तेल और नेचुरल गैस के ऐसे विकल्प तैयार कर रहा है जो उसकी ऊर्जा निर्भरता को भी कम करेंगे और जो ग्रीन इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे। जैसे आज पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है जो गन्ने, धान और मक्के से बनता है। डीजल में इसोब्यूटानॉल मिलाने का प्रस्ताव है जो कम कार्बन उत्सर्जन करता है। गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट किया जा रहा है जिसमें गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक आ रही हैं, और बिजली में भी न्यूक्लियर पावर और सोलर एनर्जी को विकल्प बनाया गया है जिससे कोयला कम जलाना पड़े। आखिर में खेती में भी बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत ग्रीन इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। और ये ऐसे बदलाव हैं जो आज से 10 साल बाद भारत को काफी हद तक बदल कर रख देंगे। हालांकि यहां हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने से पर्यावरण को लेकर कई फायदे हैं, लेकिन इसी के साथ इथेनॉल को लेकर लोगों की भी कई चिंताएं हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कट्टरपंथी बन सकता है या नहीं, इसका सटीक अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गुजरात पुलिस के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की एक एसओपी को लेकर सवाल उठाए। एसओपी का मतलब वो कुछ संकेत जिनकी मदद से यह पता लगाया जा सके कि कौन व्यक्ति कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है। जैसे गुजरात के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की इस एसओपी में कुछ ऐसे व्यवहार या संकेत बताए गए हैं जिन पर पुलिस को नजर रखने को कहा गया है। इनमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक लंबी दाढ़ी रखने लगे, नकाब पहन कर रहे, रोजमर्रा की बातचीत में अरबी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करे, धार्मिक कारणों से नौकरी छोड़ दे, बार बार मस्जिद या मदरसे जाए, विदेशी या संदिग्ध ऑनलाइन कंटेंट देखे, एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करे, कट्टरपंथी संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट या कंटेंट को फॉलो करे और संदिग्ध लेन देन या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करे, तो उस व्यक्ति पर नजर रखी जानी चाहिए। क्योंकि इस एसओपी के मुताबिक पुलिस मान रही है कि यह किसी व्यक्ति के कट्टरपंथी बनने की पहली सीढ़ी हो सकती है। लेकिन राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस एसओपी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि केवल दाढ़ी रखना, नकाब पहनना या अरबी भाषा के शब्द बोलना किसी को कट्टरपंथी नहीं बनाता, और इससे एक खास समुदाय के लोगों की धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग हो सकती है जो संविधान के खिलाफ है। जबकि गुजरात सरकार और पुलिस का पक्ष यह है कि इन एसओपीज का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, और यह केवल आशंकित कट्टरपंथी गतिविधियों की शुरुआती पहचान के लिए दिशा निर्देश है। पुलिस यह भी भरोसा दे रही है कि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई केवल दाढ़ी, नकाब या धार्मिक आचरण के आधार पर नहीं होगी, बल्कि कई संकेतों और खुफिया जानकारी को मिलाकर ही आगे की जांच की जाएगी। ये सवाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए हमेशा से रहा है कि वो कट्टरपंथ की तरफ जाने वाले संदिग्धों की पहचान कैसे करें। जब वो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोफाइलिंग करती है या उनके व्यवहार और संकेतों के लिए कोई एसओपी बनाती है तो उन पर ऐसे ही विवाद होता है, और विवाद का एक कारण ये भी है कि कई बार ये एसओपी धर्म के आधार पर लोगों की प्रोफाइलिंग करती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है वो भी समझिए। जो लोग कट्टरवाद की तरफ जाते हैं वो किसी न किसी धर्म से ही होते हैं, उनके कट्टरपंथ का संकेत उनके व्यवहार से पता चलता है। यही कारण है कि पुलिस और एजेंसियां ऐसे संकेतों को अपने लिए मददगार मानती हैं। और ये भी पूछती हैं कि अगर उन्हें धार्मिक कट्टरवाद रोकना है तो वो बिना ऐसे लोगों की प्रोफाइलिंग के कैसे काम करें। और ये चुनौती सिर्फ भारतीय एजेंसियों के सामने नहीं है, यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसी SOP बनाई है जिसे किसी व्यक्ति की धार्मिक प्रोफाइलिंग हो सकती है और वहां है इस पर विवाद हुआ है। लेकिन दुनिया भर की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां यही सवाल पूछती हैं कि जब कट्टरवाद धर्म के आधार पर फैलता है तो वो इसकी SOP कैसे बनाए। जब इस SOP को लेकर इतना विवाद है तभी गुजरात से एक ऐसी खबर आई है जिसमें कुछ संदिग्ध आतंकी न सिर्फ बम बना रहे थे बल्कि उनका बमों में विस्फोट करके उनका परीक्षण भी कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अमीन शेरा अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन और स्थानीय बाजार से गन पाउडर और दूसरी चीजें खरीदता था। आरोप है कि इन सामानों से ये लोग खुद बम बनाने की कोशिश करते थे और फिर उसके छोटे छोटे धमाके करके ये सीखते थे कि विस्फोट कैसे किया जाता है। इस मामले में बिलाल नाम के आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया जबकि कुछ अन्य आरोपियों को अलग अलग मदरसों से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि करीब 3 साल पहले बिलाल ने अमीन को एक पेनड्राइव दी थी

और उसमें जैश मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाषण और कट्टरपंथी वीडियो मौजूद थे। जांच एजेंसी का कहना है कि अभी एक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि आरोपियों को किसी आतंकी संगठन से सीधे धमाका करने का आदेश मिला था। आरोप है कि वो अपने स्तर पर बम बनाने और उसका परीक्षण करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें भी जांच की सबसे बड़ी कड़ी पाटन जिले के जमिया अब्दुल हसन वक्फ मदरसे तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इसी मदरसे में बम बनाने की प्रैक्टिस की जाती थी और आरोप है कि पास की नदी के किनारे जाकर छोटे छोटे विस्फोट करके उनका परीक्षण भी किया जाता था।

0: देख सकते हैं इसी मदरसा से जो पांच आरोपी उसमें से कुछ आतंकी है जो इसी मदरसा से वो अभ्यास कर रहे थे। संदिग्धों को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ने दावा किया है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और गुजरात में उसका नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में भी जुड़े थे। प्लस ये भी हुआ कि खेतों में उसका परीक्षण भी हुआ किया था। एटीएस के अनुसार उन्होंने कई बार परीक्षण करने की कोशिश की थी लेकिन वे सफल नहीं हुए थे।
1: हाँ, वो कर रहा था, मैं तो सुबह में ड्यूटी पे चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ। उसकी मम्मी पूछी कि तू ये सब बर्तन खराब कर रहा है, क्या कर रहा है, सब क्या पाउडर है? बोले दरख्तों के अंदर डालने के लिए पाउडर है, मैं उसको बना के चारों में डालूंगा। अगर हमारा बच्चा कसूरवार है और देश के खिलाफ काम करने जाता है तो हम बहुत दुखी है, उसके काम के साथ हम नहीं है।
2: आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 130,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शन मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले।
3: कई बार लगता है कि धर्म की ये लड़ाई राजनीति तक ही सीमित होगी लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। 20 तारीख को न्यूयॉर्क में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन जानते हैं इस मैच से पहले पूरी दुनिया में और खासकर मुस्लिम देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यह हो रही है कि अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इसराइल का समर्थन करते हैं और इसीलिए मुसलमानों को फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मेसी की टीम का नहीं बल्कि स्पेन का समर्थन करना चाहिए, यानी यहां भी धर्म। लियोनेल मेसी आमतौर पर राजनीति और विवादों से दूर रहते हैं। मैदान पर अपनी शानदार प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले मेसी ने अपने पूरे करियर में बहुत कम मौकों पर राजनीतिक बयान दिए हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मेसी का नाम कई बार इसराइल, यहूदी समुदाय और जियोनिज्म से जुड़े विवादों में खींचा गया। कुछ इसराइल विरोधी समूहों ने उनके पुराने कार्यक्रमों और संपर्कों को लेकर सवाल उठाए जबकि कई इसराइली प्रशंसक उन्हें समर्थन देने वाले खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं। हालांकि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लियोनेल मेसी यहूदी नहीं है, वो कैथोलिक ईसाई है और वो अपने गोल का जश्न अक्सर आसमान की ओर देखकर मनाते हैं जो उनकी दिवंगत दादी सेलिया के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि फिर भी उन्हें इसराइल से जोड़ा जाता है और कारण यह है कि 2013 में मेसी ने इसराइल में होने वाले मैकाबिया गेम्स के लिए अर्जेंटीना की यहूदी टीम को शुभकामना संदेश भेजा था। मैकाबिया गेम्स को अक्सर यहूदी ओलंपिक कहा जाता है जिसमें दुनिया भर के यहूदी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसके बाद 2013 में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ मेसी इसराइल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने जेरूसलम स्थित वेस्टर्न वॉल का दौरा किया और ये दौरा इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चों के बीच शांति और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान बार्सिलोना टीम ने इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चों के लिए फुटबॉल कैंप लगाए, इजरायल के नेताओं से मुलाकात की लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर बाद में मेसी को कुछ लोग इजरायल का एजेंट बताने लगे। 2014 में पोप फ्रांसिस की पहल पर रोम में एक मैच फॉर पीस आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का संदेश देना। मेसी ने इस पहल का समर्थन किया था हालांकि चोट के कारण मैच नहीं खेल पाए जिससे उनकी मंशा पर फिर सवाल उठाए गए और सवाल उठाने का कारण यह था कि इस मुकाबले में दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी शामिल हुए थे लेकिन मेसी इसमें नहीं आए थे। 2016 में भी मेसी एक विवाद में तब फंस गए जब उन्होंने अपने फुटबॉल जूते एक चैरिटी के लिए दान किए। मिस्र में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उन पर यह आरोप लगाया कि वो इसराइल समर्थक हैं। मिस्र फुटबॉल फेडरेशन के एक अधिकारी ने भी मेसी की आलोचना की। हालांकि इस पूरे विवाद में एक गलत दावा भी सामने आया कि मेसी यहूदी है। सच्चाई यही है कि मेसी कैथोलिक ईसाई है, यहूदी नहीं है और यह कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है लेकिन फिर भी लियोनेल मेसी को इसराइल और यहूदी बताकर उनके खिलाफ दुनिया में एक कैंपेन चल रहा है और ज्यादातर मुस्लिम देश स्पेन का समर्थन कर रहे हैं और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी लामिन यमाल फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और मैच के दौरान पहले मैदान पर फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा चुके हैं। यानी कहानी अब ये हो गई है कि अर्जेंटीना और स्पेन के फाइनल मैच को इजराइल बनाम फिलिस्तीन की लड़ाई का केंद्र बना दिया गया है और इसमें भी लियोनेल मेसी को लेकर खूब झूठ फैलाए जा रहे हैं।

0: अब आपको क्रिकेट की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर के बारे में बताएंगे जो एक युग के अंत की तरह है। दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर में से एक सर गारफील्ड सोबर्स, जिन्हें लोग गैरी सोबर्स के नाम से जानते हैं, उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। क्रिकेट के इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए, लेकिन सर गैरी सोबर्स जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वो बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे, बाएं हाथ से ही तेज गेंदबाजी करते थे, और जब जरूरत होती तो स्पिन गेंदबाजी से भी बल्लेबाजों को चकमा दे देते थे। यानी वो बैटिंग भी करते थे, तेज गेंदबाजी भी, और स्पिन गेंदें भी फेंकते थे। फील्डिंग में भी उनका कोई सानी नहीं था। 1954 से 74 के बीच वेस्ट इंडीज के इस जाबाज ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी ऐसी बादशाहत कायम की जिसे देखकर खुद सर डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें दुनिया का सबसे संपूर्ण क्रिकेटर बताया था। गैरी सोबर्स के नाम रिकॉर्ड्स की वो लंबी फहरिस्त है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। सबसे पहले एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड सर गैरी सोबर्स के ही नाम है। ऐसा उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किया था। 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 365 रनों की पारी खेली थी, जो 36 सालों तक टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा, जिसे बाद में ब्रायन लारा ने तोड़ा। 93 टेस्ट मैचों में 8000 से ज्यादा रन और 235 विकेट, ये आंकड़े उनकी बेमिसाल काबिलियत की गवाही देते हैं। अब क्रिकेट फैंस के लिए आईसीसी ने एक ऐसी खबर दी है जिसने पूरे खेल का समीकरण बदल कर रख दिया है। अगर आप सोचते हैं कि वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में 2-4 मैच जीतकर कोई भी टीम आसानी से आगे निकल जाएगी, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 और टी20 वर्ल्ड कप 2028 के फॉर्मेट में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से अब हर एक मैच करो या मरो जैसा होगा। जहां छोटी टीमों को बड़ा मौका मिला है, तो बड़ी टीमों के लिए खतरा बढ़ गया। सबसे पहले बात करते हैं 50 ओवर के मैच की, यानी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। इसका गणित और फॉर्मेट आसान भाषा में समझते हैं। अगले साल 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। ये 14 टीमें आपस में 54 मैचें खेलेंगी। पहले राउंड में सबसे नीचे की रैंकिंग वाली 3 टीमों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिनमें से सिर्फ एक टीम आगे जा पाएगी। दूसरे राउंड में टॉप की रैंकिंग वाली 11 टीमों और पिछले राउंड से आने वाली एक टीम को मिलाकर 12 टीम होंगी। ये 6-6 के 2 ग्रुप्स में बटेंगी और तीसरे राउंड में पिछले दोनों ग्रुप की 3-3 टीमें पहुंचेंगी और दोनों ग्रुप की बाकी 6 टीम में से एक और बेस्ट टीम अगले राउंड में पहुंचेगी। इस तरह 7 टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। अगला राउंड सुपर 7 का होगा, जिसमें से सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी। इनमें से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जहां से फाइनल और फिर विजेता तय होगा। यानी पहले जो टीमें ग्रुप स्टेज खेलकर सीधे आगे बढ़ जाती थी, अब उन्हें सुपर 7 के चक्रव्यूह से गुजरना होगा, जहां हर मैच टूर्नामेंट की दिशा तय करेगा। असली सस्पेंस और रोमांच आईसीसी ने फटाफट क्रिकेट यानी टी20 वर्ल्ड कप में डाला है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली 2028 की टी20 वर्ल्ड कप से सुपर 8 का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह एंट्री हो रही है सुपर 10 और एलिमिनेटर की। 2024 और 26 के वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में 5-5 टीमों के 4 ग्रुप होते थे, जिनमें से 2-2 टीमें सुपर 8 में जाती थी, फिर सेमीफाइनल और फाइनल का सफर तय होता था। लेकिन अब 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में 4-4 टीमों के 5 ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप में से 2 टीमें अगले राउंड में जाएंगी, यानी कुल 10 टीमें अगले राउंड में होंगी। इन 10 टीमों को 5-5 के 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दोनों ग्रुप्स में टॉप पर रहने वाली एक एक टीम सीधे सेमीफाइनल में एंट्री लेगी, जबकि दोनों ग्रुप्स में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर राउंड में जाएंगी। इनमें से जीतने वाली दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी, जहां से आगे का सफर तय होगा। ये फॉर्मेट फैंस को भले ही रोमांचक लग रहा हो, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा मैच कराने के लिए यह किया जा रहा है। ये बात जग जाहिर है कि आईसीसी के रेवेन्यू का 70-80% भारतीय बाजार यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एड्स स्पॉन्सर्स से आता है। एक भारत पाकिस्तान मैच की व्यूअरशिप और विज्ञापन दरें किसी भी दूसरे मैच की तुलना में 5 से 10 गुना तक अधिक होती हैं। इसीलिए जब भी आईसीसी कोई नया फॉर्मेट लाती है तो उस पर कमर्शियल एजेंडा और भारत पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा भिड़ाने के आरोप लगते हैं। अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2028 के नए फॉर्मेट को देखें तो ये आरोप काफी हद तक सही महसूस होंगे आपको। इस फॉर्मेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बड़ी टीमें टूर्नामेंट में ज्यादा समय तक टिकी रहें, जिससे व्यूअरशिप बनी रहे। नए फॉर्मेट में 4-4 टीमों के 5 ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि शुरुआती दौर में टीमें केवल 3-3 मैच खेलेंगी। इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 10 होगा। आईसीसी की हमेशा यह कोशिश रहती है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाए। 2007 के वनडे वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट में अगर भारत या पाकिस्तान जैसी टीम शुरुआती 1 या 2 मैच हारकर बाहर हो गई थी तो ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ था। नए सुपर 10 और एलिमिनेटर वाले फॉर्मेट में बड़ी टीमों को वापसी का दूसरा मौका मिलता है। अगर भारत या पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप नहीं कर पाते तो भी वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहकर एलिमिनेटर के जरिए सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, यानी ब्रॉडकास्टर्स के लिए उनके मैचों की संख्या सुरक्षित रहती है। हालांकि इसके सकारात्मक पहलू भी हैं जिसे भी नकारा नहीं जा सकता। दरअसल आईसीसी ने 2 बड़े लक्ष्य रखे हैं। पहला, अमेरिका, नेपाल और स्कॉटलैंड जैसी इमर्जिंग टीमों को दूसरे दौर में ज्यादा मैच खेलने का मौका मिले। दूसरा, बड़ी टीमें ग्रुप स्टेज में हल्के मैच खेलकर आसानी से क्वालिफाई न कर पाए, बल पहले कई बार ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच बेमतलब हो जाते थे क्योंकि टॉप टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी होती थी। नए फॉर्मेट में हर एक मैच का महत्व रहेगा क्योंकि सीधे सेमीफाइनल में जाने के लिए ग्रुप में नंबर 1 बनना जरूरी होगा। इसीलिए अब ग्रुप स्टेज का पहला मैच हो या सुपर 10 का आखिरी मुकाबला, रोमांच और दबाव 100% रहेगा। यह आरोप सही है कि फॉर्मेट को इस तरह से लचीला बनाया गया है ताकि भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी और अधिक रेवेन्यू देने वाली टीमें ग्रुप स्टेज में एक आध उलटफेर का शिकार होकर टूर्नामेंट से जल्दी बाहर न हो। आईसीसी इसे रोमांच बढ़ाने, क्रिकेट को ग्लोबल बनाने इसका नाम देती है, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रॉडकास्टर्स का अरबों डॉलर का निवेश इस बात को सुनिश्चित करवाता है कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा हो जो दर्शकों को आखिरी हफ्ते तक टीवी स्क्रीन से बांध कर रख सके। आज आपको क्रिकेट से जुड़ी एक और जरूरी खबर दिखाते हैं जिससे शायद क्रिकेट फैंस निराश हो सकते हैं। चर्चा है कि रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर क्रिकेट इतिहास के एक सुनहरे अध्याय का अंत होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेलने उतर सकते हैं। इस वक्त भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव की आहट है। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी और कोच गौतम गंभीर ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के रोडमैप को लेकर रोहित शर्मा से चर्चा की है। सिलेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि वो भविष्य की ओर देख रहे हैं और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को आगे मौका देना चाहते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय करियर का विदाई मुकाबला हो सकता है। संन्यास की इन अटकलों को तब और हवा मिल गई जब खबर आई कि रोहित शर्मा के माता पिता लंदन पहुंचे। बताया जा रहा है कि सिलेक्टर्स के साथ हुई बातचीत के बाद खुद रोहित ने अपने माता पिता के लिए ये विशेष व्यवस्था की है ताकि वो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर उनके इस संभावित विदाई मैच के गवाह बन सकें। दरअसल रोहित शर्मा T20 और टेस्ट फॉर्मेट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं और इंग्लैंड का ये दौरा उनके लिए अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि 3 दोहरे शतकों के साथ 33 वनडे शतक लगा चुके इस महान खिलाड़ी की विदाई को फैंस यादगार बनते देखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इन अटकलों में कितनी सच्चाई है। और अब सुबह उठकर जिस टूथपेस्ट से आप अपने बच्चे को ब्रश कराते हैं, क्या वो वाकई टूथपेस्ट है? रसोई में जिस नमक को आप देश का नमक कहकर चखते हैं, क्या वो वाकई नमक ही है? एक वक्त था जब लोग सिर्फ खुली चीजों में मिलावट से डरते थे, सोचते थे कि दूध खुला है तो पानी मिला होगा, हल्दी, मिर्च, जीरा जैसे खुले मसाले हैं तो कुछ न कुछ मिला होगा, मिठाई है तो मावा नकली हो सकता है। इस वजह से लोगों ने ब्रांड्स का रुख किया ताकि उनके साथ एक जिम्मेदारी और एक भरोसा जुड़ा रहे। चमचमाते रैपर्स, बड़े बड़े विज्ञापन और भरोसे का वो नाम जिसके लिए हम अपनी जेब से और महंगी कीमत चुकाते हैं। लेकिन आज वो भरोसा भी टूट चुका है क्योंकि देश में मिलावट का नहीं, ब्रांडेड धोखे का दौर चल रहा है। जहां सिर्फ मिलावट नहीं हो रही बल्कि नामी कंपनी की पैकिंग में नकली माल की बिक्री हो रही है। कुछ हाल की घटनाएं आपको बताते हैं, जब नाम और पैकिंग तो नामी कंपनी की थी लेकिन बस माल नकली था। शुरुआत करते हैं सबसे सस्ते और सबसे जरूरी स्वाद नमक से। पुणे में पुलिस ने जब छापा मारा तो हैरान रह गए। देश के एक भरोसेमंद ब्रांड के पैकेट में नकली और घटिया नमक धड़ल्ले से पैक हो रहा था। रैपर वही, फॉन्ट यानी लिखने का तरीका वही, चमक वही, लेकिन अंदर जो भी भरा था वो कम से कम टाटा का नमक नहीं था। पुलिस ने भारी मात्रा में नमक, पैकिंग सामग्री, मशीनें बरामद की। ये गोदाम एक बड़े बिजनेसमैन का था और तमाम इलाकों में इस नमक की सप्लाई हो रही थी। बात इतनी नहीं है, कुछ दिन पहले गुजरात के कच्छ में मशहूर कोलगेट टूथपेस्ट बनाने की अवैध फैक्ट्री सील की गई। दिल्ली में ब्रांडेड टूथपेस्ट के नाम पर खतरनाक केमिकल्स को ट्यूब में भरा जा रहा था। राजस्थान के उदयपुर में सरस और अमूल ब्रांड की पैकिंग में नकली घी का काला धंधा चल रहा था। दिल्ली और गाजियाबाद में लिव 52, क्लेवाम और जीरोडॉल जैसी दवाइयों की पैकिंग में चौक और स्टार्च भरा जा रहा था। शातिर दिमाग, ठग और लालच के सौदागरों ने जान लिया है कि हिंदुस्तान का आम आदमी आंखें बंद करके ब्रांड पर भरोसा करता है, इसीलिए उन्होंने सामान नहीं बदला, हूबहू वही रैपर, वही रंग, वही पैकेजिंग चुरा ली। आज धोखा खुली बोरी में नहीं बिक रहा, धोखा ब्रांडेड पैकेट में सील होकर आपके घर आ रहा है। अब आप खुद से पूछिए, आप किस पर भरोसा करेंगे जब आपकी आंखें जिसे सच समझ कर खरीद रही हैं उस सबसे बड़ा झूठ है। ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
6: Jack, you're killing me.
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
8: गहरी सफाई।
7: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
8: गहरी खुशबू
7: और प्यार भरी भी।
8: कैसे?
7: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
9: इसीलिए फेना ही लेना।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
5: गहरी सफाई।
4: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
5: गहरी खुशबू
4: और प्यार भरी भी।
5: कैसे?
4: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
6: इसीलिए फेना ही लेना।
7: In association with Hint, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
8: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल बोलो जुबां केसरी।
9: राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे, 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।

0: का चुनावी बिगुल बोले, केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले ने कहा, पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा हुई महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का किया दावा। यूसीसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दो टोक, कहा जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का होगा अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों। और वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में निधन, 93 टेस्ट में जड़े 26 शतक, बीसीसीआई ने संवेदना व्यक्त की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक। आज दस्तक में बात चौतरफा घिरे पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, जनता की थाली खाली है, बॉर्डर से लेकर घर के अंदर तक गोलियां चल रही हैं। बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश के तौर पर घोषित कर दिया है। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आक्रोश आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पीओके की जनता आजादी के लिए आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर चुकी है, तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान तैयार बैठा है। वहीं पाकिस्तान के बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सेना के कारण घर में छिड़े गृह युद्ध के लिए मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब यह हुआ कि मुनीर की स्थिति यह है कि मुनीर न घर का है न घाट का।
1: मुनीर का प्लान फेल, क्या टूट जाएगा पाकिस्तान? बलूचिस्तान का ऐलान, अब पाकिस्तान से आजाद। पाकिस्तान सेना पर भारी, बलूचिस्तान विद्रोह जारी।
2: तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जाने इस मुल्क की, अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जाने सुपुर्द की हैं।
1: बलूच सेना का बड़ा हमला, मुनीर से सीधा बदला। बलूचिस्तान में मुनीर एंड कंपनी का बैकअप तय। पाकिस्तान हाफ, मुनीर के कंट्रोल से बलूचिस्तान साफ।
3: मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए गरी की तरफ धकेल रहे हो।
1: बलूचिस्तान विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल मुनीर ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन बलूच सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को नाको चने चबा दिए। मस्तुंग जिले में बीएलए के हमले में एक दो नहीं बल्कि 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। मतलब यही है, एक तरफ पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूच सेना के प्रचंड प्रहार जारी हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान विद्रोह की अगुवाई कर रहे नेताओं ने आजाद बलूचिस्तान का ऐलान कर दिया है। दावा यही है कि बलूचिस्तान के 85% हिस्से से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ चुके हैं। अब बलूचिस्तान मुनीर की सेना की जागीर नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक आजाद मुल्क है। आजाद बलूच आंदोलन की अगुवाई कर रहे मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। अपना राष्ट्रगान मां चुकेन बलोचानी अपना लिया है, अपना राष्ट्रीय झंडा पेश किया है, अपनी मुद्रा बलोची फालुस शुरू की है और अब बलूचिस्तान के 85% इलाके पर बलूचों का नियंत्रण है। इन घटनाओं की वजह से बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का

0: मददगार बन गया है। आज हम अपनी सुरक्षा और रक्षा बलों के जरिए बलूचिस्तान राज्य का प्रशासन चला रहे हैं। हमारे पास भले ही लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल या भारी तोपखाने ना हो, लेकिन अपनी जमीन पर हमारा नियंत्रण है। बलूचिस्तान की सेना, नौसेना, वायुसेना और नागरिक प्रशासन के 5,00,000 जवानों का बल 2026 के आखिर तक पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेनाओं को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। जो दावा बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे नेताओं की तरफ से किया गया, इस दावे पर पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार नजम सेठी और पाकिस्तान की JUIF पार्टी के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने मोहर लगाई है। सबसे पहले बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दावों की पोल खोलने वाला मौलाना फजलुर रहमान का बयान बहुत गौर से सुनिए।
1: बलूचिस्तान में बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है।
0: मौलाना फजलुर रहमान ने यही बताया कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ चुके हैं, तो नजम सेठी मानते हैं कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान के हाथों से बलूचिस्तान निकल चुका है।
2: बलूचिस्तान अब हमारा एक वीक स्पॉट बन चुका है। तो ये जो बीच था ये मरी ट्राइबल्स के अंदर था पहले से, फिर ये आपको पता है कि यही जो बीच था, यही जो प्रॉब्लम था, ये 60 की दिहाई में अयूब खान के ज़माने में जो रिवोल्ट हुआ वो भी मरी इलाकों में हुआ। उसके बाद 70 की दिहाई में जब भुट्टो साहब थे तो रिवोल्ट हुआ, वो भी मरी ट्राइब्समैन की वहाँ हुआ। तो ये सारी बातें रियासत को पता है।
0: बलूचिस्तान में मुनीर की सेना को मुंह की खानी पड़ी। पीओके में आजादी की मांग को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना हैवानियत की सभी हदों को पार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात इतने बेकाबू हैं कि मुनीर की सेना ने हाथ खड़े कर दिए हैं और नौबत एयर स्ट्राइक तक पहुंच गई है।
3: खबर जो आपके सामने रखते हैं वो ये है कि बन्नू में जेट तैयारों की बमबारी, मतलब अब हालात ये हैं कि अब बन्नू में हमें ऑपरेशन करने के लिए जो एयरफोर्स है उसके तैयारे हमें लगाने पड़ रहे हैं, मतलब हमारी ये हार है। और क्या है
0: बलूचिस्तान जो है, अब याद करिए इन तस्वीरों को जब इस्लामाबाद में आयोजित प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन में आजाद बलूचिस्तान की मांग करने वालों को आतंकवादी करार देते हुए सीधी धमकी दी थी। धमकी ये कि बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे विद्रोहियों की 10 पीढ़ियां भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती।
4: बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का जूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती।
0: बीते साल यही धमकी आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को लेकर खुल्लम खुल्ला दी थी, लेकिन ना तो बलूचिस्तान में आजादी की मांग थमी, ना ही बलूच आर्मी के हमले। सिर्फ जुलाई महीने में पाक सेना और बलूच आर्मी के बीच हुए संघर्ष में करीब 85 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है।
5: ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ बेला बंदर, एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की DLA वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड, उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, एक JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं।
4: तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती।
0: आसिम मुनीर की धमकी ने आग में घी डालने का काम किया। यही वजह है कि बलूचिस्तान में विद्रोह की आग और भड़क गई। पाकिस्तानी पत्रकार मानते हैं कि बलूच आर्मी को कमजोर आंकना मुनीर को बहुत भारी पड़ा।
6: फील्ड मार्शल ने कहा था कि ये तो 1500 हैं, हम तो इनसे निपट लेंगे। It doesn't matter. अगर वो 1500 हैं, तो उन्होंने 12 सिटीज पे अटैक किया।
0: पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार यही दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल चुका है। वही बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल के करीब 44% हिस्से में फैला हुआ है।
7: बलूचिस्तान के बारे में मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर अब गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल नहीं रहा है, और वहां उसके लोग अगर जाकर अब UN में जाकर अगर बात करें या UN में जाकर अगर अपील करेंगे तो उनकी बात को सुन भी लिया जाए।
0: अब बलूचिस्तान की आजादी के ऐलान और पाकिस्तान से टकराव का इतिहास और भूगोल समझिए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त बलूचिस्तान पर शासन करने वाले कलात वंश ने आजाद मुल्क का विकल्प चुना था, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य ताकत के दम पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। यानी 1947-48 में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। दूसरा विद्रोह 1954 से 1958 तक चला। वजह बनी पाकिस्तान की तरफ से थोपी गई एक इकाई वाली नीति। तीसरा विद्रोह 1963 से 1970 तक चला। ये विद्रोह बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना की वापसी के लिए था। बांग्लादेश के अलग होने के बाद 1973 से 1977 तक आजादी को लेकर चौथा आंदोलन चला। इस आंदोलन को पाकिस्तानी सेना ने बुरी तरह कुचल दिया। फिर पांचवा विद्रोह साल 2000 से जारी है। इसकी वजह बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी सेना की हैवानियत है।
7: बलूचिस्तान के बारे में मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर अब गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल नहीं रहा है, और वहां उसके लोग अगर जाकर यूएन में जाकर अगर बात करें या यूएन में जाकर अगर अपील करेंगे तो उनकी बात को सुन भी लिया जाएगा।
0: मतलब बीते 8 दशकों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जंग में हजारों बलूचों ने अपनी कुर्बानी दी है, तो क्या अब ये कुर्बानी ही बलूचिस्तान की आजादी का नया इतिहास रचेगी? आज तक ब्यूरो।
8: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पीओके वालों ने पाकिस्तान की सरकार और आर्मी चीफ मुनीर को दिन में तारे दिखा दिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से उठी बगावत की आग ने शहबाज और मुनीर को उनके आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए,
0: युद्ध में फंस गया पाकिस्तान, अब नए प्रांत का प्रस्ताव। पीओके से हुआ ऐलान, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। पीओके में विद्रोह से कांपने लगे मुनीर, शाहबाज और बिलावल। गिलगित बाल्टिस्तान को पाक का पांचवा प्रांत बनाने की चाल। पीओके में बगावत का एटम बम, पाकिस्तान होगा खंड खंड।
9: ये जिस हिंदू ने टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका इस पर कब्जा है, इस पर शरीक करता है, ये एक मुतनाजा इलाका है। इस तहरीक में शहीद हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माए बहने बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले, फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म।
0: जैसे ही पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ये आवाज उठी कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि कब्जाया हुआ इलाका है, पाकिस्तान के दिमाग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान खटखटाने लगा जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब पीओके खुद कहेगा कि वो भारत का हिस्सा है।
10: हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौट कर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा।
0: जिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आसिम मुनीर गर्दन की नस बताते हैं, जब पीओके वालों ने वो नस दबाई तो आसिम मुनीर ही नहीं शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक बिलबिला उठे हैं। कहा तो पीओके वाले 5 जून से जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और मुनीर जनरल डायर की तरह बेगुनाहों पर गोलियां चलवाकर उनका लहू बहा रहे हैं। और अब कहां पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान को आनन फानन में पाकिस्तान का पांचवा प्रांत बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया जा रहा है।
11: चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इन द नेशनल असेंबली हैव रिकॉग्नाइज्ड द नीड टू प्रोवाइड द पीपल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशंस सेम एज दोज एंजॉयड बाय सिटीजंस ऑफ रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नाउ देयरफॉर इट इज रिजॉल्व्ड दैट गिलगित बाल्टिस्तान शैल बी ग्रांटेड स्टेटस ऑफ प्रोविंशियल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान थ्रू अप्रोप्रिएट constitutional amendments and enabling legislations.
0: جب پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے لوگوں نے جان کی بازی لگا کر منیر کے خلاف یلغار چھیڑا اور رابلہ کوٹ میں 80,000 لوگوں کی بھیڑ نے مظفر آباد تک لانگ مارچ شروع کیا تو اسلام آباد تک ہل گیا. اب بلاول نے پی او کے میں چل رہے ودروہ کو لے کر بیان دیا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے کسی بھی شخص کی یہ اوقات یا حق نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ کون کشمیری ہے اور کون نہیں. یقیناً یہ بلاول نہیں پی او کے میں ودروہ کا پریشر بول رہا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ بلاول نے آصف منیر کی وردی والی پاور اتار کر رکھ دی کیونکہ پاکستان نے پاکستان ادھیکرت کشمیر کے لوگوں کو جے اے سی کے پردرشن کاریوں کو آتنکی اور دیش دروہی گھوشت کرنا شروع کیا تو پی او کے نے بھی اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. پی او کے پاکستان کا حصہ نہیں ہے.
12: میری آپ سب سے گزارش ہے ہمیں کل بھی روکا جا رہا تھا کہ آپ دھرنے میں نہ جائیں. ایکشن کمیٹی نے کیا غلط کیا, وہ تو ہمارے عوام کے حق کی نواز ہے. یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو یہ لاکھوں کے مجمع میں لوگ اور لڑکیاں یا خواتین اپنے گود والے بچے کو ادھر لے کے آتی. یہ کوئی دہشت گرد ہے, آپ پلیز چیک کر دیا جائے.
13: اب ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے, آپ اپنے بنیادی حقوق کی خاطر, اپنی نسلوں کی بقا کی خاطر اور اپنی صنعت کی خاطر سراپا احتجاجی.
12: اور میری آپ سب کا اچھا نیوان سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو, ہمیں حق کے لیے آواز اٹھا رہے.
0: پاکستانی سینا کے اتیاچاروں, ہاری ٹیک اور آٹے بجلی کی مہنگائی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے لوگ مظفر آباد کی طرف بڑھے تو مہیلاؤں, بچوں, یوواؤں اور بزرگوں نے پی او کے میں آزادی کی مانگ سے پاکستان کے نیتاؤں کو ان کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا. وہ پی او کے جس پر پاکستان کا اویدھ قبضہ ہے, وہ پی او کے جسے پاکستان اپنی زمین بتاتا ہے جبکہ بھارت اسے اپنا ابھن انگ مانتا ہے. پی او کے بھارت کے جموں کشمیر کا وہ حصہ ہے جس پر 1947 میں پاکستان نے اویدھ روپ سے قبضہ کر لیا تھا. جی ہاں, 1947 میں بھارت کے وبھاجن کے سمے جب جموں کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے بھارت میں ولے کا فیصلہ کیا تھا. اس کے بعد پاکستان سمرتھت قبائلیوں اور سینا نے کشمیر کے اس حصے پر حملہ کر اس پر قبضہ کر لیا تھا. پاکستان نے پی او کے کو دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے, ایک حصہ جسے وہ آزاد کشمیر کہتا ہے اور دوسرا گلگت بلتستان. اب پاکستان پی او کے میں چھڑے گرہ یدھ سے ایسا ڈرا ہے کہ نئی پیترے بازی پر اتر آیا ہے. پاکستان کی اسمبلی نے اس علاقے کو پاکستان کا پانچواں پرانت بنانے کا پرستاؤ پاس کیا ہے. اس داؤں سے پاکستان وہاں کے لوگوں کو اسمبلی اور سینٹ میں سمویدھانک حق دینے کا لالچ دے رہا ہے. اس پرستاؤ میں ایک چالاکی بھی کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اس قدم سے کشمیر وواد اور یو این پرستاؤں پر پاکستان کے رخ میں بدلاؤ نہیں آئے گا. مطلب پاکستان ایک طرف اسے اپنے سسٹم میں لا رہا ہے, دوسری طرف وہ اپنی پرانی لائن بھی بنائے رکھنا چاہتا ہے. اور تو اور پاکستان گلگت بلتستان کے سی ایم کے طور پر امجد حسین کو شپتھ بھی دلوا چکا ہے.
14: میں امجد حسین بحیثیت وزیر اعلیٰ
15: میرے علم میں آئے گا اس کی اطلاع کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا نہ کسی پر ظاہر کروں گا
0: پاکستان میں کل چار پرانت ہیں, پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان. سچ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاکستان پہلے سے گرہ یدھ جھیل رہا ہے. ایسے میں پی او کے کو شانت کرنے کے لیے پاکستان پانچویں پرانت کا پیترا لایا ہے, جبکہ پورا پی او کے بھارت کا حصہ ہے اور اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے. بھارت کی نظر میں یہ پرستاو پاکستان کے اویدھ قبضے والے علاقے میں بدلاؤ کی ایک اور سازش ہے. لیکن جس طرح سے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں ودروہ بھڑکا ہے اور پی او کے کی آواز پاکستان کے خلاف میدان جنگ میں اتر چکی ہے, اب پاکستان کی پیپر بازی کام نہیں آئے گی. تبھی پاکستان نے پی او کے میں ودروہ کو شانت کرنے کے لیے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ 8,000 رینجر تعینات کیے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ان رینجرز کا استعمال یدھ کے سمے کرتا ہے. اس میں کلیئر ہے کہ پاکستان یہ مان چکا ہے کہ منیر کی غلطیوں سے پی او کے میں گرہ یدھ چھڑ چکا ہے. आपको बता दें कि पीओके की सीमाएं अफगानिस्तान की बाखान पट्टी से जुड़ी हैं और अफगानिस्तान से उसका युद्ध चल रहा है। पश्चिम में पीओके की सीमा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से जुड़ी है। यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने विद्रोह छेड़ रखा है। पूर्व में भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। अब न पाकिस्तान की कोई पैतरेबाजी चलने वाली है, न वो गृह युद्ध से बचने वाला है और वो दिन दूर नहीं जब पीओके फिर से भारत का हिस्सा होगा। आज तक ब्यूरो।
8: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक तरफ तो पाकिस्तान गृह युद्ध में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया तो पाकिस्तान में खतरे की नई घंटी बजने लगी। बीते वर्ष पाकिस्तान में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई थी और इस साल भी भारत ने सिंधु संधि के नदी आने वाली नदियों का डेटा साझा करने से पाकिस्तान से साफ मना कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज डरी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान को पता चल पा रहा है कि मानसून की बारिश में पीछे से कितना पानी आएगा, जबकि पाकिस्तान को सिंधु संधि को जिंदा रखने के लिए भी दंड झेलना पड़ रहा है।
0: सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान बुरा फंस गया। भारत से नहीं मिला डेटा तो पाकिस्तान कैसे घबरा उठा? पाकिस्तान में बाढ़ का डर, मानसून से खौफ में मरियम। सिंधु जल समझौते के लिए पाकिस्तान ने बहाए $6 लाख। पानी पर घुड़कीबाज पाकिस्तान की भारत ने अकल ठिकाने लगा दी। पहलगाम में आतंकी हमले की सजा पाकिस्तान को हर रोज भुगतनी पड़ रही है। पहले तो भारत ने ऑपरेशन से दूर से पाकिस्तान में आतंक के ठिकाने नेस्त नाबूद किए और अब सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान पर पानी और पैसा दोनों की मार पड़ रही है। कहां तो पाकिस्तान सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पानी के लिए जंग छेड़ने की बात कर रहा था।
16: अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
17: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया डेफिनेटली।
16: ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए।
0: और कहा अब पाकिस्तान इस खौफ में जी रहा है कि सिंधु का पानी उसके लिए काल न बन जाए। जी हाँ, मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मरियम नवाज की अगुवाई वाली सरकार की चिंता बढ़ गई है। मरियम ने अपने सिंचाई विभाग से हाई अलर्ट कैटेगरी के तहत बाढ़ की तैयारी करने के लिए कहा है। सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले से नदियों के बहाव को लेकर बनी अनिश्चितता से पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ का डर है। लाहौर के कमिश्नर नौमान यूसुफ की अध्यक्षता में हुई बैठक की जानकारी रखने वाले सूत्र के हवाले से की गई रिपोर्ट में डॉन ने बताया है कि सिंचाई विभाग सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से मिल रही जानकारी के आधार पर इंतजाम कर रहा है। इससे सटीक आकलन करना मुश्किल है क्योंकि भारत पिछले साल अप्रैल में सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद से डेटा साझा करने से बच रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में मरियम सरकार बेचैन है और कह रही है कि अगर भारत नदियों के बहाव बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है तो बहुत सतर्क रहना होगा। पहले पाकिस्तान पानी के लिए बिलबिला रहा था, अब पानी आने के डर से कांप रहा है। पीएम मोदी के एक फैसले ने पाकिस्तान को ऐसी मझधार के बीच छोड़ दिया है जहां उसके सामने मुश्किलों की खाई है। सिंधु जल समझौते को किसी भी तरह से जिंदा रखना भी पाकिस्तान की मजबूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संधि को जिंदा रखने के लिए उसे अलग से मोटा खर्चा भी करना पड़ रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान को भारत के हिस्से का खर्च भी करना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस वजह से पाकिस्तान को अब तक $6 लाख से भी ज्यादा का चूना लग चुका है। भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सिंधु जल समझौते को रोक रखा है। यही नहीं, भारत ने इससे संबंधित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी खुद को अलग कर रखा है। जून 2025 के बाद से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कम से कम 8 बार सुनवाई हो चुकी है। इनमें से सभी सुनवाई का भारत ने बहिष्कार किया है। रिपोर्ट के अनुसार इन कार्रवाइयों पर एक देश का औसत $3 लाख का खर्च आया है। पता चला है कि पाकिस्तान को भारत के बहिष्कार की वजह से इसका भी खर्च उठाना पड़ रहा है। इस तरह से कुल बिल $6 लाख से ज्यादा हो जाता है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है, भारत के कई प्रोजेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान को आपत्ति है। भारत का कहना था कि इस तरह के तकनीकी विवाद का समाधान न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान चाहता था कि मामला सीधे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता अदालत में जाए। हालात ऐसे बने कि ये दोनों प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ चलने लगी। भारत लगातार कहता रहा कि एक ही विवाद पर दो समानांतर प्रक्रियाएं नहीं चल सकती। भारत के नहीं जाने के बावजूद पाकिस्तान ने पीसीए की कार्रवाई जारी रखी। इसीलिए पाकिस्तान पूरी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अपने साथ साथ भारत का भी खर्च उठा रहा है। आज तक ब्यूरो।
8: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे ट्रंप का नया वार, छिड़ जाएगा अब वर्ल्ड वॉर। देखते रहिए दस्तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
19: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
21: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
22: सवारी गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
23: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
24: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले।
25: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
26: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
27: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
26: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
27: अर्ज किया है,
26: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं। सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
28: समझ कर इन्वेस्ट कर।
29: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
4: लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
6: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
10: गहरी सफाई।
9: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
10: गहरी खुशबू
9: और प्यार भरी भी।
10: कैसे?
9: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
8: इसीलिए फेना ही लेना।
11: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
12: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
13: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
11: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
14: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, आज तक वर्टिकल।

0: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
1: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
0: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
2: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण गांटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाई।
0: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: स्वागत दस्तक में एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। ईरान पर छठे दिन भी अमेरिका की बमबारी जारी है। अमेरिकी सेना ने ईरान के पुल और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। क्या ईरान भी मिडिल ईस्ट में तेल और गैस के प्लांट्स को निशाना बनाएगा? अब सवाल यही है कि इस युद्ध में आगे क्या होगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स में किए गए दावे दुनिया को डराने वाले हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्लान है कि ईरान के एटमी सेंटर और खार्ग द्वीप पर हमले की तैयारी। ईरान के एटमी सेंटर पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए जा सकते हैं, तो खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए ट्रंप अपनी सेना जमीन पर उतार सकते हैं। ईरान ने धमकी दी है, जमीनी ऑपरेशन हुआ तो बदला विध्वंसक होगा। तो क्या ट्रंप के नए वार से वर्ल्ड वॉर का खतरा छिड़ गया है?
4: ईरान के पावर प्लांट पर ट्रंप का हमला, ईरान के पुलों को अमेरिका ने उड़ाया, अब ट्रंप के निशाने पर परमाणु सेंटर। खार्ग द्वीप पर जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। ईरान की बड़ी धमकी, सरप्राइज तैयार है। अमेरिका ईरान युद्ध का सबसे घातक मोड़। ट्रंप का नया वार छिड़ जाएगा वर्ल्ड वॉर।
5: We're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
4: ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ ईरान के कई पुलों को निशाना बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगले कुछ दिनों में बड़े हमले के संकेत दे दिए हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का अगला टारगेट ईरान के खार्ग द्वीप और पिकैक्स माउंटेन के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड एटमी सेंटर है। दावा यही है कि ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जमीनी ऑपरेशन को मंजूरी दे सकते हैं, तो वहीं पिकैक्स माउंटेन पर हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीते साल इसराइल और ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप ने ईरान के परमाणु सेंटर पर बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया था, तो वहीं फरवरी में शुरू हुए युद्ध के बाद ट्रंप खार्ग द्वीप पर बम बरसा चुके हैं। ट्रंप मानते हैं कि पिकैक्स माउंटेन को तबाह करके वो ईरान की एटमी हथियार बनाने की ताकत छीन लेंगे, तो वहीं खार्ग द्वीप पर कब्जा करके ईरान की कमाई रोक सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में जीत हासिल कर ली है, जो अब लाखों बैरल तेल का उत्पादन करने के लिए वॉशिंगटन के साथ काम कर रहा है, और इसी तरह ईरान में भी बड़ी जीत हासिल कर रहा है। आप इस परिश्रम का फल बहुत जल्द देखेंगे। ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं। इसी जीत का ढिंडोरा पीटने के लिए ट्रंप के टारगेट पर ईरान का पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास पहाड़ के नीचे मौजूद है, यानी पूरी परमाणु साइट अंडरग्राउंड है। खबरों के मुताबिक 100 मीटर मोटी चट्टानों के नीचे ये साइट है, जहां पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज बनाए जाते हैं। हालांकि अमेरिका को शक है कि इसी साइट का इस्तेमाल ईरान अपना यूरेनियम एनरिच करने के लिए कर रहा है। संभव है कि यही पर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में जुटा हो, लेकिन ट्रंप की मुसीबत ये है कि पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को अमेरिका अपने सबसे ताकतवर GBU-57 बंकर बस्टर बम से भी पूरी तरह तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि पहाड़ की मोटी चट्टानों के नीचे ये साइट मौजूद है। मतलब यही है कि ट्रंप के दिमाग में ईरान के इसी परमाणु सेंटर की तस्वीरें घूम रही हैं।
5: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. In the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
4: वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने का आदेश किसी भी वक्त दे सकते हैं। दरअसल ये ईरान का एक ऐसा एटमी सेंटर है जिसे लेकर अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का मानना है कि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने में बड़ी भूमिका भविष्य में निभा सकता है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने 2022 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे मौजूद एटमी सेंटर में यूरेनियम एनरिचमेंट के साथ साथ दूसरी परमाणु संबंधी गतिविधियां भी चल रही हैं। अमेरिकी थिंक टैंक मानते हैं कि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जून 2025 के संघर्ष के बाद एटमी सेंटर में निर्माण का काम फिर से शुरू किया गया। बड़ी बात यह है कि पिकैक्स बोर्डो की तुलना में ज्यादा गहराई में है। साफ है कि ट्रंप की हिटलिस्ट पर ईरान का पिकैक्स एटमी सेंटर है तो ईरान का खार द्वीप भी है। आखिर ट्रंप की नजर ईरान के खार द्वीप पर क्यों है, समझिए। नंबर एक, खार द्वीप को ईरान की टकसाल कहा जाता है। नंबर दो, खार द्वीप से ईरान अपना 90% तेल भेजता है। नंबर तीन, ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है खार। नंबर चार, खार द्वीप से ही चीन को तेल सप्लाई होता है। नंबर पाँच, खार छीना तो ईरान की लाइफलाइन कट जाएगी। ईरान पर दशकों से पश्चिमी मुल्कों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में ईरान की कमाई का बड़ा जरिया उसके तेल और गैस भंडार हैं। ये वही गैस और तेल हैं जिससे ईरान की इकोनॉमी प्रतिबंधों के बावजूद दौड़ रही है। ईरान में पैदा होने वाले तेल का बड़ा खरीदार चीन है। यही वजह है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपना तेल लगातार बेच रहा है। तेल और गैस की कमाई से ही ईरान अपने मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। लिहाजा ईरान की कमर तभी टूटेगी जब कमाई के सबसे बड़े जरिए पर चोट हो। ट्रंप मानते हैं कि खार द्वीप पर कब्जा करके ईरान की तेल से होने वाली कमाई रोकी जा सकती है। ऐसा करके ईरान की युद्ध लड़ने की ताकत छिन जाएगी। दूसरा, खाद पर कब्जा करके उसकी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ युद्ध में करना। तीसरा, खाद पर कब्जा करने के बाद ईरान पर हुर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का दबाव डाल सकते हैं। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर वाशिंगटन ईरान पर जमीनी हमला करता है तो अमेरिकी सेना या तो पकड़ी जाएगी या उसका नरसंहार कर दिया जाएगा। अगर अमेरिका के हमले दोहराए गए तो फारस की खाड़ी के किनारे बसे देश पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएंगे। अगर ईरान के खार द्वीप और एटमी सेंटर पर ट्रंप हमले की तैयारी कर चुके हैं तो ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। अगर ईरान के अहम ठिकानों पर हमला हुआ तो ईरान भी मिडल ईस्ट में तेल के कुओं और बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। बड़ी बात यह है कि ईरानी सेना ने चाबहार बंदरगाह पर हमले के बाद मिडल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े 5 बंदरगाहों को निशाना बनाने की धमकी दी है। जेबेल अली पोर्ट UAE, मीना सलमान बहरीन, शुआइबा पोर्ट कुवैत, हमाद पोर्ट कतर, किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट सऊदी अरब। इसी बीच कुवैत ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि ईरान ने एक पावर प्लांट और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट पर हमला किया। हमले की वजह से प्लांट में आग लग गई और बिजली उत्पादन करने वाली कई यूनिट को नुकसान पहुंचा है। मतलब यही है कि ईरान का बदला शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ तेहरान के मेयर ने धमकी दी है कि अब ट्रंप दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है। खामेनेई की हत्या के जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी, ये दुनिया का हर एक मुसलमान चाहता है। इस हत्या का बदला लेना तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तेहरान के मेयर ने ट्रंप पर हमले की धमकी दी है तो ईरान के एक धर्म गुरु ने ट्रंप को कब्र में पहुंचाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेना के बल पर हुर्मुज़ को फिर से खोलने की किसी भी महत्वाकांक्षा को अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। जल मार्ग को फिर से खोलना क्षेत्र में अमेरिकी आक्रामकता की समाप्ति पर निर्भर है। ईरान के सशस्त्र बलों को युद्ध की गति बढ़ानी चाहिए और अपने लक्ष्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। इस इलाके में इसराइल और अमेरिका की मदद करने वाले तेल कुएं और सैन्य अड्डों को हिट लिस्ट में शामिल करना चाहिए। ईरान की नीति या तो सभी के लिए ऊर्जा या किसी के लिए नहीं है। ये वही धमकियां हैं जिनका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति खुद कर चुके हैं।
3: हमारे संवाददाता सुमित चौधरी समय हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अब तो अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमले शुरू कर दिए, ऐसे में अब आपको क्या लगता है ईरान की तरफ से सुमित क्या सैन्य कार्रवाई हो सकती है?
1: सईद, वैसे तो अगर आप देखें कि पिछले 6 दिनों से लगातार अमेरिका ने ईरान के कई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया और कोस्टल एरियाज के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है जहां से लगातार IRGC की मूवमेंट हो, सर्वेलेंस हो, या फिर आप कह सकते हैं कि वो कंट्रोल करता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, और उसी का जवाब अब ईरान ने भी देना शुरू किया है। ईरान ने सीरिया तक अटैक करने शुरू कर दिया, और अगर आप सारे पहलुओं को नजर करें तो आप समझेंगे कि ईरान अब भी बहुत कैलकुलेटिव तरीके से पिन पॉइंटेड लोकेशन पर अटैक कर रहा है, उन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिका की या तो मौजूदगी है या उसने वहां से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अपने बनाए हुए हैं। लेकिन ईरान की तरफ से अभी यह कहा जा रहा है कि उसके कई अटैक जो फ्यूचर में अटैक होने वाले हैं वो सरप्राइज अटैक होंगे, यानी वो अटैक या सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित होंगे या फिर वो कई और जगहों पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि देखिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इस पूरे जंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना एक सरप्राइज था, और उसके बाद ईरान ने वहां पर माइंस को बिछाना शुरू किया। ईरान ने अभी दोबारा से कहा गया था कि US की तरफ से जब लगातार ये बीच की बातचीत चल रही थी तब भी IRGC जो थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर माइनिंग का काम कर रही थी, वहां पर लगातार वहां पर अपनी माइनिंग्स का काम जारी किया हुआ था। तो ऐसे में अब ये पूरे सिनेरियो को अगर आप देखें तो एक गंभीर पहलू पर जाता जा रहा है जहां पर ऐसा लग रहा है कि ना तो ईरान रुकने वाला है और ना ही अमेरिका रुकने वाला, और अगर इसी तरीके के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करने का सिलसिला जारी रहा तो निश्चित तौर पर ईरान इसमें एक कदम आगे बढ़ेगा, वो ना सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि उन तमाम देशों पर अटैक करेगा जहां पर अमेरिका की मौजूदगी, और शायद इसी वजह से ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने अभी कुछ ऐसे सरप्राइज है जो बचा कर रखे हुए हैं। और इन्हीं अंदेशों के बीच में कहा जा रहा है कि देखिए ना तो ईरान रशिया की सुन रहा है, ना ही चाइना की सुन रहा है, और पाकिस्तान की भी नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में जो पहलू जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि ये जंग एक बहुत ज्यादा विध्वंसक दौर में जाती जा रही है, और ऐसे दौर में जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान पर अमेरिका के नए हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ऐसे में आशंका इस बात की शुरू हो गई कि अगर ईरान और अमेरिका यहीं नहीं रुके तो क्या वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के जिन पुलों को निशाना बनाया वो चीन और रूस के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के उस चाबहार पोर्ट पर हमला किया जहां भारत ने मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंचने के लिए अच्छा खासा निवेश किया है। बदले में ईरान अब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है, और हथियार दुनिया में महंगाई की सुनामी ला सकता है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि अब आगे आखिर क्या होने वाला है।
4: ईरान पर अमेरिका का तगड़ा वार, क्या शुरू होगा वर्ल्ड वॉर?

0: अमेरिका ने ईरान के पुल उड़ाए, रूस और चीन तक बौखलाए। क्या ईरान के पलटवार से आएगी दुनिया में आर्थिक सुनामी? हुर्मुज के बाद लाल सागर भी बंद करेगा ईरान, क्या होगा अंजाम? ईरान और अमेरिका की जंग दुनिया को महायुद्ध में झोंक देगी। अमेरिका ने बीती रात जिस तरह से ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी की है, उसके बाद अगला खतरा वर्ल्ड वॉर का दिखाई पड़ रहा है और इसकी कई वजह हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के उस चाबहार पर हमला किया है जहां भारत ने मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंचने के लिए अच्छा खासा निवेश किया है। ये हमला अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने किया। एकदम तड़के 3 जोरदार धमाके सुने गए। अमेरिका ने यहां के वॉच टावर को हाल के दिनों में तीसरी बार निशाना बनाया है। उन पर 3 ताकतवर मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले से निगरानी टावर पूरी तरह ढह गए। इन टावरों की मदद से ईरान समुद्री यातायात को नियंत्रित कर रहा था। उसका दावा है कि निगरानी की मदद से वो समंदर में मौजूद मछुआरों और जहाजों को मदद और रेस्क्यू का काम कर रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका ये मानता है कि इसकी मदद से ईरान हुर्मुज से गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाता है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों में उसने लगातार चाबहार बंदरगाह को निशाना बनाया है। ईरान के गुलिस्तान प्रांत में मौजूद अक्ताका खान रेलवे ब्रिज को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। अमेरिका ने बीते हफ्ते अक्ताका खान रेलवे ब्रिज पर हमले किए थे। ये रास्ता इंचेब्रोन सीमा से ईरान को मध्य एशिया, रूस और चीन के रेल नेटवर्क से जोड़ता है। अक्ताका खान पुल पर हमला अप्रैल 2026 में हुए युद्ध विराम के टूटने के बाद ईरान के परिवहन ढांचे पर पहला हमला है। यही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान की बारूदी जंग के बीच दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से खौफनाक खबर आ रही है। अमेरिकी नाकेबंदी और ईरानी हमलों के खौफ के कारण हुर्मुज स्ट्रेट का रास्ता पूरी तरह ठप हो चुका है। ताज़ा शिपिंग डेटा के मुताबिक गुरुवार को इस रास्ते से सिर्फ और सिर्फ 3 कमोडिटी जहाजों ने गुजरने की हिम्मत दिखाई, जो मई के बाद से सबसे कम दैनिक आंकड़ा है। समुद्री जहाजों की ट्रैकिंग करने वाली एजेंसियों के अनुसार समंदर में अमेरिकी पाबंदियों और ईरान की मिसाइल ड्रोन आक्रामकता के कारण जहाजों ने या तो अपनी यात्रा रोक दी है या वो बीच समंदर से यू टर्न ले रहे हैं। युद्ध से पहले जहां इस संकरे रास्ते से हर दिन औसतन 125 से ज्यादा बड़े तेल और गैस टैंकर गुजरते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। भले ही अमेरिका ईरान के पुल ध्वस्त करके, पावर प्लांट उड़ाकर और हुर्मुज की नाकेबंदी करके जंग में अपना पलड़ा भारी होता बता रहा हो।
1: We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid.
0: लेकिन जंग में ईरान अब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिससे दुनिया में महंगाई की सुनामी आ सकती है। कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल के पार हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अगर ईरान का ट्रंप कार्ड है, तो वैसा ही ताकतवर हथियार बाब अल मंदेब कॉरिडोर है, जिसे ईरान अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए बंद कर सकता है। तो हुर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी से परेशान ईरान आगाह कर रहा है कि वो लाल सागर को अगला फ्लैश पॉइंट यानी तनावपूर्ण इलाका बना सकता है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की तरह दुनिया का बड़ा कारोबारी रास्ता है।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
4: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
5: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news
6: after multiple assassination attempts, they can't even get
7: they're reliable.
8: Always when I need them
5: to live sports action.
9: One hand jam by LeBron on the break.
10: That's another three, Steph Curry.
5: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
11: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू,
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
8: गहरी सफाई।
7: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
8: गहरी खुशबू
7: और प्यार भरी भी।
8: कैसे?
7: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
9: इसीलिए फेना ही लेना।
10: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में रणनीति का दौर तेज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनडीए के मंत्रियों की बैठक, फिर 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक और 20 जुलाई से संसद का रण। मतलब साफ है, संसद में संग्राम से पहले मुद्दों की तरकश में तीर जुटाए जा चुके हैं। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फॉर्मूला और वो संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाना। राज्यसभा में तस्वीर पहले से ज्यादा आसान मानी जा रही है, लेकिन लोकसभा में अब भी जरूरी संख्या तक पहुंचने के लिए सहयोगियों और नए समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए मॉनसून सत्र में पहले सियासी जोड़ तोड़, दल बदल और नए समीकरणों की चर्चा केंद्र में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी में रणनीति बन चुकी है। जयराम रमेश ने साफ कहा, कांग्रेस परिसीमन बिल का विरोध करेगी। महिला आरक्षण का समर्थन तभी होगा जब वो मौजूदा लोकसभा में लागू किया जाए। साथ ही चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, विदेश नीति, E20, महंगाई और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। दिलचस्प बात ये भी है कि सरकार दक्षिण भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए लोकसभा सीटों में सभी राज्यों के लिए करीब 50% बढ़ोतरी का फॉर्मूला तैयार कर रही है, ताकि परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की नाराजगी कम हो। लेकिन कांग्रेस

0: want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: आज तक खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दौरे पर पीएम ने फूंका चुनावी बिगुल, बोले केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले बोली पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का न्याय, शिक्षा भी हुई महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का किया दावा। यूसीसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दो टूक, बोले जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का होगा अधिकार, हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों। वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में निधन, 93 टेस्ट में जड़े थे 26 शतक, बीसीसीआई ने व्यक्त की संवेदना।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया में तमाम तरह के क्राइम सीन होंगे। क्राइम सीन यानी वो जगह जहां पर क्राइम होता है, लेकिन हमारा दावा है कि आपने इससे पहले ऐसा क्राइम सीन कभी नहीं देखा होगा जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक घर में डेढ़ कत्ल होता है, पति की लाश सामने पड़ी है, बेटा धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है, लेकिन डॉक्टर पत्नी उसी घर में बिस्तर पर लेटी अपने मोबाइल में उलझी हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 425 किलोमीटर दूर धारवाड़ में मौजूद यरंगा अपार्टमेंट है। बाहर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मैं आपको इस अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर इस फ्लैट में ले जाऊंगा, आप खुद अपनी पलकें झपकना भूल जाएंगे। बस इतना कह सकता हूं कि इस अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद जो मंजर आप देखेंगे, ऐसा मंजर इससे पहले कम से कम लाइव तो कभी देखा ही नहीं होगा। ये इस अपार्टमेंट का एक कमरा है। कमरे में एक शख्स औंधे मुंह फर्श पर पड़ा है। आसपास चारों तरफ खून ही खून है, शायद बिस्तर पर भी खून के निशान है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो फिर जगह जगह खून नजर आता है। बेशक ये तस्वीर डरावनी है, लेकिन अब हम जब दूसरे कमरे में चलेंगे तो वहां की तस्वीर देखकर पता नहीं आप पर क्या बीतेगी। ये इसी अपार्टमेंट का दूसरा कमरा है। एक महिला बेड पर लेटी हुई है, हाथ में मोबाइल फोन है और वो मोबाइल में उलझी हुई है। इस महिला का जिधर पैर है, ठीक उसी तरफ इस बेड के नीचे एक छोटा बच्चा फर्श पर पड़ा है। यहाँ इसके इर्द गिर्द भी खून के निशान है। पहले कमरे में जो शख्स औंधे मुंह जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, वो इस महिला का पति है। और जिस कमरे में बेड पर ये लेटी,

0: फिक्र अपने मोबाइल में खोई हुई है। ठीक उसी बेड के बराबर फर्श पर पड़ा खून से लथपथ ये बच्चा इसी महिला का अपना बेटा है। यानी इस एक घर में इस वक्त तीन लोग हैं, पति, पत्नी और बेटा। पति और बेटा जिंदा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन महिला जिस अंदाज में लेटी मोबाइल में खोई हुई है उससे साफ है कि वो ठीक ठाक है। पर सवाल ये है कि सामने जमीन पर बेटा पड़ा है, सामने के कमरे में पति, फिर ये बेड पर इतनी बेफिक्र क्यों लेटी है? जिसका बेटा और पति खून से लथपथ घर में पड़े हो वो मोबाइल से क्यों खेल रही है? तो आगे की कहानी तब शुरू करेंगे जब इस कमरे में पुलिस आ जाएगी। और लीजिए पुलिस आ गई। पुलिस क्या, खुद शहर के पुलिस कमिश्नर यहाँ आ चुके हैं। कमरे का मंजर देख खुद पुलिस भी हैरान है। दो लोगों को फर्श पर बेसुध लहूलुहान पड़ा देख खुद पुलिस कमिश्नर को लगा कि ये डबल मर्डर का मामला है, यानी दोहरे हत्याकांड का। लेकिन तभी जब पुलिस वाले बच्चे के करीब गए तो उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे की सांसें अब भी जिंदा है। हैरान पुलिस वाले फौरन बच्चे को गोद में उठाते हैं और अस्पताल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। हद से ज्यादा खून बह चुका था और हर लम्हा कीमती था। पर कमबख्त ऐन वक्त पर छठी मंजिल का लिफ्ट भी साथ नहीं दे रहा था। खैर किसी तरह लिफ्ट आई और पुलिस वाले बच्चे को लेकर अस्पताल भागे।
1: Initially, we also had information that it's a case of double murder. So it was about 6:30, 6:45. I had gone to one of the hospitals for the checkup of my children. So in the process, I got to know about this incident, and my ACP inspector were also there. They had come to meet me on some issue, and quickly we rushed to the spot. By then, a few doctors had visited the spot, and some of the neighbors and some family members also had visited the spot. But they thought it appropriate not to touch the body, not to see the boy, not to see the person who was Kiran. And I felt very sorry about the incident, and I tried properly seeing the face of the kid, and also tried to know where the injuries have taken place. So there I realized that he was breathing, and I tried observing at his abdominal portion. I could clearly sense that he is breathing, and quickly was taken out of the spot and shifted to hospital. So very unfortunate that a lot of people had been there, but no one from the police department, because I was among the first few people from the police department who went there.
0: कमरा अब भी वही है, बस दो चीजें अब बदली हुई हैं। पहली, महिला अब उठकर बेड पर बैठ चुकी है। दूसरी, अब फर्श पर बच्चा नहीं है क्योंकि वो अस्पताल जा चुका है। जाहिर है सामने किसी के हाथ में मोबाइल है और वो वीडियो बना रहा है, और वो महिला बेफिक्र अंदाज में अब भी बस देखे जा रही है। लगभग बेटे के साथ साथ दूसरे कमरे में मौजूद महिला के पति को भी पुलिस उसी वक्त अस्पताल ले जा चुकी थी। थोड़ी देर में अस्पताल से खबर आई, पति मर चुका है पर बेटा अब खतरे से बाहर है। अब चूंकि घर में सिर्फ तीन लोग थे, दो अस्पताल जा चुके और तीसरी ये महिला बिल्कुल ठीक ठाक, लिहाजा पुलिस को भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि मामला है क्या। सीसीटीवी कैमरे तब तक तस्वीरें दिखा चुके थे कि इस फ्लैट में चौथा कोई आया ही नहीं और फ्लैट से बाहर कोई गया ही नहीं। तो क्या इस महिला ने ही अपने पति और बेटे को मारा? यानी क्या इस महिला ने पति का कत्ल किया और बेटे के कत्ल की कोशिश?
1: Dr. Kiran is accused, is found dead in his residence, and the family members of Kiran have accused that his wife Priyanka has committed murder. Also, the son of Kiran and Priyanka, who happens to be of about 8 years, was also stabbed on his chest portion.
0: इन्हीं सवालों के साथ पुलिस महिला से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन वो शायद खुद ही पूरी तरह होश में नहीं थी। बहकी बहकी बातें करने लगी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने तय किया कि उसे

0: पूछताछ के लिए थाना ले जाने की बजाय पहले अस्पताल ले जाते हैं, फिर महिला को भी अस्पताल ले जाया गया।
1: While I tried to inquire with her, she was not in good frame of mind. She did not respond to our questions properly. That is why she was taken to hospital.
0: डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि इंसुलिन का ओवरडोज लेकर शायद वो भी मरने की तैयारी कर रही थी।
1: And Priyanka was taken to custody, Dr. Priyanka, and upon examination and as she was showing some medical signs of unhealthiness and she was not in her good senses, she was taken to local hospital and we got to know that she has injected herself with insulin at a very high dose to commit suicide, and she is now shifted to KIMS hospital. Once she is fit for discharge and able to cooperate with our investigation, we will take her to our custody and follow up the due procedure.
0: घर के अंदर पति और बेटे को लहूलुहान छोड़ बेड पर मोबाइल में उलझी ये जो महिला है, इसका नाम है डॉक्टर प्रियंका, एक बेहद पढ़ी लिखी और पेशे से आई स्पेशलिस्ट। घर के अंदर दूसरे कमरे में लहूलुहान औंधे मुंह जो शख्स पड़ा है, उसका नाम है डॉक्टर किरण। डॉक्टर किरण भी डॉक्टर है, ये एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, यानी इनका काम हर ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करना होता है। डॉक्टर किरण और डॉक्टर प्रियंका पति पत्नी है और दोनों की ये दूसरी शादी थी, 9 साल पहले हुई थी। इन दोनों का बेटा निहित है जो घायल फर्श पर पड़ा था। 15 जुलाई की सुबह डॉक्टर किरण अस्पताल नहीं पहुंचे तो उनके साथियों ने उन्हें फोन किया। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो डॉक्टर प्रियंका को फोन किया। डॉक्टर प्रियंका ने कभी कहा कि वो सो रहे तो कभी झूठ बोला कि वो घर से बाहर है। कुछ रिश्तेदारों के भी फोन आए, प्रियंका ने उनसे भी झूठ बोला, पर डॉक्टर किरण वक्त के बहुत पाबंद थे। अस्पताल में उनके साथियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी के बाद एक साथी उनके घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। पहले कमरे में ही फर्श पर पड़े डॉक्टर किरण को देखते ही उसकी चीखें निकल गई। वो बाहर आकर शोर मचाने लगता है, तभी पड़ोसी आते हैं और तब ये तस्वीर सामने आती है। दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ा लहूलुहान बेटा और बेड पर लेटी मोबाइल में उलझी माँ। अब चूंकि डॉक्टर किरण मर चुके हैं, बेटा फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं और खुद डॉक्टर प्रियंका अस्पताल में है, तो इसे कत्ल और दूसरे कत्ल की कोशिश के पीछे की पूरी वजह पूरी तरह से अभी भी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पति और पत्नी के बीच काफी वक्त से रिश्ते अच्छे नहीं थे और दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे।
1: Family members say that there has been a lot of family issues between the husband and wife, and in the past also she has threatened him of killing him, and that time she has beaten him, hit assault him. So all these things have happened that the family members say now, and when she is out of the hospital, we would be in a position to connect the dots and find out why this whole incident.
0: शुरुआती एग्जामिन के बाद डॉक्टरों ने बताया है कि डॉक्टर प्रियंका की हालत फिलहाल ठीक है और उन्हें कोई मानसिक बीमारी भी नहीं। एक बार अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद धारवाड़ पुलिस डॉक्टर प्रियंका से ये जानना चाहती है कि झगड़े की वजह से उसने अपने पति का कत्ल किया, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अपने बेटे की जान लेने की कोशिश क्यों की? सगाय राज, धारवाड़, हुबली, आज तक। केतन की मौत को एक महीना पूरा हो गया है। केतन के कत्ल की आरोपी उसकी मंगेतर सिया और उसका दोस्त चेतन फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। केतन के माता पिता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर इंसाफ की मांग की है। मशहूर वकील उज्जवल निगम केतन का केस लड़ने को भी तैयार हो गए। इस बीच केतन के पिता आज फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक अपील की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
2: सर क्या कहेंगे केतन के

0: उनको कल 1 महीना पूरा होने वाला है, क्या लगता है आपको अभी तक न्याय मिला है?
1: सर, मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। अभी 1 महीना होने आया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे कंप्लीट होती है तो देखते हैं आगे।
0: आपने खुद पीएम हो या फिर राष्ट्रपति हो, उनको लेटर लिखा था, क्या इसकी भावनाएं थी लेटर लिखने के लिए और उनका कुछ उस पर कुछ रिप्लाई?
1: सर, मेरी भावनाएं सिर्फ मेरा दुख उन तक पहुंचाने की थी कि जो इतना बड़ा दुख का पहाड़ मेरे ऊपर गिरा है, मेरे बेकसूर बच्चे की हत्या हुई है, तो उतना मैंने उनको भेज के और उनको जल्द से और कठोर से कठोर सजा हो इसकी मांग करके मैंने पत्र लिखा है उन पे।
2: सर, आपको लगता है क्या कि मतलब इसमें कितने लोगों पर अब जिन्होंने ये रिश्ता आपका जो जुड़ा है,
0: जो फैमिली
2: फैमिली है, तो उनके ऊपर भी आपने एलिगेशन लगाए हैं,
0: होनी चाहिए ऐसा लगता है आपको?
1: जी, मुझे लगता है नरेंद्र जगन्नाथ मित्तल और रेनू नरेंद्र मित्तल, इनकी भी पूछताछ होनी चाहिए और इनका भी उसमें कुछ ना कुछ हाथ हो सकता है।
0: उनको पता था ये सब सिया का बर्ताव हो या फिर कुछ?
1: जी, आज के हिसाब से तो मुझे लगता है उनको सब कुछ पता था,
0: लेकिन आपसे छिपाया है?
1: जी, हमसे पूरा छिपाया।
2: सर, सिया के अगर हम देखें तो कई वीडियो सामने आए, कई बार वो बियर पीते दिखाई भी दे रही है, क्या इसके बारे में कुछ आपको पहले पता था?
1: जी नहीं, मुझे अभी सब ये मीडिया से ही पता चल रहा है।
2: सिया के माता पिता है, उन्होंने भी कहा है कि अगर सिया इसमें दोषी है तो उसको भी सजा होनी चाहिए, क्या लगता है आपको कि वो जो बात कर रहे हैं तो कितना मतलब सच है इनकी बातों में? और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो कोर्ट के लिए उनको वकील भी प्रोड्यूस कर रहे हैं।
1: सर, अभी सच तो इनके न्याय व्यवस्था ने जो काम किया है, सच तो न्याय व्यवस्था ही बता पाएगी ना।
0: इस तरह से मतलब
1: मुझे तो लग ही रहा है कि उनका दुश्मन है।
3: तेलंगाना में एक नर्स पत्नी ने अपने पति को मारने का प्लान बनाया। पहली 2 कोशिश नाकाम रही, लेकिन पत्नी ने ठान रखा था कि वो अपने पति को मार कर ही रहेगी। फिर उसने तीसरी साजिश रची और आखिरकार इस तीसरी कोशिश में वो कामयाब हो गई। उसने अपने पति को मार ही डाला। ये 35 साल का प्रशांत है और ये संध्या, प्रशांत की पत्नी। प्रशांत गल्फ में नौकरी करता है। 27 जून को ही प्रशांत 2 साल बाद तेलंगाना के निजामाबाद में अपने घर पहुंचा था। उधर पिछले 2 सालों से जब प्रशांत विदेश में था, तब इसी बीच संध्या को अपने एक पड़ोसी अनिल से प्यार हो गया। अब जैसे ही प्रशांत घर लौटा, संध्या घबरा गई। उसे लगा कि यहाँ रहने के दौरान प्रशांत को उसके और अनिल के रिश्ते की फनक लग जाएगी, लिहाजा उसने अनिल के साथ मिलकर अपने पति प्रशांत को रास्ते से हटाने की एक बेहद आसान साजिश रची। इस साजिश का ख्याल संध्या और अनिल को सिया की ताजा ताजा कहानी से आया। साजिश कुछ यूं थी कि प्रशांत को खूब शराब पिलाई जाए और फिर नशे की हालत में इसी छत से उसे नीचे धक्का देकर मार दिया जाए। इस साजिश के तहत प्रशांत को मारने के लिए 29 जून की तारीख तय की गई। प्लान के तहत संध्या ने अपने प्रेमी अनिल को पैसे दिए शराब खरीदने के लिए। फिर अनिल और प्रशांत, जो अब तक अनिल और संध्या के रिश्ते से अनजान था, इसी घर की छत पर बैठकर रात को शराब पीते हैं। अनिल ने अपने एक और दोस्त को भी बुला रखा था। दोनों को जब लगा कि प्रशांत अब नशे में है, तब दोनों ने मिलकर प्रशांत को छत से नीचे धक्का देने की कोशिश की। इस दौरान प्रशांत और अनिल और उसके दोस्त के बीच हाथापाई भी हुई। इसी बीच संध्या ऑमलेट लेकर छत पर आ चुकी थी। तब तक प्रशांत को अनिल और उसके दोस्त ने पकड़कर नीचे फेंकने की तैयारी कर रखी थी। ये देखते ही संध्या अपने पति के करीब आती है। प्रशांत को तब अनिल और उसका दोस्त पकड़कर फेंकने के लिए उठा चुका था। उसी वक्त प्रशांत को आखिरी धक्का खुद संध्या देती है। अनिल के जिस दोस्त ने इस क्राइम में मदद की, उसका नाम वेंकट साई है। बाद में वेंकट साई ने खुद ये पूरी कहानी सुनाई।
4: నాకు ఒకటి లేస్తాడు

0: दौरे पर पीएम ने फूंका चुनावी बिगुल, बोले केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चा बंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले बोली पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का न्याय, शिक्षा भी हुई महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का किया दावा। यूसीसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दो टूक, बोले जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का होगा अधिकार, हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों। वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में निधन, 93 टेस्ट में जड़े थे 26 शतक, बीसीसीआई ने व्यक्त की संवेदना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिवसेना के दोनों गुटों के विलय की जल्द हो सकती है अधिसूचना, शिंदे गुट में शामिल सांसदों को मिल सकती है मान्यता। मुंबई में खुले दूध की बिक्री पर रोक से परेशान विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर संजय निरुपम एफडीए अधिकारियों से मिले, एफडीए से नियमों के पालन के लिए 2 महीने का समय देने की मांग की। महाराष्ट्र में एसआईआर समय सीमा 10 दिन बढ़ाई गई, वोटर लिस्ट ड्राफ्ट 18 अगस्त को होगा जारी। महाराष्ट्र में 20 जुलाई को अस्पतालों की ओपीडी रहेगी बंद, डोंबिवली में डॉक्टर्स पर हमले के विरोध में आईएमए का ऐलान। गुजरात के महसाणा में जैश ए मोहम्मद के 8 आतंकवादी गिरफ्तार, एटीएस रिमांड के बाद अदालत में सभी पेश। जैश मॉड्यूल का खुलासा, देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट के साजिश रचने का आरोप, एटीएस के अनुसार पिछले 6 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे सभी। गुजरात के पाटन में मदरसे में जैश आतंकवादियों का बॉम्ब बनाने ब्लास्ट परीक्षण करने की बात सामने आई, जांच में खुलासा आरोपियों ने कई बार सुनसान इलाकों में विस्फोट किया। मुंबई में खाली गैस टैंकर में वेल्डिंग के दौरान हंगामा, 1 की मौत, 3 मजदूर घायल। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर से बीड़ जा रही इलेक्ट्रिक बस में भीषण आग लगी, सभी यात्री सुरक्षित। अकोला में चलती ट्रेन में युवती से छेड़छाड़ करने वाले युवक को यात्रियों ने पीटा, चूड़ियां पहनाई और लिपस्टिक लगाई। इमरान हाशमी के फैंस के लिए सरप्राइज, पहले 3 जुलाई को फिल्म आवारापन से होगी रिलीज। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल, रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को आएगी फिल्म। मराठी सिनेमा में कदम रख रही एक्ट्रेस अदा शर्मा, सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर चर्चा में। कटरीना कैफ के 43वें बर्थडे पर विकी कौशल ने विशेष इंतजाम किए, प्यार भरे अंदाज में फोटो विश किया। पैनोरमा स्टूडियोज सिनेपोलिस इंडिया ने दिल्ली यूपी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की, धमाल 4 बॉबी के साथ सहयोग की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो। हमारे पूरे देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर बहस चल रही है, विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार को जनता पर एथेनॉल वाला पेट्रोल थोपने की जगह उसे विकल्प देना चाहिए। हमारी टीम ने मुंबई के पेट्रोल पंप्स का निरीक्षण किया, पेट्रोल पंप्स पर आने वाले लोगों से हमारी टीम ने पूछा कि क्या आपकी गाड़ी का माइलेज एथेनॉल डलवाने से कम हुआ है, क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल को डलवाने से आपके इंजन में कोई शिकायत आई है।
2: कई हफ्तों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सरकार को घेरते हुए पूछ रहा है कि आखिर सरकार जनता पर एथेनॉल क्यों थोप रही है। महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री और शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, पेट्रोल में जबरन एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और उनके इंजन खराब हो रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर चल रही ज्यादातर पुरानी गाड़ियां इस ईंधन के अनुकूल नहीं है। इसलिए सरकार को जनता पर एथेनॉल थोपने की जगह पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दोनों का विकल्प देना चाहिए, जिससे लोग अपनी मर्जी से फैसला ले सके।
3: हम फिलहाल मुंबई के बीकेसी इलाके में हैं, जो कि कॉरपोरेट एरिया है, यहाँ पर सभी बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े ऑफिसेस है, यहाँ पर बड़े तादाद में जो है पेट्रोल भरा जाता है। हम फिलहाल आपको दिखा दे, यहाँ पर नॉर्मल पेट्रोल डीजल तो भरा ही जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या साल भर से अब पेट्रोल में जो है वो इथेनॉल मिश्रित किया जाता है, और इथेनॉल के वजह से क्या सही मायने में उनकी गाड़ी के परफॉर्मेंस पर कोई बुरा असर हो रहा है, ये जानने की हम कोशिश करने वाले हैं। आदित्य ठाकरे ने जो सवाल उठाया है उसके बारे में भी उनका क्या कहना है वो हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आपने यहाँ पर पेट्रोल भरा, आपको पता है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भरा जाता है, उसकी वजह से गाड़ी के माइलेज पर कुछ फर्क पड़ रहा है?
4: नहीं अभी।
3: आपको ऐसा लगा कभी?
4: नहीं, कभी नहीं।
3: आपको पता है इथेनॉल मिक्स होता है पेट्रोल में?
4: नहीं।
3: आपको पता ही नहीं है? मैम आपको पता है? अच्छा, तो इनको पता ही नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंड होता है पेट्रोल में।
2: एथेनॉल का विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की ज्यादा खेती की जा रही है, जिससे देश में पानी की किल्लत के बीच जल संकट और गहरा सकता है।
3: आपका एक्सपीरियंस क्या है?
5: आपके माइलेज वगैरह में डिफरेंस आ रहा है? अभी तो कुछ इश्यू तो हुआ नहीं है, बट पॉसिबल हो सकता है।
3: कैसे पता चला आपको कि माइलेज पर असर हो रहा है और एथेनॉल की वजह से?
5: माइलेज पे असर क्यों?
3: पहले कितने देता था आप?
5: पहले अराउंड 45-46 आता था।
3: अच्छा,
5: अभी अराउंड 35-36 तक आता है।
3: नॉर्मल मोटरबाइक
5: है।
3: कितने महीनों से आपको ऐसा लग रहा है?
5: एटलीस्ट मैं 3-4 महीने से नोटिस किया, पहले तो नोटिस नहीं किया था, 3-4 महीने से नोटिस किया।
3: तो क्या हाल है गाड़ी के? परफॉर्मेंस ठीक ठाक है? माइलेज सही जा रही है?
6: अभी तो ठीक है, तब कुछ ऐसा मेरे ऑब्जर्व नहीं किया टू बी ऑनेस्ट।
3: पर आपको पता भी है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल फिलहाल जो है वो यूज हो रहा है सरकार की तरफ से?
6: हाँ, मतलब वो है, बट मैंने ऐसा कुछ डिफरेंस नोटिस नहीं किया।
3: क्या आपको भी लगता है कि आदित्य ठाकरे ने जो मांग की है वो सही है?
7: पॉलिटिशियंस का तो पता नहीं, बट मेरा चॉइस ये है कि सबको फ्रीडम मिलना चाहिए चॉइस करने का।
2: इसके साथ ही विपक्ष का आरोप है कि एथेनॉल की अधिकता वाली नीति से आम नागरिकों के बजाय बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंच रहा है।
8: चॉइस होनी चाहिए, बट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या चॉइस दे रहे हो आप लोग? पहली बात तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना, ठीक है? इफ यू नो दैट कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, एक या तो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, आई गेस मारुति सुजुकी विटारा, यू हर्ड अबाउट माइट बी, ठीक है? एक गाड़ी नहीं उनको मिली है, कंज्यूमर कोर्ट से मिली है, तो कहीं ना कहीं तो लूप होल है ना।
3: क्या मसला है?
8: मसला आई गेस उनकी गाड़ी न्यू कार थी, द पर्सन वॉज अबाउट द न्यू कार एंड उनकी गाड़ी में गड़बड़ी आई, उन्होंने नोट करा, उन्होंने प्रॉपर केस फाइनल करा कंज्यूमर कोर्ट में और वो जीते हैं, उनको नई गाड़ी मिली है।
3: तो नहीं, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का ही मसला
8: ऑब्वियसली, नई गाड़ी कैसे खराब होती है? और पहली बात तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो मंत्री जी हैं हमारे, मंत्री जी हैं रोड एंड कंस्ट्रक्शन के, ठीक है, उनको
3: नितिन गडकरी जी की बात
8: कौन है, ठीक है, तो उनको पेट्रोल या इथेनॉल वो नहीं बेचना चाहिए, आप अपनी मिनिस्ट्री संभालो।
2: हालांकि सरकार और इस नीति के समर्थकों का तर्क है कि एथेनॉल के इस्तेमाल से महंगे कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और गन्ना किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा।
9: इफ इट इज somebody's सजेस्टिंग दैट हम जल्दी से E25 जा रहे हैं, अरे वी हैव मेड इट क्लियर, वी आर डूइंग टेस्ट्स, दोस टेस्ट्स विल टेक टाइम, वंस द रिपोर्ट्स ऑफ दोस टेस्ट्स आर इन वी विल इवैल्यूएट दोस, देन वी विल टॉक टू द स्टेक होल्डर्स।
10: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ
11: पहली तो बात ऐसी है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता
10: जी,
11: अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात करता, इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की
10: जी,
11: अब हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, CNG, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायो फ्यूल इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो, और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गाँव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले, इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ।
10: पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
11: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
10: हाँ।
11: क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई
10: अभी तक? तो नहीं।
11: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है। ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते हैं मुझे?
10: अपना पर्सनल जान पहचान के?
11: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ। है कोई?
10: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं।
11: मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, दो चार दिन कोई पार्ट्स लगता है, कोई निकलता है।
2: सवाल है कि विपक्ष के विरोध और जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया के बाद क्या सरकार एथेनॉल पर यूटर्न लेगी या फिर सरकार जनता को अपना ईंधन चुनने का विकल्प देगी?
3: एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आपको गाड़ी में डलवाना है और वो डलवाने के बाद उसका असर किस तरह से है हमने लोगों से सुना है, तो हताश और निराश नजर आ रहे हैं और कोई उम्मीद नहीं है उनको सरकार से। हालांकि अब ये मांग उठी है, कई स्तर पर ये मांग उठी है, अब इसको लेकर सरकार कितने गंभीरता से विचार करती है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: मुंबई में इस बार बारिश के दौरान हुए हादसों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हादसे पर हंगामा है। 11 वर्ष के विहान की मौत केस की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बीएमसी के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसके बाद विपक्ष के साथ साथ मेयर ऋतु तावड़े ने भी जांच रिपोर्ट खारिज कर दी और बीजेपी पार्षद ने जांच रिपोर्ट को बीएमसी में फाड़ दिया। आज इसी पर हो रहे विवाद पर मेयर ऋतु तावड़े ने आज तक से बातचीत में अपना पक्ष रखा है।
12: पिछले दिनों मुंबई में हुई भारी बारिश और उसके बाद हुए हादसे, इस वजह से बीएमसी एक तरह से केंद्र बिंदु रही। इस वक्त मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, इन बारिश के हादसों में पेड़ मुंबई में गिरते हैं ये सामने आया, एक 11 साल के बच्चे की जान गई, उसमें बीएमसी ने एक रिपोर्ट सबमिट की। कल हम लोग बीएमसी जनरल बॉडी मीटिंग की फंक्शनिंग देख रहे थे, आपने री इन्वेस्टिगेशन की, री इंक्वायरी की मांग की है, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं है, कैसे देखते हैं इन चीजों का?
13: बिफोर मॉनसून ये पूरा मुंबई में जितने भी रोड बन रहे थे, रोड के बाजू के जो साइड ड्रेन थे, रोड के बाजू में जो पेड़ है उसके बारे में हमने ब्यौरा लिया था। मैं खुद जिस रोड के ऊपर इंसिडेंट हो गया उसी रोड के ऊपर मैंने भी विजिट किया था। विजिट के दौरान मैंने कहा था कि मुझे पेड़ जो है जो वीक दिखाई दे रहे, उसकी क्षमता कम दिखाई दे रही है। वहाँ के जो साइट इंजीनियर थे, वहाँ के जो उद्यान के अधीक्षक थे, उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं मैडम, पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से चालू है, हम उसके ऊपर पूरा ध्यान देके हैं, कॉन्ट्रैक्टर को भी हम उस तरीके से पूरे निर्देश हम दे रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि जैसे बारिश आ गई, चेंबूर का जो इंसिडेंट हुआ, जो स्कूल की बस, यूनिवर्सल स्कूल की बस वहां से गुजर रही थी और तभी वो पेड़ गिरा और वहां पे विहान श्रीवास्तव बच्चा जो उसकी जान चली गई, जैन हॉस्पिटल में एडमिट किया, फैमिली को, उनकी माता पिताजी को मैं मिलके आई। बहुत दुख होता है मुझे देखते हुए, एक महापौर ने, एक माँ के नाते मुझे बहुत दुख हो रहा है उस चीज का। जब इसका इन्वेस्टिगेशन हमने मांगा तो उसके ऊपर माळवदे कमिटी 2 जन की उसके ऊपर बिठा की, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ और परसों ही उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके उसका जो अहवाल है वो हमारे पास, मतलब मेरे पास तो आया ही नहीं, मुंबई अपना प्रशासन ने उसको जाहिर किया। जब उस अहवाल को मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हो गया कि बच्चे की जो जान की कीमत 7 लाख रुपए हो सकती है, वहां पे अहवाल में किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के जो रोड के अधिकारी है, उद्यान अधीक्षक के जो अधिकारी है, उनके ऊपर कुछ भी वहां पे कार्रवाई नहीं की, बल्कि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर 5 लाख और जो उसका कंसल्टेंट है उसके ऊपर 2 लाख, इतना जुर्माना उसको भरने के लिए कहा। ये बहुत ही असंवेदनशील ऐसे मुझे प्रशासन उस वक्त लगी, इसलिए जो अहवाल आया उसको मैंने नामंजूर किया। कल कॉरपोरेशन में भी मैंने कहा कि यह अहवाल हमको बिल्कुल, ये यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि आपने ये क्या दिया है, इसको हम लोग नामंजूर कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरह से आपने अधिकारी और उद्यान अधीक्षक को बचाने की भूमिका प्रशासन ने यहाँ पे की है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिर्फ 7 लाख रुपए का जुर्माना देके उसको छोड़ने का काम किया है। इस अहवाल का हमने कल कॉरपोरेशन में मैंने और हमारी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के जो नगर सेवक थे, हमने पूरा विरोध करके उस अहवाल को फाड़ के फेंक के प्रशासन को बोला कि इसका रिव्यू वापस से नया अहवाल आना चाहिए।
0: और अब खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसमें पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखाई दिया और न ही महाराष्ट्र के लातूर पैटर्न का। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब्स के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया? पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए थे।
2: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
14: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ, हाँ वो निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया, कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
2: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
14: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए, और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा कि इनकी हार्ड लग रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
2: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
15: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ, तो पेपर हार्ड हुआ तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे हो गई ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
16: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
2: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है।
17: नीट यूजी 2026 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, तकरीबन 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है, पंजाब हरियाणा से टॉपर्स हैं। मुंबई में इस वक्त हम लोग एलएन इंस्टीट्यूट में हैं, अंधेरी में हैं, और मुंबई में जो ऑल इंडिया रैंकिंग 34 जिनका है रोशमित गुप्ता जो है वो आप कह सकते हैं हमारे साथ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आप सारे बच्चे जो देख रहे हैं इन्होंने सबने नीट यूजी क्लियर किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, उसमें टेक्निकली तो सेकंड अटेम्प्ट हो गया, आप लोगों ने दो बार एग्जाम दिया, ये बार अभी कैसा लग रहा है?
18: अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब लाइक मैं और मेरे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड है कि व्हाट वेट्स फॉर अस इन द फ्यूचर, तो अभी बस जाना है टॉप कॉलेज में।
17: तो एकेडमिक्स तो एक तरफ, लेकिन इस बार जैसे दो बार पेपर देने पड़े, तो मेंटली आपको लगता है कि आप आगे लाइफ में आने वाले बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार हो गए, जो इतना आपने मेंटली ये अपने आप को मजबूत किया सब स्टूडेंट?
18: डेफिनेटली, लाइक दिस वाज अ डिफिकल्ट टाइम एंड इट हैज आल्सो हेल्प्ड अस ग्रो अ लॉट, तो ओवरऑल आई विल से कि बहुत मैच्योरिटी भी आई है इस एक मंथ में हमें।
2: महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
19: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा रहता है लातूर में, और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है। जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, 3 मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था, उसके बाद में री नीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले लिए।
2: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
12: आज जब नीट यूजी का रिजल्ट आया तो सब नजरें लातूर पे थी, जो कि पेपर लीक का केंद्र बिंदु बनकर सामने आया, क्योंकि इस बार बच्चों की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं आई है, इसलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या लातूर में जिस तरह से नीट और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारियां की जाती थी उसी तरह से अच्छे से लातूर परफॉर्म करने में कामयाब रहेगा या नहीं। लातूर में अनिकेत जाधव के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र के FDA यानी कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद महाराष्ट्र के छोटे दूध विक्रेता बहुत परेशान हैं। आज दूध व्यापारी मुंबई में FDA के दफ्तर पहुंचे और उन्हें रियायत देने की मांग की। FDA की कार्रवाई, लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद मशहूर पारसी डेयरी को अपनी दुकान तक बंद करनी पड़ी।
20: इस वक्त हम मुंबई के मरीन लाइन स्थित पारसी डेयरी पर हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये एक लेगेसी बिजनेस माना जाता है। 1916 से ये बिजनेस चल रहा है और आइकॉनिक एक माना जाता है। कई सारे लोग पारसी डेयरी के बहुत बड़े फैंस हैं और बहुत से आज जब लोगों के यहाँ पे दूध नहीं पहुँचा, जो चीज़ें वो डेली ऑर्डर करते हैं वो नहीं पहुँचा, तब उन्होंने जाँच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि दरअसल पारसी डेयरी के ऊपर जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक्शन लिया है। दरअसल इनकी जो काफ़ी सारी जो प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पर काफ़ी सारी खामियाँ पाई गई। दरअसल FDA ने पाया कि जैसे कि जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर रॉ मटेरियल की हैंडलिंग ठीक से नहीं हो रही, साथ ही इसके अलावा जैसे कि पूरे दीवार पे फंगस उग रहा है, साथ साथ वहीं पर सामान भी पड़ा है जो नीचे ज़मीन पर रॉ मटेरियल रखे हुए हैं, जो जिस तरीके से जो वर्कर्स हैं उन खाली पैर हैं उनको भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो FDA को मिली थी और इसके बाद इनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। ये अभी फ़िलहाल प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते जब तक इनकी जो त्रुटियां हैं वो ठीक नहीं की जाती, और यही वजह है कि इन्होंने लिखा है यहाँ कि जब तक इनका प्रोसीजर और टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है FSSAI के तहत वो पूरी नहीं होती वो तब तक सेल्स नहीं कर सकते, और इसीलिए वो अपने लॉयल कस्टमर्स को कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है उसे आप बेयर कर दीजिए। वहीं हमने देखा पिछले कुछ समय से जब से IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे जब से उन्होंने FDA का पदभार संभाला है तब से काफ़ी एक्शन महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हो रहा है।
0: एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की फिल्म की खबर, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थलापति विजय की अंतिम फिल्म जननेता की रिलीज डेट आ गई है। कई महीने से रिलीज पर संकट के बाद आखिर जननेता 23 जुलाई को 30 से अधिक देशों में एक साथ रिलीज होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण के अनुसार फिल्म दुनिया भर में 7,000 से 8,000 स्क्रीन्स पर एक साथ लगेगी, जिससे कई देशों में रह रहे विजय के फैंस भी ये फिल्म देख सके।
3: नाम भेजा है, कौन है जरा पता करके बताओ।
4: आग तो नहीं लगाना।
3: क्या
4: तूने बड़े बड़े क्रिमिनल्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन उन क्रिमिनल्स का किंग कौन है पता है?
5: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय अब रियल लाइफ में भी एक जननेता बन चुके हैं।
4: उसे टच मत करना, तुझे काट डालेगा।
5: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचने के बाद जननेता विजय की पहली फिल्म है।
6: मैं तो एक साधारण सा इंसान,
5: जो 23 जुलाई को रिलीज हो रही है।
6: लेकिन मैं जो भी करता हूँ लोग उसे सुपर ही बोलते हैं।
5: ये फिल्म सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म भी कही जा रही है, इसलिए इसे दुनिया भर में रिलीज करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
7: किसने भेजा है?
5: फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के नारायणा ने बताया कि पूरी टीम इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज करके इतिहास रचने जा रही है, जिसका मकसद दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बैठे थलापति के फैंस तक फिल्म को पहुंचाना है। दावा किया जा रहा है कि विजय की फिल्म जननेता को करीब 8,000 स्क्रीन पर रिलीज करने का मेगा प्लान है।
8: थलापति विजय की आखिरी फिल्म जननेता, जिसका तमिल टाइटल जननयागन है, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह फिल्म जो 23 जुलाई को रिलीज होगी, इसके प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण, इन्होंने कहा है कि यह फिल्म दुनिया भर के लगभग 30 देशों में रिलीज होगी और साथ ही में लगभग 7,000 से 8,000 स्क्रीन्स में दिखाया जाएगा। उनका कहना है कि कोशिश यह है कि जननेता विजय के हर फैंस तक ये फिल्म पहुंच जाए। ये फिल्म जो 23 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है, वो विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है और इसी वजह से भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ग्लोबल रिलीज में से एक कहा जा रहा है।
4: लोगों की भलाई के लिए मेरे काम में टांग मत अड़ाना।
5: ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म को लेकर एडवांस बुकिंग के भी सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। विजय के फैंस कह रहे हैं कि वैल्यू सिस्टम, प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट और डेडिकेशन थलापति की सबसे बड़ी ताकत है। आज वो एक्टर नहीं मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनकी सादगी और लोगों से जुड़ाव में कोई बदलाव नहीं आया है। थलापति विजय ऐलान कर चुके हैं कि वो अब फिल्मों में नजर नहीं आएंगे, इसलिए विजय के करोड़ों फैंस के लिए ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जश्न होगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी।
9: वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता।
5: विपक्ष को डर था कि फिल्म से चुनाव विजय की पार्टी के पक्ष में जा सकता है, लेकिन रिलीज पर रोक लगने के बावजूद थलापति विजय ने अपने सियासी विरोधियों को मात देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सबको हैरान कर दिया था। देखना दिलचस्प होगा कि क्या थलापति की आखिरी फिल्म कमाई के मामले में भी नए कीर्तिमान बना पाएगी।
8: यह फिल्म पहले इस साल के शुरुआत में रिलीज होने वाली थी, बट VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के चलते इसकी में काफी देर हो गई, बट अब जननेता 23 जुलाई को दुनिया भर में के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। भावना अग्रवाल,
2: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
10: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community.

मूल केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह, सुप्रिया सुले बोली पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा हुई महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, बोले 10 साल पहले हुंडागर्दी गैंगवार थी यहां की पहचान, न नीति थी न नियत। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक, जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों।

पंजाब दौरे पर पीएम मोदी हरे रंग की पगड़ी पहनकर पहुंचे। पंजाब बीजेपी प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने शॉल महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर देकर किया सम्मानित। जालंधर में पीएम मोदी ने 5,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जालंधर ज्ञान रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। जालंधर कैंट स्टेशन से पीएम ने नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। करटूली पंजाब अंबाला जालंधर वाराणसी के बीच ट्रेन रवाना। जालंधर में पीएम ने आप पर साधा निशाना। पंजाब में नशे गैंगवार का राज विज्ञापनों से छिपा रहे हैं सच। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पीएम ने आप पर बोला हमला का। भारत सरकार की योजनाओं पर अपना स्टिकर चिपका रहे हैं। पंजाब में बीजेपी की ही सरकार आएगी।

पीएम ने युवाओं को किया प्रेरित, बोले खेलों में आगे बढ़ें, सरकार आपकी मदद करेगी। बीजेपी सांसद सतनाम सिंह संधू पंजाब में विकास की नई शुरुआत का दावा करके बोले, 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पंजाब में नया अध्याय लिखेंगे। चंडीगढ़ में पीजीआईएमआर की भी 1,250 करोड़ की हेल्थ केयर से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का पीएम ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने हरियाणा को दिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा, कहा तेल संकट के बावजूद रफ्तार में है भारत के विकास की गाड़ी। केजरीवाल का मोदी पर हमला, कहा श्री राम मंदिर का चंदा चोरी करने वालों के सबसे बड़े नेता पंजाब में है, ईमानदारी का भाषण दे रहे हैं। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर उठाए सवाल, बोले युवाओं को भविष्य और शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूसीसी पर बड़ा ऐलान, मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करेगी सरकार। यूसीसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान, कहा अब एक शादी करने वाले को ही मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग कानून क्यों। गाजियाबाद की रैली में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, कहा 10 वर्ष पहले गुंडागर्दी गैंगवार थी, यहां की पहचान न नीति थी न नियत थी। योगी ने बिजनौर को दी 1,003 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात, 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण, कांग्रेस पर बरसे, तुष्टिकरण नहीं विकास चाहिए। बिजनौर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले 2017 से पहले के मुख्यमंत्री यहां आने से डरते थे, आज विकास की पहचान बन गया है जिला। योगी का अखिलेश पर हमला, बोले बिजनौर को अपशकुन बताने वाले खुद अपशकुनु थे, हमें जिन्ना नहीं गन्ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन का योगी पर हमला, बोले धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं योगी। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू और मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस रिमांड को स्वीकृति अदालत ने इजाजत दी, सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट, सोमवार को एजेंसी ने तफ्तीश के लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांगा। लखनऊ में चढ़ावा चोरी पर समाजवादी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जमकर नारेबाजी की, कई को पुलिस ने हिरासत में लिया। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में 70 वर्ष पुरानी मस्जिद हटेगी, 30 दिन का समय दिया गया। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में एक्शन, बीकेटीसी के पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को एसआईटी ने गिरफ्तार किया, 30 जून को ही रिटायर हुए थे चौहान। कांवड़ मेला को लेकर सुरक्षित सुगम बनाने को लेकर हरिद्वार में इंटरस्टेट बैठक, उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा राजस्थान और यूपी के अधिकारियों के अलावा आईटीबीपी एसएसबी एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की पार्टी को मिल सकती है मान्यता, सर्वदलीय बैठक में शामिल एनसीपीसीआई। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, सभी को जीत के प्रमाण पत्र मिले। मुंबई में खुले दूध की बिक्री पर रोक से परेशान विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर संजय निरुपम एफडीए अधिकारियों से मिले, एफडीए से नियमों के पालन के लिए 2 महीने का समय देने की मांग। महाराष्ट्र में 20 जुलाई को अस्पतालों की ओपीडी रहेगी बंद, डोंबिवली में डॉक्टर्स पर हमले के विरोध में आईएमए का ऐलान। शिवसेना के दोनों गुटों के विलय की जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना, शिंदे गुट में शामिल सांसदों को मिल सकती है मान्यता, सूत्रों की खबर। महाराष्ट्र में एसआईआर समय सीमा 10 दिन बढ़ाई गई, 18 अगस्त को जारी होगा ड्राफ्ट। गुजरात के महसाणा में जैश के 8 आतंकवादी गिरफ्तार, सभी की रिमांड। जैश मॉड्यूल का खुलासा, देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट की साजिश, 6 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। गुजरात के पाटन में मदरसे में जैश आतंकवादियों का बॉम्ब बनाने ब्लास्ट परीक्षण करने की बात सामने आई, जांच में खुलासा आरोपियों ने सुनसान जगह पर कई बार विस्फोट की कोशिश की। स्पेस सेक्टर में भारत की एक और ऐतिहासिक छलांग की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 आज भरेगा उड़ान। मिशन आगमन के तहत लॉन्च होगा स्काई रूट का विक्रम 1 रॉकेट, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग। कई भारतीय विदेशी टेक्नोलॉजी पैलोड भी जाएंगे अंतरिक्ष, विक्रम एस के बाद स्काई रूट की सबसे बड़ी उड़ान। विक्रम 1 की लॉन्चिंग पर पीएम का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्ट कार्ड जाएगा अंतरिक्ष। 18 कैरेट सोने से बनी सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई अब्दुल कलाम की सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति भी भेजी जाएगी। वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गोबर्स सोबर्स का निधन, 93 टेस्ट में जड़े 26 शतक, बीसीसीआई ने संवेदना व्यक्त की, लिखा एक शानदार पारी का समापन।
महाराष्ट्र के अकोला में 7 सितंबर को निकलेगी भव्य राजेश्वर कांवड़ यात्रा। 50 वर्षों से आ रही है परंपरा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल के चरणों में भक्त ने अर्पित की सोने की पादुकाएं। स्वर्ण पादुकाओं की अनुमानित कीमत लगभग 57 लाख रुपए। पूरी रथ यात्रा के दूसरे दिन गुट्टीचा मंदिर पहुंचे तीनों रथ। अब 9 दिन मौसी के घर रहेंगे तीनों देवता। 9 लाख श्रद्धालु शामिल। बद्रीनाथ धाम में दर्शन को आ रहे भक्तों ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मानसून का दौर शुरू होने के बावजूद बद्रीनाथ यात्रा की रफ्तार बरकरार। पल पल बदल रहे मौसम के बीच भी आस्था भारी, बड़ी संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु। अरुणाचल में बाढ़ भूस्खलन से स्थिति गंभीर। 7 की मौत, 1,13,000 से अधिक लोग प्रभावित। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद पानी भरा। शहर के कई इलाकों में पानी पानी, जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। देहरादून में बारिश से मौसम सुहाना, दिन में ही छा गया अंधेरा। टिहरी गढ़वाल में पुल के अभाव में सौंग नदी पार कर रहे स्कूल जा रहे बच्चे, जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में तेज बारिश से दिन में हुआ अंधेरा। उत्तर बंगाल में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दार्जिलिंग कालिंपोंग में भूस्खलन का चेतावनी जारी की। कोलकाता समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कल भारी बारिश का अनुमान। गोवा में भारी बारिश से जलस्तर बढ़ा, एहतियातन अलर्ट जारी किया गया। नेपाल में लगातार बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ गया जलस्तर, प्रशासन अलर्ट। गोरखपुर में शहर के कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में गुटलीबाग इलाके में रिहायशी घरों में भयंकर आग, कई मकान जलकर हुए खाक। अमृतसर में होटल में लगी भीषण आग, जनरेटर रूम में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर से बीड़ जा रहे इलेक्ट्रिक बस में आग लगी, पूरी बस जली, यात्री सुरक्षित। गुजरात के राजकोट में सोफा फैक्ट्री में भीषण आग, एक के दम घुटने से मौत। गुरुग्राम में कल पानी व्यापारी के साथ विवाद में माफिया गैंग पर शिकंजा, कौशल चौधरी के 8 गुर्गे गिरफ्तार, 5 स्कॉर्पियो जब्त। टिहरी गढ़वाल में नशे में धुत पिकअप चालक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, कई स्कूटी और कारें क्षतिग्रस्त। राजस्थान के पाली में बेकाबू टैंकर ढाबे में घुसा, कर्मचारी की मौत, एक घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त। वाराणसी के चौबेपुर थाने में महिला दारोगा ने शिकायत लेकर पहुंची महिला को कई थप्पड़ जड़े, वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। यूपी के बदायूं में अस्पताल से 3 मोबाइल चोरी, वार्ड में घुसे चोर सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिक्षक ने 2 बच्चों के संग जान दे दी, व्हाट्सएप स्टेटस के बाद नदी से कार और तीनों के शव बरामद। अलवर में बाघ रेस्क्यू टीम पर ग्रामीणों का हमला, सरिस्का की गाड़ियों में तोड़फोड़ करती दिखी महिलाएं। यूपी के मऊ में भीषण गर्मी से बचने के लिए युवक का अनोखा जुगाड़, एटीएम रूम के अंदर सोते हुए वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश ढेर, इटावा एसओजी के 2 सिपाही घायल। कानपुर देहात में विवाद सुलझाने पहुंची टीम पर पथराव, सिपाही होमगार्ड घायल। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार ई रिक्शा की टक्कर में 1 मौत, महिला घायल। नोएडा की सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी में गार्ड से मारपीट, बिना अनुमति के स्कूटी चलाने पर विवाद। मुजफ्फरनगर मदरसा धर्मांतरण मामले में जुनैद गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद किया। बहराइच में मगरमच्छ ने 12 वर्ष के बच्चे को नदी में खींचा, चाचा के सामने भतीजे की मौत। झारखंड के गढ़वा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 6 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप, गैस रिसाव से 5 स्कूली बच्चे बेहोश। इमरान हाशमी के फैंस के लिए सरप्राइज, आवारापन 2 से पहले 3 जुलाई को फिल्म आवारापन फिर से होगी रिलीज। हिमांशु गोली, सोनाली सेगर, रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को आएगी फिल्म। मराठी सिनेमा में कदम रख रही हैं अदा शर्मा, सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर हैं चर्चा में। कटरीना कैफ के 43वें बर्थडे पर विकी कौशल ने किया विशेष इंतजाम, प्यार भरे अंदाज में कटरीना को बर्थडे विश किया, फोटो वायरल। पेनोरमा स्टूडियोज सिनेपोलिस इंडिया ने दिल्ली यूपी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की, धमाल 4 के साथ हुई शुरुआत। जुलाई अगस्त के मिनी फेस्टिव सीजन से पहले गेहूं के दाम 8% बढ़े, खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ने की आशंका। रेड सी स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत की गिग इंटरनेट वर्कफोर्स 2030 तक 3 गुना होने का अनुमान, मौजूदा 70 लाख से बढ़कर 1-2 करोड़ तक पहुंच सकती है वर्कर्स की संख्या। सरकार ने 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ाकर प्रॉपर्टी बेचने वालों को राहत दी, इससे जमीन जायदाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कमी का मिलेगा फायदा। CBDT ने इनकम टैक्स पोर्टल, विदेशी संपत्तियों, विदेशी आय की जानकारी देखने की सुविधा शुरू की, टैक्स पेयर्स को अपना पूरा डेटा एक जगह देखने को मिलेगा। RBI ने साफ किया, बैंक वसूली में जब्त की गई प्रॉपर्टी को डिफॉल्टर वापस नहीं खरीद सकेंगे, RBI के निर्णय से बैंक्स की वसूली आसान होने का अनुमान। मैक्सिको में भूकंप के तेज झटके
7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप पुएर्टो मादेरो शहर के पास केंद्र। भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट को अमेरिका ने बनाया निशाना। हमले में पोर्ट मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल ध्वस्त। पिछले एक सप्ताह में टावर पर तीसरा हमला। IRGC ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। हमले में हिमार्स रॉकेट सिस्टम मिसाइलों को नष्ट करने के बाद एक अमेरिकी सैनिक मारा गया। चीन पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने ईरान की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। दोनों ने युद्ध विराम करने के बाद बातचीत शुरू करने की अपील की। जर्मन चांसलर मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जर्मन फ्रांसीसी रक्षा सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। रूसी सेना ने ओडिशा पर हमला किया, 2 की मौत, 10 लोग घायल। यूक्रेन ने रूस के समुद्री इलाकों पर और जमीन पर हमला किया। रूस ने कभी भी अमेरिकी चुनाव में दखल देने के आरोप को ठहराया गलत। रूसी सरकार ने कहा रूस ने कभी अमेरिकी चुनाव में नहीं किया हस्तक्षेप। चीन ने अमेरिका से नए वीजा नियम वापस लेने की मांग की, नहीं मानने पर जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी। अमेरिकी कदम को बताया भेदभावपूर्ण। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका का निर्णय किसी के में नहीं, चीन इसे रद्द करता है। एंडी बर्नहम ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए। अगले सप्ताह संभालेंगे पीएम का पद। सोमवार को किंग चार्ल्स एंडी बर्नहम को नई सरकार बनाने का देंगे न्योता।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि धर्म के आधार पर बनने वाले पाकिस्तान के लोग अब आजादी क्यों मांग रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आज पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की मांग करने वाले वहां के अल्पसंख्यक नहीं बल्कि मुसलमान हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो या फिर POJK। एक तरफ पाकिस्तान जहां चार हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ वहां की जनता आटे के लिए तरस रही है। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ईरान में पुल, पावर ग्रिड, रेल की पटरी को निशाना क्यों बना रहे हैं। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने यूक्रेन के पावर ग्रिड और नागरिक ढांचों पर रूसी हमलों को अंतरराष्ट्रीय नियमों का घोर उल्लंघन बताया था। यहां तक कि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, जो अमेरिका दूसरों को ज्ञान दे रहा था। अब वही पिछले 5 दिनों से ईरान के पावर ग्रिड, पुल और ऊर्जा ढांचों पर लगातार बम बरसा रहा है। जो नियम दुनिया के लिए है, क्या वो अमेरिका पर लागू नहीं होता। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारत में ग्रीन इकोनॉमी को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। कार तक के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन खुद बना चुका है। जर्मनी की 742 करोड़ की ट्रेन के मुकाबले भारत ने केवल 112 करोड़ रुपए में यह स्वदेशी ट्रेन तैयार कर ली है और आज पीएम मोदी ने इसे हरी झंडी दिखा दी। आखिर में आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट के बारे में बताएंगे, जिसने खेल का पूरा समीकरण बदल दिया है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या ज्यादा कमाई और भारत पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा मैच कराने के लिए ICC ने वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदला। लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक तारीख से करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गवाही किताबें नहीं तारीखें देती। ये तारीख 23 मार्च 1940, जब लाहौर के मिंटो पार्क में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया था। इसी अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया। पहली बार टू नेशन थ्योरी को लोगों के सामने रखा गया, जिसका उद्देश्य था भारत की भूमि को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करना, और साल 1947 में ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तारीख को हम आज क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जिस पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ और जिस विभाजन को तब ये कहकर पेश किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग देश ही स्थायी समाधान है, आज लगभग 8 दशक बाद उसी पाकिस्तान में विभाजन की मांगे उठ रही हैं। और ये विभाजन मांगने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है, इनमें बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, इनमें खैबर पख्तूनवा के मुसलमान हैं और इनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब उस संकट में जाता हुआ दिख रहा है जिसकी भविष्यवाणी कुछ सालों पहले हो गई थी। यह भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका का एक ग्लोबल थिंक टैंक था, जिसका नाम है कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 4 हिस्सों में बंट सकता है। इनमें पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है, वहां पख्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान का ये प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए या पश्तूनिस्तान नाम का एक अलग देश बन जाए। पिछले एक साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनिस्तान देश बनाने की मांग को लेकर कई हमले किए और यहां पाकिस्तान की सेना अब भी बहुत बड़े संघर्ष का सामना कर रही है। दूसरा है बलूचिस्तान प्रांत, जहां कई दशकों से आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है और बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है जिसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। तीसरा है सिंध प्रांत, जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं और सिंध का को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग होती रहती है, इसीलिए पाकिस्तान का ये प्रांत भी विभाजित हो सकता है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि सिंध भी कल को भारत में शामिल हो जाए। चौथा है पंजाब प्रांत, और ऐसा संभव है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सीमित रह जाए। और ऐसा क्यों हो सकता है, उसके लिए आज आपको ये आंकड़े देखने होंगे। आज पाकिस्तान की आबादी 53% आबादी अकेले इसी पंजाब प्रांत में रहती है, जबकि 23% आबादी सिंध प्रांत में रहती है, 17% आबादी खैबर पख्तूनवा में रहती है और केवल 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। सोचिए, आधा पाकिस्तान केवल पंजाब में रह रहा है और यही कारण है कि पंजाब प्रांत का हमेशा से खास ख्याल रखा जाता है और जो बाकी प्रांत हैं उनकी अनदेखी होती है। इन प्रांतों में आजादी के लिए विद्रोह किया जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा विद्रोह बलूचिस्तान में होता है, जिसकी पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में 44% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में लगभग आधा रह जाएगा। अब भी बलोच नेता मीर यार बलोच का दावा है कि उनके प्रांत के 85% इलाकों पर पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो गया है और उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है तो क्षेत्रफल के मामले में यह जर्मनी से भी बड़ा देश होगा। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की 40% गैस, कोयले और बिजली का उत्पादन अकेले इसी प्रांत में होता है। इसी बलूचिस्तान में चीन का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 साल की लीज पर दे दिया है। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बलूचिस्तान की 909 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व स्थापित करने और दुर्लभ खनिजों को निकालने की जो डील की है उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व और दुर्लभ खनिज बलूचिस्तान में ही हो सकते हैं। ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकला तो ये इस सदी का सबसे बड़ा विभाजन माना जाएगा, ऐसा विभाजन जिसमें शायद बलूचिस्तान को आजादी के बाद भी मान्यता न मिले लेकिन पाकिस्तान से वो अलग हो जाए। बलूचिस्तान के बाद दूसरा संकट पीओजेके और गिलगित बल्टिस्तान में है। पीओजेके में अब भी सस्ती बिजली, सस्ते अनाज और नौकरियों को लेकर जन विद्रोह भड़का हुआ है। वहां के मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए बस। स्थिति यह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 8,000 अतिरिक्त जवानों को पीओजेके में तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ गिलगित बल्टिस्तान की विधानसभा ने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया है जिसमें पाकिस्तान की सरकार से यह मांग हुई है कि गिलगित बल्टिस्तान को एक प्रांत का दर्जा दिया जाए और यह सब कुछ घबराहट में हो रहा है। कारण इतना ही है कि पाकिस्तान के अंदर पड़ती दरारें उसे तोड़ रही है और इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि जो पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर बना, अब उसी इस्लाम धर्म के लोग इसी पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में उसे आजादी मांग रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि 23 मार्च 1940 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे को स्थायी समस्या का समाधान बताया, वो सही नहीं था और पाकिस्तान के ये हालात इस पर मुहर लगाते हैं।
1: ये सारे लोग दहशत गर्द नहीं है, ये इस धरती के वारस है।
2: कश्मीर के पारस है, ये वतन, ये वतन, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत।
0: पाकिस्तान में आज आजादी के साथ आटे का सवाल भी गूंजा। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के पंजाब राज्य के खाद्य विभाग ने बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं की आपूर्ति और ट्रांसपोर्ट परमिट को ब्लॉक कर दिया था और इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि अब पाकिस्तान में लगभग 45 बड़ी आटा मिलें पूरी तरह बंद होने के कगार पर आ गई हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गेहूं की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और कोटली जैसे इलाकों में आटे की भारी किल्लत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार नहीं होगा। पाकिस्तान में यह परंपरा बन गई है कि वहां हर 6 महीने में आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और गेहूं का ऐसा संकट भी तब पैदा होता है जब पाकिस्तान में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होती है। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान में गेहूं का इतना उत्पादन होता है तो पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों को तरसना क्यों पड़ता है। इसके पीछे एक विचित्र सा कारण है। विचित्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस आटे से अक्सर भ्रष्टाचार की रोटियां सेकी जाती हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी जिसके पास वहां आटे की मिल न हो। नवाज शरीफ, अभी जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री, वहां आटे की मिलों पर इन सब ने कब्जा किया हुआ है। और आरोप लगता है कि यही राजनीतिक परिवार आटे का एक संकट पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल संकट, ताकि इस संकट में वो मुनाफा कमा सकें। और दूसरा, वहां सरकार आटे की जरूरी खरीद कभी पूरी ही नहीं कर पाती, जिसके कारण बड़े बड़े दुकानदार और प्रभावशाली लोग आटे की जमाखोरी कर लेते हैं। और जब आटे की किल्लत पैदा होती है तो यही आटा काला बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। और कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर आटे का संकट पैदा करती है। अंग्रेजी में इस सिद्धांत को मैन्युफैक्चर्ड स्केसिटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी को जानबूझकर बनाए रखना या उसका प्रबंधन इस तरह करना कि लोग लगातार उसी समस्या में उलझे रहें। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि रोजमर्रा की जरूरतों में लोग इस कदर उलझ जाएं कि बाकी बड़े मुद्दों पर सवाल न पूछें। ये तरकीब कई देशों में अपनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान इसमें अव्वल रहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के लोग फिर से पूछ रहे हैं, आटा कहां मिलेगा।
3: आटा डीलर्स के मुताबिक होलसेल मार्केट में 20 किलोग्राम फाइन आटे का थैला 3,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
4: इसमें पूरे मुल्क में जो रोटी 14 रुपए में मिलती थी वो 20 से 25 रुपए में मिल रही है, और जो नान थे वो 30 से 35 रुपए में लोगों को मिल रहे हैं।
5: अटक में मिलता है 1100 से 1200 रुपए, और दूसरी तरफ क्यों दरिया सिंध क्रॉस करो 1500 हो जाता है।
6: कराची में 20 किलो आटा तकरीबन 1800 रुपए में मिलता था, इस वक्त वो तकरीबन 2900 रुपए में मिल रहा है।
0: अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना क्यों बना रहा है। साल 2022 याद करिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने यूक्रेन के पावर ग्रिड, बांधों, पुलों और ऊर्जा ढांचों पर हमले करने के लिए रूस की सेना की आलोचना की थी। अमेरिका ने शब्दशः कहा था, रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। इसी युद्ध के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन अब 2022 से 4 साल आगे 2026 में आइए, जो अमेरिका यूक्रेन के नागरिक ढांचों पर रूसी हमले को अपराध बता रहा था, वही अमेरिका पिछले 5 दिनों से लगातार ईरान के पावर ग्रिड्स, पुल और ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। जिन कानूनों का पालन अमेरिका पूरी दुनिया से कराना चाहता है, उन्हीं कानून का पालन वो खुद क्यों नहीं करता। आरोप है कि कल रात अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज़गन प्रांत में 5 पुलों पर हमले किए जिनमें कुल 8 लोग मारे गए। इस युद्ध में इतनी मौतें अप्रैल महीने के बाद हुई हैं, और इसके बाद इस युद्ध ने और भी खतरनाक रूप ले लिया है।

तो अगर अमेरिका का लक्ष्य ईरानी सेना और उसकी मिसाइल क्षमता को कमजोर करना है तो फिर पुल, रेलवे, पानी की फैक्ट्री, पावर ग्रिड और दूसरी नागरिक सुविधाओं को निशाना क्यों बनाया रहा है? इसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा तर्क यह है कि इन जगहों का इस्तेमाल डुअल यूज होता है। डुअल यूज यानी कि जो पुल, सड़कें, पावर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी ईरान में है, वहां उसकी सेना छिपी हुई है। और इसीलिए छिपी हुई है क्योंकि किसी भी युद्ध में नागरिक ढांचों को बहुत आसानी से निशाना नहीं बनाया जाता। इसी कारण ये नागरिक ढांचे सुरक्षित माने जाते हैं और कई बार वहां युद्ध लड़ने वाली सेनाएं शरण ले लेती हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की सेना भी यही कर रही है और वो इसके पीछे दक्षिणी ईरान का उदाहरण देता है। दक्षिणी ईरान का मतलब उस इलाके से है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं इलाकों से ईरान हॉर्मूज को नियंत्रित करता है और इस परेशानी बढ़ेगी तो वहां के लोग रोजमर्रा के संकट में सरकार के खिलाफ बागी हो जाएंगे। जनता में असंतोष बढ़ेगा, जनता युद्ध को रोककर बातचीत करने के लिए ईरान की सरकार पर दबाव पर हमला होने से ईरान में आर्थिक परेशानी बढ़ेगी तो वहां के लोग रोजमर्रा के संकट में सरकार के खिलाफ बागी हो जाएंगे। जनता में असंतोष बढ़ेगा, जनता युद्ध को रोककर बातचीत करने के लिए ईरान की सरकार पर दबाव बनाएगी। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, ऐसा होगा या नहीं कोई नहीं कह सकता। इस पूरी खबर में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, अगर नागरिक ढांचों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है तो अमेरिका इन्हें क्यों नहीं मानता? दूसरा, अगर अमेरिका के मुताबिक ईरान की सेना इन नागरिक ढांचों को अपनी ढाल बना रही है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होना चाहिए? यह सवाल पिछले साल इसराइल ने भी पूछा था जब गाजा की मस्जिदों और अस्पतालों में हमास के आतंकी छिपे थे और इसराइल ने जब उन पर कार्रवाई की थी तो उस पर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। गाजा ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर मिसाइलें दागी तब वहां भी आतंकियों ने मस्जिद बनाई हुई थी और मस्जिद को अपनी ढाल बनाया था। इससे यही सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किया जाए? हालांकि यहां हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नागरिक ढांचों को ईरान की सेना द्वारा ढाल बनाने के आरोप अमेरिका के हैं और ईरान ने इन्हें गलत और बेबुनियाद बताया है। ईरान यही कह रहा है कि अमेरिका अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठे दावे गढ़ रहा है। इस युद्ध के बीच दो और ऐसी खबरें आई जो अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चिंतित करेंगी। इनमें पहली खबर यह है कि दुनिया के बड़े देश अब अमेरिका से ज्यादा चीन पर भरोसा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट अमेरिका के ही मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने प्रकाशित की है और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को वजह बताया है। इसके मुताबिक दुनिया के 20 प्रमुख देश 2023 में चीन के मुकाबले अमेरिका के प्रति ज्यादा सकारात्मक रुख रखते थे। 2023 में अमेरिका को 58% और चीन को 32% लोगों ने सकारात्मक माना था, लेकिन अब यह कहानी पूरी तरह पलट गई है।

अब इन 20 देशों में 36% लोग अमेरिका के लिए सकारात्मक राय रखते हैं, जबकि चीन के लिए यही आंकड़ा 46% है। हालांकि इसमें भी एक कैच है, दुनिया के ज्यादा देशों में चीन के मुकाबले अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है, लेकिन भारत अब भी चीन के मुकाबले अमेरिका को ही विश्वसनीय मानता है। भारत में 45% लोगों ने अमेरिका के प्रति विश्वास जताया, जबकि चीन के समर्थन में सिर्फ 23% लोग ही नजर आए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो भारत में 39% लोग उनका समर्थन करते हैं, जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग में विश्वास दिखाने वाले 25% लोग हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आजकल पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 83% लोग शी जिनपिंग को विश्वसनीय मानते हैं, ट्रंप का समर्थन केवल 12% लोग वहां पर करते हैं। इसे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नापसंद करने वाले ज्यादा हैं, और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान युद्ध के बाद दुनिया की मुस्लिम आबादी में ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटी है। अब ये तो हुई पहली खबर जो ट्रंप को थोड़ा परेशान कर सकती है। दूसरी खबर ऐसी है कि आपके लिए भी शायद उस पर यकीन करना मुश्किल हो। ट्रंप के लंबे समय से टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर रहे गैब्रियल पेरेज विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि उन्होंने ट्रंप के कई भाषणों की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन प्रिडिक्शन मार्केट पर जुआ खेला और इससे $1,00,000 से ज्यादा की कमाई की। यानी राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन वो जो टेलीप्रॉम्प्टर मशीन में देखकर जो भाषण पढ़ते हैं वो मशीन इनके द्वारा चलाई जाती थी, और इसके कारण गैब्रियल पेरेज को पता होता था कि ट्रंप आज क्या कहने वाले हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने ऑनलाइन प्रिडिक्शन मार्केट में जुआ खेला और यह दांव लगाया कि आज ट्रंप क्या कहेंगे, और इस जुए के सहारे उन्होंने भारतीय रुपयों में लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लिए। इन आरोपों के बाद गैब्रियल पेरेज को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन यहां यह भी सोचिए अमेरिका में यह हो क्या रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी बताते हैं। कहानी इसलिए क्योंकि अगर हमने आपको यह बताया कि भारत को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है, तो शायद आप ये नहीं जान पाएंगे कि भारत ने इससे असल में हासिल क्या किया। इसे समझने के लिए आपको 5 दशक पीछे चलना होगा, जब संजय गांधी ने सपना देखा था कि भारत के आम लोगों के लिए एक सस्ती पीपल्स कार बनाई जाए। इसके लिए 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई और बाद में इसके लाइसेंस और जमीन आवंटन को लेकर खूब विवाद हुए। नतीजा यह निकला कि साल बीतते गए, भारत खुद से अपनी पहली पीपल्स कार नहीं बना पाया। इसके लिए हमें जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को अपना साझेदार चुनना पड़ा, और इसके बाद विदेशी तकनीक और सहयोग से 1983 में मारुति 800 कार लॉन्च की गई। ये कहानी उस दौर की थी जब हमारे लिए खुद कोई चीज बनाना आसान नहीं था और हम विदेशी तकनीक और सहयोग पर निर्भर रहते थे। अब साल 1983 से आज के भारत में लौटते हैं और इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं। जब भारत ने पहली बार यह तय किया कि हमारे देश में भी हाइड्रोजन ट्रेन होनी चाहिए, तब हर बार की तरह पहला विकल्प यही था कि हम इस ट्रेन को दूसरे देशों से खरीद लें। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। सिर्फ 10 साल पहले 2016 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की को एक प्रदर्शनी में पेश किया गया। 2 साल बाद 2018 में जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया और डीजल ट्रेनों को का इन्हें विकल्प बनाया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान में पायलट प्रोजेक्ट या सीमित स्तर पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई गई और ये क्लब केवल इन्हीं देशों तक सीमित रहा। अब भारत अगर पुराने तरीकों से सोचता तो हम अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इनमें से किसी देश के पास जाते और इनसे हाइड्रोजन ट्रेन को खरीदने का करार करते, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने तय किया कि हम ये ट्रेन खुद बनाएंगे। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम के तहत इस परियोजना की शुरुआत की। 2022-23 में पहली बार घोषणा की गई कि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर हाइड्रोजन ट्रेन्स को विकसित करेगा ताकि भविष्य में रेल नेटवर्क का कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, सिर्फ 4 साल पहले ही भारत ने ऐसी ट्रेन को बनाने की योजना तैयार की थी, और आज 4 सालों में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सेट तैयार हो चुका है। और जानते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है। 8 साल पहले जर्मनी ने

जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई वो 742 करोड़ रुपए की थी। अगर हम उस ट्रेन को खरीदने जाते तो शायद उसमें काफी वक्त लग जाता और पैसा भी खूब खर्च होता। लेकिन भारत ने खुद से प्रयास किया और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 112 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली, यानी जर्मनी के मुकाबले हमने 630 करोड़ रुपए कम खर्च किए। और न सिर्फ बचत की हमने, बल्कि इस ट्रेन को अपने लोगों के हिसाब से बनाया। दुनिया के ज्यादातर देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें केवल 2 से 4 कोच की हैं और सीमित यात्रियों के लिए बनाई गई हैं, जबकि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10 कोच की होगी और इसमें लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यानी भारत ने सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन नहीं बनाई, बल्कि इसे अपने लोगों के हिसाब से कस्टमाइज किया। और कोई भी देश ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वो हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है और इससे हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे।

0: पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी। और इस ट्रेन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 10 डब्बे हैं, 8 ट्रेल कार हैं, 2 इंजन हैं, और ये जो इंजन है वो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक मेम्ब्रेन के मिलने के बाद बनता है, और इस केमिकल रिएक्शन से बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट किया गया है, और इस ट्रेन में 2600 यात्री एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो सबसे क्लीन फ्यूल पर चलने वाली है, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें निकलती हैं, अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात करें वो है वाटर, वेपर और हीट। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन इस ट्रेन से नहीं होता है, और क्लीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रेन शुमार हो जाती है।
1: अब यहाँ इस बदलाव को भी देखिए कि भारत अब कच्चे तेल और नेचुरल गैस के ऐसे विकल्प तैयार कर रहा है जो उसकी ऊर्जा निर्भरता को भी कम करेंगे और जो ग्रीन इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे। जैसे आज पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है जो गन्ने, धान और मक्के से बनता है। डीजल में इसोब्यूटानॉल मिलाने का प्रस्ताव है जो कम कार्बन उत्सर्जन करता है। गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट किया जा रहा है जिसमें गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक आ रही हैं, और बिजली में भी न्यूक्लियर पावर और सोलर एनर्जी को विकल्प बनाया गया है जिससे कोयला कम जलाना पड़े। आखिर में खेती में भी बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत ग्रीन इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। और ये ऐसे बदलाव हैं जो आज से 10 साल बाद भारत को काफी हद तक बदल कर रख देंगे। हालांकि यहां हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने से पर्यावरण को लेकर कई फायदे हैं, लेकिन इसी के साथ इथेनॉल को लेकर लोगों की भी कई चिंताएं हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कट्टरपंथी बन सकता है या नहीं, इसका सटीक अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गुजरात पुलिस के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की एक एसओपी को लेकर सवाल उठाए। एसओपी का मतलब वो कुछ संकेत जिनकी मदद से यह पता लगाया जा सके कि कौन व्यक्ति कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है। जैसे गुजरात के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की इस एसओपी में कुछ ऐसे व्यवहार या संकेत बताए गए हैं जिन पर पुलिस को नजर रखने को कहा गया है। इनमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक लंबी दाढ़ी रखने लगे, नकाब पहन कर रहे, रोजमर्रा की बातचीत में अरबी भाषा

का ज्यादा इस्तेमाल करे, धार्मिक कारणों से नौकरी छोड़ दे, बार बार मस्जिद या मदरसे जाए, विदेशी या संदिग्ध ऑनलाइन कंटेंट देखे, एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करे, कट्टरपंथी संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट या कंटेंट को फॉलो करे और संदिग्ध लेन देन या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करे, तो उस व्यक्ति पर नजर रखी जानी चाहिए। क्योंकि इस SOP के मुताबिक पुलिस मान रही है कि यह किसी व्यक्ति के कट्टरपंथी बनने की पहली सीढ़ी हो सकती है। लेकिन राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस SOP पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि केवल दाढ़ी रखना, नकाब पहनना या अरबी भाषा के शब्द बोलना किसी को कट्टरपंथी नहीं बनाता और इससे एक खास समुदाय के लोगों की धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग हो सकती है जो संविधान के खिलाफ है। जबकि गुजरात सरकार और पुलिस का पक्ष यह है कि इन SOPs का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है और यह केवल आशंकित कट्टरपंथी गतिविधियों की शुरुआती पहचान के लिए दिशा निर्देश हैं। पुलिस यह भी भरोसा दे रही है कि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई केवल दाढ़ी, नकाब या धार्मिक आचरण के आधार पर नहीं होगी, बल्कि कई संकेतों और खुफिया जानकारी को मिलाकर ही आगे की जांच की जाएगी। ये सवाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए हमेशा से रहा है कि वो कट्टरपंथ की तरफ जाने वाले संदिग्धों की पहचान कैसे करें। जब वो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोफाइलिंग करती है या उनके व्यवहार और संकेतों के लिए कोई SOP बनाती है तो उन पर ऐसे ही विवाद होता है। और विवाद का एक कारण यह भी है कि कई बार ये SOP धर्म के आधार पर लोगों की प्रोफाइलिंग करती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो भी समझिए। जो लोग कट्टरवाद की तरफ जाते हैं वो कट्टरपंथ की तरफ जाने वाले संदिग्धों की पहचान कैसे करें। जब वो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोफाइलिंग करती है या उनके व्यवहार और संकेतों के लिए कोई SOP बनाती है तो उन पर ऐसे ही विवाद होता है। और विवाद का एक कारण यह भी है कि कई बार ये SOP धर्म के आधार पर लोगों की प्रोफाइलिंग करती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो भी समझिए। जो लोग कट्टरवाद की तरफ जाते हैं वो किसी न अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन और स्थानीय बाजार से गन पाउडर और दूसरी चीजें खरीदता था। आरोप है कि इन सामानों से ये लोग खुद बम बनाने की कोशिश करते थे और फिर उसके छोटे छोटे धमाके करके ये सीखते थे कि विस्फोट कैसे किया जाता है। इस मामले में बिलाल नाम के आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ अन्य आरोपियों को अलग अलग मदरसों से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि करीब 3 साल पहले बिलाल ने अमीन को एक पेनड्राइव दी थी

और उसमें जैश मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाषण और कट्टरपंथी वीडियो मौजूद थे। जांच एजेंसी का कहना है कि अभी एक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि आरोपियों को किसी आतंकी संगठन से सीधे धमाका करने का आदेश मिला था। आरोप है कि वो अपने स्तर पर बम बनाने और उसका परीक्षण करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें भी जांच की सबसे बड़ी कड़ी पाटन जिले के जमिया अब्दुल हसन वक्फ मदरसे तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इसी मदरसे में बम बनाने की प्रैक्टिस की जाती थी और आरोप है कि पास की नदी के किनारे जाकर छोटे छोटे विस्फोट करके उनका परीक्षण भी किया जाता था।

0: देख सकते हैं इसी मदरसा से जो पांच आरोपी उसमें से कुछ आतंकी है जो इसी मदरसा से वो अभ्यास कर रहे थे। संदिग्धों को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ने दावा किया है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और गुजरात में उसका नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में भी जुड़े थे। प्लस ये भी हुआ कि खेतों में उसका परीक्षण भी हुआ किया था। एटीएस के अनुसार उन्होंने कई बार परीक्षण करने की कोशिश की थी लेकिन वे सफल नहीं हुए थे।
1: हाँ वो कर रहा था, मैं तो सुबह में ड्यूटी पे चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ। उसकी मम्मी पूछी कि तू ये सब बर्तन खराब कर रहा है, क्या कर रहा है, सब क्या पाउडर है? बोले दरख्तों के अंदर डालने के लिए पाउडर है, मैं उसको बना के चारों में डालूंगा। अगर हमारा बच्चा कसूरवार है और देश के खिलाफ काम करने जाता है तो हम बहुत दुखी है, उसके काम के साथ हम नहीं है।

0: आठ आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई, तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों के डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले।
1: कई बार लगता है कि धर्म की ये लड़ाई राजनीति तक ही सीमित होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। 20 तारीख को न्यूयॉर्क में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन जानते हैं इस मैच से पहले पूरी दुनिया में और खासकर मुस्लिम देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इसराइल का समर्थन करते हैं और इसीलिए मुसलमानों को फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मेसी की टीम का नहीं बल्कि स्पेन का समर्थन करना चाहिए। यानी यहां भी धर्म। लियोनेल मेसी आमतौर पर राजनीति और विवादों से दूर रहते हैं। मैदान पर अपनी शानदार प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले मेसी ने अपने पूरे करियर में बहुत कम मौकों पर राजनीतिक बयान दिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मेसी का नाम कई बार इसराइल, यहूदी समुदाय और जियोनिज्म से जुड़े विवादों में खींचा गया। कुछ इसराइल विरोधी समूहों ने उनके पुराने कार्यक्रमों और संपर्कों को लेकर सवाल उठाए, जबकि कई इसराइली प्रशंसक उन्हें समर्थन देने वाले खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं। हालांकि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लियोनेल मेसी यहूदी नहीं है, वो कैथोलिक ईसाई हैं और वो अपने गोल का जश्न अक्सर आसमान की ओर देखकर मनाते हैं, जो उनकी दिवंगत दादी सेलिया के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि फिर भी उन्हें इसराइल से जोड़ा जाता है और कारण यह है कि 2013 में मेसी ने इसराइल में होने वाले मैकाबिया गेम्स के लिए अर्जेंटीना की यहूदी टीम को शुभकामना संदेश भेजा था। मैकाबिया गेम्स को अक्सर यहूदी ओलंपिक कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के यहूदी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसके बाद 2013 में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ मेसी इसराइल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने जेरूसलम स्थित वेस्टर्न वॉल का दौरा किया और ये दौरा इसराइली और फिलिस्तीनी बच्चों के बीच शांति और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान बार्सिलोना टीम ने इसराइली और फिलिस्तीनी बच्चों के लिए फुटबॉल कैंप लगाए, इसराइल के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर बाद में मेसी को कुछ लोग इसराइल का एजेंट बताने लगे। 2014 में पोप फ्रांसिस की पहल पर रोम में एक मैच फॉर पीस आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का संदेश देना। मेसी ने इस पहल का समर्थन किया था, हालांकि चोट के कारण मैच नहीं खेल पाए, जिससे उनकी मंशा पर फिर सवाल उठाए गए। और सवाल उठाने का कारण यह था कि इस मुकाबले में दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी शामिल हुए थे, लेकिन मेसी इसमें नहीं आए थे। 2016 में भी मेसी एक विवाद में तब फंस गए जब उन्होंने अपने फुटबॉल जूते एक चैरिटी के लिए दान किए। मिस्र में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उन पर यह आरोप लगाया कि वो इसराइल समर्थक हैं। मिस्र फुटबॉल फेडरेशन के एक अधिकारी ने भी मेसी की आलोचना की। हालांकि इस पूरे विवाद में एक गलत दावा भी सामने आया कि मेसी यहूदी है। सच्चाई यही है कि मेसी कैथोलिक ईसाई है, यहूदी नहीं है, और ये कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है, लेकिन फिर भी लियोनेल मेसी को इसराइल और यहूदी बताकर उनके खिलाफ दुनिया में एक कैंपेन चल रहा है और ज्यादातर मुस्लिम देश स्पेन का समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी लामिन यमाल फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और मैच के दौरान पहले मैदान पर फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा चुके हैं। यानी कहानी अब यह हो गई है कि अर्जेंटीना और स्पेन के फाइनल मैच को इसराइल बनाम फिलिस्तीन की लड़ाई का केंद्र बना दिया गया है और इसमें भी लियोनेल मेसी को लेकर खूब झूठ फैलाए जा रहे हैं।

अब आपको क्रिकेट की दुनिया से एक बेहद

दुखद खबर के बारे में बताएंगे जो एक युग के अंत की तरह है। दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर में से एक सर गारफील्ड सोबर्स, जिन्हें लोग गैरी सोबर्स के नाम से जानते हैं, उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। क्रिकेट के इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए, लेकिन सर गैरी सोबर्स जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वो बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे, बाएं हाथ से ही तेज गेंदबाजी करते थे, और जब जरूरत होती तो स्पिन गेंदबाजी से भी बल्लेबाजों को चकमा दे देते थे। यानी वो बैटिंग भी करते थे, तेज गेंदबाजी भी, और स्पिन गेंदें भी फेंकते थे। फील्डिंग में भी उनका कोई सानी नहीं था। 1954 से 74 के बीच वेस्ट इंडीज के इस जाबाज ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी ऐसी बादशाहत कायम की जिसे देखकर खुद सर डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें दुनिया का सबसे संपूर्ण क्रिकेटर बताया था। गैरी सोबर्स के नाम रिकॉर्ड्स की वो लंबी फहरिस्त है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। सबसे पहले एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड सर गैरी सोबर्स के ही नाम है। ऐसा उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किया था। 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 365 रनों की पारी खेली थी, जो 36 सालों तक टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा, जिसे बाद में ब्रायन लारा ने तोड़ा। 93 टेस्ट मैचों में 8000 से ज्यादा रन और 235 विकेट, ये आंकड़े उनकी बेमिसाल काबिलियत की गवाही देते हैं। अब क्रिकेट फैंस के लिए आईसीसी ने एक ऐसी खबर दी है जिसने पूरे खेल का समीकरण बदल कर रख दिया है। अगर आप सोचते हैं कि वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में 2-4 मैच जीतकर कोई भी टीम आसानी से आगे निकल जाएगी, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 और टी20 वर्ल्ड कप 2028 के फॉर्मेट में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से अब हर एक मैच करो या मरो जैसा होगा। जहां छोटी टीमों को बड़ा मौका मिला है, तो बड़ी टीमों के लिए खतरा बढ़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं 50 ओवर के मैच की, यानी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। इसका गणित और फॉर्मेट आसान भाषा में समझते हैं। अगले साल 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। ये 14 टीमें आपस में 54 मैचें खेलेंगी। पहले राउंड में सबसे नीचे की रैंकिंग वाली 3 टीमों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिनमें से सिर्फ एक टीम आगे जा पाएगी। दूसरे राउंड में टॉप की रैंकिंग वाली 11 टीमों और पिछले राउंड से आने वाली एक टीम को मिलाकर 12 टीम होंगी। ये 6-6 के 2 ग्रुप्स में बटेंगी और तीसरे राउंड में पिछले दोनों ग्रुप की 3-3 टीमें पहुंचेंगी और दोनों ग्रुप की बाकी 6 टीम में से एक और बेस्ट टीम अगले राउंड में पहुंचेगी। इस तरह 7 टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। अगला राउंड सुपर 7 का होगा, जिसमें से सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी। इनमें से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जहां से फाइनल और फिर विजेता तय होगा। यानी पहले जो टीमें ग्रुप स्टेज खेलकर सीधे आगे बढ़ जाती थी, अब उन्हें सुपर 7 के चक्रव्यूह से गुजरना होगा, जहां हर मैच टूर्नामेंट की दिशा तय करेगा। असली सस्पेंस और रोमांच आईसीसी ने फटाफट क्रिकेट यानी टी20 वर्ल्ड कप में डाला है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली 2028 की टी20 वर्ल्ड कप से सुपर 8 का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह एंट्री हो रही है सुपर 10 और एलिमिनेटर की। 2024 और 26 के वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में 5-5 टीमों के 4 ग्रुप होते थे, जिनमें से 2-2 टीमें सुपर 8 में जाती थी, फिर सेमीफाइनल और फाइनल का सफर तय होता था। लेकिन अब 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में 4-4 टीमों के 5 ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप में से 2 टीमें अगले राउंड में जाएंगी, यानी कुल 10 टीमें अगले राउंड में होंगी। इन 10 टीमों को 5-5 के 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दोनों ग्रुप्स में टॉप पर रहने वाली एक एक टीम सीधे सेमीफाइनल में एंट्री लेगी, जबकि दोनों ग्रुप्स में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर राउंड में जाएंगी। इनमें से जीतने वाली दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी, जहां से आगे का सफर तय होगा।

तय होगा। ये फॉर्मेट फैंस को भले ही रोमांचक लग रहा हो, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा मैच कराने के लिए यह किया जा रहा है। ये बात जग जाहिर है कि आईसीसी के रेवेन्यू का 70-80% भारतीय बाजार यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, एड्स, स्पॉन्सर्स से आता है। एक भारत पाकिस्तान मैच की व्यूअरशिप और विज्ञापन दरें किसी भी दूसरे मैच की तुलना में 5 से 10 गुना तक अधिक होती हैं। इसीलिए जब भी आईसीसी कोई नया फॉर्मेट लाती है तो उस पर कमर्शियल एजेंडा और भारत पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा भिड़ाने के आरोप लगते हैं। अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2028 के नए फॉर्मेट को देखें तो ये आरोप काफी हद तक सही महसूस होंगे आपको। इस फॉर्मेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बड़ी टीमें टूर्नामेंट में ज्यादा समय तक टिकी रहे, जिससे व्यूअरशिप बनी रहे। नए फॉर्मेट में 4-4 टीमों के 5 ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि शुरुआती दौर में टीमें केवल 3-3 मैच खेलेंगी। इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 10 होगा। आईसीसी की हमेशा यह कोशिश रहती है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाए। 2007 के वनडे वर्ल्ड कप्स जैसे फॉर्मेट में अगर भारत या पाकिस्तान जैसी टीम शुरुआती 1 या 2 मैच हारकर बाहर हो गई थी तो ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ था। नए सुपर 10 और एलिमिनेटर वाले फॉर्मेट में बड़ी टीमों को वापसी का दूसरा मौका मिलता है। अगर भारत या पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप नहीं कर पाते तो भी वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहकर एलिमिनेटर के जरिए सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, यानी ब्रॉडकास्टर्स के लिए उनके मैचों की संख्या सुरक्षित रहती है। हालांकि इसके सकारात्मक पहलू भी हैं जिसे भी नकारा नहीं जा सकता। दरअसल आईसीसी ने 2 बड़े लक्ष्य रखे हैं। पहला, अमेरिका, नेपाल और स्कॉटलैंड जैसी इमर्जिंग टीमों को दूसरे दौर में ज्यादा मैच खेलने का मौका मिले। दूसरा, बड़ी टीमें ग्रुप स्टेज में हल्के मैच खेलकर आसानी से क्वालिफाई न कर पाए, बल्कि पहले कई बार ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच बेमतलब हो जाते थे क्योंकि टॉप टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी होती थी। नए फॉर्मेट में हर एक मैच का महत्व रहेगा क्योंकि सीधे सेमीफाइनल में जाने के लिए ग्रुप में नंबर 1 बनना जरूरी होगा। इसीलिए अब ग्रुप स्टेज का पहला मैच हो या सुपर 10 का आखिरी मुकाबला, रोमांच और दबाव 100% रहेगा। यह आरोप सही है कि फॉर्मेट को इस तरह से लचीला बनाया गया है ताकि भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी और अधिक रेवेन्यू देने वाली टीमें ग्रुप स्टेज में एक आध उलटफेर का शिकार होकर टूर्नामेंट से जल्दी बाहर न हो। आईसीसी इसे रोमांच बढ़ाने, क्रिकेट को ग्लोबल बनाने इसका नाम देती है, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रॉडकास्टर्स का अरबों डॉलर का निवेश इस बात को सुनिश्चित करवाता है कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा हो जो दर्शकों को आखिरी हफ्ते तक टीवी स्क्रीन से बांध कर रख सके। आज आपको क्रिकेट से जुड़ी एक और जरूरी खबर दिखाते हैं जिससे शायद क्रिकेट फैंस निराश हो सकते हैं। चर्चा है कि रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर क्रिकेट इतिहास के एक सुनहरे अध्याय का अंत होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेलने उतर सकते हैं। इस वक्त भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव की आहट है। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी और कोच गौतम गंभीर ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के रोडमैप को लेकर रोहित शर्मा से चर्चा की है। सिलेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि वो भविष्य की ओर देख रहे हैं और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को आगे मौका देना चाहते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय करियर का विदाई मुकाबला हो सकता है। संन्यास की इन अटकलों को तब और हवा मिल गई जब खबर आई कि रोहित शर्मा के माता पिता लंदन पहुंचे। बताया जा रहा है कि सिलेक्टर्स के साथ हुई बातचीत के बाद खुद रोहित ने अपने माता पिता के लिए ये विशेष व्यवस्था की है ताकि वो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर उनके इस संभावित विदाई मैच के गवाह बन सके। दरअसल रोहित शर्मा T20 और टेस्ट फॉर्मेट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं और इंग्लैंड का ये दौरा उनके लिए अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि 3 दोहरे शतकों के साथ 33 वनडे शतक लगा चुके इस महान खिलाड़ी की विदाई को फैंस यादगार बनते देखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इन अटकलों में कितनी सच्चाई है। और अब सुबह उठकर जिस टूथपेस्ट से आप अपने बच्चे को ब्रश कराते हैं, क्या वो वाकई टूथपेस्ट है? रसोई में जिस नमक को आप देश का नमक कहकर चखते हैं, क्या वो वाकई नमक ही है? एक वक्त था जब लोग सिर्फ खुली चीजों में मिलावट से डरते थे, सोचते थे कि दूध खुला है तो पानी मिला होगा, हल्दी, मिर्च, जीरा जैसे खुले मसाले हैं तो कुछ न कुछ मिला होगा, मिठाई है तो मावा नकली हो सकता है। इस वजह से

लोगों ने ब्रांड्स का रुख किया ताकि उनके साथ एक जिम्मेदारी और एक भरोसा जुड़ा रहे। चमचमाते रैपर्स, बड़े बड़े विज्ञापन और भरोसे का वो नाम जिसके लिए हम अपनी जेब से और महंगी कीमत चुकाते हैं। लेकिन आज वो भरोसा भी टूट चुका है, क्योंकि देश में मिलावट का नहीं ब्रांडेड धोखे का दौर चल रहा है, जहां सिर्फ मिलावट नहीं हो रही बल्कि नामी कंपनी की पैकिंग में नकली माल की बिक्री हो रही है। कुछ हाल की घटनाएं आपको बताते हैं, जब नाम और पैकिंग तो नामी कंपनी की थी लेकिन बस माल नकली था। शुरुआत करते हैं सबसे सस्ते और सबसे जरूरी स्वाद नमक से। पुणे में पुलिस ने जब छापा मारा तो हैरान रह गई। देश के एक भरोसेमंद ब्रांड के पैकेट में नकली और घटिया नमक धड़ल्ले से पैक हो रहा था। रैपर वही, फॉन्ट यानी लिखने का तरीका वही, चमक वही, लेकिन अंदर जो भी भरा था वो कम से कम टाटा का नमक नहीं था। पुलिस ने भारी मात्रा में नमक, पैकिंग सामग्री, मशीनें बरामद की। ये गोदाम एक बड़े बिजनेसमैन का था और तमाम इलाकों में इस नमक की सप्लाई हो रही थी। बात इतनी नहीं है, कुछ दिन पहले गुजरात के कच्छ में मशहूर कोलगेट टूथपेस्ट बनाने की अवैध फैक्ट्री सील की गई। दिल्ली में ब्रांडेड टूथपेस्ट के नाम पर खतरनाक केमिकल्स को ट्यूब में भरा जा रहा था। राजस्थान के उदयपुर में सरस और अमूल ब्रांड की पैकिंग में नकली घी का काला धंधा चल रहा था। दिल्ली और गाजियाबाद में लिव 52, क्लैबाम और जीरोडॉल जैसी दवाइयों की पैकिंग में चौक और स्टार्च भरा जा रहा था। शातिर दिमाग, ठग और लालच के सौदागरों ने जान लिया है कि हिंदुस्तान का आम आदमी आंखें बंद करके ब्रांड पर भरोसा करता है, इसीलिए उन्होंने सामान नहीं बदला, हूबहू वही रैपर, वही रंग, वही पैकेजिंग चुरा ली। आज धोखा खुली बोरी में नहीं बिक रहा, धोखा ब्रांडेड पैकेट में सील होकर आपके घर आ रहा है। अब आप खुद से पूछिए, आप किस पर भरोसा करेंगे जब आपकी आंखें जिसे सच समझ कर खरीद रही हैं उस सबसे बड़ा झूठ है। ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही।

0: संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस दो दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो आठ हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे तीन हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर दिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये आठ बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन आठ मुद्दों में तीन सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत तीन विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले तीन चार महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा, जो तीन बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, तीन बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन तीन बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल, 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
2: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
3: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
5: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
4: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
3: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर उसका जोर रहेगा।
6: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
7: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में इसे दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
8: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया, पॉजिटिव किया, उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सबसे आगे थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लोग। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
7: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
9: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
10: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो ये है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
7: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21-22%, सहारनपुर में 21-22%, मेरठ में 18-19%, मुजफ्फरनगर में 17-18%, अलीगढ़ में 20-21%, आगरा में 22-23%, बिजनौर में 21-22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16-19% दलित वोटर है। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
11: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5-10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
7: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
7: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमियत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
12: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
7: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
13: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
7: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थायी रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है।
0: दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई रेल और सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। नशे और अपराध के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
14: यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घुसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग ना हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नियत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है।
3: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
0: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
15: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई, तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
0: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
16: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चुनावी बिगुल, केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह, सुप्रिया सुले बोली पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा हुई महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, बोले 10 साल पहले हुंडागर्दी गैंगवार थी यहां की पहचान, न नीति थी न नियत। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक, जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस दो दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारी ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर लिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं, और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जो जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल, 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जो जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: यहीं से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
1: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
2: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
3: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
4: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
3: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा शहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
2: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवाद पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर PDA पर उसका जोर रहेगा।
5: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
0: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
6: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया पॉजिटिव किया उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सब साथ थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लोग। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
0: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
7: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
8: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
0: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर है। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
9: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
0: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
0: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
10: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
0: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
11: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थाई रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थाई रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
2: खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न सफल हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया।
12: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
13: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ। हाँ, वो निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया, कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
12: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
13: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए, और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
12: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
14: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ तो उस पेपर हार्ड हुआ कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे हो गई ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
15: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
12: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
16: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में, और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है। जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, तीन मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था। उसके बाद में रीनीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले ली।
12: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
2: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
0: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
17: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
0: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
18: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह, सुप्रिया सुले बोली पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा हुई महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, बोले 10 साल पहले हुंडागर्दी गैंगवार थी यहां की पहचान, न नीति थी न नियत। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक, जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस दो दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो

0: लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं हमारी ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर लिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
0: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
0: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा, जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल, 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
2: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
3: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
5: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी है, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
4: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से, उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
3: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर उसका जोर रहेगा।
6: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
0: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
7: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया, पॉजिटिव किया, उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया। निगेटिविटी कितना किया है, पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सबसे आदर्श थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लोग। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
0: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
8: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
9: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जात और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर लें, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
0: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर हैं। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुँचाने का प्लान बना रही है।
10: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
0: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
0: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमियत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
11: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
0: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
12: जातीय सुरक्षा एवं विमान बंदर निरापत्ता आगे देखकर यही विमान बंदर लोकेशन खूब गुरुत्वपूर्ण निरापत्ता क्षेत्र चीन बांग्लादेश सब काछे आंतर्जातिक विमान बंदर এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: ये मस्जिद 136 साल पुरानी है। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थाई रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थाई रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
3: खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न सफल हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया।
13: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
14: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ। हाँ, उन निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया, कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
13: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
14: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए, और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
13: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
15: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ तो पेपर हार्ड कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे हो गई ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
16: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया की टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
13: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
17: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में, और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है। जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, तीन मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था। उसके बाद में रीनीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले ली।
13: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
3: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
0: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
18: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
0: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
19: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: बिल्कुल, केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर। दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज। राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले बोली, पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा हुई महंगी। देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना। बोले 10 साल पहले हुंडागर्दी गैंगवार थी यहां की पहचान, न नीति थी न नियत। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक। जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस दो दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर दिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बड़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा, जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जिन्ना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल, 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
1: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
2: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
3: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
4: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
3: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
2: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर उसका जोर रहेगा।
5: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
0: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
6: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया, पॉजिटिव किया, उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी कितना किया है। पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सब साथ, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लिए। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
0: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
7: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
8: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जात और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
0: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर हैं। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुँचाने का प्लान बना रही है।
9: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
0: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
0: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
10: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
0: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
11: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थाई रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थाई रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
2: खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न सफल हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया।
12: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
13: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ, हाँ उन निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया, कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
12: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
13: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए, और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
12: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
14: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ तो पेपर हार्ड हुआ कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे हो गई ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जब 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
15: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
12: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
16: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में, और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है। जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, तीन मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था। उसके बाद में रीनीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले लिए।
12: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
2: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
0: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
17: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
0: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
18: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांवों में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए।

0: बिल्कुल, केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर। दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज। राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले बोली, पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा हुई महंगी। देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना। बोले 10 साल पहले हुंडागर्दी गैंगवार थी यहां की पहचान, न नीति थी न नियत। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक। जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस 2 दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।
1: दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर दिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है।

0: दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
1: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा, जो तीन बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, तीन बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन तीन बीमारियों के कारण से।
0: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जो जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल, 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
1: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
2: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
3: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
4: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
3: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
2: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर उसका जोर रहेगा।
5: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
0: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
6: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया, पॉजिटिव किया, उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सब साथ थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लिए। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
0: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
7: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
8: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जात और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
0: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर हैं। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
9: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
0: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
0: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमियत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
10: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
0: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
11: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थायी रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है? अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।
2: खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न सफल हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया?
12: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
13: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसका तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ, हाँ वो निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया, कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
12: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
13: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए, और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा कि इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
12: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
14: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ, तो पेपर हार्ड हुआ, कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे होगी ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
15: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
12: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
16: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इससे पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में, और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है। जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, तीन मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था। उसके बाद में रीनीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले लिए।
12: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
2: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
0: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे, गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
17: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो
0: बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
18: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह, सुप्रिया सुले बोली पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा हुई महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, बोले 10 साल पहले हुंडागर्दी गैंगवार थी यहां की पहचान, न नीति थी न नियत। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक, जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस दो दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर दिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं, और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जो जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी है इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
2: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
3: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
5: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
4: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
3: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर उसका जोर रहेगा।
6: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
7: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
8: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया, पॉजिटिव किया, उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सब साथ, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लिए। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
7: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
9: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
10: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जात तो दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
7: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर हैं। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
11: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
7: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
7: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
12: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
7: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
13: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
7: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थायी रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है।
0: दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
3: खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न सफल हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया।
14: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
15: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ, हाँ वो निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया। कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
14: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
15: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए। और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा कि इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
14: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
16: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ तो उस पेपर हार्ड हुआ तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे हो गई ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
17: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
14: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
18: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में। और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है, जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, तीन मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था। उसके बाद में री नीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले लिए।
14: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
3: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
0: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
19: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
0: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
20: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांवों में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
21: Tune in Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.

0: केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह, सुप्रिया सुले बोली पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का न्याय, शिक्षा हुई महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, बोले 10 साल पहले हुंडागर्दी गैंगवार थी यहां की पहचान, न नीति थी न नियत। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक, जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस दो दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर दिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां

0: एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन तीन बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।
1: के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
3: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
1: जहन्नुम या जेल, 2027 का सियासी खेल।
3: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
1: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
3: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
1: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
3: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
1: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
4: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
1: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
3: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
1: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
4: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
1: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
2: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
5: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
6: आप यहां देखेंगे तो देखिए, लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है, जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का, वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
5: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से, उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
2: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवाद पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर PDA पर उसका जोर रहेगा।
7: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
1: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
8: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया, पॉजिटिव किया, उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सबसे आदर्श, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लिए। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
1: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
9: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
10: देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर रहे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जात और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर लें, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
1: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर हैं। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
11: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
1: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
1: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमियत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
12: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
1: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
13: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিই নি।
1: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थायी रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
2: खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न सफल हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया।
14: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
15: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ। हाँ, उन निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया। कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
14: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
15: अच्छा रिजल्ट, इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए। और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
14: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
16: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ तो पेपर हार्ड हुआ तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे हो गई ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
17: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
14: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में
18: ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
19: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा रहता है लातूर में। और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है, जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, 3 मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था, उसके बाद में री नीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले लिए।
18: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
2: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
1: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
20: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
1: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6-7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
21: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
1: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: बिल्कुल, केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर। दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज। राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले बोली, पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का न्याय, शिक्षा हुई महंगी। देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना। बोले 10 साल पहले हुंडागर्दी गैंगवार थी यहां की पहचान, न नीति थी न नियत। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक। जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार। हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों? संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस 2 दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।
1: दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर दिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जिन्ना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: जहन्नुम या जेल, 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
2: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
3: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
5: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
4: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
3: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर उसका जोर रहेगा।
6: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
7: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में इसे दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
8: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया, पॉजिटिव किया, उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सबसे आदर्श, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लिए। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
7: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
9: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
10: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो ये है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
7: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21-22%, सहारनपुर में 21-22%, मेरठ में 18-19%, मुजफ्फरनगर में 17-18%, अलीगढ़ में 20-21%, आगरा में 22-23%, बिजनौर में 21-22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16-19% दलित वोटर है। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
11: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5-10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
7: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
7: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमियत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
12: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
7: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
13: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
7: এই মসজিদ 136 সাল পুরানি। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थायी रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है।
0: दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
3: खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न सफल हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया।
14: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
15: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसका तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ, हाँ वो निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया। कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
14: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
15: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए, और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा कि इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
14: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
16: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ तो उस पेपर हार्ड हुआ तो कटऑफ नीचे आ जाएगी, तो कटऑफ नीचे हो गई ना, कटऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कटऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
17: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
14: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
18: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में, और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है। जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, तीन मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था। उसके बाद में रीनीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के चेंज सेंटर्स ले लिए।
4: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
3: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
0: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
19: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
0: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
20: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांवों में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले बोली, पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का न्याय, शिक्षा हुई महंगी। देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, बोले

0: मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक, जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों? संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस दो दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो आठ हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे तीन हैं।
1: दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है?
2: राजनीतिक तौर से अगर आप देखें जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से।
1: 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर लिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति, ये आठ बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन आठ मुद्दों में तीन सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत तीन विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है।
2: हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई।
1: इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले तीन चार महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं।
2: यही तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कोटा में कहा जो तीन बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, तीन बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन तीन बीमारियों के कारण से।
1: पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। मौका था विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का, लेकिन योगी ने इस अवसर का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने में किया। माफिया राज पर हमले किए, वहीं कांवड़ियों का मुद्दा बनाकर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश को जवाब भी दिया।

0: जहन्नुम या जेल 2027 का सियासी खेल।
1: माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे।
0: शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया।
1: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
0: योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया।
1: जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
0: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
1: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
0: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
1: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
0: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।
2: योगी सरकार की बात हो और संभल का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी भले ही आज संभल जाएं, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक मजार और इमामबाड़े पर बुलडोजर चला दिया गया।
3: योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इमामबाड़ा और मजार बना ली गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
4: आप यहां देखेंगे तो देखिए लगातार आपको यहां पर इस पूरे इमामबाड़े पर जो बुलडोजर हैं वो यहां पर गरजते हुए जो नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा बुलडोजर एक्शन जो है यहां पर जो शुरू हुआ, जबकि यहां पर तीन तीन बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए गए। और अब फिलहाल आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा अवैध निर्माण है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेजी से की जा रही है। जबकि यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, तहसीलदार की मौजूदगी, SDM विकास चंद्र खुद मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है बुलडोजर का वो लगातार इस पूरे इमामबाड़े पर गरजता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां 312 वर्ग मीटर जगह को खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
3: बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा कर हर जिले की समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई से उनके दौरे से सियासत गर्मा गई है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
2: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का प्लान सामने आया। बीजेपी का प्रयास जहां दलित वोटों को साधने का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के 10 वर्ष बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए पर उसका जोर रहेगा।
5: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
0: 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आना रहा। 2027 में से दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
6: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए क्या पॉजिटिव किया उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया। निगेटिव कितना किया है, पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सब साथ थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लोग। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
0: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क और जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली, अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी समेत पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
7: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अम्बेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
8: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर ले, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला नहीं।
0: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 फीसदी, मुजफ्फरनगर में 17% से 18%, अलीगढ़ में 20% से 21%, आगरा में 22 से 23%, बिजनौर में 21 से 22%, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर है। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बना रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
9: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। पीडीए पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
0: पीडीए के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद को लेकर राजनीति तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद को शिफ्ट करने का निर्णय किया, जिसका विरोध कई संगठन कर रहे हैं।
0: कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी यह मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में सियासत का नया केंद्र बन गई है। एयरपोर्ट के विस्तार का मॉडल तैयार हुआ तो मस्जिद को शिफ्ट करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
10: पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया।
0: रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद को लेकर सरकार की दलील है कि सवाल सुरक्षा का है और मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय उसे दूसरी जगह स्थानांतरित यानी रिलोकेट करने पर विचार हो रहा है।
11: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: ये मस्जिद 136 साल पुरानी है। एयरपोर्ट बनने से पहले मस्जिद बन चुकी थी, यानी कि मस्जिद पहले बनी, एयरपोर्ट का विस्तार बाद में हुआ। इसी आधार पर मुस्लिम संगठन इस मस्जिद को पूरी तरह वैध बता रहे हैं। चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मस्जिद पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई गई। पहले चरण में अस्थायी रोक लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मस्जिद तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक प्रवेश और नमाज अस्थायी रूप से रोक दी है। दूसरे चरण में सुरक्षा की समीक्षा की गई। मरम्मत के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने पाया कि मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में है, इसलिए केवल आधार कार्ड दिखाकर लोगों को प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाई गई। 12 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट प्रशासन ने आम लोगों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। इसके बाद नियमित नमाज बंद हो गई। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा से क्या इसलिए समझौता किया जा सकता है कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
2: खबर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया, लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न सफल हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया।
12: नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ?
13: 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ, हाँ उन निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया, कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है।
12: सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा, सवाल है क्यों?
13: अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके एक दो सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए, और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा।
12: पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है।
14: 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ, तो पेपर हार्ड हुआ, कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो कट ऑफ नीचे हो गई ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई का पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं इसमें।
15: बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है, तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
12: सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20-25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1,250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
16: लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इससे पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में, और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है। जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था, 3 मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था, उसके बाद में रीनीट 21 जून को जो होने वाली थी उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के सेंटर्स ले लिए।
12: इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें, लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।
2: और अब बात गुजरात की, जहां एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये आतंकवादी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लगातार संपर्क में थे।
0: एटीएस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिन्हें यहां सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है।
17: इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई, तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।
0: एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल किया था। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे।
18: गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है।
0: गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांवों में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। अब इन आतंकियों की निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र?
1: जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।

कल केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर, दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज, राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सुले बोली, पेश होने से पहले परिसीमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। देहरादून में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का अन्याय, शिक्षा हुई महंगी, देश में 152 प्रश्न पत्र लीक होने का राहुल ने किया दावा। गाजियाबाद में योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना, बोले 10 साल पहले गुंडागर्दी गैंगवार थी यहां की पहचान, न नीति थी न नियत। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक, जो एक शादी करेगा उसी को मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू मुसलमान का कानून अलग क्यों। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। बुधवार से संसद में कैसी राजनीति देखने को मिलेगी उसका ट्रेलर कांग्रेस दो दिन से पेश कर रही है, जिसने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं।